0: वीडियो में एक आदमी फूट फूट कर रोते और सड़क पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महिला और छोटे बच्चों को भी रोते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की एक बस्ती में हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान का है। दरअसल पश्चिम बंगाल में नई सरकार आने के बाद से अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। इस वीडियो को भी इसी संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की बस्ती पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यह सब वन विभाग और सरकारी जमीन पर बसे थे। वीडियो में पीछे देखिए, एक व्यक्ति तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जर्सी में खड़ा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी फूट फूट कर रोते हुए और सड़क पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महिलाओं और छोटे बच्चों को भी रोते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का ये वीडियो है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये हमें बांग्ला लगा। इससे स्पष्ट रूप से बांग्ला सुनाई पड़ रहा है, मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद हमें वीडियो के एक फ्रेम में खान वस्त्र नाम की एक दुकान नजर आती है। बांग्ला में दुकान का पता लिखा है बांग्लादेश। अब वीडियो पश्चिम बंगाल का है तो फिर दुकानें बांग्लादेश की कैसी हो सकती है? ये थोड़ा अटपटा लगा। बंगाल का वीडियो होने पर यहाँ दुकानों के पते पर पश्चिम बंगाल का जिक्र होना चाहिए था, लेकिन पूरे वीडियो में हमें पश्चिम बंगाल कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था। इसके अलावा हमने वायरल वीडियो का सच जानने के लिए इंटरनेट और पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जिससे इस दावे की पुष्टि हो सके। दरअसल हाल फिलहाल में ऐसे बंगाल से जुड़ते हुए कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसका फैक्ट चेक लगातार किया गया है। हमारी जांच में सारे दावे झूठे साबित हुए, लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि ये वायरल वीडियो आखिर कब का और कहां का है जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है। और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं जानबूझकर वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही? ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
0: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट के माइक को साफ साफ देखा जा सकता है। सर्च के दौरान बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट के फेसबुक पेज पर इस घटना का पूरा लाइव वीडियो मिला। 20 मई के इस लाइव वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे बनी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के मीरपुर की है, जहां प्रशासन ने बोनियाबाद स्लम इलाके में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस और लोगों में झड़प भी हुई थी। इस वीडियो रिपोर्ट में वायरल वीडियो में दिख रहे लोग भी नजर आते हैं। करीब 10 मिनट की इस रिपोर्ट में 6 मिनट के बाद वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है, जहां वही रोता हुआ आदमी और बच्चे दिखाई देते हैं। 20 मई को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने इस इलाके में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए ये कार्रवाई की थी। इस दौरान स्थानीय लोगों के हमले में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो का पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। ये बांग्लादेश के मीरपुर में अवैध कब्जों के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सड़क पर नारे लगाते मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया? देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट। किसी सड़क पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नारे लगाते मुस्लिमों का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कुछ लोग इसे केरलम का बताकर दावा कर रहे हैं कि नई सरकार बनने के बाद इन मुसलमानों ने खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे डाली। वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, केरलम में मुसलमानों के समर्थन से सरकार बनने की घोषणा के बाद भड़काऊ बयानबाजी तेज,
2: हिंदुओं के नाम लेकर काटने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनते ही इसे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामिक टोपी पहने लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि केरल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले दावे की सच्चाई के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ दिखाई दिया। अब वीडियो केरलम का है और वहां एक बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ है दिख रहा है तो कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट और केरलम के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी सर्च किया, लेकिन हमें हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती हुई कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ और हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकल कर सामने आते हैं। पहला सवाल ये कि अगर ये दावा सही है तो वायरल हो रहा वीडियो केरलम के किस हिस्से का है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं किसी और घटना से संबंधित किसी दूसरी जगह से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहां इसे 28 अप्रैल को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान के अजमेर का है। अकाउंट पर मौजूद फोन नंबर पर संपर्क करने पर हमारी बात सैयद सिफात अली से हुई। उन्होंने बताया कि ये वीडियो अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर का है और उन्होंने खुद इसे रिकॉर्ड किया है। दरअसल ये भीड़ जायरीन के एक जत्थे की है जो अपने एक पूरे ग्रुप के साथ अजमेर शरीफ दरगाह में दर्शन करने और चादर चढ़ाने आए थे। जायरीन ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम के पवित्र धार्मिक स्थलों खासतौर पर सूफी संतों की दरगाहों या मजारों की यात्रा करने जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो केरल का नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर का है। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में लगते छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ला।
4: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
5: आजम के जंगलों से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर भूरे रंग में दिखने वाला हॉग डियर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बिल्कुल दूध की तरह सफेद रंग में घूमता नजर आया। इस बेहद दुर्लभ नजारे का वीडियो खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काजीरंगा के हरे भरे घास के मैदान के बीच एक सफेद रंग का हिरण दूर से ही चमक रहा है। ये कोई नई प्रजाति नहीं बल्कि ये सामान्य हॉग हिरण है। जाहिर है कि अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये सफेद क्यों है। दरअसल ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। इसमें शरीर के रंग तय करने वाला पिगमेंट यानी कि मेलानिन नहीं होता, जिससे त्वचा और बाल पूरी तरह से सफेद या फिर हल्के हो जाते हैं। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर और मोर का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो किसी घर के आंगन का नजर आ रहा है। एक चारपाई पर बंदर आराम से बैठा नजर आता है। वहीं पास में एक सुंदर मोर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी बंदर को अचानक से शरारत सूझ जाती है। फिर फ्रेम में गजब का सीन कैद हो जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर अचानक चारपाई से छलांग लगाता है और सीधे मोर की पीठ पर चढ़ जाता है। खुद पर अचानक बंदर को बैठा देख मोर घबरा जाता है और फिर तेजी से फड़फड़ाने लगता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर बड़े आराम से उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। कुछ सेकंड तक ये मजेदार नजारा चलता रहता है। बंदर के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देता है मानो वो किसी सवारी का मजा ले रहा हो। वहीं मोर लगातार इधर उधर भागने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है।
6: अरे बीमार है बुजुर्ग है तब तो थोड़ा सा दिल पसीजना चाहिए कि हर जगह पुलिस ही आएगा। इस काम के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए तो आप सभी लोग मिलके इसको कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा करोगे तो पक्का सबको जगह मिल जाएगा।
5: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग को ट्रेन के अंदर सीट नहीं मिल रही है। इसके बाद पुलिस वाले ने जो किया उससे लोगों को बड़ी सीख मिली। दरअसल ट्रेन में सफर कर रहे एक मुस्लिम बुजुर्ग काफी देर से भीड़ में खड़े थे, लेकिन कुछ तंदुरुस्त युवक सीट पर आराम से फैले बैठे थे। तभी वहाँ मौजूद रेलवे पुलिसकर्मी संतोष की नजर बुजुर्ग पर पड़ी। उन्होंने बिना किसी बहस के युवक को प्यार से थोड़ा खिसकाया और बुजुर्ग को इज्जत के साथ बैठने के लिए जगह दिलाई। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफ्रीका के हरजावे कबीले का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तरी तंजानिया के जंगलों में रहने वाले इस कबीले के लोगों को जब पहली बार शीशे में अपना चेहरा दिखाई दिया तो उनकी प्रतिक्रिया देखकर हर कोई हंस पड़ा। कुछ लोग तो इतने हैरान हुए कि उन्होंने इसे दुश्मन समझ लिया और पत्थर फेंक कर हमला कर दिया। दरअसल हरजावे अफ्रीका का सबसे पुराना और अंतिम शिकारी समुदायों में से एक है। ये लोग आज भी आधुनिक सभ्यता से दूर जंगलों में तीर कमान और पत्थरों के सहारे शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। उनका संपर्क बाहरी दुनिया से बहुत ही कम रहा है, इसीलिए शीशे जैसी आम वस्तु भी उनके लिए अनजानी थी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब एक व्यक्ति को शीशा दिखाया गया तो वो पहले तो घबरा गया, फिर उसने अपना चेहरा देखा और हैरानी से पीछे हट गया। कुछ लोगों ने इसे किसी दूसरे इंसान की छवि समझा और हमला करने की कोशिश की। एक व्यक्ति तो पत्थर उठाकर शीशे पर फेंकने ही वाला था। बाद में जब समझ में आया कि ये उसका अपना ही चेहरा है, तब उनकी हैरानी और बढ़ गई। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में शादी का खूबसूरत माहौल नजर आता है। मंडप पूरी तरह से सजा हुआ और दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप पर वरमाला पहने साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है। वीडियो में दूल्हा दुल्हन की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में कहता है, जैसी वीडियो में लग रही थी वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही।
7: आपने फोन में जो फोटो भेजाई थी वैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती।
5: दूल्हे की बात सुनकर दुल्हन भी मुस्कुरा पड़ी और जवाब देते हुए दूल्हे से पूछती है, तो अब क्या करोगे आप?
8: तो अब क्या करेंगे आप?
7: मैं केस करूंगा कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है।
5: इस पर दूल्हा हंसते हुए कहता है, केस करूंगा। इतना सुनते ही मंडप में मौजूद लोग भी हंसने लगते हैं। दूल्हा दुल्हन की प्यारी सी नोकझोंक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग भी इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोचिए आप घर से बाहर निकलें और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, कुछ ही मिनटों में सड़क पर पानी और कीचड़ भर जाए और कपड़े खराब होने का डर सताने लगे। ऐसे में ज्यादातर लोग छाता या फिर रबड़ की चप्पल का सहारा ही लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने बारिश और कीचड़ से बचने के लिए ऐसा अनोखा जुगाड़ निकाला कि लोग देखते ही रह गए। रबड़ की चप्पलों की जगह उसने पैरों में ईंट जैसी ऊंची चप्पल पहन ली। अब ये देसी जुगाड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बेहद अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। वीडियो में एक शख्स चलती गाड़ियों के बीच एक बेड चलाता हुआ नजर आता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस बेड पर गद्दा और तकिया भी रखा हुआ है और शख्स आराम से उस पर लेटा हुआ है। आसपास कारें, बाइक और दूसरी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन सड़क के बीच चलता ये बेड हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जो भी इस नजारे को देख रहा है वो कुछ पल के लिए रुककर इसे जरूर निहारता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑटो रिक्शा ने सबको हैरान कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि ऑटो रिक्शा है या फिर चलता फिरता घर। इस ऑटो में वॉश बेसिन, नल, आईना, शीशा और घरेलू सामान तक लगा हुआ है। वीडियो देखकर लोग दंग रह गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक बाइक सवार सड़क पर जा रहा था, तभी उसके सामने ये खास ऑटो आया। ऑटो के अंदर एक छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ था जिसमें नल से पानी भी निकलता है। बेसिन के ऊपर आईना लगा है ताकि यात्री बैठे बैठे अपना चेहरा भी देख सके और हाथ मुंह धो सके। गर्मी के मौसम में यात्री अक्सर पसीने से तरबतर होते हैं, ऐसे में ये सुविधा उन्हें तरोताजा रखती है। ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को खास तरीके से मॉडिफाई करवाया है। उन्होंने बताया कि पहले वो सामान्य ऑटो चलाते थे, लेकिन अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बदलाव कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये डांस खूब तेजी से वायरल हो रहा और तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट की पब्लिक अपनी नजरें नहीं हटा पा रही। वायरल क्लिप में पीले सूट वाली एक लड़की ने हरियाणवी गाने पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। लड़की के गजब की एक्सप्रेशन, कमाल की एनर्जी और मूव्स ने नेटिजंस का दिल जीत लिया।

0: सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले लगाती है मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नज़ारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: वृंदावन के प्रसिद्ध माखी बिहारी मंदिर से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के प्रतिनिधियों में चयन को लेकर अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगा दी और कहा है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही समिति में गोस्वामी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोर्ट ने शयन भोग सेवायत परंपरा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी, जबकि राजभोग सेवायत परंपरा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी को समिति का सदस्य बनाया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद वृंदावन का गोस्वामी समुदाय बहुत खुश है।

0: देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी में बड़ा बदलाव किया तो गोस्वामी समाज से जुड़े इन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि मंदिर की हाई पावर कमेटी में गोस्वामी समुदाय के प्रतिनिधियों के चयन में अब प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही इस समिति में समाज की आवाज होंगे।
1: जी बात है, उच्चतम न्यायालय ने आज ठाकुर जी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिससे गोस्वामियों के हृदय में एक बहुत उल्लास और हर्ष की स्थिति है। विगत जब से उच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई कमेटी थी, निरंतर मनमानी और निरंकुश मनमानी अपनी सब आदतें मंदिर के ऊपर थोपी जा रही थी जो गोस्वामियों के और बिहारी जी के मर्यादा के प्रतिकूल थी। निरंतर ऐसी अवहेलना गोस्वामी समाज और भक्तगण निरंतर सहते चले आ रहे थे। आज इसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, इससे बड़ी हर्ष की और बड़ी उल्लास की लहर गोस्वामी समाज में और भक्त समाज में।
2: गोस्वामियों को अपने ठाकुर पे विश्वास था क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन है और बिहारी जी को चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है और गोस्वामियों की तो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिहारी जी है। उन्होंने अपने श्री बिहारी जी को नहीं छोड़ा और उनके भजन में लीन रहे क्योंकि कि जितना भी इन लोगों ने कर सकते थे इन्होंने किया। आज ठाकुर जी ने उसी की लाज रखी है।
3: ये ठाकुर जी की जीत है, समस्त ब्रजवासियों की जीत है, हमारी क्या जीत है।
0: दरअसल पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिसमें मथुरा के डीएम समेत अन्य अधिकारी और गोस्वामी समाज के चार प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस समिति का मकसद मंदिर में दर्शन व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाना था, लेकिन आरोप है कि समिति के अधिकारियों ने अपनी पसंद से गोस्वामी प्रतिनिधियों का चयन कर लिया था जिसका गोस्वामी समाज ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
4: रिट पिटीशन थी जो हमने फाइल करी थी क्योंकि जिस कमिटी का गठन हुआ था उस कमिटी के द्वारा कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास करे गए थे जो कि डायरेक्टली रिचुअल्स को अफेक्ट कर रहे थे टेंपल के, और जो कमिटी ने जिन चार लोगों को चुना था, गोस्वामियों को चुना था कमिटी में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हमारा ये कहना था कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो बड़े जो गोस्वामी समूह ने, जो गोस्वामी में दो ग्रुप्स हैं, एक शयनभोग एक राजभोग, जो उन लोगों ने चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव्स वो नहीं है। तो इसकी मेन मांग थी हमारी रिट पिटीशन।
0: गोस्वामी समाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने तीन पुराने सेवायत सदस्यों को हटाकर उनकी जगह पर नए सदस्य शामिल किए। राजभोग सेवा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी, जबकि शयनभोग सेवा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी को हाई पावर्ड कमेटी में शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मंदिर के विकास के लिए एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं जिसमें क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। वहीं बुजुर्ग और महिला श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाजनक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए विकास जरूरी है, लेकिन गोस्वामी समाज के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
4: 208 लोगों ने और जो 280 लोगों का ग्रुप है शयनभोग से और कुछ 67 लोगों का ग्रुप है राजभोग से, उसमें से 280 में से 208 उसमें शामिल हुए थे और उसमें से जो 67 उसमें से भी कुछ 50 लोग थे जिन लोगों ने कमिटी में चार लोगों का चयन करा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को माना है और जो पहले गोस्वामी थे उस कमिटी के उनको रिप्लेस करके इन चारों को उस कमेटी में आने का आदेश दिया है। दूसरी चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व करी है कि कोई भी इंटरनल रिचुअल्स को ना टच करा जाए कमेटी के द्वारा, क्योंकि एक बहुत ही डिटेल्ड हमने अप्रोच आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी कि कई रिचुअल है जैसे कि टाइम चेंज टेम्पल का नहीं हो सकता। ये हमने ये भी रिक्वेस्ट करी कि ये एक अनऑल्टर्ड एक ट्रेडिशन है जो सालों से चला आ रहा है, और अगर आप 6 बजे की जगह आप बोलते हो कि 5:30 बजे मंदिर खोल दो तो उसमें जो 6 से 5:30 के बीच में जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो भी उनका टाइम भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आज जो ऑर्डर पास हुआ इससे एक राहत है कि गोस्वामी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब वो कमिटी में है, और ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि एसेंशियल रिचुअल्स को अफेक्ट करेगा उस पर कमिटी की फिर से मीटिंग होगी इंक्लूडिंग द न्यू गोस्वामी एंड देन दे विल डिसाइड अगेन अफ्रेश। इसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ये भी रखा गया कि जो
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communication so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
5: इसके ऊपर उसके ऊपर है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर

किसने त्यागा? पिता का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, लेकिन त्याग दिया किसने? प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ दिया। जा कोई काम के नहीं, क्यों? तुम भगवान विरोधी हो, हमारे काम के नहीं हो। अच्छा, पिता को तो त्यागा, पर आज तक किसी ने मां को त्यागा? हाँ, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। मां को त्याग दिया भरत जी महाराज ने, क्यों? तुमने हमसे भगवान को दूर किया है, तुमने भगवान को वन भेज दिया। आज के बाद मैं भरत लौट कर अपने मुंह से तुम्हें मां संबोधित नहीं करूंगा। लो, मां को भी त्याग दिया, भाई को भी त्यागा। हाँ, किसने? विभीषण जी ने,

तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। अच्छा माता पिता भाई, भाई को त्यागा विभीषण जी महाराज ने, पर क्या आज तक किसी ने गुरु को त्यागा? हाँ त्यागा, सबसे बड़ा रिश्ता गुरु जी का होता, बोलो होता कि नहीं होता? माता जी का, पिताजी का, भाई का रिश्ता तो बड़ा होता है, लेकिन इनसे बड़ा किसका रिश्ता होता है? बोलो बोलो बोलो, गुरु जी का होता कि नहीं? लेकिन उनको भी त्याग दिया किसने? बलि गुरु तजो, बलि महाराज ने गुरु जी को त्याग दिया जब बामन भगवान बनकर के आए, और गुरु जी बोले इनके चक्कर में ना फंसना, ये छोटे से ब्राह्मण नहीं है, छलिया है, छलिया तुम्हें छल लेंगे। धीरे से बलि ने पूछा महाराज हैं कौन? गुरु जी बोले शुक्राचार्य जी। बलि ये कोई साधारण नहीं है, विष्णु भगवान है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं, तुमसे कुछ मांगेंगे, कुछ मत देना। पता है बलि क्या बोला? जो दुनिया को देते वो हमसे मांगेंगे, वो हम चुप बैठ जाए। गुरु जी तुम साइड में हो जाओ, हम तो देंगे। गुरु जी बोले मूर्ख, गुरु की बात नहीं मानता, नरक जाएगा नरक। मुस्कुराते हुए बलि बोला ऐसे तो हम 100 नरक भी भोगने को तैयार हैं, जब मांगने वाला परमात्मा हो तो ये आत्मा देने को तैयार है। गुरु जी का दिमाग खराब हो गया, शुक्राचार्य जी का। गुरु जी ने सोचा एक काम करें, ये हमारा चेला बर्बाद ना हो जाए, हमारा चेला इन्हें कुछ दे ना पाए, क्या करें? देने के पहले संकल्प होता है, पंडित जी संकल्प करते विष्णु विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो, तो संकल्प में जल डालते, जल कमंडल से डालेंगे। शुक्राचार्य जी कमंडल की जो टोटी होती जहां से जल गिरता वहीं बैठ गए। अब जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा भग जाएंगे, हमारा चेला बच जाएगा। लेकिन भगवान भी कम नाटकी नहीं है, भगवान ने जैसे ही जल डाला जल नहीं निकला, क्योंकि जल के छेद में तो बैठ गए थे शुक्राचार्य जी। भगवान ने तुरंत क्या किया, एक कुसा निकाला और कुसा जैसे ही भीतर डाला सोई आंख ही फूट गई, बाहर निकले दिमाग फड़फड़ा गया। गुरुजी से बलि बोला क्या हुआ गुरुजी, आंख क्यों फूट गई? दूसरा बोला जल्दी जाओ फिर से पानी डाल रहे। शुक्राचार्य जी बोले अब हमें अंधा नहीं होना है, एक फूट गई सो जाने दो, एक से काम चलाएंगे, अपन तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी बाहर आ गए, लौट के नहीं गए, तो लोग गुरु को भी त्याग दिया किसने? चेला ने। कौन से चेला ने?

मेरे छत्तीसगढ़ के पागलो, ऐसे व्यक्ति की संगत मत करना जो तुम्हें भगवान से दूर ले जाए। ऐसे व्यक्ति को त्याग देना, तुम्हें संगत करनी ही है तो ऐसे व्यक्ति की संगत करना जो तुम्हारा भगवान से तार जोड़ दे।

कथा कहती भैया ऐसे व्यक्ति से जुड़ना जो तुम्हें भगवान से जोड़ दे, बोलो सीताराम। अब कई लोगों को ऐसे मित्र मिलते हैं जो मंदिर नहीं मदिरालय ले जाते, फिर क्या, पर सीताराम नहीं होता, पौआ पी के आ जाते हैं। लोग कहते हैं क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो दोस्ती में हो गया। अब भाई ऐसी दोस्ती काहे को करते हो, ठठरी बराने दो ऐसे दोस्तों को, हैं? जो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं उनको ठठरी बराने दो, ऐसे लोगों की संगत मत करो, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद क्या, कुछ बचेगा ही नहीं। एक बार छत्तीसगढ़ का रायपुर गुड़िहारी में रहने वाला एक चेला हमारे पास आया, चंगीलाल, गुड़ियारी का चंगीलाल हमारे पास आया। बोला गुरुजी जुखाम हुआ है, जुखाम। हमने कहा जुखाम हुआ तो हम क्या करें, गोली खा लो। बोले नहीं नहीं गुरुजी, हमने सुना है दारू पीने से जुखाम मिट जाता है, ऐसे छत्तीसगढ़ में ही लोग पाए जाते। बोला गुरुजी हमने सुना दारू पीने से, पौवा पीने से जुखाम मिट जाता है। हमने कहा पी ले, पी ले। तो बगल में खड़े हुए थे छत्तीसगढ़ के फाफाडी का एक और चेला, वो बोला गुरुजी कैसी उल्टी बात कहते हो, तुम तो पीने पर रोक लगाते हो, उसको कह रहे पी ले। अरे हमने कहा उसका रोग तो पूछो क्या है, बोले जुखाम है। हमने कहा सही तो है, वो कह रहा है क्या दारू पीने से जुखाम मिट जाएगा, लोगों के मकान मिट गए, लुगाई मिट गई, जमीनें मिट गई, इसका जुखाम तो मिट ही जाएगा। बोलो सीताराम, जोरों से बोलो, बोल शंकर भगवान की। लोगों के मकान मिट गए, लुगाई मिट गई, इनका जुखाम नहीं मिटेगा क्या? अच्छे अच्छे लोग मिट गए, लीवर फूल गया, कई लोगों का लीवर खराब। एक आदमी हमें और मिला, अब हम क्या बताएं, ये सब लोग छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं। एक आदमी और मिला बिलासपुर का, हमने कहा तुमने इतनी पी के लीवर खराब कर लिया। बोला गुरुजी हम तो बढ़िया थे, दारू ठीक थी, लीवर ही कमजोर था। ले आओ, आओ, आओ। बोले हम ठीक थे, दारू ठीक थी, लीवर कमजोर था। हमने कहा अब विचार क्या है, बोले ब्रह्मा जी पे केस करेंगे, इतनी कम क्वालिटी का लीवर दिया है, बताइए। हमने कहा कहीं तुम छत्तीसगढ़ से तो नहीं हो? बोला सही कहा तो गुरु। हमने कहा जय हो तोला, बताइए। ऐसे लोग तो संगति, संगति किसकी करो, जिसके मुख पर राम, जिसकी वाणी में सीताराम, मस्तक पर चंदन, गले में कंठी की माला, ऐसे व्यक्ति की संगति करोगे तो भैया मदिरालय नहीं मंदिर जाओगे। बोलो सीताराम। तो शरणागति के छह लक्षण, पहला लक्षण है हमको भगवान के अनुकूल रहना चाहिए, दूसरा लक्षण भगवान के जो विरोधी हैं उनसे दूर रहना चाहिए, शरणागति का तीसरा लक्षण भगवान पर अटूट भरोसा होना चाहिए। किस पर भरोसा, लेकिन हम लोग भी कम खतरनाक नहीं है, इंसान पर भरोसा कर लेते, भगवान पर नहीं करते। और जो भगवान पर भरोसा नहीं करता उसको शरणागति प्राप्त नहीं होती, उसका कल्याण भरोसे की बात है। भरोसा करोगे भगवान को पाओगे, भरोसा नहीं करोगे तुम कहीं भी भगवान को नहीं पाओगे। जिसे भरोसा होता है उसे पत्थर में भी परमात्मा मिल जाता है, और जिसे भरोसा नहीं होता है उसे परमात्मा में भी पत्थर प्राप्त होता है। बोलो सीताराम, बोल शंकर भगवान की। तो ये तीसरा उपाय, भगवान पर अटूट भरोसा करो, ये लक्षण है। चौथा लक्षण, हर समय भगवान को धन्यवाद दो। किसको धन्यवाद दो, बोलो बोलो बोलो,

चौथा लक्षण है भगवान को बार बार धन्यवाद देना। प्रभु आपकी जय हो। क्यों? अच्छा भगवान को धन्यवाद क्यों देना? मान लो भगवान ने तुम्हें भैंस बनाया होता तो क्या तुम कथा सुन रहे होते? बताओ, हाँ जी या ना जी? अच्छा मान लो तुम घोड़ा बने होते तो क्या कथा सुन रहे होते? कहीं बंधे होते। भगवान ने हम लोगों को क्या बनाया? मनुष्य बनाया। इसलिए भगवान को हर पल धन्यवाद देना चाहिए। ये चौथा लक्षण। अच्छा पांचवा लक्षण क्या है? जो मिला उसे अपना मत मानो। किसका मानो? भगवान का। हमारे पास जो है वो हमारा नहीं है, किसका है? जोर से बोलो, भगवान का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा भी भगवान का। भगवान ने तो कर्म की चाबी तुम्हें पकड़ा दी, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो तुम्हारे ऊपर है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। जो खेत में बीज बोओगे वही काटोगे। आम का फल लगाओगे आम काटोगे, जामुन का नहीं खा सकते। अच्छा इसीलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही, जितना

भगवान ने क्या नहीं दिया? दो आंखें दी, एक दो कान, एक मुंह, नाक, हाथ पैर। विचार करो, भगवान तुम्हें सब बढ़िया बना दे, पांव ना दे, पैर ना हो, तो क्या तुम भगवान को धन्यवाद दोगे? बहुत से लोग हमारे पास रोते हुए आते, गुरुजी हम तो बहुत परेशान, भगवान ने हमें कुछ देखा ही नहीं। अरे क्यों परेशान हो? एक आदमी हमें मिला यही छत्तीसगढ़ में, चंगीला, यही रहता है छत्तीसगढ़ में। हमको प्राप्त हुआ रायपुर में रेलवे स्टेशन के पास, शंकर नगर है। हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी जूता नहीं है। हमने कहा भारत में वो जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे, तुम ही को मना करना पड़ेगा कि आप रहने दो, बाल उखड़ गए, भारत में जूतों की कमी। अरे बोले पिटने वाले जूते नहीं। हमने कहा कौन से जूते? बोला पहनने वाले। हमने नीचे देखा, हमने कहा ये जूते पहने तो, ये क्या है? बोला गुरुजी हैं तो पर कंपनी के नहीं है। देख तो बताइए, जूता कंपनी के नहीं है इसलिए रो रहा। हमने उसका हाथ पकड़ा, एक जगह ले गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा चलो। जैसे ही ले गए, एक झोपड़ी में गरीब आदमी काला सा बैठा हुआ, तौलिया गले में डाले हुए बैठा, हमको देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम करके मुस्कुराने लगा, गुरुजी आइए। हमने कहा इसे देखो। वो व्यक्ति बोला क्या देखना है? बैठा है, लंगड़ा है। हमने कहा जरा विचार करो, इसके तो पैर नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा, भगवान ने तो तुम्हें पैर भी दिए फिर भी रो रहे, तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन होगा? विचार करो, हम दुखी क्यों हैं? अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आदमी अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। पड़ोसी का दो मंजिल मकान बन जाए दिमाग खराब हो जाता। एक हमारा चेला है बेंगलुरु में, बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी। हम जब भी उसके घर जाते थे मकान दिखाता था, हर बार दिखाता था, उसका काम ही था, गुरुजी ये बेडरूम देखो, ये बढ़िया वो नहाने वाला होता जो समुद्र जैसा, क्या होता?

0: आते थे मकान दिखाता था, हर बार दिखाता था, उसका काम ही था, गुरुजी ये बेडरूम देखो ये बढ़िया, वो नहाने वाला होता जो समुद्र जैसा, क्या होता पूल, क्या समन, हाँ स्विमिंग पूल, हाओ हमको दिखाता, गुरुजी देखिए हर कमरे में स्विमिंग पूल है। अरे हमने भी एक दिन डुबकी लगाई, बहुत मजा आया, स्विमिंग पूल एकदम नीला नीला पानी, लाइट है बढ़िया, लिफ्ट लगी, अमीर आदमी लिफ्ट लगी, बढ़िया छत पर फुलवारी लगी, पीछे बढ़िया क्रिकेट खेलने का ग्राउंड, आहा। लेकिन हम एक डेढ़ साल पहले गया, टेंशन में बैठा, हमका क्या बात है टेंशन में क्यों, उसकी पत्नी आई, बोला गुरुजी क्या बताएं, पड़ोसी का हमसे बेहतरीन मकान बन गया, तब से ये टेंशन में है, बताइए है? इसका मतलब व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख कर दुखी है। हमने कहा हार्ट अटैक में मर जाओगे, मर जाओगे, अरे भाई बन गया तो क्या दिक्कत है। तब तक हमसे उसकी पत्नी बोली गुरुजी उसके घर तुम मत चले जाना, नहीं तो इन्हें तो आईसीयू ले जाना पड़ेगा। अरे हमने कही बताओ तो, बोलो सीताराम, बोलो शंकर भगवान की जय।
1: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: फील द गुड वाइब्स विद रूट्स रेगे। ट्यून इन इज ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी टू योर इयर्स विद द बेस्ट रेगे हिट्स। स्टिर इट अप विद बॉब मार्ली, जिमी क्लिफ, प्रोटेजे, much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: भीषण गर्मी और लू की चपेट में झुलस रहे देश के कई राज्यों के लिए राहत भरी खबर। IMD ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत 11 राज्यों में दिया बारिश का अलर्ट। 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। आज देश भर में मनाया जा रहा है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बकरीद। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं ईद उल अजहा की मुबारकबाद। IPL 2026 के एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा ऋषभ पंत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 29 गेंद पर 12 छक्के जड़कर बनाए 97 रन। क्रिस गेल का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके। समस्तीपुर में वैभव के गांव में मना शानदार जश्न। पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित ने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर रच दिया इतिहास। 60वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के जेवलिन थ्रो F64 स्पर्धा में 74.82 मीटर दूर भाला फेंका। खेल मंत्री ने दी बधाई। कोलकाता में दादा द सौरव गांगुली स्टोरी बायोपिक की शूटिंग शुरू। मैदान ईडन गार्डन्स पर कैमरा क्रू संग नजर आए सौरभ का किरदार निभा रहे राजकुमार राव। सौरभ के जन्मदिन पर 8 जुलाई को दिख सकती है पहली झलक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: हैदराबाद ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालिफायर 2 में पहुंची। राजस्थान रॉयल्स IPL के फिनाले में पहुंचने का मिला एक और मौका। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद को दी करारी शिकस्त। 4 गेंद रहते 47 रन से जीता मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने खड़ा किया 243 रनों का विशाल स्कोर। जवाब में महज 196 रनों पर ढेर हो गई हैदराबाद। मैच के हीरो रहे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 29 गेंदों में जड़ दिए 97 रन, लगाए 5 चौके 12 छक्के। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले के सामने हैदराबाद के गेंदबाजों का सरेंडर 334.48 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेल। IPL प्लेऑफ इतिहास। IPL प्लेऑफ इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी। महज 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक। IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी सूर्यवंशी के नाम रहा। अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के, तोड़ा क्रिस गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड। एक ही सीजन में तीन बार एक पारी में 10 से ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए वैभव। एलिमिनेटर में 12 छक्के, 25 अप्रैल को हैदराबाद के खिलाफ हुए मैच में भी 12 छक्के लगाए थे। ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं वैभव सूर्यवंशी। इस सीजन में अब तक बना चुके हैं 680 रन, इन 680 में से 610 रन सिर्फ बाउंड्रीज। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए वैभव। 29वीं गेंद पर 97 रन पर आउट हो गए। 2013 में 30 गेंदों में शतक लगाकर क्रिस गेल ने बनाया था रिकॉर्ड। अब शुक्रवार को होगी आईपीएल फिनाले के लिए आखिरी जंग। न्यू चंडीगढ़ में होगा गुजरात और राजस्थान के बीच क्वालिफायर 2। वैभव की शानदार बल्लेबाजी को देखकर समस्तीपुर में जश्न का माहौल, लोगों ने पटाखे फोड़े। धार 97 रनों की पारी के लिए काटा गया शानदार केक, फैंस का जोश आया। दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए वैभव के मुरीद। वैभव की बल्लेबाजी की तकनीकी बारीकियों को सराहा। साल समंदर पार पहुंची वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता। WWE स्टार ड्रू मैकइंटायर ने वैभव के नाम की जर्सी पहनी। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने रच दिया इतिहास। फेंका 74.82 मीटर दूर भाला। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार भारत का नाम किया है रोशन। 2 बार पैरालंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं सुमित। 7 बार ध्वस्त किए हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। अंतिल की शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बधाई दी, सोशल मीडिया पर सराहा। म्यूनिक में ISSF विश्व कप में ईशा सिंह ने भी शानदार विश्व रिकॉर्ड बनाकर रच दिया इतिहास। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 50 में से 43 अंक जीता गोल्ड। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की बेटी की इस उपलब्धि पर जताया गर्व। सोशल मीडिया पर लिखा, भारत के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड की भरा गया दिन। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में आएगी कमी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में लू की स्थिति में कमी की उम्मीद। दिल्ली, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव। अगले 2 दिन तक दिल्ली NCR में बादल छाए रहने की उम्मीद। रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश, आंधी तूफान और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना। भी फिर करवट लेगा मौसम आने वाले दिनों में। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि का अनुमान। अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के संकेत। बारिश की संभावना के बीच मछुआरों को कुछ दिन समुद्र में न जाने की अपील। गर्मी और हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए अयोध्या में नगर निगम की विशेष पहल। शहर में जगह जगह लगाए जा रहे हैं अस्थाई शेड और ग्रीन नेट। अयोध्या के मंदिरों में भी भगवान के लिए लगाए जा रहे हैं AC कूलर। लगाया जा रहा है खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का भोग। रामनगरी अयोध्या में भरदेखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन। झालरिया मठ में 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन। विश्व शांति, राष्ट्र समृद्धि और जन कल्याण की कामना की जाएगी। महोत्सव में 225 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ, श्रीमद भगवत कथा, श्रीमद भगवत पाठ, सहस्त्र कलशाभिषेक जैसे दिव्य और भव्य धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। बाबा बागेश्वर के कथावाचन का आज दूसरा दिन। 5 दिन तक चलेगी पवित्र सत्यनारायण कथा। बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था। रामगढ़ में दिखा आस्था और संस्कृति का संगम। अच्छी बारिश, अच्छी फसल और गांव में सुख शांति के लिए धूमधाम से मंडा पूजा। पूजा के दौरान लोटन सेवा के साथ जलती अंगारों पर नंगे पांव चलते नजर आए श्रद्धा। मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए मनाया जाता है यह पर्व। झारखंड में इस पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का उत्साह चरम पर। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम श्रद्धालुओं से गुलजार। केदारनाथ धाम में अब तक 9,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, लंबी कतारें। बद्रीनाथ धाम में आज आए 25,488 तीर्थयात्री। इस साल धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर हुई 6,68,000 के पार। महाराष्ट्र में अकोला के श्याम धाम मंदिर में बाबा श्याम कारों का आम श्रृंगार। भक्ति, सुगंध और श्रद्धा के संगम में सराबोर हुआ मंदिर परिसर। FSSAI टीम ने गुणवत्ता और स्वच्छता के लिए अयोध्या में रामलला के भोग और सीता रसोई का निरीक्षण भी किया। देशभर में मनाई जा रही है बकरीद। इस मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में सुबह 4 बजे खोला गया पवित्र जन्नती दरवाजा। सुबह सुबह अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने के लिए लंबी लंबी कतारें। विशेष इस्लामी त्योहारों और उर्स के मौके पर साल में केवल 4 बार खोला जाता है पवित्र दरवाजा। दिल्ली की जामा मस्जिद में बकरीद की रौनक। प्रशासन द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। अलग अलग शहरों में बकरीद के मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज। मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच देश के लिए आई राहत भरी खबर। LPG लेकर वतन आया स्वदेशी वेसल। पोरबंदर के तट पर पहुंचा CMD-23 वेसल। 4,000 टन LPG लेकर लौटा पता। कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग का सफलतापूर्वक पा लिया गया काबू। भारतीय वायुसेना ने आग को बुझाने के लिए अभियान में निभाई अहम भूमिका। टेहरी के जंगलों में भड़की आग, ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा, आग बुझाने में जुटे। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन को सजाया गया। इमारत लाल रोशनी से जगमगाई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
0: से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
5: गुड न्यूज टुडे
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में

0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना.
1: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
2: It's college football time. College basketball feels
1: like. Pardon my take.
3: The Rams catching the Commanders.
1: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
3: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.

0: स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के बहुत सारे उपायों में ऐसा कहा जाता है कि गाय को गुड़ खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए। गाय को क्या खिलाएं और गाय की कैसे सेवा करें जिससे आपका भाग्य बेहतर हो, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 मई 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 7:56 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 8:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। देखिए, गाय को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों मानते हैं, कारण क्या है? देखिए, प्राचीन काल से अगर आप देखें तो भारत की सारी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्भर रही है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और गाय पर, गोवंश पर पूरी व्यवस्था आधारित रही है। कृषि से लेकर व्यवसाय तक सब कुछ गाय पर ही निर्भर रहा है। गाय के इतना मूल्यवान होने के कारण इसको धर्म से जोड़ा गया है। ऐसा देखा गया है कि गाय के शरीर की जो तरंगे हैं वो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं। जब हम गाय के संपर्क में आते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि गाय की सेवा करने से, गोपालन करने से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गाय की देखभाल करने से, गाय की सेवा करने से, गाय के संपर्क में रहने से व्यक्ति का भाग्य सुधरने लगता है। गाय की तरंगें, गाय का संपर्क, गाय की सेवा, गाय का दूध, ये सब बड़े मूल्यवान हैं और इनके अंदर आपके जीवन को बदलने की क्षमता पाई जाती है। अब आपको बताते हैं कि जब आप गाय की सेवा करते हैं, गाय के संपर्क में आते हैं, तो उससे किस प्रकार आपके ग्रह नियंत्रित हो सकते हैं। गाय को अगर आप नियमित रूप से गुड़ खिलाएं, खास तौर से मंगलवार और रविवार को अगर गाय को गुड़ खिलाएं, तो मंगल और सूर्य दोनों नियंत्रित होते हैं। गाय को आटे का पेड़ा यानी आटे की लोई खिलाने से और गाय को स्नान कराने से, नहलाने से चंद्रमा और शुक्र मजबूत होते हैं। गाय को अगर आप हरा चारा खिलाएं या गाय को नियमित रूप से पालक खिलाएं, तो बुध मजबूत होता है और धन का अभाव नहीं होता। स्नान करते समय जल में अगर आप गोमूत्र डालें, जल में गोमूत्र डालकर स्नान करें, तो राहु केतु की और शनि की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से गाय की सेवा करता है, गाय की देखभाल करता है, तो उसको जीवन में नाम, यश और धन मिलता है। संतान संबंधी जो कष्ट हैं, संतान संबंधी जो पीड़ा है, वो पीड़ा समाप्त होती है। जो कोई गाय को कष्ट देता है या उसको पीड़ा पहुंचाता है, उसके वंश का विस्तार नहीं होता। आपके ग्रह ज्यादा खराब हैं, जीवन में मुश्किलें ज्यादा हैं, केवल नियमित रूप से गौशाला में जा करके गाय की सेवा करना शुरू करिए, आपके खराब ग्रह, आपकी बिगड़ी हुई किस्मत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। गाय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो गाय की सेवा करने से आपके ग्रह बेहतर हो सकते हैं। गाय की सेवा करने से आपको विशेष लाभ भी हो सकता है। कैसे होगा? अगर कहीं पर आपका धन फंस गया है, अगर बड़ा धन आपका रुक गया है, नहीं आ पा रहा है, तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर कर्ज की समस्या से परेशान हैं, तमाम प्रयास के बावजूद आपका कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए। अगर संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, संतान की तरफ से कोई दिक्कत है या संतान होने में कोई दिक्कत है, तो बृहस्पतिवार को गाय को पीला फल जैसे केला या आम खिलाइए। और संतान प्राप्ति के लिए घर में गाय और बछड़े का चित्र या गाय और बछड़े की मूर्ति लगाइए। अगर किसी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो नियमित रूप से गौशाला जाइए। अगर गाय की सेवा कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नियमित रूप से गौशाला में धन का दान करिए, जिससे गाय को चारा मिले, गाय की सेवा हो सके। तो आज हमने बात की कि गाय की कैसे सेवा करें जिससे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं। अब जान लेते हैं क्या है आज का लकी टिप। रात को सोने के पहले मंदिर की लाइट बुझा दीजिए और भगवान से कृपा करने की प्रार्थना करिए, इसके बाद सोने जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी मानसिक समस्याओं में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 28 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: भीषण गर्मी और लू की चपेट में झुलस रहे देश के कई राज्यों के लिए राहत की खबर। आईएमडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत 11 राज्यों में दिया बारिश का अलर्ट। 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। आज देश भर में मनाया जा रहा है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बकरीद। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं ईद उल अजहा की मुबारकबाद। त्याग, समर्पण और अटूट विश्वास के प्रतीक पर्व की चारों ओर छाई रौनक। आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा ऋषभ पंत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 29 गेंद पर 12 छक्के जड़कर बनाए 97 रन। क्रिस गेल का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके। समस्तीपुर में वैभव के गांव में मना शानदार खेल का शानदार जश्न। पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित ने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर रच दिया इतिहास। 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के जेवलिन थ्रो F64 स्पर्धा में 74.82 मीटर दूर फेंका भाला, खेल मंत्री ने दी बधाई। कोलकाता में दादा द सौरव गांगुली स्टोरी बायोपिक की शूटिंग शुरू। मैदान ईडन गार्डन्स पर कैमरा क्रू संग नजर आए सौरव का किरदार निभा रहे राजकुमार राव। सौरव के जन्मदिन पर 8 जुलाई को दिख सकती है पहली झलक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
5: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: नमस्कार।
5: तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आज के इस शो की चर्चा का विषय क्या है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, पंडित जी से जानने वाले हैं कि बुध की राशियां कौन कौन सी होती हैं, इन राशियों की विशेषताएं क्या होती हैं, आपके जीवन पर इसका प्रभाव क्या होता है। विस्तार से तमाम जानकारियां पंडित जी आप सबके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: अगर आपके हर काम में रुकावट आती हो, हर काम में बाधा पैदा होती हो, हर काम में दिक्कत होती हो, तो रोज सवेरे गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिए। अगर ऐसा नित्य प्रातः आप करना शुरू कर दें, आपके हर काम में आने वाली रुकावट दूर हो जाएगी।
5: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 28 मई 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
0: दिनांक 28 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 7:56 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 8:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि बुध की राशियों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि बुध की राशियों की खास बातें क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे पता चलता है कि बुध की राशियां हैं?
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बुध की राशियों के बारे में। बुध की राशियां कौन सी हैं और इन राशियों की महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, बुध मुख्यतः पृथ्वी तत्व का ग्रह है, अर्थियल एलिमेंट का प्लेनेट है। इसके पास दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। हालांकि दोनों राशियों के स्वामी एक ही हैं, बुध, लेकिन दोनों का स्वभाव और दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है। और आप देखेंगे कि मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के जीवन के रास्ते भी आम तौर पर अलग होते हैं। कन्या राशि बुध के ज्यादा निकट होती है। कन्या को बुध की पॉजिटिव राशि माना जाता है और मिथुन राशि शनि के ज्यादा निकट होती है। मिथुन राशि को बुध की निगेटिव राशि माना जाता है। तो मुख्यतः कन्या और मिथुन दोनों बुध की राशियां हैं, लेकिन दोनों के गुण, दोनों की खासियत और दोनों की सफलता की स्थितियां अलग अलग होती हैं।
5: चलिए बुध की राशियों के बारे में और भी तमाम जानकारियां पंडित जी आपको बताएंगे। अब बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
0: मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की रुकावट दूर होगी, चोट चपेट से बचाव करें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न बुध की राशि से ही जुड़ा हुआ है। बुध की पहली राशि होती है मिथुन, तो इस राशि की विशेषता क्या है, कैसे पता चलता है कि ये राशि वाले किस तरह से जीवन में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो इनके साथ जुड़ी रहती हैं, पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, अब ये जानते हैं कि बुध की जो पहली राशि है यानी मिथुन राशि, उसकी विशिष्टताएं क्या हैं। देखिए, बुध की जो पहली राशि है मिथुन, इस राशि के स्वामी हैं बुध। शनि यहां पर भाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है, यानी मिथुन राशि वालों के जीवन में भाग्य के बेटरमेंट के लिए शनि की भूमिका ज्यादा होती है। ये राशि आकर्षण की और बुद्धिमता की राशि मानी जाती है। मिथुन वाले अट्रैक्टिव भी होते हैं और बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। मिथुन राशि के लोग हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर देने वाले, चपल, थोड़े चंचल होते हैं और आकर्षक होते हैं। ऐसा देखा गया है कि मिथुन वालों का आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति, अगर पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति और अगर स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति ज्यादा होता है। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है दुविधा और लापरवाही। ये बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते और अक्सर इनके लापरवाही और आलस्य की वजह से इनके बड़े मौके छूट जाते हैं। मिथुन वालों को जीवन की बाधाओं से बचने के लिए और जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपके जीवन में बाधाएं ज्यादा हैं तो हनुमान जी की उपासना करने से लाभ होगा और हर शनिवार की शाम को मिथुन वालों को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
5: चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल के साथ और अब बारी आ जाती है कर्क सिंह और कन्या वालों की। जान लेते हैं कि इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है, पंडित जी आपको बताएंगे।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, धन खर्च बढ़ा रहेगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना

0: योग बन रहे हैं, रिश्तों में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, आप सबके सवाल और पंडित जी के जवाब। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसका निवारण आप चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी के जरिए आप अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पंडित जी बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ।
0: जी आज का पहला प्रश्न हर्षिता जी ने हमें लिखा है और हर्षिता जी अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 अप्रैल सन 2001। जन्म का समय सुबह के 10 बजे। जन्म का स्थान है अहमदाबाद। ये कह रही हैं कि मैं भी ग्रेजुएशन मैंने पूरा किया है, आगे मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे मेरा करियर बहुत अच्छा बन सके। हर्षिता आपकी कुंडली के हिसाब से आगे आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकती हैं, मीडिया या जर्नलिज्म में जा सकती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा करियर बना सकती हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप फाइनेंस में मैनेजमेंट की पढ़ाई करिए, उस क्षेत्र में आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका भटकाव ना हो और आपका करियर बेहतर बना रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का वक्त हो चला है और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक की समस्या का निवारण पंडित जी करने जा रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न निशा ने हमें लिखा है और निशा हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 4 नवंबर 1984। जन्म का समय सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है मुंबई और मेल लिखती हैं बेंगलोर से। निशा कह रही हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहती हूं और बदल के मुंबई या मुंबई के आसपास जाना चाहती हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदल सकती है और

0: हम मूंगा धारण करें, रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए, बुध की दूसरी राशि होती है कन्या। इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, इन तमाम जानकारियों को पंडित जी अब आपके साथ साझा करेंगे।
0: देखिए, बुध की दूसरी राशि है कन्या। क्या है इसकी विशेषताएं? कन्या राशि के स्वामी भी बुध ही हैं। कन्या राशि पर बुध का ही अधिकार है। ये राशि पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है। पृथ्वी तत्व की तीन राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। उसमें पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी जो राशि है वो है कन्या। इस राशि में चालाकी बहुत होती है, वाक पटुता, बोलते अच्छा हैं और प्रबंधन, मैनेजमेंट करने के गुण भी इनके अंदर पाए जाते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि कन्या राशि के लोग धन के मामले में भाग्यवान होते हैं, पैसे रुपए के मामले में किस्मत वाले होते हैं। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है स्वार्थ, सेल्फिशनेस होना। इनके अंदर स्वार्थ बहुत ज्यादा होता है। अपना फायदा उठाने के चक्कर में कोई भी कदम उठा लेते हैं। इस राशि के लोगों को सलाह लेकर एक ओपल या एक हीरा ये जरूर पहनना चाहिए। और इस राशि के लोग अगर नियमित रूप से प्रातः काल गायत्री मंत्र का जप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़ें और बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से अभी पूछने हैं, बारी आती है राशिफल पर वापस आने की। तुला, वृश्चिक और धनु वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है, विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। समस्याओं में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें, करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन

0: होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल ये है कि अगर आपकी राशि मिथुन है और जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो कौन से उपाय हैं जो आप सुझाएंगे?
0: देखिए, हो सकता है कि आपकी मिथुन राशि हो और मिथुन राशि आपकी है और जिंदगी में मुश्किलें ज्यादा आ रही हैं, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से श्री हरि यानी भगवान विष्णु की उपासना करिए। हल्की सुगंध नियमित रूप से लगाते रहिए। गाय को हरा चारा खिलाते रहिएगा, जब भी मौका मिले गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाइए, और कोई ना कोई मंत्र जप अवश्य करिए। राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, नमः शिवाय, किसी न किसी नाम का जप निरंतर करते रहिएगा। और मिथुन राशि वाले याद रखें कि मंगलवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम नहीं करेंगे।
1: चलिए पंडित जी से ये समझते हैं कि अगर किसी की राशि है कन्या और जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, कोई समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन से अचूक उपाय हैं जो आप सभी कर सकते हैं? पंडित जी से जानते हैं।
0: अब हो सकता है कि आपकी राशि कन्या हो और कन्या राशि है और जीवन में समस्या आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा, एक साथ पूजा करिएगा। रोज स्नान करिएगा। स्नान करने पर और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। घर में गमले में या जमीन में थोड़ी सी दूरवा लगा देना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक कांसे का ब्रास का छल्ला सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनिएगा, आपको लाभ होगा।
1: चलिए और भी प्रश्न लेते हैं पंडित जी से आगे, लेकिन अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रिश्तों में आपके सुधार होगा, करियर में लापरवाही ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ, और अब बारी आती है वापस सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाने की। अगले सवाल की तरफ बढ़ूं, एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है उसको आप इस शो में भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। तो पंडित जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
0: जी, अगला प्रश्न राम अवतार जी ने हमें लिखा है। राम अवतार जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1992। जन्म का समय दोपहर के 3:55। जन्म स्थान है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। राम अवतार जी पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राम अवतार जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह होने का समय शुरू हो रहा है। साल 2026 के अंत तक आते आते उनके विवाह की संभावना बन रही है। चट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थिति है, तुरंत विवाह तय होगा और तुरंत विवाह हो जाएगा। जब भी इनका विवाह करें कुंडली मिला लें, संतान वाले पक्ष पे ज्यादा विचार कर लें क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहना दें, 10

0: को एक ओपल पहना बनवा करके इनको पहनाइए, और दूसरे नंबर पर इनको बोलिए कि रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए अब बारी आ गई है आज के इस शो में दर्शकों का अंतिम सवाल लेने की, तो पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सी समस्या का समाधान पंडित जी करने जा रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न सीमा जी ने हमें लिखा है, और सीमा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 जनवरी 1978, सुबह के 10:05, जन्म स्थान है नासिक महाराष्ट्र। सीमा जी कह रही हैं कि मैं अपने घर से खाने पीने की चीज का काम करती हूं, लेकिन मेरा काम आजकल अच्छा नहीं चल रहा है पिछले 6 महीने से, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा काम बेहतर हो और भविष्य में मुझे सफलता मिले। सीमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए खाने पीने की चीज का व्यापार करना बिल्कुल अच्छा है और आप इसमें सफलता पाएंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से ज्यादा परेशान मत होइए। आने वाले समय में आपका काम काफी बढ़ेगा और घर से निकल करके मार्केट तक पहुंच जाएगा। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शुक्र के मंत्र का जप करें, ओम शुं शुक्राय नमः। अगर ये उपाय आप निरंतर करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक और सवाल है आपसे। आपने जैसे बताया कि बुध की राशियों का शनि देव के साथ, शनि ग्रह के साथ संबंध होता है, तो किसी और ग्रह के साथ भी इसका संबंध हो सकता है, ऐसा कुछ हम देख पा रहे हैं?
0: जी देखिए, बुध की दो राशियां हैं ना, मिथुन और कन्या। शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथुन के लिए ज्यादा, कन्या के लिए कम, लेकिन बुध के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वो शनि है मिथुन और कन्या वालों के जीवन में। एक और ग्रह है जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे कहते हैं वीनस, यानी शुक्र। शुक्र जो है वो मिथुन राशि वालों को आर्टिस्टिकल बना देता है, कलाकार बना देता है, खूबसूरत ग्लैमराइज्ड कर देता है। लेकिन कन्या राशि में जब शुक्र बैठता है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। कन्या राशि में शुक्र की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, तो अगर मिथुन में शुक्र बैठे तो कला, संगीत, सौंदर्य, ग्लैमर देगा, लेकिन अगर कन्या से शुक्र का कनेक्शन हो जाए तो वो वैवाहिक जीवन के लिए, लव रिलेशन के लिए, प्रेम के लिए अच्छा नहीं होता। यानी शुक्र भी यहां एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए जब आप मिथुन राशि के किसी व्यक्ति को देखें तो शुक्र कितना इंपॉर्टेंट है उसको भी देखें, कन्या राशि वाले के जीवन में शुक्र कैसा बैठा हुआ है ये भी देखें, क्योंकि जरा भी शुक्र का संपर्क कन्या राशि से हुआ तो वो मैरिटल लाइफ, लव लाइफ, इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 28 मई को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका गुड डे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिनका जन्मदिन 28 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में स्थिरता आती जाएगी, धन की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। इस साल में विवाह और संतान के मामले हल होंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाह के समय कुंडली मिलाने में गुड़ मिलाना जरूरी है या कुंडली मिलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल गुड़ मिला के शादी कर देते हैं। देखिए, सामान्यतः लोग गुड़ मिला करके विवाह का निर्णय करते हैं, लेते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली साथ में रख करके दोनों का मिलान देखना चाहिए और कुंडली के साथ कुंडली मिल जाए, साथ में कम से कम 18 गुण भी मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन गुण मिले या ना मिले उसके लिए परेशान मत होइए, कुंडली का मिलान, कुंडली मिलना ज्यादा जरूरी है।
1: पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे 28 मई 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 28 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 28 मई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में, तो आज की गुडलक राशि कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, वो जानते हैं पंडित जी से।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। आज की गुडलक राशि है कर्क। जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिव जी की उपासना करना सबसे बेहतर होगा। रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा।
1: चलिए, तमाम उपायों के बारे में और तमाम जानकारियां इस शो से जुड़ी ही पंडित जी ने आपको बता दी हैं। बारी आती है जिसका इंतजार आपको रहता है, वो है महा उपाय, यानी आज का खास उपाय। तो पंडित जी से ही जानते हैं, पंडित जी आज का खास उपाय क्या है।
0: जी, देखिए, आज के महा उपाय में आपको ये बताते हैं कि बहुत सारे माता पिता कहते हैं कि मेरा छोटा बच्चा है, रात में चौंक करके उठ जाता है, रात में उठ के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, फिर देर तक सोता नहीं है, नींद में बार बार चौंक कर उठता है, क्या करना चाहिए। जिस तकिए पे सर रख कर बच्चा सोता है उस तकिए के कवर के अंदर 2 लौंग डाल दीजिए और इसको हर महीने में पुराने 2 लौंग को फेंक दीजिए और नया 2 लौंग डाल के रख दीजिए। बच्चे के गले में मंगलवार को सवेरे लाल धागे में एक छेद वाला तांबे का सिक्का पहना दीजिए। ये उपाय करने से काफी फर्क जल्दी पड़ेगा।
1: तो पंडित जी, ये महा उपाय बताने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. Tune in's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: गाय को क्या खिलाने से फंसा हुआ धन मिल जाता है? गाय को क्या खिलाने से शनि राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं और गाय की कैसे सेवा करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, कैसे करें गाय की सेवा दूर हो जाएं जीवन के कष्ट, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: और आइए आप देखते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियो, जो कुछ आपको हंसाएंगे और कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
11: गंदगी गर्मी के मौसम में पानी में छपाक छपाक करने का मौका भला कौन छोड़ना चाहेगा। बंदरों का झुंड भी शायद समझ चुका है कि हीट को बीट करना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। फिर क्या था, पूरी की पूरी मंडली पानी पर छपाक छपाक करने लगी। कोई पानी में गोता लगाता दिखा तो कोई अपने साथी के साथ मौज मस्ती करता नजर आया। माँ क्या होती है, इस तस्वीर को देखकर सहज अनुभव लगाया जा सकता है। हालात जैसे हो, काम का बोझ जितना भी हो, लेकिन माँ अपने जिगर के लाल को खुद से दूर नहीं करती। ये महिला खाना बना रही है और साथ में अपने लाल को सीने से लगाए हुए है। न चेहरे पर कोई शिकन, न थकान, माँ इसी को कहते हैं। नन्हे हाथों में किताब और ऊपर से फल और फूलों की तस्वीर। ये नन्ही बच्ची मानो किताब से फल फूल को निकाल कर ही मानेगी। बालपन इसी को तो कहते हैं। सारी दुनिया की टेंशन से दूर अपने में मस्त इस क्यूट वीडियो को देखकर इसे बनाने वाले ने ये जरूर लिख दिया कि ये LKG के एंट्रेंस की तैयारी कर रही है। यहाँ मैं वहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ, इस फॉर्मूले पर ये बतख अपने बच्चों को खतरों से निपटने की ट्रेनिंग दे रही है। पानी में अगर अचानक कोई खतरा आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, खुद को बचाने के लिए क्या किया जाए, इसी हुनर को सिखाती नजर आ रही है ये बतख। खेल खेल में तैराकी का गुर, बच्चों के साथ मस्ती और खतरों से निपटने की ट्रेनिंग, सब साथ साथ। सोशल मीडिया पर भालू और इंसान की दोस्ती की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सामने खूंखार और उसे प्रेम से खाना खिला रहा ये बुजुर्ग जोड़ा। ना डर ना ही हमले का खौफ, बेजुबान को भी पता है कि ये निश्चल प्यार है। यहाँ प्रेम से सब कुछ हासिल हो सकता है। वीडियो इस बात को भी सच साबित कर रहा है कि इंसान और बेजुबानों की भाषा भले ही अलग हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति संवेदना और प्यार एक है।
10: कामयाबी हासिल करने के लिए जुनून और निरंतर अभ्यास जरूरी है। हरियाणा के हिसार के रहने वाले कमल कलोई के इसी जुनून ने उन्हें दुनिया में मशहूर कर दिया। कमल ने पानी के भीतर 86 बार पुशअप करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है।
11: पुशअप वो भी पानी में आसान काम नहीं है, लेकिन हरियाणा के हिसार के रहने वाले कमल कलोई ने अपनी लगन और अभ्यास से न सिर्फ इस मुश्किल काम को आसान बना दिया बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। कमल ने पानी के भीतर 86 पुशअप लगाकर तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड वियतनाम के हनोई में बनाया है। हिसार के आर्यनगर में रहने वाले कमल का ये तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले कमल कलोई ने साल 2020 में एक सांस में पानी के अंदर 21 योगासन कर अपना पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने पानी के भीतर 81 एयर रिंग ब्लोइंग कर दूसरी बार अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अब तीसरी बार पानी के अंदर 86 पुशअप लगाकर उन्होंने अपना, अपने गाँव और दयानंद महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। कमल की ये सफलता बताती है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. Or more country roads.
12: Thank God I get to wake up.
2: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: गाय को क्या खिलाने से फंसा हुआ धन मिल जाता है? गाय को क्या खिलाने से शनि राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं? और गाय की कैसे सेवा करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है? कैसे करें गाय की सेवा, दूर हो जाए जीवन के कष्ट, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट, तापमान में 4 डिग्री तक हो सकती है गिरावट।
16: देशभर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का पवित्र त्योहार। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके बधाई दी।

0: आज एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति में रंग में रंगी अयोध्या श्री झालरिया मठ में 3 जून तक चलेगा भव्य श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव, होंगे कई धार्मिक आयोजन।
1: जर्मनी के म्यूनिक में देश जर्मनी के म्यूनिक में देश की बेटी ईशा सिंह ने बढ़ाया मान, ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत कर रचा इतिहास, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी।
0: कुआलालंपुर में व्यांग विमेन समूह ने शेडो पपेट्री की सदियों पुरानी कला को नया अंदाज से पेश किया, पारंपरिक कहानियों को किया पेश इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ, वाद्यंत्र का फ्यूजन।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: उम्मीदों भर पहर की खुश भरी शुरुआत, नमस्कार सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पन। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
0: तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करेंगे वैभव सूर्यवंशी के साथ। देखिए, जिन्होंने कल रात कई कीर्तिमान अपने नाम कर लिए, वैभव की पारी की बदौलत राजस्थान ने हैदराबाद को हराकर IPL के दूसरे क्वालिफायर में एंट्री कर ली है। उन्होंने 29 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके 12 छक्के शामिल है। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड का अंबार भी लगा दिया, कौन कौन से नए रिकॉर्ड बनाए उन्होंने आगे आपको बताएंगे।
1: तो वही मौसम से जुड़ी गुड न्यूज भी आपको दिखाएंगे, नौतपा चल रहा है और इसकी तपिश से पूरा उत्तर भारत जल रहा है। इस बीच खबर है कि भीषण गर्मी से आज राहत मिल सकती है, मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है जिसकी वजह से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, तो कहां कहां होगी बारिश इसकी जानकारी भी आगे आपको देंगे।
0: वहीं देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर नजर आ रही है, यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, तो वहीं पर बद्रीनाथ धाम में 6.5 लाख लोगों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, यानी चार धाम के रंग तमाम आपको दिखाएंगे।
1: तो साथ ही बात बाबा बागेश्वर की भी होगी, लंबी कठिन एकांत साधना के बाद वो कथा कर रहे हैं, आज कथा का दूसरा दिन है, आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो मिलेंगे ही, साथ ही उनके एकांत साधना के संस्मरण भी उनको सुनने को मिलेंगे, तो बद्रीनाथ भी आपको हम लिए चलेंगे।
0: इसके अलावा देखिए, बात जो है बंगाल टाइगर यानी सौरभ गांगुली की भी करने जा रहे हैं हम, जिन पर बन रही फिल्म शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस फिल्म में गांगुली का किरदार राजकुमार राव निभा रहे हैं, ऐसे में वो ईडन गार्डन्स में नजर आए, कैसी रही वहां पर फिल्म की शूटिंग इसकी झलक आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज देख लें।
1: बद्रीनाथ में बाबा बागेश्वर की कथा वाचन का दूसरा दिन, बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, साथ ही बाबा की कथा सुन रहे हैं। वहीं बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि बाबा बागेश्वर की सत्यनारायण कथा 5 दिनों तक चलेगी।
0: महाराष्ट्र में अकोला के श्याम धाम मंदिर में बाबा श्याम करों का आम श्रृंगार भव्य आयोजन किया गया, इस आयोजन को लेकर श्याम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं पर बाबा श्याम का मंदिर परिसर भक्ति सुगंध और श्रद्धा के संगम से सराबोर हुआ।
1: अयोध्या के कई प्रमुख मंदिरों में भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए, मंदिरों में भगवान को ठंडक देने वाले भोग जैसे खीर मिश्री पान और ठंडाई का नियमित रूप से अर्पण उनको किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गर्भगृह में कूलर और AC भी लगाए गए ताकि भगवान को लू की मार से राहत मिल सके।
0: भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं, यहाँ की ठंडी वादियों और सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, मनाली में सैलानियों की भारी भीड़।
1: अयोध्या में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी, लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम की अनूठी पहल हुई है, भीड़भाड़ वाले चौराहों और रेड लाइट पॉइंट्स पर अस्थायी शेड लगाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था की शुरुआत रिकाबगंज चौराहे से हुई, रेड लाइट पर रुकने वाले राहगीरों को धूप और लू से इससे मिलेगी राहत।
0: मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच देश के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर आई है, तनाव से बेअसर रहते हुए लगभग 4,000 मीट्रिक टन LPG से लदा एक पोत CMD-23 हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करके सुरक्षित गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह पहुंच चुका है।
1: स्टार भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतल ने इंडियन ओपन अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले दो बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता 27 वर्षीय अंतल ने भाले को 74.82 मीटर की दूरी तक फेंका और उनके 73.29 मीटर के पिछले विश्व रिकॉर्ड से जो इस बार अधिक था, यह रिकॉर्ड उन्होंने 2022 एशियाई पैरा खेलों में बनाया था।
0: चीन में आयोजित 22वें चीन अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उद्योग मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ट्रेंडी खिलौने आकर्षण का मुख्य केंद्र बने रहे। मेले में खिलौनों की आईपी फिलो सीरीज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
1: दीपक तिजोरी को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। कान में आयोजित प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उन्हें पुरस्कार इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस के लिए मिला है। अंग्रेजी भाषा के शॉर्ट फिल्म के लिए मिला यह दीपक तिजोरी का 21वां बेस्ट एक्टर का अवार्ड है।
3: Is a joke, stop.
4: New message.

0: तो देखिए, बीती रात न्यू चंडीगढ़ में तूफान आया छक्कों का। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला ऐसा गरजा कि हैदराबाद के फिनाले में पहुंचने के अरमान हवा में हो गए। सिक्सर किंग बेबी बॉस का जलवा ऐसा कि हर गेंदबाज पानी मांग रहा था। यूं तो वैभव सूर्यवंशी ने महज 29 गेंदों की छोटी सी पारी खेली, लेकिन जलवा ऐसा कि इस पारी को सालों साल याद रखा जाएगा। आईपीएल के मैदान पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसे पिछले 14 साल से कोई बल्लेबाज कर नहीं पाया था। वैभव सूर्यवंशी के इस रिकॉर्ड तोड़ कारनामे का पूरा किस्सा बयां करेंगे, लेकिन पहले वैभव की तूफानी पारी की एक झलक आपको दिखाते हैं। 29 गेंद पर 12 छक्के, 5 चौकियों से सजी 97 रनों की तूफानी पारी। Now, beautifully. In. Struck. That's the biggest. This is got. Picked up again. And the free hit.
1: तो इस आतिशी पारी के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि वो अपनी बल्लेबाजी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। हालांकि उन्हें दिमाग में ये जरूर था कि नॉकआउट मुकाबला है, लेकिन कोचों ने कहा था कि जैसी प्रैक्टिस में खेलते हो वैसे ही खेलो और दबाव मत लो।
2: नहीं सर, जीते हैं तो अच्छा पॉजिटिव इंटेंट लेके नेक्स्ट मैच पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट मैच को सेम जीत कर निकलेंगे फाइनल्स। नहीं सर, थोड़ा बहुत सोचता हूँ, ज्यादा सोचता नहीं हूँ, बस ट्राई करता हूँ जो गेम है वही खेलूँ, ज़्यादा सोचूँ ना। बट कहीं पे अगर मुझे लगता है मुझे काम करना है तो वो देखता हूँ मैं। नहीं सर, बस यही सोचता हूँ कि सामने वाली टीम के बॉलर्स कौन है, मैं इस विकेट पे किस तरीके से उनको फेस कर सकता हूँ, बाउंड्रीज कितनी भरी है, यही सब बस। नहीं सर, मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब मैं जब भी अच्छे इंटेंट में रहता हूँ तो बॉलर प्रेशर में रहते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको कंटिन्यू करूँ और डोमिनेट करके खेलूँ।
0: देखिए, महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को एक खास नाम से पुकारा जाने लगा है। उन्हें इंटरनेशनल बेबी बॉस कहा जाने लगा है। आईपीएल के मौजूदा सीजन में वैभव ने बड़े बड़े नामचीन गेंदबाजों की क्लास लगाई है। नॉकआउट स्टेज में हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने ऐसी तूफानी पारी खेली कि एक नहीं कई बड़े रिकॉर्ड्स धराशाही हो गए। देखिए, सिक्सर किंग बेबी बॉस ने एक सीजन में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्के जड़ने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
1: तो आईपीएल में 15 साल के वैभव ने वो कारनामा कर दिखाया जो पिछले 14 साल से कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया था। इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या होगा कि खुद क्रिस गेल वैभव के मुरीद हो गए और उन्होंने कहा कि सिर्फ वैभव ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल गीतिका, देखिए बड़े बड़े सुरमाओं को पछाड़कर वैभव इस सीजन पर अब तक कुल 65 छक्के जो हैं जड़ चुके हैं। हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में उन्होंने 12 छक्के जड़े,
1: साथ ही प्लेऑफ के इतिहास की सबसे तेज हाफ सेंचुरी भी जमाई। इतना ही नहीं, एक सीजन में 3 बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं।
0: साथ ही साथ देखिए, वैभव आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। वो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड प्लेयर बन चुके हैं।
1: तो समस्तीपुर में वैभव सूर्यवंशी के गांव ताजपुर में जमकर जश्न मनाया गया। वैभव की 97 रन की तूफानी पारी का यहां के लोगों ने इसे केक काटकर उनका जश्न मनाया, मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान कुछ लोग ये नारा लगाते हुए भी सुनाई दिए कि बिहार ताजपुर का टाइगर वैभव सूर्यवंशी। यहां के लोगों का मानना है कि सीजन 19 में राजस्थान रॉयल्स के अब तक के सफर में वैभव सूर्यवंशी की अहम भूमिका रही है। वो सभी की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और अपने गांव अपने प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन कर दिया है। तो देखिए किस तरह से वैभव की तूफानी पारी का जश्न उनके गांव में मनाया जा रहा है। जब वो वापस लौटे तो किस तरह से लोगों ने केक काटकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। और ये तस्वीरें देखिए वैभव की आतिशी पारी का जश्न मनाते हुए उनके पैतृक गांव में लोग दिख रहे हैं।
0: तो देखिए, आईपीएल के एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली तो वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल भी उनके मुरीद हो गए। वैभव की 97 रनों की पारी खेल देखकर क्रिस गेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया और इसमें उन्होंने वैभव को न्यू सिक्स मशीन कहा है। वैभव ने इस सीजन में 65 छक्के जड़कर गेल का एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी अब ध्वस्त कर दिया। हालांकि वैभव ने यह कहा कि उन्होंने गेल के रिकॉर्ड के बारे में उनको पता नहीं था, बस टीम के लिए खेलना था उनको और उसी क्रम में वो खेलते गए और रिकॉर्ड्स टूटते चले गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े रिकॉर्ड्स अब एक एक करके तोड़ते चले जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी और उसी का ये रिकॉर्ड 65 छक्के अब तक वैभव जो है जड़ चुके हैं।
1: तो आईपीएल फाइनल की रेस अब महज 3 टीमों के बीच सिमट गई है। बेंगलुरु पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। शुक्रवार को सीजन का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले में गुजरात का सामना राजस्थान से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में बेंगलुरु से भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला रविवार को यानी 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

0: देखिए, अब आपको भारत के एक और सुपर हीरो से मिलवाते हैं, पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल, जिन्होंने अपना ही रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ दिया। सुमित ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 74.82 मीटर दूर भाला फेंका और एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले उन्होंने 2023 में चीन के हांगझाऊ में हुए एशियन पैरा गेम्स में 73.29 मीटर का थ्रो किया था और इस बार उन्होंने अपने पिछले बेस्ट प्रदर्शन से 1.53 मीटर ज्यादा दूरी हासिल की है और यह पहली बार नहीं है। इससे पहले कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुमित भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। सुमित अंतिल जो है दो बार पैरालंपिक में गोल्ड भी जीत चुके हैं। सुमित अंतिल की शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बधाई दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया, ऐतिहासिक प्रदर्शन इसको करार किया, लेकिन ये बेहतरीन प्रदर्शन रहा उनका।
1: वैसे खेल के मंच पर भारत की बेटियां भी किसी से कम नहीं। म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत की स्टार शूटर ईशा सिंह ने ऐसा निशाना लगाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा ने 50 में से 43 अंक हासिल कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ईशा सिंह ने साबित कर दिया कि भारतीय बेटियां अब सिर्फ सपने नहीं देखती बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इतिहास भी रचती हैं। ईशा की इस उपलब्धि पर खेल मंत्री मांडविया ने भारत की बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व जताया, सोशल मीडिया पर लिखा, भारत के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड से भरा दिन रहा।
0: और आइए बात करेंगे मौसम के मिजाज की।

0: नौतपा चल रहा है। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो या फिर यूपी दिल्ली, तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। बुधवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में भी तेज धूप, गर्म हवाएं और उमस भरी रातों से लोग परेशान हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी इतनी कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कामकाजी लोगों को बाहर निकलना मजबूरी है। इस दौरान चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने पर सीधी धूप का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हजरतगंज चौराहे पर वाहन चालकों को भीषण गर्मी में चलचलाती धूप और हीट वेव से बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने ग्रीन नेट लगवाया है।
1: पूरा प्रदेश जब हीट वेव से जूझ रहा है तो आप मेरे चेहरे पर भी धूप देख रहे होंगे, लेकिन दो कदम जब मैं आगे लूंगा तो मेरे चेहरे की यह धूप भी छट जाएगी और मुझे थोड़ी राहत महसूस होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं? आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट 2 मिनट की अगर है तो 2 मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है। ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है, तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा, और इतना ही नहीं, इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इसमें स्प्रिंकल करेगा। लेकिन अगर आप बात करें प्रदेश की गर्मी की तो इस वक्त करा रहा है, बांदा का टेम्परेचर 47.5 रिकॉर्ड किया गया है जो अपने आप में डराने वाला है। तो वहीं लखनऊ 45 डिग्री के पार इस वक्त जा चुका है। तो ऐसे में इस तरह की जो एफर्ट्स हैं उनके जरिए जरूर पब्लिक को थोड़ी राहत मिल रही है।
0: इस बीच मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है, आज से मौसम बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
2: तो जो अभी हीटवेव कंडीशन चल रही है, जो अधिकतम तापमान जो कष्ट जो ज्यादा चल रहा है, अनुमान यही है कि 28 तारीख यानी कल के बाद से जो इसमें गिरावट देखी जाएगी, और उसके बाद 29-30-31 तक आप मान के लिए 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो हीटवेव सीवेटवेव कंडीशन चल रही है अभी, उसमें कल के बाद से जो राहत मिल जाएगी।
0: अगर मौसम विभाग का अनुमान सही निकलता है तो आपका ये हफ्ता कूल बीत सकता है। हालांकि अभी गर्मी से पूरी तरह राहत के लिए मानसून का इंतजार करना होगा। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि तैयारी पूरी रखें,
3: हर 15-20 मिनट बाद पानी लेते रहें। उसके अलावा जो भी पानी के साथ में, केवल प्लेन वाटर ही जरूरी नहीं है, आप ORS भी ले सकते हैं। लेमन वाटर जो है वो सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी लेमन वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और उसके अलावा छाछ है, बटर मिल्क है, कोकम का शरबत है, जो इन दिनों सीजन की चीजें हैं, जैसे कि फालसे का रस है या प्याज का रस आप हाथों पैरों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब उससे रिलीफ मिले हीट से।
0: क्योंकि अगर एहतियात नहीं बरता गया तो गर्मी वाला ये मौसम सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा गर्मी से बचाव के लिए कुछ छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव, जयपुर से रिदम जैन के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
4: मैदानों को आज से राहत की आस है, मगर पहाड़ तो पहले से ही उत्सव मना रहे हैं। अच्छी खासी रौनक पहाड़ों पर है। कुल्लू मनाली में पर्यटक राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये सभी शहर की गर्मी से दूर पहाड़ों पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से मनाली में लोग जो है वो राफ्टिंग का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैदानों में अगर गर्मी है तो लोगों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है और वहां की ठंडी हवाओं का और ठंडे मौसम का वो मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
5: अभी हमने रिवर राफ्टिंग करी है ब्यास रिवर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हरियाणा

0: समय तो अभी बहुत गर्मी है सोनीपत में, और यहाँ क्या राहत मिल रही है हमें, कितना अच्छा मौसम है, और अभी तो ठंडे ठंडे पानी में राफ्टिंग करिए तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
1: सो द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज सूटेबल फॉर अस, इट इज वेरी डिफरेंट एडवेंचर टूर।
2: पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा है, मगर जंगल की आग चुनौती बनी हुई है। लेकिन आग बुझाने के लिए तमाम एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौली में जंगल की आग बुझाने के लिए वायुसेना को लगाया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर सुखना झील से पानी भरकर बैम्बी बकेट ऑपरेशन के जरिए प्रभावित इलाकों में लगातार पानी डाल रहे हैं। अब तक 15 से ज्यादा उड़ानें पूरी करके 40,000 लीटर जो है से ज्यादा पानी आग पर काबू पाने के लिए डाला गया है। ये देखिए तस्वीरें किस प्रकार से जंगलों की आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
3: तो बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए बद्रीनाथ में बाबा बागेश्वर की कथा।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
7: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
6: Big 12 Radio.
8: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
6: and
8: down.
6: Talk sports.
9: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
6: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
10: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गाय को क्या खिलाने से फंसा हुआ धन मिल जाता है, गाय को क्या खिलाने से शनि राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं, और गाय की कैसे सेवा करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, कैसे करें गाय की सेवा दूर हो जाए जीवन के कष्ट, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। तापमान में 4 डिग्री तक हो सकती है गिरावट।
4: आ रहा है ईद उल अजहा का पवित्र त्योहार। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दी बधाई।
3: आज एक बार फिर भक्ति, आध्यात्म और सनातन संस्कृति में रंग में रंगी नजर आई अयोध्या। श्री जालारिया मठ में 3 जून तक चलेगा भव्य श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव, होंगे कई धार्मिक आयोजन।
4: जर्मनी के म्यूनिक में देश की बेटी ईशा सिंह ने बढ़ाया मान। ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत कर रचा इतिहास। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी।
3: कुआलालंपुर में व्यांग विमेन समूह ने शैडो पपेट्री की सदियों पुरानी कला को किया जीवंत। पारंपरिक कहानियों को किया पेश, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ वाद्य यंत्रों का फ्यूजन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

स्वागत है ब्रेक के बाद आपका और बात करेंगे बाबा बागेश्वर की बद्रीनाथ धाम इन दिनों भक्ति आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आ रहा है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 दिनों की कठिन एकांत साधना पूरी करने के बाद जैसे ही कथा के लिए लौटे तो उन्हें सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। बुधवार से बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय श्री सत्यनारायण कथा का शुभारंभ कर दिया है। आज कथा का दूसरा दिन है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हिमालय की वादियों में गूंजती कथा मंत्रोच्चार और भक्तों की आस्था ने बद्रीनाथ धाम के वातावरण को पूरी तरीके से भक्तिमय बना दिया। आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ कथा के साथ अपने 21 दिनों की एकांत साधना के संस्मरण भी सुनने को मिलने वाले हैं।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाटचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है, वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम है तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय पादरी
4: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया, ये पत्नी का धर्म है। छत्ता बना करके खड़ी हुई, नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है, आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है, ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं, साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है, तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की, वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: कोटा स्थित ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में करीब 300 वर्षों से एक अनोखी धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 14 दिन का विशेष बीमारी अवकाश दिया जाता है। जी हाँ, मान्यता यह है कि देखिए भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आम रस का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसके बाद मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
0: जैसी भक्त की आस्था उसी रंग में रंग जाते हैं भगवान भी। राजस्थान में कोटा के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में करीब 300 सालों से एक अनूठी धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 14 दिन का विशेष बीमारी अवकाश दिया जाता है। मान्यता है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आम रस का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसके चलते मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
6: 8 कुंडों से स्नान होता है और उसी दिन भगवान का 108 किलो का आम रस का भोग भी लगाया जाता है। और जगन्नाथ भगवान जो है वो बाल स्वरूप माने जाते हैं कृष्ण भगवान के, तो क्योंकि जैसे एक छोटा सा बच्चा जैसे ही उसको इतना ज्यादा स्नान कराया जाए और इतना ज्यादा खिलाया जाए, भोग कराया जाए, तो उससे उसकी तबीयत नरम हो जाती है।
0: परंपरा के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान का 51 जल कलशों और पंचामृत से विशेष अभिषेक किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के पूर्ण होने के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और अगले 14 दिनों तक पुजारी प्रतिदिन भगवान के स्वास्थ्य की प्रतीकात्मक देखभाल करते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए दूध और काली मिर्च का विशेष काढ़ा भी अर्पित किया जाता है। ये तस्वीरें गुजरात के पाटन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मंदिर की हैं, जहां भगवान का श्रृंगार फूलों और गहनों से नहीं बल्कि नोटों से किया गया है, वो भी 1,51,000 नकदी नोटों से। इस सजावट में 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। असल में अधिक मास की एकादशी के मौके पर यहां विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उनके भक्तों ने भगवान का अनूठा श्रृंगार किया। पाटन से सुनील पटेल और कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की बजाय अपने देश में ही सैर सपाटा करने की अपील की है, तो गुड न्यूज टुडे भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीर हमें भेजें ताकि हम आपकी उन वीडियोस को दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लेकर चलते हैं, जहां बाकली पिकनिक रिजॉर्ट आपका इंतजार कर रहा है।
8: ये है माता बगलामुखी मंदिर का भव्य नजारा। और यहीं से आप नेचर पार्क के भी दर्शन कर सकते हैं।

इस स्थान को बाकली के नाम से जाना जाता है। माता बगलामुखी का यह मंदिर पहले नीचे हुआ करता था, जहां नेचर पार्क बनाया गया है। स्नो डैम के बनने के समय माँ बगलामुखी की इच्छा अनुसार मंदिर ऊपर बनाया गया। जिस स्थान पर अभी मैं मौजूद हूँ, हजारों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है। तो चलिए मंदिर के अंदर भी आपको माता के दर्शन करवाते हैं।

अब यहाँ से हम सीधा चलेंगे नेचर पार्क की ओर। नेचर पार्क की दूरी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, तो चलो मिलते हैं अब नेचर पार्क में। इस समय मैं पहुँच चुका हूँ नेचर पार्क में। ये नेचर पार्क वन विभाग के अंतर्गत आता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ही सुंदर सुंदर हट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं और सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पर सुबह शाम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है जिस कारण इस भरी तपती गर्मी में आपकी इच्छा भी ना करे यहाँ से जाने की।

0: वाटर पार्क में घूमने के अलावा आप यहाँ पे पंडो डैम में बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बात रही इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने की, तो आप कई रास्तों से इस डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चंडीगढ़ की ओर से आ रहे हैं, तो जिस रोपवे की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, वह रोपवे हाईवे से महज कुछ ही मीटर दूर है और चंडीगढ़ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं, तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो कि भुंतर में स्थित है। अगर मैं फ्लाइट्स की बात करूँ, तो भुंतर एयरपोर्ट पे दिल्ली, अमृतसर, देहरादून और जयपुर से रेगुलर फ़्लाइट्स आती हैं। और फ़्लाइट्स के अलावा अगर आप ट्रेन से भी आना चाहते हैं, तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ से जोगिंद्रनगर का है, जो कि यहाँ से महज 70 किलोमीटर दूर है।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: और अब बात फिल्मों की कर लेते हैं। डॉन 3 से रणवीर सिंह का फाइनल एग्जिट, निर्देशक फरहान अख्तर का करोड़ों का नुकसान, FWIC का रणवीर पर बैन, इन सब विवादों के बीच पहेली बन गया है डॉन का किरदार। आखिर कौन होगा डॉन 3 का लीड एक्टर, ये अब चर्चा का विषय बन चुका है। कौन है डॉन की रेस का हिस्सा और कौन मारेगा बाजी, आइए देखते हैं।
3: शेर जो सो रहा है वो जागे कब, पूछते हैं ये सब। उनसे कह दो कि फिर जाग उठा हूं मैं। डॉन
4: बॉलीवुड का एक ऐसा अमर कैरेक्टर जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। लेकिन इस फिल्म के तीसरे पार्ट के लिए डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं, बल्कि फिलहाल निर्देशक फरहान अख्तर ढूंढ रहे हैं। रणवीर सिंह के डॉन 3 छोड़ते ही फिल्म न सिर्फ विवादों में घिर गई, बल्कि शुरू होने से पहले ही अधर में लटक गई है। लेकिन फिल्म लीड को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इनमें तीन नाम जो उभर कर आए हैं, वो हैं बिग बी अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। 1978 में सलीम जावेद ने डॉन के कैरेक्टर की कल्पना की और चंद्र बरूट के निर्देश में बनी फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 48 साल बाद एक बार फिर ओरिजिनल डॉन ही फरहान की नैया पार लगाएगा, यानी डॉन 3 में एक बार फिर अमिताभ डॉन के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर उतार सकते हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है। इस कड़ी में किंग खान का नाम भी सुर्खियों में है। शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन के रीमेक में लीड रोल निभाया था। इस मूवी का निर्देशन भी फरहान अख्तर ने ही किया था। शाहरुख खान की इस प्रतिष्ठित सीरीज के बाद अब डॉन 3 का निर्माण भी फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट कर रही है। इसी वजह से फैंस में उम्मीद जगी है कि डॉन 3 से रणवीर की एग्जिट के बाद शाहरुख खान इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी में वापसी कर सकते हैं। हालांकि डॉन 3 को लेकर रणवीर फरहान विवाद के बीच सबसे पहले ऋतिक रोशन का नाम सामने आया था। कहा जा रहा था कि रणवीर को ऋतिक से रिप्लेस किया जा रहा था, इसलिए रणवीर फिल्म छोड़ रहे हैं। हालांकि ऋतिक ने पहले ही इन अफवाहों को दबा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर अफवाहें तेज हो गई हैं कि डॉन 2 में एक कैमियो करने वाले ऋतिक इस बार डॉन 3 में खुद डॉन के किरदार में नजर आएंगे। फिलहाल डॉन 3 बहुत सारे किंतु परंतु में उलझी है, ऐसे में इस बार सच में डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए दल्लास ईरानी की फनी इंस्टा स्टोरी।
5: मुझे एक काम है।
6: काम तो हो जाएगा पर 25,000 रुपए लगेगा।
5: पैसे तुम्हें मिल जाएंगे।
6: क्या काम था?
5: मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है।
7: सुनो
5: हाँ?
7: अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार?
5: मैं तो हार पसंद करूंगी।
7: अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो।
5: लेकिन मेरी एक शर्त है।
7: कौन सी शर्त?
5: हार सोने की होनी चाहिए।
8: धीरे धीरे सीन निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए।
2: शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
1: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
10: गाय को क्या खिलाने से फंसा हुआ धन मिल जाता है? गाय को क्या खिलाने से शनि राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं? और गाय की कैसे सेवा करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है? कैसे करें गाय की सेवा, दूर हो जाएं जीवन के कष्ट, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
12: It's your boy,
11: just
12: Jay-Z.
11: Search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
9: वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है,
12: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर, दिल्ली उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट, तापमान में 4 डिग्री तक हो सकती है गिरावट। रामनगरी अयोध्या में गर्मी को देखते हुए मंदिरों में विशेष व्यवस्था, भगवान के लिए लगाए जा रहे हैं एसी कूलर, खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का भोग। आज एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति में रंगेगी अयोध्या, श्री झालरिया मठ में 3 जून तक चलेगा भव्य श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव, होंगे कई धार्मिक आयोजन। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का पवित्र त्यौहार, नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जर्मनी के म्यूनिख में देश की बेटी ईशा सिंह ने बढ़ाया मान, ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर रच दिया इतिहास, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बधाई।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के बहुत सारे उपायों में ऐसा कहा जाता है कि गाय को गुड़ खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए। गाय को क्या खिलाएं और गाय की कैसे सेवा करें जिससे आपका भाग्य बेहतर हो, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 मई 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 7:56 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 8:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, गाय को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों मानते हैं, कारण क्या है? देखिए, प्राचीन काल से अगर आप देखें तो भारत की सारी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्भर रही है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और गाय पर, गोवंश पर पूरी व्यवस्था आधारित रही है। कृषि से लेकर व्यवसाय तक सब कुछ गाय पर ही निर्भर रहा है। गाय के इतना मूल्यवान होने के कारण इसको धर्म से जोड़ा गया है। ऐसा देखा गया है कि गाय के शरीर की जो तरंगे हैं वो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं। जब हम गाय के संपर्क में आते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि गाय की सेवा करने से, गोपालन करने से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गाय की देखभाल करने से, गाय की सेवा करने से, गाय के संपर्क में रहने से व्यक्ति का भाग्य सुधरने लगता है।
गाय की तरंगें, गाय का संपर्क, गाय की सेवा, गाय का दूध, ये सब बड़े मूल्यवान हैं और इनके अंदर आपके जीवन को बदलने की क्षमता पाई जाती है। गाय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की रुकावट दूर होगी, चोट चपेट से बचाव करें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च बढ़ा रहेगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि जब आप गाय की सेवा करते हैं, गाय के संपर्क में आते हैं, तो उससे किस प्रकार आपके ग्रह नियंत्रित हो सकते हैं। गाय को अगर आप नियमित रूप से गुड़ खिलाएं, खास तौर से मंगलवार और रविवार को अगर गाय को गुड़ खिलाएं तो मंगल और सूर्य दोनों नियंत्रित होते हैं। गाय को आटे का पेड़ा यानी आटे की लोई खिलाने से और गाय को स्नान कराने से, नहलाने से चंद्रमा और शुक्र मजबूत होते हैं। गाय को अगर आप हरा चारा खिलाएं या गाय को नियमित रूप से पालक खिलाएं तो बुध मजबूत होता है और धन का अभाव नहीं होता। स्नान करते समय जल में अगर आप गोमूत्र डालें, जल में गोमूत्र डालकर स्नान करें तो राहु केतु की और शनि की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से गाय की सेवा करता है, गाय की देखभाल करता है, तो उसको जीवन में नाम, यश और धन मिलता है। संतान संबंधी जो कष्ट हैं, संतान संबंधी जो पीड़ा है, वो पीड़ा समाप्त होती है।
जो कोई गाय को कष्ट देता है या उसको पीड़ा पहुंचाता है उसके वंश का विस्तार नहीं होता। आपके ग्रह ज्यादा खराब हैं, जीवन में मुश्किलें ज्यादा हैं, केवल नियमित रूप से गौशाला में जा करके गाय की सेवा करना शुरू करिए। आपके खराब ग्रह, आपकी बिगड़ी हुई किस्मत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। गाय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, समस्याओं में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो गाय की सेवा करने से आपके ग्रह बेहतर हो सकते हैं। गाय की सेवा करने से आपको विशेष लाभ भी हो सकता है। कैसे होगा? अगर कहीं पर आपका धन फंस गया है, अगर बड़ा धन आपका रुक गया है, नहीं आ पा रहा है, तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर कर्ज की समस्या से परेशान हैं, तमाम प्रयास के बावजूद आपका कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए। अगर संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, संतान की तरफ से कोई दिक्कत है या संतान होने में कोई दिक्कत है, तो बृहस्पतिवार को गाय को पीला फल जैसे केला या आम खिलाइए। और संतान प्राप्ति के लिए घर में गाय और बछड़े का चित्र या गाय और बछड़े की मूर्ति लगाइए। अगर किसी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो नियमित रूप से गौशाला जाइए।
अगर गाय की सेवा कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नियमित रूप से गौशाला में धन का दान करिए, जिससे गाय को चारा मिले, गाय की सेवा हो सके। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में, मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर, मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं,

धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग धन प्राप्त होगा, रिश्तों में सुधार होगा, करियर में लापरवाही ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की कि गाय की कैसे सेवा करें जिससे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं। अब जान लेते हैं क्या है आज का लकी टिप। रात को सोने के पहले मंदिर की लाइट बुझा दीजिए और भगवान से कृपा करने की प्रार्थना करिए, इसके बाद सोने जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी मानसिक समस्याओं में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 28 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करें, घर से निकलते समय

रहते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं,

0: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: अब शरणागति के लक्षण क्या है जरा सुन लीजिए। आहा, 6 लक्षण हैं। पहला लक्षण, जिसकी शरण में रहो उसी के अनुकूल रहना। गुरु की शरण में रहो तो गुरु के ही अनुकूल रहना, प्रभु की शरण में रहो तो प्रभु के ही अनुकूल रहना। कोई रहा? गोपियां। गोपियां भगवान के अनुकूल रही। भगवान ने कहा हम जा रहे हैं, गोपियां कहती हैं गोविंद अगर तुम्हें हमसे दूर रहने में प्रसन्नता है तो चले जाओ। तत् सुख सुखित्वम, जिसमें आप सुखी हो आप वही काम करो। भगवान चले गए, गोपियां खुश हो गईं। ये पहला लक्षण है। और 6 लक्षणों में शरणागति का दूसरा लक्षण क्या है? जो भगवान को प्रिय ना हो वो ना करना। जैसे भगवान को प्रिय क्या नहीं है? कुसंग प्रिय नहीं है, भगवान को ईर्षा प्रिय नहीं है, भगवान को काम प्रिय नहीं है, भगवान को वासना प्रिय नहीं है। ऐसी संगत से बचना। कैसी संगत? जो तुम्हें राम से दूर ले जाए, जो तुम्हें भक्ति से दूर ले जाए, जो राम को काल्पनिक कहें, जो राम के विरोधी हो, ऐसा भले ही ब्रह्म क्यों ना हो, ऐसे मित्र का और व्यक्ति का सदा सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। यह दूसरा लक्षण है। अच्छा महाराज, किसी ने आज तक त्यागा है? हाँ त्यागा।

नारी किसने त्यागा? पिता का रिश्ता सबसे बड़ा होता है लेकिन त्याग दिया किसने? प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ दिया। जा कोई काम के नहीं, क्यों तुम भगवान विरोधी हो, हमारे काम के नहीं हो। अच्छा पिता को तो त्यागा पर आज तक किसी ने मां को त्यागा? हाँ, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। मां को त्याग दिया भरत जी महाराज ने, क्यों तुमने हमसे भगवान को दूर किया है, तुमने भगवान को वन भेज दिया। आज के बाद मैं भरत लौट कर अपने मुंह से तुम्हें मां संबोधित नहीं करूंगा। लो मां को भी त्याग दिया, भाई को भी त्यागा। हाँ किसने? विभीषण जी ने।

विभीषण बंधु भरत महतारी। अच्छा माता पिता भाई, भाई को त्यागा विभीषण जी महाराज ने, पर क्या आज तक किसी ने गुरु को त्यागा? हाँ त्यागा, सबसे बड़ा रिश्ता गुरु जी का होता, बोलो होता कि नहीं होता? माता जी का, पिताजी का, भाई का रिश्ता तो बड़ा होता है, लेकिन इनसे बड़ा किसका रिश्ता होता है? बोलो बोलो बोलो, गुरु जी का होता कि नहीं? लेकिन उनको भी त्याग दिया। किसने? बलि गुरु तजो। बलि महाराज ने गुरु जी को त्याग दिया जब बामन भगवान बनकर के आए, और गुरु जी बोले इनके चक्कर में ना फंसना, ये छोटे से ब्राह्मण नहीं है, छलिया है, छलिया तुम्हें छल लेंगे। धीरे से बलि ने पूछा, महाराज हैं कौन? गुरु जी बोले शुक्राचार्य जी। बलि ये कोई साधारण नहीं है, विष्णु भगवान है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं, तुमसे कुछ मांगेंगे, कुछ मत देना। पता है बलि क्या बोला? जो दुनिया को देते वो हमसे मांगेंगे, वो हम चुप बैठ जाए। गुरु जी तुम साइड में हो जाओ, हम तो देंगे। गुरु जी बोले मूर्ख, गुरु की बात नहीं मानता, नरक जाएगा, नरक। मुस्कुराते हुए बलि बोला, ऐसे तो हम 100 नरक भी भोगने को तैयार हैं, जब मांगने वाला परमात्मा हो तो ये आत्मा देने को तैयार है।

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं. अविश्वास में विश्वास बसता है. जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
9: अविश्वास में विश्वास बसता है.
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
10: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
11: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
13: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
10: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
14: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
15: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार, इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
10: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
16: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
10: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
17: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
10: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
18: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
19: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
18: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
14: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में, और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से, अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
10: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
20: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
14: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
21: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
16: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
10: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
22: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
10: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
0: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
10: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है, अंदर से जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
12: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
23: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
24: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
13: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
25: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
25: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
25: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
25: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
25: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
25: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
25: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
25: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
25: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
25: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
0: भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। दिल्ली यूपी सहित 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। तापमान में 4 डिग्री तक हो सकती है गिरावट। रामनगरी अयोध्या में गर्मी को देखते हुए मंदिरों में विशेष व्यवस्था। भगवान के लिए लगाए जा रहे हैं एसी कूलर। खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का भोग। आज एक बार फिर भक्ति अध्यात्म और सनातन संस्कृति में रंगी अयोध्या। श्री झालरिया मठ में 3 जून तक चलेगा भव्य श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव। होंगे कई धार्मिक आयोजन। देशभर में मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पवित्र त्योहार। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दी बधाई। जर्मनी के म्यूनिख में देश की बेटी ईशा सिंह ने बढ़ाया मान। ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर रच दिया इतिहास। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दी बधाई।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: हैदराबाद सनराइजर्स को हराकर क्वालिफायर टू में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल के फाइनल में पहुंचने का मिला एक और मौका। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद को दी करारी शिकस्त, 4 गेंद रहते 47 रन से जीता मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने खड़ा किया 243 रनों का विशाल स्कोर, जवाब में महज 196 रनों पर ढेर हुई हैदराबाद सनराइजर्स। मैच के हीरो रहे राजस्थान के रॉयल बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, 29 गेंदों में खेली 97 रन की धमाकेदार पारी, लगाए 5 चौके और 12 छक्के। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले के सामने हैदराबाद के गेंदबाजों का सरेंडर, 334.48 के तूफानी स्ट्राइक रेट से नापा मैदान का हर कोना, बनाए कई शानदार रिकॉर्ड्स। आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी, महज 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी सूर्यवंशी ने किया अपने नाम, अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के, तोड़ा क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड।

एक ही सीजन में तीन बार एक पारी में 10 या ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने वैभव। एलिमिनेटर में 12 छक्के, 25 अप्रैल को हैदराबाद के खिलाफ हुए मैच में भी 12 छक्के और 19 मई को लखनऊ के खिलाफ लगाए 10 छक्के। ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे है वैभव सूर्यवंशी। इस सीजन में अब तक बना चुके हैं 680 रन, इन 680 में से 610 रन से बाउंड्री से बनाए। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए वैभव सूर्यवंशी। 29 गेंदों पर 97 रन पर हुए आउट। 2013 में 30 गेंदों में शतक लगाकर क्रिस गेल ने बनाया था यह रिकॉर्ड। अब शुक्रवार को होगी आईपीएल फाइनल के लिए आखिरी जंग। न्यू चंडीगढ़ में ही होगा गुजरात और राजस्थान के बीच क्वालिफायर 2 मुकाबला।

वैभव की शानदार बल्लेबाजी को देखकर समस्तीपुर में जश्न का माहौल, लोगों ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशी। 2097 रनों की पारी के लिए काटा गया शानदार केक, फैंस का जोश हाई। दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए वैभव के मुरीद, वैभव की बल्लेबाजी की तकनीकी बारीकियों को सराहा। सात समंदर पार पहुंची वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता, WWE स्टार ड्रू मैकइंटायर ने वैभव के नाम की जर्सी पहनकर पोस्ट किया वर्कआउट वीडियो। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने रच दिया इतिहास, फेंका 64.82 मीटर दूर भाला, तोड़ा अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार भारत का नाम कर चुके हैं रोशन, दो बार पैरालंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं सुमित, 7 बार ध्वस्त किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। सुमित अंतिल की शानदार उपलब्धि पर केंद्र खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी बधाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा ऐतिहासिक प्रदर्शन। म्यूनिख में ISSF विश्व कप में ईशा सिंह ने भी शानदार विश्व रिकॉर्ड बनाकर रच दिया इतिहास, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 50 में से 43 अंक कर जीता गोल्ड। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की बेटी की इस उपलब्धि पर जताया गर्व, सोशल मीडिया पर लिखा भारत के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड से भरा दे। आज से बदलेगा मौसम, तापमान में आएगी कमी, मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में लू की स्थिति में कमी आने की उम्मीद। दिल्ली उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना, नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव। अगले 2 दिन तक दिल्ली NCR में बादल छाए रहने की उम्मीद, रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश, आंधी तूफान और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना। पहाड़ों में भी फिर करवट लेगा मौसम, आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि का अनुमान। अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के संकेत, बारिश की संभावना के बीच मछुआरों को कुछ दिन समुद्र में न जाने की सलाह। गर्मी और हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए अयोध्या में नगर निगम की विशेष पहल, शहर में जगह जगह लगाए जा रहे हैं अस्थायी शेड और ग्रीन नेट। अयोध्या के मंदिरों में भी भगवान के लिए लगाए जा रहे हैं एसी कूलर, लगाया जा रहा है खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का भोग। रामनगरी अयोध्या में फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव, आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन। श्री झालरिया मठ में 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन, विश्व शांति, राष्ट्र समृद्धि और जन कल्याण की कामना की जाएगी। महोत्सव में 225 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ, श्री भगवत कथा, श्री भगवत पाठ, सहस्त्र कलाभिषेक जैसे दिव्य और भव्य धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। बद्रीनाथ में बाबा बागेश्वर के कथा वाचन का आज दूसरा दिन, 5 दिन चलेगी पवित्र सत्यनारायण कथा। बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए की गई विशेष व्यवस्था। रामगढ़ में दिखा आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम, अच्छी बारिश अच्छी फसल और गांव में सुख शांति के लिए धूमधाम से हुई मंडा पूजा। पूजा के दौरान लोटन सेवा के साथ जलती अंगारों पर नंगे पांव चलते नजर आए श्रद्धालु, परंपरा के अनुसार कील के सहारे झूला, 20 फीट ऊंचा बना झूला। मुख्य रूप से भगवान शिव व माता पार्वती की आराधना के लिए मनाया जाता है ये पर्व, झारखंड में इस पर्व को लेकर लोगों में उत्साह। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 24.5 लाख के पार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार।
बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक करीब लाखों लोग कर चुके हैं दर्शन। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगह पर 8.5 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भी भक्तों का लगा मेला, अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल का रजत चंद्र त्रिशूल और त्रिपुंड और ड्राई फ्रूट से किया गया विशेष श्रृंगार। बाबा महाकाल को अर्पित किए गए फूल और मिष्ठान, बाबा को रुद्राक्ष की माला और गुलाब के फूलों की माला की गई है। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम की पूजा अर्चना, भस्मारती में हुई समाप्त।

0: यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई सामने। गर्मी की छुट्टियों को लेकर रेलवे चला रही है कई स्पेशल ट्रेनें। मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच देश के लिए आई राहत भरी खबर, एलपीजी लेकर वतन आया स्वदेशी वैसे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियस की दुनिया में रिश्तों में लगेंगे ड्रामे के डबल डोज। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में, गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है

यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना
और कब्ज का हो जाना होता है।

0: जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, यह आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, यह एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। दिल्ली यूपी सहित 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट, तापमान में 4 डिग्री तक हो सकती है गिरावट। रामनगरी अयोध्या में गर्मी को देखते हुए मंदिरों में विशेष व्यवस्था, भगवान के लिए लगाए जा रहे एसी कूलर, खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का लगाया जा रहा है भोग। आज एक बार फिर भक्ति अध्यात्म और सनातन संस्कृति के रंग में रंगेगी अयोध्या। श्री झालरिया मठ में 3 जून तक चलेगा भव्य श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव, होंगे कई धार्मिक आयोजन। देश भर में मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पवित्र त्योहार। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दी बधाई। जर्मनी के म्यूनिख में देश की बेटी ईशा सिंह ने बढ़ाया मान, ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर रच दिया इतिहास। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी बधाई।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज बात मौसम की कर लेते हैं। देखिए, इस बार गर्मियों ने मई में ही लोगों का कड़ा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तप रहे हैं, तो उत्तर भारत में दिल्ली, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में देश को बेसब्री से इंतजार है अब मॉनसून की पहली बारिश का, उस राहत की फुहार का जो तपती धरती को सुकून दे सकता है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तापमान पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा बढ़ गया है और नौ तपा की भी शुरुआत हो गई 25 मई से, जिसके बाद गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि उससे पहले भी एक गुड न्यूज है कि वीकेंड आ रहा है और जो वीकेंड है वो कूल कूल रहने वाला है। देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के कारण आंधी गरज चमक के साथ बारिश या हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के आसपास आज और कल गरज के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो 45 डिग्री की गर्मी से कुछ राहत तो आपको जरूर देंगे।
1: चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है, जो पारा 45-40 डिग्री था। अब देखिए कि किस तरीके से मौसम सुहावना हुआ है। चंडीगढ़ सुखना लेक पर इस समय सुबह के वक्त जो बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था, चहल पहल अब आपको लोगों की नजर आएगी। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ठंडी हवाएं बिल्कुल चल रही हैं, ठंडी हवा, और इससे पारे में गिरावट आई है और बादल छाए हैं इस समय। और ये पूरा मौसम का आलम उत्तर भारत में, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, तो इस तरीके का मौसम बदला हुआ है। और क्योंकि कल सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई थी फरीदकोट के अंदर, पंजाब में 46.1 डिग्री तापमान था और हरियाणा के रोहतक में 46.6 डिग्री टेम्परेचर था। और कल आपने यहीं पे तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आप देखिए दूर तक जहां आपको नजर जाएगी तो लोग किस तरीके से सुबह सैर सपाटे के लिए और सुबह की रूटीन और चहल पहल जो यहां पर रहती है, क्योंकि इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। गर्मी से राहत है और चिलचिलाती गर्मी थी, चंडीगढ़ में बाहर नहीं निकला जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा था, लेकिन अब अगले दो दिन तीन दिन हो सकता है मौसम विभाग का जैसा कहना है कि मौसम में राहत रहेगी, इस तरीके से ही गर्मी से लोगों को अब राहत रहेगी। कैमरा पर्सन गुंजीत साध, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़।
0: मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

0: नौतपा चल रहा है। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो या फिर यूपी दिल्ली, तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। बुधवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में भी तेज धूप, गर्म हवाएं और उमस भरी रातों से लोग परेशान हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी इतनी कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कामकाजी लोगों को बाहर निकलना मजबूरी है। इस दौरान चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने पर सीधी धूप का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हजरतगंज चौराहे पर वाहन चालकों को भीषण गर्मी में चलचलाती धूप और हीट वेव से बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने ग्रीन नेट लगवाया है।
1: पूरा प्रदेश जब हीट वेव से जूझ रहा है तो आप मेरे चेहरे पर भी धूप देख रहे होंगे, लेकिन दो कदम जब मैं आगे लूंगा तो मेरे चेहरे की ये धूप भी छट जाएगी और मुझे थोड़ी राहत महसूस होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं? आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट 2 मिनट की अगर है तो 2 मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है। ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है, तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा, और इतना ही नहीं, इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इसमें स्प्रिंकल करेगा। लेकिन अगर आप बात करें प्रदेश की गर्मी की तो इस वक्त करा रहा है, बांदा का टेम्परेचर 47.5 रिकॉर्ड किया गया है जो अपने आप में डराने वाला है। तो वहीं लखनऊ 45 डिग्री के पार इस वक्त जा चुका है। तो ऐसे में इस तरह की जो एफर्ट्स हैं उनके जरिए जरूर पब्लिक को थोड़ी राहत मिल रही है।
0: इस बीच मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है, आज से मौसम बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
2: तो जो अभी हीटवेव कंडीशन चल रही हैं, जो अधिकतम तापमान जो कस्ता जो ज़्यादा चल रहा है, अनुमान यही है कि 28 तारीख यानी कल के बाद से जो इसमें गिरावट देखी जाएगी, और उसके बाद 29-30-31 तक आप मान के लिए 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो हीटवेव सीवेव कंडीशन चल रही हैं अभी उसमें कल के बाद से जो है राहत मिल जाएगी।
0: अगर मौसम विभाग का अनुमान सही निकलता है तो आपका ये हफ्ता कूल बीत सकता है। हालांकि अभी गर्मी से पूरी तरह राहत के लिए मॉनसून का इंतजार करना होगा। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि तैयारी पूरी रखें,
3: हर 15-20 मिनट बाद पानी लेते रहें। उसके अलावा जो भी पानी के साथ में, केवल प्लेन वाटर ही जरूरी नहीं है, आप ORS भी ले सकते हैं। लेमन वाटर जो है वो सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी लेमन वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और उसके अलावा छाछ है, बटर मिल्क है, कोकम का शरबत है, जो इन दिनों सीजन की चीजें हैं, जैसे कि फालसे का रस है या प्याज का रस आप हाथों पैरों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब उससे रिलीफ मिले हीट से।
0: क्योंकि अगर एहतियात नहीं बरता गया तो गर्मी वाला ये मौसम सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा गर्मी से बचाव के लिए कुछ छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव, जयपुर से रिदम जैन के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए, मैदानों को आज से ही राहत की आस है, मगर पहाड़ तो पहले ही उत्सव मना रहे हैं। अच्छी खासी रौनक पहाड़ों पर देखने को मिल रही है। कुल्लू मनाली में पर्यटक राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, और ये सभी शहर की गर्मी से दूर पहाड़ों पर खूब इंजॉय कर रहे हैं।
5: अभी हमने रिवर राफ्टिंग करी है ब्यास रिवर में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हरियाणा में तो अभी बहुत गर्मी है सोनीपत में, और यहाँ क्या राहत मिल रही है हमें, कितना अच्छा मौसम है, और अभी तो ठंडे ठंडे पानी में राफ्टिंग करी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
6: सो द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज सूटेबल फॉर अस, इट इज वेरी डिफरेंट एडवेंचर टूर फॉर अस।
4: पहाड़ों पर मौसम ने करवट लेकर नजारों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर और लद्दाख समेत कई पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। मानसून के इंतजार के बीच गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इन बर्फीले पहाड़ों का लगातार रुख कर रहे हैं।

तीखी चटक सुर्ख धूप खिली है मैदान में, गलन है ठिठुरन है पहाड़ के दालान में। एक देश में ये मई के दो रंग हैं, एक और मैदान है जहाँ पारा अपनी हद भूल गया है। 45 डिग्री का सितम है, किसी पिछले बरस बिछड़े साथी की तरह मानसून का इंतजार हो रहा है। और दूसरी तरफ है पहाड़ जहाँ ऐसा जमकर बरसा है आसमान कि बर्फीली सौगात से पहाड़ों की झोली भर गई है। कहीं से गर्मी नहीं जा रही और कहीं से सर्दी। वाकई गर्मी की मार झेलते देश में पहाड़ों की चोटियों पर हो रही बर्फबारी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। उत्तराखंड के चार धाम क्षेत्र केदारनाथ बद्रीनाथ की ऊंची पहाड़ियों से लेकर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और रोहतांग पास तक बर्फबारी हो रही है। गर्मी के सताए सैलानी इन पहाड़ों पर पहुंचे तो मानो मौज आ गई। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ताजा बर्फबारी के बाद सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। अभी 3 दिन पहले ही हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे। कपाट खुलने के साथ ही मौसम ने फिर करवट बदली और यहां बर्फबारी होने लगी। अब आलम ये है कि हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। जहां हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं जोशीमठ में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जोशीमठ में रोजाना दोपहर बाद रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जोशीमठ सहित तमाम निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड हो गई है। कुछ यही हाल लद्दाख का भी है, यहाँ भी बर्फ और ठंड का आलम है। लद्दाख के द्रास और कारगिल में कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद ठंड तो बढ़ी है, लेकिन इस इलाके की खूबसूरती भी कई गुना बढ़ गई है।

0: हिमालय की गोद में ठहराता ये जोजीला दर्रा है। जोजीला यानी बर्फीले तूफान का पहाड़ी दर्रा, और जोजीला बिल्कुल अपने नाम पर गया लगता है। बर्फीले तूफानों का घर है ये, और कुदरत ने इसे जरिया बनाया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गठबंधन का। सारे देश में सर्दी आती है और यहाँ से सर्दी कभी जाती ही नहीं, मई में भी नहीं। यकीन नहीं हो तो तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ बर्फबारी का आलम यह है कि सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मौजूद तुलैल वैली की हैं, जहाँ मई का महीना दिसंबर की याद दिला रहा है। अब तक नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा में, गुरेज सेक्टर और सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी है। गुरेज घाटी के ऊपरी इलाकों का तो रंग ही बदल गया है। कश्मीर में बर्फबारी है तो हिमाचल का हाल भी उससे जुदा नहीं है। यहाँ कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों, रोहतांग पास, स्पीति घाटी, सोलांग वैली, केलांग और दूसरी जगहों पर हाल के दिनों में अच्छी खासी बर्फ पड़ी है। इसके कारण इन इलाकों में मौसम कूल कूल बना हुआ है। इस बर्फबारी ने पहाड़ों पर सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जाहिर है मई में किसे बर्फबारी की उम्मीद होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे पर्यटकों के लिए ताजा बर्फबारी किसी बोनस से कम नहीं है। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत के साथ ही मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जहाँ तक बात मानसून की है तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में थंडर शॉर गतिविधियाँ सामान्य समय से थोड़ा पहले शुरू हो सकती हैं। केरल तट पर मानसून की एंट्री पर भी लगातार नजर बनी हुई है और जल्द ही इसके आगमन की घोषणा हो सकती है।
1: देखिए, अभी जो हमारा मुख्य रूप से जो तापमान गिरने का और जो भी वर्षा थंडर शावर्स का एक्टिविटी, मुख्य रूप से जो सीजन थंडर शावर्स एक्टिविटी होती है उसको देख करके ये फोरकास्ट वार्निंग इशू की गई है। जहां तक दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात है तो अगले 2-3 दिनों के दौरान ये थोड़ा सा और एडवांसमेंट इसमें हो सकता है, ये थोड़ा और एरिया कवर कर सकता है। हालांकि केरला तट पे ऑनसेट के बारे में हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ अपडेट होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे।
0: मौसम पिछले कुछ दिनों में अलग अलग रंग दिखा रहा है। मई के महीने में इस तरह की गर्मी भले ही देखी गई हो, लेकिन पहाड़ों पर इस महीने में बर्फबारी हैरान करने वाली है। पिछले कुछ वक्त से मौसम की ये मनमर्जियां यूं ही जारी हैं। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और जोजीला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, वेदर हॉट है, सोल्यूशन तो कूल होना चाहिए, और देश के अलग अलग हिस्सों से गर्मी को मात देने के लिए कूल सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं। अस्पतालों में लोगों के लिए खास हीट स्ट्रोक रूम तैयार किए जा रहे हैं। बिजली विभाग भी शहर शहर खास एहतियात बरत रहा है। इंसानों को गर्मी में कूल रखने के लिए अच्छी खासी कवायद हो रही है, लेकिन गर्मी तो बेजुबानों को भी लगती है। सो देश भर में शहर शहर चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए कूलिंग के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के कोटा से बायोलॉजिकल पार्क ने कूलर स्प्रिंकलर से भी आगे बढ़कर जानवरों के लिए ग्लूकोज और आइसक्रीम का भी खास इंतजाम किया है।

0: देश में गर्मी का सितम जारी है और इसी के साथ जारी है गर्मी के विरुद्ध हमारा युद्ध। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की है, जहां के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि इतने जोरदार और जायकेदार की मई की गर्मी में मौज हो गई। कोटा के जू में ये भालू भाई फ्रूट आइसक्रीम की दावत उड़ा रहे हैं। गर्मी से बचाने के लिए कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में यहाँ भालुओं को फ्रूट आइसक्रीम खिलाई जा रही है, तो शेर और तेंदुओं को ठंडे पानी की बौछार में नहलाया जा रहा है। बायोलॉजिकल पार्क के जानवरों के लिए फव्वारों और स्प्रिंकल्स भी लगाए गए हैं। इन फुवारों में जानवर मस्ती करते भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई जानवरों के बाड़े में पॉन्ड भी बनाए गए हैं।
1: अभी यहाँ पे जो है जानवरों को प्राकृतिक आवास, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल प्राकृतिक आवास प्रदान करें, जिसमें इनको, जैसे भालू है हमारे पास, तो भालू के लिए बीच बीच में हमने लकड़ी के गट्ठे जो होते हैं वो लगाए हुए, ताकि उसके ऊपर वो मस्ती कर सके। पानी के पौंड बनाए हुए हैं जहाँ वो नहा सके। टाइगर के में भी है, पानी के पौंड सभी में है, ताकि जब भी गर्मी ज्यादा है तो उसमें बैठते हैं, उसमें अपने जो है अटखेलियाँ जो होती है वो करते हैं।
0: भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों को भी लू से बचाना बड़ी चुनौती बन गया है। इसे देखते हुए उनकी शेल्टर और फीडिंग में बदलाव किया गया है। कई जानवरों के बाड़ों में कूलर भी लगाए गए हैं।
1: तो गर्मी, अभी गर्मी बहुत तेज है कोटा में, तो इनसे गर्मी से बचाने के लिए इनके हाउसिंग और फीडिंग में कुछ चेंजेस करें हमने। हाउसिंग में जैसे इनको अभी नाइट शेल्टर जो होता है, जहाँ पे रात को आराम करते हैं एनिमल, वहाँ पे कूलर लगाए गए हैं, डक्टिंग चालू करी गई है, और ओपन एरिया जहाँ पे विजिटर्स जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे जो फोगर्स लगाए हैं, स्प्रिंकलर चालू है सर।
0: गर्मी को देखते हुए जानवरों के खान पान में भी बदलाव किया गया है। शाकाहारी जानवरों की डाइट में ज्यादा पानी वाले फल जैसे मौसम्बी, खीरा और ककड़ी शामिल किए गए हैं। मांसाहारी वन्य जीवों की डाइट में भी बदलाव किया गया है। पीने के पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज पाउडर मिलाया जा रहा है, जिससे जानवरों को एनर्जी मिल सके और भीषण गर्मी में उनके शरीर में पानी की कमी न हो।
1: डाइट में जो है हमने इनके पीने के पानी में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल ऐड कर रहे हैं, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। शाकाहारी वन्य जीवों को जो वो खीरा, ककड़ी, इस तरह के मौसमी जो फल सब्जियां हैं वो दे रहे हैं, ताकि पानी की कमी ना हो शरीर में। और मांसाहारी वन्य जीवों को फीड्स, मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं सर। इसी के साथ भालू है, तो भालू को फ्रूट आइसक्रीम दे रहे हैं, जिसको वो बड़े शौक से खाता है।
0: साथ ही डॉक्टर्स की टीम लगातार जानवरों की सेहत पर नजर बनाए हुए है, ताकि गर्मी का असर उन पर न पड़े। कुछ इसी तरह हरियाणा के करनाल में भी बेजुबानों को गर्मी से बचाने की कवायद की गई है। करनाल में कुछ दिनों से तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। ऐसे में गायों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और दूध देने की क्षमता घट रही है। इसी को देखते हुए गौशाला में गायों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। गायों को सुबह शाम ठंडे पानी से नहलाया जाता है। इनके लिए फॉगर और पंखों का इंतजाम किया गया है। तमाम कोशिशों के बीच उम्मीद यही है कि जल्द बादलों की मेहरबानी हो और मौसम के विरुद्ध इस युद्ध में कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन सीज फायर हो जाए। कोटा से चेतन गुर्जर और करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
0: अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: गर्मी के मौसम में पानी में छपाक छपाक करने का मौका भला कौन छोड़ना चाहेगा। बंदरों का झुंड भी शायद समझ चुका है कि हीट को बीट करना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। फिर क्या था, पूरी की पूरी मंडली पानी पर छपाक छपाक करने लगी। कोई पानी में गोता लगाता दिखा तो कोई अपने साथी के साथ मौज मस्ती करता नजर आया। माँ क्या होती है, इस तस्वीर को देखकर सहज अनुभव लगाया जा सकता है। हालात जैसे हो, काम का बोझ जितना भी हो, लेकिन माँ अपने जिगर के लाल को खुद से दूर नहीं करती। ये महिला खाना बना रही है और साथ में अपने लाल को सीने से लगाए हुए है। न चेहरे पर कोई शिकन, न थकान, माँ इसी को कहते हैं। नन्हे हाथों में किताब और ऊपर से फल और फूलों की तस्वीर, ये नन्ही बच्ची मानो किताब से फल फूल को निकाल कर ही मानेगी। बालपन इसी को तो कहते हैं। सारी दुनिया की टेंशन से दूर अपने में मस्त इस क्यूट वीडियो को देखकर इसे बनाने वाले ने ये जरूर लिख दिया कि ये LKG के एंट्रेंस की तैयारी कर रही है। यहाँ मैं वहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ, इस फॉर्मूले पर ये बतख अपने बच्चों को खतरों से निपटने की ट्रेनिंग दे रही है। पानी में अगर अचानक कोई खतरा आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, खुद को बचाने के लिए क्या किया जाए, इसी हुनर को सिखाती नजर आ रही है ये बतख। खेल खेल में तैराकी का गुर, बच्चों के साथ मस्ती और खतरों से निपटने की ट्रेनिंग, सब साथ साथ। मीडिया पर भालू और इंसान की दोस्ती की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सामने खूंखार और उसे प्रेम से खाना खिला रहा ये बुजुर्ग जोड़ा, न डर न ही हमले का खौफ। बेजुबान को भी पता है कि ये निश्चल प्यार है, यहाँ प्रेम से सब कुछ हासिल हो सकता है। वीडियो इस बात को भी सच साबित कर रहा है कि इंसान और बेजुबानों की भाषा भले ही अलग हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति संवेदना और प्यार एक है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, रिश्तों में लगेंगे ड्रामे के डबल डोज। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा जारी। केदारनाथ धाम में अब तक सबसे ज्यादा 9,27,363 भक्तों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब में अब तक 19,558 श्रद्धालु पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। दिल्ली यूपी सहित 10 राज्यों में तेज बारिश की वजह से आंधी का अलर्ट। तापमान में 4 तक हो सकती है गिरावट। रामनगरी अयोध्या में गर्मी को देखते हुए मंदिरों में विशेष व्यवस्था, भगवान के लिए लगाए जा रहे एसी और कूलर, खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का भोग भी लगाया जा रहा। दिल्ली चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के लिए की गई विशेष व्यवस्था, बाड़ों में भरे गए पर्याप्त पानी, जरूरी जगहों पर लगाए गए कूलर।
5: देश भर में मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पवित्र त्यौहार। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके दी बधाई।
3: एनईसीसी संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पाराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 बच्चे सच्ची खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: हैदराबाद सनराइजर्स को हराकर क्वालिफायर 2 में पहुंची राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल के फाइनल में पहुंचने का मिला एक और मौका। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद को दी करारी शिकस्त, 4 रहते 47 से जीता मैच। आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी, महज 16 में जड़ा अर्धशतक। ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे है वैभव सूर्यवंशी, सीजन में अब तक बना चुके हैं 680 रन। इन 680 में से 610 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए। वैभव की शानदार बल्लेबाजी को देखकर समस्तीपुर में जश्न का माहौल, लोगों ने पटाखे फोड़ के मनाई खुशी।
6: इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने रचा इतिहास, फेंका 74.82 दूर भाला, तोड़ा अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड। सुमित अंतिल
9: दल की शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बधाई दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा ऐतिहासिक प्रदर्शन। म्यूनिक में आईएसएसएफ विश्व कप में ईशा सिंह ने की शानदार विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 50 में से 43 अंक कर जीता गोल्ड। आज से बदल जाएगा मौसम, तापमान में आएगी थोड़ी कमी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में लू की स्थिति में कमी आने की उम्मीद। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 24.5 लाख के पार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
10: उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बद्रीनाथ में बाबा बागेश्वर के कथा वाचन का आज दूसरा दिन, 5 दिन चलेगी पवित्र सत्यनारायण की कथा। गर्मी और हीटवेव से लोगों को बचाने के लिए अयोध्या में नगर निगम की विशेष पहल, शहर में जगह जगह लगाए जा रहे हैं अस्थायी शेड और ग्रीन नेट। अयोध्या के मंदिरों में भगवान के लिए लगाए जा रहे एसी कूलर, लगाया जा रहा उनको खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का भोग। रामनगरी अयोध्या में फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव, आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन।
9: मैदानों में बढ़ते पारे के बीच पहाड़ों में सैलानियों की भीड़ देखने को मिली, कुल्लू मनाली में टूरिज्म बूस्ट। हिमाचल सड़क परिवहन में फिर से शुरू की दिल्ली ले बस सेवा, उत्तरी भारत का सबसे लंबा रोड रूट, 1839 रुपए है किराया। मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच देश के लिए आई राहत भरी एक खबर, एलपीजी लेकर वतन आया स्वदेशी व्यक्ति। लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना ने लेह को दी विकास की सौगात, पर्यावरण के अनुकूल रॉक चेक डैम का किया उद्घाटन। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को सजाया गया, इमारत लाल रोशनी से जगमग दिखी।
10: बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कान में आयोजित प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड।
11: दिस इज अ जोक, स्टॉप।
12: न्यू मैसेज।
10: अक्षय कुमार की प्रेडेटर एलियन थ्रिलर फिल्म समूह में दिखेगा हॉलीवुड का जादू, प्रेडेटर फिल्म का हिस्सा रहे एलेक गिलिस डिजाइन कर रहे एलियन, क्रिएटर वेनम के एक्टर डायरेक्टर ल्यूक एक्शन सीन्स करेंगे डायरेक्ट। कोलकाता में दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी बायोपिक की शूटिंग शुरू, मैदान ईडन गार्डन पर कैमरा क्रू संग नजर आए, सौरभ का किरदार निभा रहे राजकुमार राव। ओटीटी के बाद बड़े पर्दे पर नजर आएगा कालीन भैया साम्राज्य, 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी। फिल्म नागबंधम में अहमद शाह अब्दाली और उनके मॉडर्न अवतार के डबल रोल में नजर आएंगे ऋषभ साहनी, 3 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: पच्चीस अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए, खबरों की पेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। दिल्ली यूपी सहित 10 राज्यों में तेज बारिश की वजह से आंधी का अलर्ट, तापमान में 4 डिग्री तक हो सकती है गिरावट।
2: आज एक बार फिर से भक्ति अध्यात्म सनातन संस्कृति में रंग में रंगी हुई है पूरी अयोध्या नगरी। श्री झालरिया मठ में 3 जून तक चलेगा भव्य श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव, होंगे कई आयोजन।
1: देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का पवित्र त्यौहार। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दी बधाई।
2: आस्था और उत्साह के साथ चार धाम यात्रा जारी, अब तक 24 लाख से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने की पूजा।
1: पहली बार एक्शन अवतार में दिखेंगे आलिया भट्ट, अल्फा में एक्शन अवतार के लिए खास तैयारी।

0: और चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात आलिया भट्ट की करते हैं, जिन्होंने अपने अलग अलग किरदारों और अंदाज से बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई है। लेकिन आज हम आपको आलिया का जो अवतार दिखाने जा रहे हैं वो आज से पहले शायद आपने नहीं देखा होगा। बात कर रहे हैं अपकमिंग फिल्म अल्फा की।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, इसमें आलिया पहली बार जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि आलिया फिल्म में खतरनाक एक्शन सीन्स करेंगी और साथ ही कई रोल में भी नजर आने वाली है, जिसे बचपन से ही किलर बनने की ट्रेनिंग दी गई। तो कैसा है आलिया का ये एक्शन अवतार और कैसे इस कठिन रोल के लिए आलिया ने तैयारी की है, देखिए।

0: जब किरदार चैलेंजिंग हो तो उसे सही तरीके से निभाने के लिए एक्टर को भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं। कुछ ऐसा ही एफर्ट आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा के लिए किया है। आलिया पहली बार अल्फा में जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी। आलिया का एक्शन अवतार अब तक के उनके सभी किरदारों से बिल्कुल अलग, बेहद खूंखार और घातक होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्फा में आलिया किसी साधारण ड्रॉ एजेंट या सीक्रेट स्पाई का रोल नहीं निभाएंगी, जैसा कि अब तक खबरें आई थी, बल्कि एक ऐसी खतरनाक असैसिन के किरदार में नजर आएंगी जिसका अतीत दर्द, ट्रेनिंग और हिंसा से भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि आलिया का किरदार एक ऐसी लड़की का है जिसे बचपन से ही सिर्फ मारने की ट्रेनिंग दी गई। वो एक ऐसी घातक हथियार के रूप में तब्दील हो चुकी हैं, जो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आलिया का ये रूप काफी डार्क, रॉ और एंटी हीरो शेड्स वाला होगा। आलिया खुद भारी हथियारों को चलाती, चाकू से वार करती और खतरनाक स्टंट्स को खुद अंजाम देती हुई दिखाई देंगी। अल्फा में आलिया ही नहीं, शर्वरी वाघ भी भरपूर एक्शन करती नजर आएंगी और आलिया के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खतरनाक मिशंस को अंजाम देंगी। जबकि बॉबी देओल को फिल्म का खतरनाक विलन बताया जा रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने आलिया भट्ट की किरदार को लेकर की गई तैयारी और मेहनत की जमकर तारीफ की। बॉबी के मुताबिक आलिया हर सीन के लिए पूरी तैयारी के साथ सेट पर पहुंचती थी और अपने किरदार में पूरी तरह डूबी रहती थी। बॉबी ने कहा कि आलिया उन कलाकारों में से है जो अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार और मेहनती है। उन्होंने पहले कभी इस तरह का एक्शन नहीं किया था, लेकिन शूटिंग से पहले जिस तरह की तैयारी उन्होंने की वो देखकर मैं हैरान रह गया। एक्शन करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने खुद को पूरी तरह इस किरदार के लिए समर्पित कर दिया। बॉबी की इन बातों से कयास लगाए जा रहे हैं कि अल्फा में आलिया और उनके बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि आलिया और बॉबी के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट और खूनी संघर्ष वाले कई हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस फिल्माए गए हैं। जाहिर सी बात है, एक्शन सीन्स में जब बॉबी देओल से मुकाबला करना हो तो आलिया को इसके लिए खास तैयारी करनी पड़ी होगी। जानकारी के मुताबिक आलिया ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले करीब 4 महीने तक रोजाना जिम में कड़ा पसीना बहाया। आलिया के ट्रेनर सोहराब ने सोशल मीडिया पर उनकी वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए कई वीडियोस भी शेयर किए, जिसमें उनके बैक मसल्स देखकर फैंस हैरान रह गए थे। आलिया ने स्टाइलिश और पावर पैक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट्स के लिए मार्शल आर्ट सीखी, हथियारों को चलाने और उन्हें पकड़ने का सही और पेशेवर तरीका सीखा। आलिया ने वायर वॉक यानी हवा में स्टंट करने के लिए भी खूब अभ्यास किया और तेजी से मूव करने के लिए फुटवर्क पर हफ्तों तक काम किया। फिल्म में करीब 5 से 6 बड़े एक्शन सीक्वेंस हैं, जिन्हें बिना थके करने के लिए आलिया को अपने स्टेमिना को चरम पर ले जाना था। इसके लिए उन्होंने फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चुनी, जिसमें रिंग डिप्स, वेटेड स्क्वाट्स, रेजिस्टेंस बैंड वर्क और प्लैंक शामिल थे। इसका मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं, बल्कि शरीर को अत्यधिक फुर्तीला और मजबूत बनाना था। आलिया और शर्वरी वाघ ने स्टंट रिहर्सल से पहले महीनों की तैयारी की और फिर 2 महीने तक लगातार एक्शन कोरियोग्राफी सीखी। एक्शन डायरेक्टर क्रैग मैकरे के मुताबिक आलिया और शर्वरी हर दिन शरीर पर नील और दर्द के साथ घर लौटती थी, लेकिन अगले दिन फिर से दोगुनी ऊर्जा के साथ आ जाती थी। दोनों खुद से और ज्यादा रिहर्सल की मांग करती थी। YRF Spy Universe के तहत बन रही अल्फा अब तक की सबसे डार्क, इंटेंस और अलग चैप्टर बन सकती है, जिसमें एक्शन बिल्कुल असली और रॉ लगेगा। हालांकि यशराज फिल्म्स की पिछली फिल्मों जैसे पठान, वॉर और टाइगर 3 में हीरो साफ तौर पर देश के लिए लड़ते दिखे थे, लेकिन अल्फा में पहली बार एक ग्रे शेड वाला किरदार देखने को मिल सकता है, जो सही और गलत के बीच की लाइन को धुंधला कर देगा। सबसे खास बात, अल्फा YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म होगी। माना जा रहा है कि आलिया और शर्वरी मिलकर अपनी हाई ऑक्टेन एक्शन अवतार से पूरे स्पाई यूनिवर्स का गेम बदल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बात कर लेते हैं सलमान खान की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी पहले बार पर्दे पर एक ऐसे अवतार में नजर आने वाले हैं जिन्हें उन्होंने आज से पहले पर्दे पर कभी नहीं किया।
2: अपकमिंग फिल्म है उनकी SVC 63 में सलमान का ये अवतार रफ एंड टफ और बेहद ब्रूटल और खूंखार आपको नजर आएगा। खबर ये भी है कि सलमान इस फिल्म में डबल रोल में आपको दिखाई देंगे, एक किरदार ब्रूटल तो दूसरा जाना पहचाना क्लीन शेव्ड हीरो का आपको नजर आएगा। देखिए खास रिपोर्ट।
0: सिल्वर स्क्रीन पर सलमान खान को एक्शन करते देखना नया नहीं है, चाहे जमीन हो या ट्रेन या फिर आसमान, सलमान का एक्शन अवतार हर जगह नजर आया है। लेकिन अब सलमान का जो अंदाज और अवतार दिखने वाला है वो न सिर्फ खूंखार होगा बल्कि इतना ब्रूटल कि दर्शक दहल जाएंगे। मनाली की सर्द वादियों में सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म SVC 63 की शूटिंग में बिजी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 विदेशी फाइटर के साथ सलमान धमाकेदार और खतरनाक एक्शन सीन की शूटिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में सलमान खान डबल रोल में नजर आएंगे। सलमान के दोनों किरदार फिल्म में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। सलमान का एक किरदार पूरी तरह से ग्रे डार्क शेड का होगा। उनका ये लुक बेहद तगड़ा, भारी और खतरनाक बताया जा रहा है, जो उन्होंने अपने करियर में शायद पहले कभी नहीं निभाया। सलमान का दूसरा किरदार स्लीक और क्लीन शेड हीरो का होगा, जिसकी शूटिंग फिलहाल मनाली की खूबसूरत वादियों में चल रही है। मनाली के बाद फिल्म की शूटिंग का अगला शेड्यूल हैदराबाद में होगा, जहां सलमान खान के ग्रे कैरेक्टर वाले सीक्वेंस शूट होंगे। इस शेड्यूल में फिल्म का विलन भी शामिल रहेगा और दोनों के कुछ धुआंधार एक्शन सीन फिल्माए जाएंगे। फिजिकली भी सलमान का वो लुक स्लीक नहीं, तगड़ा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनिमल के एक्शन कोरियोग्राफर सुप्रीम सुंदर ने SVC 63 के फाइट

0: एंतारा भी इसमें इंटेंस एक्शन मोड में नजर आएंगी। खबरों के मुताबिक नयनतारा अपने स्टंट्स भी खुद करने वाली हैं। फिलहाल इसके लिए वो तैयारी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सलमान और नयनतारा के बीच तगड़ा फेस ऑफ भी होगा। विलेन के रोल के लिए अक्षय खन्ना को लिए जाने की चर्चा है, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म फिल्म का ऑफिशियल नाम भी होना है, जिसका खुलासा करने के लिए एक हाई ऑक्टेन विशेष प्रोमो शूट किया गया है, जो जल्द ही रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब देखिए, डॉन 3 से रणवीर सिंह का फाइनल एग्जिट, निर्देशक फरहान अख्तर का करोड़ों का नुकसान, FWICE का रणवीर पर बैन, इन सब विवादों के बीच में पहेली बन गया है अब डॉन का किरदार। आखिर कौन होगा डॉन 3 का लीड एक्टर, ये सब चर्चा का विषय बन गया है। कौन है डॉन की रेस का हिस्सा, कौन मारेगा बाजी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
2: शेर जो सो रहा है वो जागेगा कब, पूछते हैं ये सब। उनसे कह दो कि फिर जाग उठा हूं मैं। डॉन
3: बॉलीवुड का एक ऐसा अमर कैरेक्टर जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। लेकिन इस फिल्म के तीसरे पार्ट के लिए डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं, बल्कि फिलहाल निर्देशक फरहान अख्तर ढूंढ रहे हैं। रणवीर सिंह के डॉन 3 छोड़ते ही फिल्म न सिर्फ विवादों में घिर गई, बल्कि शुरू होने से पहले ही अधर में लटक गई है। लेकिन फिल्म लीड को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इनमें 3 नाम जो उभर कर आए हैं, वो हैं बिग बी अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। 1978 में सलीम जावेद ने डॉन के कैरेक्टर की कल्पना की और चंद्र बरूट के निर्देश में बनी फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 48 साल बाद एक बार फिर ओरिजिनल डॉन ही फरहान की नैया पार लगाएगा, यानी डॉन 3 में एक बार फिर अमिताभ डॉन के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर उतार सकते हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है। इस कड़ी में किंग खान का नाम भी सुर्खियों में है। शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन के रीमेक में लीड रोल निभाया था। इस मूवी का निर्देशन भी फरहान अख्तर ने ही किया था। शाहरुख खान की इस प्रतिष्ठित सीरीज के बाद अब डॉन 3 का निर्माण भी फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट कर रही है। इसी वजह से फैंस में उम्मीद जगी है कि डॉन 3 से रणवीर की एग्जिट के बाद शाहरुख खान इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी में वापसी कर सकते हैं। हालांकि डॉन 3 को लेकर रणवीर फरहान विवाद के बीच सबसे पहले ऋतिक रोशन का नाम सामने आया था। कहा जा रहा था कि रणवीर को ऋतिक से रिप्लेस किया जा रहा था, इसलिए रणवीर फिल्म छोड़ रहे हैं। हालांकि ऋतिक ने पहले ही इन अफवाहों को दबा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर अफवाहें तेज हो गई हैं कि डॉन 2 में एक कैमियो करने वाले ऋतिक इस बार डॉन 3 में खुद डॉन के किरदार में नजर आएंगे। फिलहाल डॉन 3 बहुत सारे किंतु परंतु में उलझी है, ऐसे में इस बार सच में डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बद्रीनाथ में बाबा बागेश्वर की कथा की।

0: बद्रीनाथ धाम इन दिनों भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आ रहा है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 दिनों की कठिन एकांत साधना पूरी करने के बाद जैसे ही कथा के लिए लौटे तो उन्हें सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
1: और देखिए, बुधवार से बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय श्री सत्यनारायण कथा का शुभारंभ किया। आज कथा का दूसरा दिन है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हिमालय की वादियों में गूंजती हुई कथा, मंत्रोच्चारण और भक्तों की आस्था ने बद्रीनाथ धाम के वातावरण को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया है।
0: आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो मिलेंगे ही, साथ ही कथा के साथ अपनी 21 दिनों की एकांत साधना के संस्मरण की भी कुछ विचार सुनने को मिलने वाले हैं।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम है तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय पातेरी
4: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई। भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया, ये पत्नी का धर्म है। छत्ता बना करके खड़ी हुई, नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले भगवान ने कहा देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो। संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी। स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती। आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है। आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा। और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है। तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं।
6: तो वहीं 6.5 लाख लोगों ने बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और हेमकुंड साहिब में भी बड़ी तादाद में सिख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

0: जिस तरफ नजर फेरिए बस लोग ही लोग, अनजाने अजनबी चेहरे, एक दरबार और आस्था का सैलाब। चल पड़े हैं सैकड़ों कदम एक ही राह पर, आस्था की जोर थामे। ये राह भक्ति की है और चाह अपने आराध्य के दर्शन की। तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं। ये ईश्वर में इनकी आस्था ही है जो इन्हें यहाँ तक खींच लाई है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक उम्मीद जिसके सहारे यहाँ तक चले आए हैं हर चुनौतियों को पार करके। महादेव में आस्था ऐसी कि हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। करीब 30,000 श्रद्धालु हर दिन बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और कपाट खुलने के बाद बीते 35 दिनों में कुल आंकड़ा 9,00,000 को पार कर गया है। यानी महज 35 दिनों में 9,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं।
1: श्री केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो पिछले वर्ष की तुलना में जल्दी खुले थे और 22 अप्रैल को खुले थे, तो इस कारण से इस बार की यात्रा अवधि भी लंबी है और गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं और देश से विदेश से लोग भारी संख्या में आ रहे हैं और अभी तक 9,00,000 से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। यात्रा का जो मैनेजमेंट है वो हम इस कंट्रोल रूम से संचालित करते हैं।
0: बद्रीनाथ धाम में भी नजारा कुछ ऐसा ही है। भगवान विष्णु के इस सर्वश्रेष्ठ धाम की यात्रा इस साल अपने चरम पर है। इन दिनों यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, मंदिर परिसर हो, सड़क या पैदल रास्ते, हर तरफ जन सैलाब है। मई का महीना भी बीता भी नहीं और दर्शनार्थियों का आंकड़ा 6,50,000 पार कर गया। यानी कपाट खुलने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए अब तक 6,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे, तब से अब तक यहां 18,000 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है।
2: श्री गुरु गोविंद सिंह पिताजी दे मन नु पावे।
0: श्रद्धालु न सिर्फ यहां कठिन चढ़ाई कर पहुंच रहे हैं बल्कि ठंडे पानी के सरोवर में स्नान भी कर रहे हैं। देवभूमि में लगे आस्था के मेले के बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि साल 2026 के सतोपंथ ट्रैकिंग सीजन का पहला दल अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सुरक्षित वापस लौट आया है। इस साल के पहले आधिकारिक दल में गुजरात के 13 सदस्य शामिल थे, जिनमें 4 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल रहे। ये टीम बीते 23 मई को सतोपंथ ट्रैक के लिए रवाना हुई थी।
3: नमस्ते।
0: रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नैन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कोटा स्थित ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में करीब 300 वर्षों से एक अनोखी धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 14 दिन का विशेष बीमारी अवकाश दिया जाता है
5: और मान्यता यह है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आम रस का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसके चलते मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
0: जैसी भक्त की आस्था उसी रंग में रंग जाते हैं भगवान भी। राजस्थान में कोटा के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में करीब 300 सालों से एक अनूठी धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 14 दिन का विशेष बीमारी अवकाश दिया जाता है। मान्यता है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आम रस का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसके चलते मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
6: 8 कुंडों से स्नान होता है और उसी दिन भगवान का 108 किलो का आमरस का भोग भी लगाया जाता है और जगन्नाथ भगवान जो है वो बाल स्वरूप माने जाते हैं कृष्ण भगवान के। तो क्योंकि जैसे एक छोटा सा बच्चा, जैसे ही उसको इतना ज्यादा स्नान कराया जाए और इतना ज्यादा खिलाया जाए, भोग कराया जाए, तो उससे उसकी तबीयत नरम हो जाती है।
0: परंपरा के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान का 51 जल कलशों और पंचामृत से विशेष अभिषेक किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के पूर्ण होने के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और अगले 14 दिनों तक पुजारी प्रतिदिन भगवान के स्वास्थ्य की प्रतीकात्मक देखभाल करते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए दूध और काली मिर्च का विशेष काढ़ा भी अर्पित किया जाता है। ये तस्वीरें गुजरात के पाटन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मंदिर की हैं, जहां भगवान का श्रृंगार फूलों और गहनों से नहीं बल्कि नोटों से किया गया है, वो भी 1,51,000 नकदी नोटों से। इस सजावट में 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। असल में अधिक मास की एकादशी के मौके पर यहां विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उनके भक्तों ने भगवान का अनूठा श्रृंगार किया। पाटन से सुनील पटेल और कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे वीकेंड पर मौसम होगा कूल कूल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
8: Thank God I get to wake.
7: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: TuneIn has the music.
7: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
10: TuneIn Poolside has the music I love.
7: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs and get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.
5: वही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है। जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा जारी। केदारनाथ धाम में अब तक सबसे ज्यादा 9,27,363 भक्तों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब में अब तक 19,558 श्रद्धालु पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। दिल्ली यूपी सहित 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। तापमान में 4 डिग्री तक हो सकती है गिरावट। रामनगरी अयोध्या में गर्मी को देखते हुए मंदिरों में विशेष व्यवस्था। भगवान के लिए लगाए जा रहे एसी और कूलर। खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का भोग भी लगाया जा रहा। दिल्ली चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के लिए की गई विशेष व्यवस्था। बाड़ों में भरे गए पर्याप्त पानी। जरूरी जगहों पर लगाए गए कूलर। देशभर में मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पवित्र त्यौहार। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके दी बधाई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: देखिए नौतपा चल रहा है, इसकी तपिश से पूरा उत्तर भारत जल रहा है। इसी बीच खबर यह है कि भीषण गर्मी से आज थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।
3: उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के कारण आंधी, गरज चमक के साथ बारिश या हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। साथ ही दिल्ली एनसीआर के आसपास आज और कल गरज के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो कि 45 डिग्री की गर्मी से राहत जरूर देंगी।

0: नौतपा चल रहा है। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो या फिर यूपी दिल्ली, तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। बुधवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में भी तेज धूप, गर्म हवाएं और उमस भरी रातों से लोग परेशान हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी इतनी कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कामकाजी लोगों को बाहर निकलना मजबूरी है। इस दौरान चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने पर सीधी धूप का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हजरतगंज चौराहे पर वाहन चालकों को भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप और हीट वेव से बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने ग्रीन नेट लगवाया है।
1: पूरा प्रदेश जब हीट वेव से जूझ रहा है तो आप मेरे चेहरे पर भी धूप देख रहे होंगे, लेकिन दो कदम जब मैं आगे लूंगा तो मेरे चेहरे की यह धूप भी छट जाएगी और मुझे थोड़ी राहत महसूस होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं? आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट 2 मिनट की अगर है तो 2 मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है। ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है, तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा, और इतना ही नहीं, इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इस पे स्प्रिंकल करेगा। लेकिन अगर आप बात करें प्रदेश की गर्मी की तो इस वक्त करा रहा है, बांदा का टेम्परेचर 47.5 रिकॉर्ड किया गया है जो अपने आप में डराने वाला है। तो वहीं लखनऊ 45 डिग्री के पार इस वक्त जा चुका है। तो ऐसे में इस तरह की जो एफर्ट्स हैं उनके जरिए जरूर पब्लिक को थोड़ी राहत मिल रही है।
0: इस बीच मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है, आज से मौसम बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
2: तो जो अभी हीटवेव कंडीशन चल रही हैं, जो अधिकतम तापमान जो का स्तर जो ज़्यादा चल रहा है, अनुमान यही है कि 28 तारीख यानी कल के बाद से जो इसमें गिरावट देखी जाएगी, और उसके बाद 29, 30, 31 तक आप मान के लिए 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो हीटवेव सीवेव कंडीशन चल रही हैं अभी उसमें कल के बाद से जो है राहत मिल जाएगी।
0: अगर मौसम विभाग का अनुमान सही निकलता है तो आपका ये हफ्ता कूल बीत सकता है। हालांकि अभी गर्मी से पूरी तरह राहत के लिए मॉनसून का इंतजार करना होगा। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि तैयारी पूरी रखें,
3: हर 15-20 मिनट बाद पानी लेते रहें। उसके अलावा जो भी पानी के साथ में, केवल प्लेन वाटर ही जरूरी नहीं है, आप ORS भी ले सकते हैं। लेमन वाटर जो है वो सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी लेमन वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और उसके अलावा छाछ है, बटर मिल्क है, कोकम का शरबत है, जो इन दिनों सीजन की चीजें हैं, जैसे कि फालसे का रस है या प्याज का रस आप हाथों पैरों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब उससे रिलीफ मिले हीट से।
0: क्योंकि अगर एहतियात नहीं बरता गया तो गर्मी वाला ये मौसम सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा गर्मी से बचाव के लिए कुछ छूट।
4: मैदानों को आज से राहत की आस है, मगर पहाड़ तो पहले से ही उत्सव मना रहे हैं।
5: बिल्कुल, अच्छी खासी रौनक पहाड़ों पर है। कुल्लू मनाली में पर्यटक राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये सभी शहर की गर्मी से दूर पहाड़ों पर खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कुल्लू मनाली से ये तस्वीरें हैं, जहां पर मैदानी इलाकों में गर्मी है तो वहीं पहाड़ी राज्यों का लुत्फ उठाने के लिए, ऐसे में मौसम का मजा लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। राफ्टिंग का मजा लेते सैलानी यहां पर नजर आ रहे हैं।
6: अभी हमने रिवर राफ्टिंग करी है ब्यास रिवर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हरियाणा में तो अभी बहुत गर्मी है सोनीपत में, और यहाँ क्या राहत मिल रही है हमें, कितना अच्छा मौसम है, और अभी तो ठंडे ठंडे पानी में राफ्टिंग करी है तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
7: सो द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज सुटेबल फॉर अस. इट इज वेरी डिफरेंट एडवेंचर टूर.
4: पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा है लेकिन जंगल की आग चुनौती बनी हुई है. लेकिन आग बुझाने के लिए तमाम एजेंसियां लगी हैं. हिमाचल प्रदेश के कसौली में जंगल की आग बुझाने के लिए वायुसेना को भी लगा दिया गया है.
5: वायुसेना के हेलीकॉप्टर सुखना झील से पानी भरकर बैम्बी बकेट ऑपरेशन के जरिए प्रभावित इलाकों में लगातार पानी डाल रहे हैं. अब तक 15 से ज्यादा उड़ानें पूरी कर 40,000 लीटर से अधिक पानी आग पर गिराया जा चुका है.
4: देखिए जंगल को बचाने का अभियान लगातार जारी है. हेलीकॉप्टर से यहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है. सुखना झील से पानी ला रहे हैं तमाम हेलीकॉप्टर. जंगल की जो भी आग है उसको बुझाने के लिए ये अभियान अभी भी लगातार जारी है.
5: समंदर के सिकंदर हम ही हैं ये साबित किया भारतीय नौसेना ने. नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पराक्रम दिखाया. भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया. हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं की सूचना मिलते ही नौसेना के जाबाज तुरंत हरकत में आए और समुद्री डाकुओं को घेर लिया.
4: और ये समुद्री डाकू एक मालवाहक जहाज को अपना निशाना बनाने की फिराक में थे लेकिन भारतीय नौसेना द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से समुद्री डाकुओं के मंसूबे को नाकाम कर दिया गया. और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए लंच टाइम.
8: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
9: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नन्हे हाथी के साथ जिसके अठखेलियां आपका दिल चुरा लेंगी। जमशेदपुर के दलमा के जंगलों में रहने वाले इस हाथी का नाम बादल है।
2: बादल करीब 6 महीने का है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही फुटबॉल से इसका एक गहरा लगाव हो गया है। बादल को यूं तो फुटबॉल खेलते देख सैलानी भी खूब खुश होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बादल अब इस जंगल का नया आकर्षण बन चुका है।
3: कभी सूखी जमीन पर फुटबॉल से खेल तो कभी पानी में फुटबॉल से मस्ती, मतलब ये कि जगह कोई भी हो, फुटबॉल से इस नन्हे गजराज का लगाव कम नहीं हो रहा। जमशेदपुर से सटे दलमा वन अभयारण्य में आकर्षण का नया केंद्र है बादल। दलमा के जंगलों में खेलता कूदता 6 महीने का नन्हा गजराज सबका चहेता बन गया है। पर्यटकों के लिए भी बादल को यूं खेलते देखना काफी लुभा रहा है।
4: ऐसे सर मतलब दो दफा खेलते हैं सर, सुबह आज शाम। इसमें जब पिला करके जब हम खिलाते हैं ना सर, तो फुटबॉल अच्छा 10 से 15 मिनट तक मैंने खेल लेता है सर प्रतिदिन, और देखते हैं कोशिश करके मैंने और खिलाने का है। अभी तो मैंने मूड में है नहीं, एक बार खेल चुके हैं सर।
5: मजा आता है,
4: बहुत बहुत मजा आता है सर। मुंह में लेकर के ऊपर में जैसे आदमी लोग खेलता है उसी प्रकार मैंने खेल लेता है बादल। दो गो बॉल लाए हैं और इसको खेल सिखा रहे हैं। बैठाने का भी मैंने खेल सिखाए, दो पैर में एक ठो मैंने वहाँ नल है, वहाँ छोटा सा मैंने जगह है, उसमें सरकस जैसे खिलाता है उस प्रकार भी खड़ा हो जाता है।
3: करीब 6 महीने पहले बादल को घायल और बेहद गंभीर स्थिति में यहाँ लाया गया था। वनकर्मी रवि ने बादल को भरपूर प्यार दिया, दिन रात सेवा की, एक नया जीवन दिया। अब ये नन्हा हाथी न सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ है बल्कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य की शान बन चुका है। इसकी अटखेलियां लोगों को लुभाती हैं, तो इसे फुटबॉल खेलता देख सैलानियों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की बजाय अपने देश में ही सैर सपाटा करने की अपील की हुई है। तो GNT भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीर हमें भेजें ताकि हम उनको दिखा पाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लेकर चलते हैं जहां पर बाकली पिकनिक रिजॉर्ट आपका इंतजार कर रहा है।
6: ये है माता बगलामुखी मंदिर का भव्य नजारा। और यहीं से आप नेचर पार्क के भी दर्शन कर सकते हैं।

इस स्थान को बाखली के नाम से जाना जाता है। माता बगलामुखी का यह मंदिर पहले नीचे हुआ करता था, जहां नेचर पार्क बनाया गया है। स्नो डैम के बनने के समय माँ बगलामुखी की इच्छा अनुसार मंदिर ऊपर बनाया गया। जिस स्थान पर अभी मैं मौजूद हूँ, हजारों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है। तो चलिए मंदिर के अंदर भी आपको माता के दर्शन करवाते हैं।

अब यहाँ से हम सीधा चलेंगे नेचर पार्क की ओर। नेचर पार्क की दूरी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, तो चलो मिलते हैं अब नेचर पार्क में। इस समय मैं पहुँच चुका हूँ नेचर पार्क में। ये नेचर पार्क वन विभाग के अंतर्गत आता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ही सुंदर सुंदर हट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं और सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पर सुबह शाम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है जिस कारण इस भरी तपती गर्मी में आपकी इच्छा भी ना करे यहाँ से जाने की।

0: नेचर पार्क में घूमने के अलावा आप यहाँ पे पंडो डैम में बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं।
1: बात रही इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने की, तो आप कई रास्तों से इस डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चंडीगढ़ की ओर से आ रहे हैं तो जिस रोपवे की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, वह रोपवे हाईवे से महज कुछ ही मीटर दूर है और चंडीगढ़ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो कि भुंतर में स्थित है। अगर मैं फ़्लाइट्स की बात करूँ तो भुंतर एयरपोर्ट पे दिल्ली, अमृतसर, देहरादून और जयपुर से रेगुलर फ़्लाइट्स आती हैं। और फ़्लाइट्स के अलावा अगर आप ट्रेन से भी आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ से जोगिंद्रनगर का है, जो कि यहाँ से महज 70 किलोमीटर दूर है।
2: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संकल्प में भागीदार बनिए। बस करना आपको सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉगिंग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। और चलिए हमें दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say TalkSports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियस की दुनिया में रिश्तों में लगेंगे ड्रामे के डबल डोज। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा जारी। केदारनाथ धाम में अब तक सबसे ज्यादा 9,27,363 भक्तों ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब में अब तक 19,558 श्रद्धालु पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। हवा चलने से तापमान में 4 तक होगी गिरावट। केरल के कई जिलों में बारिश, तिरुवनंतपुरम में जमकर बरसे बदरा, भीषण गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या में गर्मी को देखते हुए मंदिरों में विशेष व्यवस्था, भगवान के लिए जा रहे हैं एसी कूलर, खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का भोग। दिल्ली चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव करने के लिए विशेष व्यवस्था, बाड़ों में पर्याप्त पानी भरें, जरूरी जगहों पर लगाए गए कूलर। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
8: चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक 24.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, आंकड़ा 9 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक का दोनों जगहों पर 8.5 लाख भक्तों ने हाजिरी लगाई। हेमकुंड साहब गुरुद्वारे में भक्तों का लगा मेला, अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। रामनगर अयोध्या में फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन। श्री झालरिया मठ में 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन। विश्व शांति, राष्ट्र समृद्धि और जनकल्याण की कामना की जाएगी। महोत्सव में 225 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ, श्रीमद् भगवत कथा, श्रीमद् भगवत पाठ, सहस्त्र कलशाभिषेक जैसे दिव्य भव्य धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। अयोध्या के मंदिरों में भी भगवान के लिए लगाए जा रहे हैं एसी कूलर, लगाया जा रहा है खीरे तरबूज ठंडे फलों का भोग। गर्मी और हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए अयोध्या में नगर निगम की विशेष पहल। शहर में जगह जगह लगाए जा रहे हैं अस्थायी शेड, ग्रीन नेट। बद्रीनाथ में बाबा बागेश्वर के कथावाचन का आज दूसरा दिन। 5 दिन तक चलेगी पवित्र सत्यनारायण कथा। बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं। रामगढ़ में दिखा आस्था और संस्कृति का जबरदस्त संगम। अच्छी बारिश, अच्छी फसल और गांव में सुख शांति के लिए धूमधाम से मंडा पूजा। पूजा के दौरान लोटन सेवा के साथ जल्दी अंगारों पर नंगे पांव चलते नजर आए श्रद्धालु। परंपरा के अनुसार कील के सहारे झूला, 20 फीट ऊंचा पनस झूला। मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए मनाया जाता है यह पर्व। झारखंड में इस पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई महाकाल की आरती। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकार। बाबा महाकाल रजत चंद्र त्रिशूल और त्रिपुंड से ड्राई फ्रूट से भी किया गया श्रृंगार। बाबा महाकाल को अर्पित किए गए फूल और मिष्ठान। बाबा को रुद्राक्ष की माला भी अर्पित की। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने भी पूजा अर्चना की। भस्म आरती में शुमार। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। गर्मी की छुट्टियों को लेकर रेलवे चला रही है स्पेशल ट्रेन्स। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। तापमान में आएगी कमी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में लू की स्थिति में कमी आएगी। दिल्ली, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं, चलने की संभावना। नई पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव। अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बादल छा रहने की उम्मीद है। रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश, आंधी तूफान और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना। पहाड़ों में भी फिर करवट लेगा मौसम। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि का अनुमान। अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के संकेत। बारिश की संभावना के बीच मछुआरों को कुछ दिन समुद्र में न जाने की अपील। मैदानों में बढ़ते पारे के बीच पहाड़ों में सैलानियों की मौज। कुल्लू मनाली में टूरिज्म बूस्ट। एडवेंचर एक्टिविटीज में मसरूफ नजर आ रहे हैं पर्यटक। बोटिंग का भी उठा रहे हैं लुत्फ। हिमाचल सड़क परिवहन ने फिर से शुरू कर दी दिल्ली लेह बस सेवा। उत्तरी भारत का सबसे लंबा रूट तैयार। लद्दाख के एलजीबी के सक्सेना ने लेह को दी विकास की सौगात। पर्यावरण के अनुकूल रॉक चेक डैम का उद्घाटन हुआ। सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत उद्घाटन। 11,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है डैम। मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच देश के लिए आई राहत भरी खबर। एलपीजी लेकर वतन आया स्वदेशी वेसल। पोरबंदर के तट पर पहुंचा CMD-23 वेसल। 4,000 टन एलपीजी लेकर लौटा वतन। कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग पर सफलतापूर्वक पा लिया गया काबू। भारतीय वायुसेना ने आग पर काबू पाया। टेर के जंगलों में भीषण आग, ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा। आग बुझाने में जुटे। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को सजाया गया। इमारत को लाल रोशनी से जगमग किया गया। देश में मनाई जा रही है बकरीद, मौके पर अजमेर शरीफ में हो रही है पवित्र नमाज। सुबह सुबह अजमेर शरीफ की दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए जुटे लोग, लंबी कतार। विशेष इस्लामी त्योहारों और उर्स के मौके पर साल में केवल 4 बार खोला जाता है पवित्र दरवाजा। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी बकरीद की रौनक, प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। अलग अलग शहरों में बकरीद के मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों की रौनक। वाराणसी की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों का ईद उल अजहा की नमाज पढ़ रहे हैं। मुंबई की YMCA मैदान में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। अजमेर में ईद उल अजहा पर जैरीन के लिए खोला गया ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह।

0: Ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है तो आप कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए और फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। To get the right car, you've got to drive Reichert. Drive Reichert, drive. Choose from thousands of vehicles. Ford, Chevy, Buick, GMC, Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Genesis, and Central Ohio's largest selection of certified pre-owned. Plus, only Reichert gives you our 72-hour exchange policy.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
3: उत्तराखंड के पवित्र चारधाम यात्रा जारी, केदारनाथ धाम में अब तक सबसे ज्यादा 9,27,363 भक्तों ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब में अब तक 19,558 श्रद्धालु पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी, दिल्ली उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट, हवा चलने से तापमान में 4 डिग्री तक आएगी गिरावट। केरल के कई जिलों में बारिश, तिरुवनंतपुरम में जमकर बरसे, बदरा भीषण गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या में गर्मी को देखते हुए मंदिरों में विशेष व्यवस्था, भगवान के लिए लगाए जा रहे हैं एसी कूलर, खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का भोग। दिल्ली चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव करने के लिए विशेष व्यवस्था, बाड़ों में भरे गए हैं पर्याप्त पानी, जरूरी जगहों पर कूलर। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का पवित्र त्यौहार, नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी।
1: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: फेवरेट शो सास बहू और बेटिया में। उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी। गर्मी तो अपने फुल ऑन पीक पर है और धूप भी इतनी तेज है कि एसी और नींबू पानी बन गए हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं 25 मई से 2 जून तक 9 तपा है, यानी भीषण गर्मी के ये 9 दिन। तो कैसे निपटें इस गर्मी से? अब गर्मी में स्टाइल भी जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तो आज अपने शो सास बहू और बेटिया में हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट, और उसके साथ साथ शेयर करेंगे आप सबके साथ समर टिप्स। क्या खाएं, क्या अवॉइड करें, किस तरह रखें गर्मी में अपने आप को फ्रेश और कूल। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारे ये समर स्पेशल एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
1: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां में आज देखिए, ईशा लेगी रौद्र रूप, करेगी झूठ का संहार। जब धात्री पर होगा अत्याचार, शिव बनेगा ढाल। क्या नशे में राधिका करेगी वीर से अपने प्यार का इजहार। तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है, तुम्हारे थे तुम्हारे। राध्या और प्रथम के रोमांस में घुलेंगी नफरतें। ध्रुव की एंट्री से बढ़ेगी रिश्तों में जंग। अवंतिका और विश्वास के बीच होगी तश्नेबाजी। सासुमा के लिए रूहानी करेगी पुष्पी की जासूसी।
0: डॉक्टर आरंभी भी यही एडवाइस कर रहे हैं समर के इस मौसम में कि डिहाइड्रेशन से बचे, ओआरएस और फ्लूइड्स, जी हाँ ये लेना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपके पास रेगुलर ओआरएस नहीं है तो पानी में आपको डालना है थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक, हो गया आपका ओआरएस तैयार। प्लीज़ रखिए अपने आपको ठंडा ठंडा कूल कूल। लेकिन फिलहाल इनकी कहानी में कुछ भी नहीं है कूल, क्योंकि फिर से आया है हाई वोल्टेज ड्रामा। लेट्स चेक इट आउट।
1: हुई अवंतिका और विश्वास में लड़ाई।
2: मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मैं तुम्हारी को जागीर, तुम्हारी गुलाम, तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ मैं।
3: अरे यार मैंने तो पहले ही कहा था, अरे दीवानो मुझे पहचानो, वरना बाद में मुझे सॉरी बोलना, पर आपने मेरी बात सुनी नहीं।
1: ध्रुव और विश्वास में हुआ टेंशन।
4: वैसे तो विश्वास सामने वाले इंसान को देख परख कर ही बात करता है, पर शायद इस बार जजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसीलिए आपसे सॉरी कह रहे हैं।
5: मैं ये कह रहा था कि
3: सुन लिया, कह दिया, बोल दिया, हो गया।
2: तुम्हारी तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है, इसके बाद हम तुम्हें इस हॉस्पिटल में तुम्हारी मेडिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए।
1: अवंतिका ने दिया आरंभी को अल्टीमेटम। कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में रिश्तों का तापमान हाई हो चुका है। अवंतिका जो मौका ढूंढ रही थी, आज उसे वो मौका मिल गया है डॉक्टर आरंभी को अस्पताल से रफा दफा करने का। तभी तो आज उसने डॉक्टर आरंभी को अपने कैबिन में बुलाया, उसे न सिर्फ खरी खोटी सुनाई बल्कि उसे फायर लेटर भी थमा दिया और तो और पहुँच गयी दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालने के लिए। लेकिन आरंभी भी यहाँ चुप नहीं रही।
2: हॉस्पिटल के ओनर का है, अपनी दलीलें और सफाई अपने डियर हस्बैंड डॉक्टर विश्वास टंडन के सामने पेश करो ना।
1: अब आरंभ भी तो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई और अवंतिका वो भी खुश हो रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जल्द ही उसे जोरदार झटका लगने वाला है क्योंकि ध्रुव जो आ गया है और ध्रुव ने तो अस्पताल में पुलिस भी बुला ली ताकि वो उन किडनैपर्स के बारे में पता लगा सके, क्योंकि उन किडनैपर्स ने न सिर्फ आरंभी के बच्चे को किडनैप किया बल्कि आरंभी को उसकी दादी कुनिका को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कहा। ऐसे में जांच पड़ताल तो बनती है। इसी बीच वहां पर आ जाते हैं आरंभी के मम्मी पापा भी। बस फिर क्या, उन्हें देखकर डिंपल सारा इल्जाम उन्हीं के ऊपर मढ़ने लगती है। आरंभी ने आकर अपनी सासू माँ की बोलती बंद कर दी और तो और पुलिस को गवाही भी देनी शुरू कर दी कैसे किडनैपर्स ने आरंभी पर दबाव डाला। इतना ही नहीं, ध्रुव ने तो सभी के सामने ये भी बता दिया कि आरंभी के पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग है और ये सारी बातें दूर खड़े दरवाजे के पीछे अवंतिका और विश्वास दोनों सुन रहे हैं। लेकिन डिंपल वो तो अब भी आरंभी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में आज ध्रुव आरंभी का साथ दे रहे हैं और उसके सपोर्ट में खड़े हैं।
3: पुलिस को नहीं बुलाया, पुलिस को मैंने बुलाया। एनीवे आंटी बताइए ना, क्या करती हैं आप, जाती हैं या इनके मिस्टर हस्बैंड वो जाते हैं अपनी बीवी और बेटे को बचाने? आई डोंट थिंक सो, वो तो यहाँ पे है भी नहीं। फनी गाय राइट, और ये कोई टाइम है यार छुपन छुपाई खेलने का, ऐसे माहौल में बाद में खेले। बट इंस्पेक्टर साहब, जस्ट सो ऑल ऑफ यू नो, इनका रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, कोई खाने की चीज नहीं थी, बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म था वो। मुझसे पूछिए, मुझे पता है।
6: ध्रुव आया है उसका पता नहीं, लेकिन अर्जित आया है उस, मतलब मैं तो सातवें आसमान पे हूँ। मेरा बहुत ही अजीज, बहुत ही क्लोज, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड है। हमने बहुत वक्त गुजारा है केप टाउन में और खतरों में, और हमारी बहुत दोस्ती पहले से तो थी ही, लेकिन आफ्टर खतरों और गहरी हो गई थी। तो अभी मैं तो बहुत खुश हूँ कि अर्जित इज़ बैक ऑन द शो, ऑन बोर्ड। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ ध्रुव और आरंभी के ट्रैक को लेकर भी, और कैसे ध्रुव हमारे ज़िंदगी में डायनामिक्स जो है वो चेंज करेंगे आरंभी सीरियल में, तो वो भी देखने के लिए काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं बड़ी खुश हूँ।
1: अब ध्रुव ने आरंभी और उसके बच्चे की जान बचाई है तो इतना कॉम्प्लीमेंट तो बनता है। इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर विश्वास भी आ जाते हैं। ऐसे में वो आरंभी की गवाही भी सुन लेते हैं कि कैसे किडनैपर्स ने उनके बेटे विहान पर हाथ भी उठाया। ये सुनकर विश्वास हैरान है। खैर वो वहाँ पर किसी से बिना कुछ कहे चले तो जाते हैं, लेकिन अपने कैबिन में जाकर वो बेहद गुस्से में है, वो भी अवंतिका पर, क्योंकि वो किडनैपर्स अवंतिका के जो थे।
7: तुम्हें पता है ना कौन है वो? हाँ, वारिस है वो मेरे खानदान का। इसे सुनो, कैसे कर सकते हो तुम्हारे बेटे के साथ?
2: हाँ, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस पर हाथ उठा सकते हो? इतनी बार कहूँ कि मैं तुम्हारी बीवी आरंभी नहीं हूँ, जिसे तुम कैसे मान के रखोगे और जब चाहे जैसे चाहे हाँकोगे? मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हूं, मैं तुम्हारी कोई जागीर, तुम्हारी गुलाम, तुम्हारी मोहताज नहीं हूं मैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारा हक है तो मैं तुम्हें बता दूं, अभी तक तुम मेरे पति बने नहीं हो। तुम ना तो अभी मुझ पर हाथ उठा सकते हो, ना मेरे पति बनने के बाद। ये हमेशा याद रखना तुम।
6: अगर विश्वास नहीं समझ पाएगा तो क्या अभी ध्रुव समझेगा अवंतिका की बात? भाई विश्वास को ही समझना है, वही समझेगा। सो जब दो शैतान मिलते हैं तो यू नो वी ऑलवेज फाइंड अ सिमिलर काइंड ऑफ डीमन इन ईच अदर, एंड ऑल्सो दे से दैट अ नोन डेविल इज बेटर देन अननोन गॉड। सो अवंतिका के लिए विश्वास एक नोन डेविल है, तो वो बेटर है देन हर टू ट्रस्ट एनीवन इन द शो।
1: खैर अवंतिका ने ना सिर्फ विश्वास पर पलटवार किया बल्कि उसे धमकी भी दे दी। इतना ही नहीं, अवंतिका तो विश्वास से प्यार करती है, इसीलिए अब दोनों अपने जुनूनी प्यार के साथ इस किस्से को भी सुलटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हें एक और झटका लगा है, क्योंकि ध्रुव कोई और नहीं बल्कि इसी अस्पताल का ट्रस्टी है। ऐसे में ट्रस्टी का दिल दुखाना ठीक बात नहीं, इसीलिए तो देखिए कैसे विश्वास के घर वाले न सिर्फ ध्रुव बल्कि उसकी दादी कुनिका से भी माफी मांग रहे हैं जो कुछ भी हुआ है। इसी बीच वहाँ पर विश्वास भी पहुँच जाता है। बस फिर क्या, जैसे ही विश्वास वहाँ आया, विश्वास और ध्रुव के बीच टशनेबाजी शुरू हो गई।
3: कभी कभी गलत करने के चक्कर में ना इंसान,
4: वैसे तो विश्वास सामने वाले इंसान को देख परख कर ही बात करता है, पर शायद इस बार जजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसीलिए आपसे सॉरी कह रहा
5: हूं। मैं ये कह रहा था,
3: कह दिया, बोल दिया, सुन लिया, सब हो गया ना, आगे बढ़े।
5: या विश्वास आपको हॉस्पिटल का डायरेक्ट बुक करा देगा, फिर आप अपने थॉट्स, चेंजेस जो भी आपके मन में, आप विश्वास को बता दीजिए।
3: नो जी, अभी सबसे पहले मैं हॉस्पिटल के हर इंसान से पर्सनली मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता
5: हूँ।
3: क्या थोड़ा वो मुझे जाने, थोड़ा मैं उनको जानूँ, तो क्या है ना, जगह लोगों से बनती है, जगह से लोग ही बनते हैं।
1: अब ध्रुव की इस अस्पताल में ट्रस्टी के रूप में एंट्री हुई है तो जाहिर सी बात है आरंभी को अस्पताल से बाहर निकालना नामुमकिन होगा, क्योंकि ध्रुव आरंभी का साथ जो देगा, इसी बात को लेकर डॉक्टर विश्वास बेहद परेशान भी हैं। ऐसे में विश्वास की माँ डिंपल आती है विश्वास को समझाने कि कैसे उसे धीरज धरना होगा। इतना ही नहीं, वो तो उसे अपनी परेशानी भी बताती है, क्योंकि राज घर पर जो नहीं आ रहा। बस फिर क्या, अपनी माँ के साथ जैसे तैसे राज को मनाकर विश्वास राज को घर वापस ले तो आते हैं, लेकिन राज उसे लगा है जोरदार झटका। उसका चेहरा उतरा हुआ है, वो बेहद मायूस है और उसकी ये शक्ल देखकर आरंभी भी परेशान है और वजह जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन डॉक्टर विश्वास आरंभी को ही दोषी मान रहे हैं।
7: बाहर मिला मुझे अकेला रोता हुआ, अगर आज को कुछ हो जाता तो, कोई गलत ख्याल आ जाता उसके मन में तो, हम तो बर्बाद हो जाते ना आनंदी।
6: डिम्पल, आप कुछ भी कह लें, वो सख्त है, नेगेटिव है, जो भी है, लेकिन अपने बेटों के लिए उसकी, यू नो, उसकी लाइफ उसके बेटे हैं, और इस वजह से विश्वास और राज जो ये दो लोग हैं, उसको पूरा यकीन है कि मेरे बेटे मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। तो अब भी वो ये उम्मीद रखती है कि राज घर से भाग गया ज़रूर है, लेकिन उसको मना के ले ही आएगी और राज वही करेगा जो डिम्पल चाहेगी।
1: अब आरंभी तो चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए तो राज से वो सच जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज बिना बताए ही वहाँ से चला जाता है। ऐसे में विश्वास आरंभी को बताता है कि मनमीत पहले से ही शादीशुदा है और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि अवंतिका ने बताई है। ये सुनकर खुद आरंभी बेहद परेशान है। अब देखना होगा कैसे आरंभी इन सारे रिश्तों को सुलझाएगी और अपना कर्तव्य निभाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: सीजनल फ्रूट्स और हाइड्रेशन का इम्पोर्टेंस, आज यही मैसेज लेकर आई हैं हमारे लिए हमारी राध्या। वैसे राध्या, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी कहानी में भी हो सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल, तो क्या कुछ हो रहा है राध्या और प्रथम की इस कहानी में आज? क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई इमोशनल ट्विस्ट या फिर चल रहा है कोई हाई वोल्टेज ड्रामा? चलिए पता कर कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर।
8: तुम्हारे थे,
1: और राध्या के बीच कभी प्यार,

तो कभी तकरार। दादी की चालों से हुआ रजनी का बुरा हाल। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राधिया चाहती तो है कि वो प्रथम को सारा सच बता दे, और वो कोशिश भी करती है बताने की कि तभी दोनों को खिड़की से देख लेती है दादी। इससे पहले कि राधिया कुछ कह पाती, दादी प्रथम का नाम पुकार देती है, जिसके चलते राधिया हिचकिचा जाती है।

0: और देखिए कैसे प्रथम को झटक कर वो अपना तकिया लेकर नाराजगी जताते हुए वहाँ से निकलने लगती है कि तभी सामने आती है दादी, और तो और वो उन्हें भी टशन दिखाकर चली जाती है। बस फिर क्या, दादी इस मौके का फायदा उठाती है और प्रथम के कान भरने की कोशिश करती है।
1: प्रथम बेटा क्या हुआ? अरे राधे अपनी बदतमीजी से कैसे चली गई? देखो इस लड़की के तो दिन पर दिन अलग ही रंग बदलते जा रहे। एक तो आज उसने पूरा एम का जन्मदिन खराब कर दिया और ऊपर से अकड़ दिखा रही है। देखो जरा।
0: भाई दादी तो प्रथम के सामने भोली बनने का नाटक कर रही है। असल में ये सारा खेल तो उन्हीं का है। वही चाहती है कि राध्या अपने आप को प्रथम की नजरों में गिराए, लेकिन प्रथम वो तो राध्या से प्यार करने लगा है। तभी तो देखिए कैसे राध्या के बिना बेचैन हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो अपनी नजरों के सामने राध्या को ही पाता है।
2: ये

ये तो प्रथम का सपना है क्योंकि हर पल वो राध्या को अपनी नजरों के सामने ही पाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि राध्या को मनाना जरूरी है। ऐसे में देखिए कैसे राध्या जो रसोई में काम कर रही है और परेशान हो रही है कि तभी वहाँ प्रथम पहुँच जाते हैं, दोनों के बीच नजदीकियाँ बढ़ती है।

0: इससे पहले कि राध्या हार मान जाए राध्या झटक देती है।
1: मैंने हमारे लिए ना मूवी टिकट बुक की। जो कुछ भी हुआ उसके लिए ना दिल से सॉरी।
0: अब प्रथम की बातों ने राध्या का फिर से दिल जीत लिया। ऐसे में राध्या सपने सजोने लगी, लेकिन तभी उसे देख लिया है दादी ने और देखिए कैसे वो पहुंच गई है राध्या के सपने तोड़ने के लिए।
2: लेकिन
3: इस तरह से प्रथम के साथ घूम फिर के उसके साथ पिक्चर जा करके खुद को दूर करोगी?
0: बेचारी राध्या ना चाहते हुए भी उसे दादी का हर कहा मानना पड़ रहा है और वो मायूस हो जाती है। उनकी सारी बातें छिपकर रजनी सुन रही है, जिसे बुरा लग रहा है क्योंकि आखिरकार वो अपनी बहू को अपनी बेटी ही तो मानती है। ऐसे में राध्या वहाँ से जाती है कि तभी रजनी आकर दादी से विनती करती है कि राध्या को प्रथम के साथ जाने दे, लेकिन दादी उस मौके का भी फायदा उठाती है और देखिए कैसे रजनी पर ना सिर्फ गुस्सा जताती है बल्कि वो तो फूलों का हार भी उठाकर उसके बेटे अहम के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है।
3: लेकिन अगर तो एक काम करो, जाते जाते ये हार अपने बेटे की तस्वीर पर चढ़ा दे। क्या हुआ, कलेजा काम गया ना? ठीक है, हम ही यहाँ चढ़ाते।
2: बाजी अब क्या कर रही है?
0: केवल राध्या ही नहीं बल्कि रजनी भी दादी के षड्यंत्रों का शिकार हो रही है। ना चाहते हुए भी उसे दादी का हर कहा मानना पड़ रहा है। खैर दादी तो अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रजनी वो बिचारी इमोशनल है क्योंकि रिश्तों में बंधी हुई है। अब देखना होगा कि कैसे उनकी ये उलझने सुलझेंगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: यहाँ तो है भीषण गर्मी, लेकिन वहां है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। मैं तो बात कर रही हूँ अनु और आर्यवर्धन की इस कहानी की। अब देखिए बंधने वाले हैं ये शादी के बंधन में, क्योंकि शादी की सभी सेरेमनीज तो हो गई हैं शुरू और कहानी में अब भी है हमारे लिए भरपूर ड्रामा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है कहानी में जो लेकर आ रहा है हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। लेकर चलते हैं आप सबको तुमसे तुम तक के सेट पर।

0: आर्यवर्धन छू रहा है देखिए बड़ों के पांव, क्योंकि हो गई है अनु और आर्यवर्धन की शादी। भाई इस मौके पर सीरियल में पहुंचे असली मेहमान। जी हाँ, बैंगलोर से ये दंपति आए हैं अनु और आर्यवर्धन को आशीर्वाद देने, और देखिए आर्यवर्धन कैसे इनके पैर छोड़ा है और कैसे इनसे आशीर्वाद ले रहा है। वैसे फेरे संपन्न हो गए हैं अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के हो गए, यानी सीरियल तुम से तुम तक में शुरू हो रहा है एक नया अध्याय। वैसे रियल लाइफ फैंस अगर पर्दे की रियल शादी में पहुंचे तो क्या हो, जानते हैं आर्यवर्धन यानी शरद केलकर से।
1: मैं ही कुछ जी के साथ पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ, पहली बार हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज शादी वाले दिन सुबी कुमार उत्तर एनिवर्सरी है। 37 सिर्फ 37 आगे चलते रहना ही चाहिए, सुनते रहना बस, अब जो मैं फॉलो करने वाला हूँ भी आप सुनते रहे। कैसे हैंडल करना होता है,
2: ना नहीं करना, मिसेस के साथ ना नहीं भरना, हर चीज के लिए हाँ भरना।
1: क्या होगा ना, कई जितने लोग देखते हैं बहुत जगह देख रहे हैं, कुछ लोग अपनी फीलिंग्स अपने ख्याल कभी कभी शेयर करते हैं, कमेंट्स में शेयर करते हैं, फिजिकली सामने आके दिल की बात सामने रखना और हमें पता चलना कि क्या सोचते हैं शो के बारे में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उनकी क्या फीलिंग्स हैं हमारे लिए आने वाले के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जो इस बार हमने किया है पहला, आई थिंक वी गॉट लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड आइडियाज़ कि लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए। तो एक तो वो कहते हैं ना, हम जो लिखी चीज़ होती है ना पढ़ते हैं, क्या उसमें फीलिंग उसकी नहीं होती, उतनी सारी इंद्रियों से आप जब सुनते हैं देखते हैं महसूस करते हैं उनके फेस एक्सप्रेशन, कितने खुश हैं या क्या है उनके, तो एक अलग अलग अनुभव शामिल करना कितना तो बनता है। बस वेलकम दैम, आइए आप वर्धन और शर्मा परिवार के साथ, आप शादी का हिस्सा बनी है। और मैं आई थिंक वैसे तो सब जान ही गए आप लोगों को, बट जब वो एपिसोड देखेंगे और आपको देखेंगे तो आई थिंक मुझे उसका मेल चाहिए कि क्या रिस्पॉन्स है आपके रिलेटिव्स का, उन्हें कैसा फील हुआ।
3: आपको भी कंग्रेचुलेशन,
1: थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
0: वैसे आज अनु भी बहुत खुश है दुल्हन के काश श्रृंगार में, वो अपने रियल लाइफ फैंस को देखकर खुश होती है और की कहानी को वो अपने एपिसोड में भी दिखाने वाली है।
4: इतनी दूर से आए हैं हमारे, हमें ब्लेसिंग देने के लिए, हमारे शो को ब्लेस करने के लिए, एक परफेक्ट और आज मैंने एक सीन में भी इंक्लूड करने वाली
0: तो ये थे कुछ खास पल सीरियल तुमसे तुम तक के, जहाँ पर रियल लाइफ फैंस पहुँचे इस सीरियल की शादी का हिस्सा बनने, और ये लम्हा हो गया बहुत ही स्पेशल जो आपने देखा सास बहू और बेटियां में। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: रूही तो हमसे कह रही हैं कि उनके लिए समर का बेस्ट पार्ट है आफ्टरनून नैप्स, उन्हें तो बड़ी अच्छी लगती है ये आफ्टरनून सिएस्टा जो उन्हें रिफ्रेश भी कर देते हैं और गर्मी के इस मौसम से बचा भी देते हैं। एक्चुअली आप बात तो सही कह रही हैं, ये जो नींद आती है ना गर्मियों के इस मौसम में खाना खाने के बाद, उसका तो अपना ही मजा है। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको नाहर और रूही के पास उनके शो मन सुंदर के सेट पर, और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
6: रूही और नाहर बने दूल्हा दुल्हन, सज गया शादी का मंडप, बत्ती गुल का आया ट्विस्ट, घर से गायब रूही और नाहर,
7: रूही और नाहर
6: दंगल टीवी की सीरियल मन अति सुंदर में नकली नाहर यानी कि युवराज ने नाहर और रूही की शादी की सालगिरह के मौके पर रूही के साथ शादी करने का फैसला किया है। ऐसे में घर में साज सजावट हो गई है, शादी का मंडप भी सज गया है, सभी लोग बहुत खुश हैं। किसी को तो ये पता ही नहीं कि ये नकली नाहर है। ऐसे में रूही भी दुल्हन की तरह साज श्रृंगार कर शादी के मंडप की ओर आ रही है।

0: तो वहाँ नकली नाहर मोबाइल पर अपने षड्यंत्र रच रहा है कि तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, हो जाती है घर की बत्ती गुल, जिसके चलते नकली नाहर और घरवाले हो जाते हैं परेशान और रूही भी वहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है। यहाँ घरवाले अंधेरे से परेशान हैं, तो वहाँ सर्किट ठीक कर नकली नाहर कमरे के अंदर दौड़ा हुआ आता है क्योंकि उसे डाउट हो जाता है और आते के साथ ही सभी से सवाल जवाब करता है। और तब युवराज को डाउट होता है कि कहीं वो बहरूपिया घर के अंदर आया तो नहीं है। भाई शादी में तो ट्विस्ट आना लाजमी है। यहाँ नाहर भी चला तो गया है और सभी इंतजार कर रहे हैं नाहर और रूही के आने का, लेकिन दोनों इस मंडप से नदारद हैं। ऐसे में जूही जाती है दोनों को लाने के लिए, लेकिन जब आती है तो साथ में लाती है ट्विस्ट। घर से रूही और नाहर के लापता होने पर घर वाले बेहद परेशान हैं। नाहर के पापा तो और भी हैरान हैं क्योंकि शादी तो उन्हीं दोनों की है। ऐसे में अब पूरा परिवार ये पता लगाएगा कि आखिर दोनों है कहाँ। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आज तो हम शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ कुछ समर टिप्स, स्पेशली इस समर को लेकर। वैसे कि आप जानते हैं 25 मई से 2 जून तक है 9 तपा, जी हाँ, यानी भीषण गर्मी के ये 9 दिन। और ऐसा कहा जाता है कि ये 9 दिन हमारे नेचर के लिए काफी जरूरी भी हैं, क्योंकि ये भीषण गर्मी लेकर आती है हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस और कहीं ना कहीं हमें ये इन्फेक्शन से भी बचाती है। जी हाँ, कभी सुना है आपने 9 तपा के बारे में? अगर नहीं तो प्लीज उस पर पढ़िए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिलहाल हम दे रहे हैं आपको समर रिस्पाइट दिखाकर आपको ये रियलिटी शो, जहां पर है आपके लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ। जी हां, लेकर चलते हैं आप सबको तुम हो ना के सेट पर।

0: घर की लाइफ लाइन हो, हीरो मेकर, बजट मैनेजमेंट एडजस्टमेंट सब में चैंपियन, तो सिर्फ घर वाले ही क्यों बोले, तुम हो ना
1: अब छू ले तू
0: पूरे देश को बोलने दो। राजीव, घर के सुपरस्टार्स को मंच देने के लिए थैंक यू।
2: परिवार चलाने का हुनर इनाम और नाम दिलाएगा, घर की लाइफलाइन के लिए अब पूरा देश ताली बजाएगा। देखते रहिए तुम होना।
3: जोरदार तालियां अपनी सुपरस्टार मम्मी के साथ में आई रश्मि देसाई के लिए।
4: माँ का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, माँ तो चाहे फिर मेरी हो या इनकी माँ, एक बार
5: माँ हो
4: तो आई थिंक एक स्त्री का एक सबसे सुंदर रूप जो है वो माँ का होता है, और जिसके पास माँ होती है वो धनवान होता है। बिना टीचर, मेरी मम्मी हमेशा बोलती है मुझे और मेरे बड़े भाई को, मैंने सबके बच्चों को पढ़ाया, बस मेरे ही बच्चे अनपढ़ रह गए।
6: क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है?
4: नहीं, अनुभव से बहुत पढ़ी है, और आज एक्चुअली जो भी है रश्मि देसाई जो भी है वो बिकॉज ऑफ हर। अच्छा मम्मी, हम लोग मांग में जब सचते सवरते हैं तो मांग में क्या डालते हैं? मम्मी बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो बैग के अंदर क्या होता है? शिपिंग। शक्कर शक्कर शक्कर। मम्मी तुम चुप रहो।

तो क्या कह रही है मन्नत की ये कहानी? वैसे मन्नत आप क्या कर रही हैं समर हीट को बीट करने के लिए? मन्नत तो कह रही हैं कि वो तो ट्राई करती हैं कि जब भी वो बाहर जाएं तो पहनती हैं कॉटन या फिर सॉफ्ट मलमल्स, जिससे उनकी बॉडी अच्छे से ब्रीथ कर पाती है, स्वेटिंग भी कंट्रोल में हो जाती है, और वो हमेशा कैरी करती हैं अपने साथ 1 बॉटल ऑफ वाटर। वैसे मन्नत हम तो चाहते हैं कि आपकी कहानी में भी हो जाए सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल, लेकिन क्या करें, आपकी कहानी का लेखक तो रोजाना लेकर आता है इसमें नए नए ट्विस्ट, लेकिन तभी आता है हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। लेकर चलते हैं आप सबको मन्नत के सेट पर।

0: हुआ मन्नत का प्यारा परिवार।
1: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का।
0: कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत को लगा था कि दुआ नहीं मानेगी, इसीलिए उसने पैकिंग करनी शुरू कर दी कि अचानक उसे आ गया एक मैसेज। ऐसे में वो घबराती हुई पहुंच गई है नीचे, जहां पर विक्रांत भी घबराया हुआ है। दोनों के बीच टक्कर होती है, दोनों परेशान हैं, एक दूसरे का हालचाल जान रहे हैं। लेकिन तभी दोनों एक दूसरे को अपना मोबाइल दिखाते हैं, जहां पर दोनों ने एक दूसरे को मैसेज भेजा है अर्जेंटली नीचे आने के लिए। ये देखकर दोनों परेशान हैं, हैरान हैं, और तभी उन्हें लगता है कि कहीं दुआ पे कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। ऐसे में वो दुआ के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें दुआ की आवाज सुनाई देती है। यहाँ दुआ ने अपने दिल की बात बतानी शुरू कर दी और फिर घर में रोशनी आ गई और सामने दुआ खड़ी है, जिसने अपने हाथों में पकड़ी हुई है चार्ट पेपर से बनाई हुई अंगूठी, और वो अंगूठी विक्रांत को दे रही है और उसे अपना पापा बनने के लिए प्रपोज कर रही है। ये देखकर विक्रांत बेहद ही इमोशनल हो रहा है, आखिरकार वो कामयाब जो हो गया है दुआ का दिल जीतने में।
2: बोलो ना, आप करोगे मेरी मम्मा से शादी? और अब बनोगे मेरे पापा?
3: बहुत खुशी हो रही, क्योंकि मैं और रोनी जी तो अचानक से आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो वो बोल रही है विक्रांत से कि शादी करोगे आप मेरी मम्मा से, और एक बोर्ड लगा हुआ होता है विल यू बी माय पापा। सो वो इतना क्यूट मोमेंट होता है, मैं रोने लगती हूँ क्योंकि मैं तो इसी के लिए तरस रही थी इतने दिनों से। सो इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट, हम सब लोग बहुत खुश हैं। और वहीं कोने पर धैर्य खड़ा हुआ है और वो बोलता है कि आप मुझे नहीं शामिल करोगे अपनी खुशियों में, और वो भी आता है और कहीं ना कहीं मुझे खटकता है वो चीज़, लेकिन खटकती है वो चीज़, लेकिन वो आता है, एक एन्जॉयमेंट है और उसका एक वीओ है कि किस तरह से आप लोग खुश हो सकते हो, मैं हूँ अभी खुशियों को नजर लगाने के लिए।
0: भाई विक्रांत तो बहुत खुश है ही, लेकिन दुआ और बाकी घर वाले भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार एकजुट हो गया है, सभी खुशियां मना रहे हैं। विक्रांत तो धैर्य को गले भी लगा रहा है, पर उसे क्या पता कि धैर्य के मन में कुछ और ही चल रहा है। खैर, इस बात से अनजान सभी इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नीतू सब जानती है।
3: बिल्कुल धूमधाम से होने वाली, क्योंकि दुआ मान गई है, और जब पोती मान गई है तो खुशी का माहौल है। सबसे ज़्यादा खुश तो विक्रांत है, और उसे खुश देखकर मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। एक बड़े दिनों बाद ऐसे एक फैमिली गेट टुगेदर, क्योंकि हमने ऐसा डांस और सॉन्ग शूट किया था ड्रीम सीक्वेंस में, जब हम इंदौर में होते हैं और मुझे लगता है कि मेरा बेटा आ गया है वहाँ पर, तो वो ड्रीम सीक्वेंस में पूरी फैमिली ऐसा गाना गा रही है, और आज रियल में हम वो गाना गा रहे थे।
0: भाई बात तो खुशी की है ही, लेकिन यूवी उसका चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उससे विक्रांत छिन जाएंगे। ऐसे में मल्ला उसे मनाती है, लेकिन तभी वहाँ विक्रांत आता है जो यूवी को दिलासा देता है, और तो और उससे वादा करता है कि वो हमेशा यूवी का साथ देगा और उतना ही प्यार करेगा जितना पहले किया करता था। खैर, विक्रांत की बात को तो यूवी मान गया है, लेकिन धैर्य, वो जल्द ही ऐसे षड्यंत्र रचेगा जिससे मन्नत विक्रांत से दूर हो जाएगी। देखना होगा क्या विक्रांत उसकी चाल को समझ पाएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: आज तो शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ समर केयर टिप्स। अब देखिए गर्मी इतनी बढ़ गई है, वैसे आज तो ईशा भी हमें बता रही हैं कि चल रहा है नौतपा, यानी भीषण गर्मी के ये 9 दिन 25 में से 2 जून तक। और ये तो कह रही हैं कि राजस्थान में इसका अपना ही एक इम्पोर्टेंस है, और इसके पीछे एक साइंस भी है कि ये तो एक्चुअली हेल्प करता है हमें अपनी अपनी बॉडी के इन्फेक्शंस को बीट करने के लिए, और उसके साथ साथ राजस्थान में ये एक्चुअली क्रॉप्स को भी बचाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि भीषण गर्मी ये हमारे क्रॉप्स को कैसे सेव कर सकती है? आप भी पढ़ें नौतपा पर। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ हो रहा है ईशा और सूरज की इस कहानी में, लेकर चलते हैं आपको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।
5: नंदिनी नंदिता में दिनी विश्व विनोदिनी नंदनु
0: ईशा का रौद्र रूप। सिखाया आकाश और मीना को सबक।

0: ईशा ने बचाई ताई जी की जान। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां हाथों में त्रिशूल लेकर आंखों में गुस्सा ये है ईशा, जिन्होंने ले लिया है दुर्गा अवतार। भाई आज तो ईशा का गुस्सा सातवें आसमान पर है, तभी तो देखिए कैसे ये त्रिशूल लेकर आकाश पर कर रही है वार। असल में ईशा ने आकाश और मीना दोनों को ही बांध कर रखा है, ऐसे में उसके साथ है पूरन, और देखिए कैसे दोनों मिलकर जानना चाहते हैं कि आखिरकार ताई जी है कहाँ।
1: मुझे बांध के रोक नहीं पाओगे तुम, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, खोलो मुझे। ईशा बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम सबसे बचा लूंगा मैं, खोलो।
0: ऐसे में आकाश कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता, तभी ईशा का गुस्सा फूटता है और वो माता के मंदिर से त्रिशूल उठाती है और आकाश पर वार करती है, और डर के मारे आकाश बता ही देता है कि आखिरकार ताई जी कहाँ है।

0: तो वो एक माता रानी आ जाती है और फिर मैं आकाश पे अटैक करने वाली होती हूँ कि अब बता दो टू मच हो गया शुरू से जितना आकाश परेशान करते आ रहा है उस सब के लिए।
1: जिसके बाद ईशा पूरन आकाश और मीना पहुंचते हैं उस जगह जहां पर ताई जी और ताऊ जी दोनों ही मौजूद हैं और यहां आकर ईशा के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि ताई जी और ताऊ जी दोनों ही जहर पीने वाले होते हैं। ऐसे में ईशा ताई जी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही है लेकिन ताई जी को अपने पति पर पूरा विश्वास है, वो किसी की बात मानने को ही तैयार नहीं। ऐसे में देखिए कैसे ईशा सबूत देने के लिए खुद वो जहर पी लेती है, तब असलियत का सामना होता है। असल में जो जहर ताऊजी पीने वाले थे वो होता है शरबत और ये खुद ईशा पीकर दिखाती है।

0: नहीं ना, क्योंकि ताऊ जी जो जहर पीने वाले थे वो जहर नहीं जूस था गाइमा।
1: जो जहर ताई जी पीने वाली होती है वो सच में जहर होता है।

0: भाई ताऊ जी न सिर्फ मीना और आकाश के साथ मिलकर ताई जी को मारना चाहते थे, बल्कि उन्होंने तो ताई जी के सारे गहने भी हथिया लिए थे और इसका खुलासा भी ईशा ताई जी के सामने कर देती है। ये सारा सच जानने के बाद ताई जी की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो उतर जाती है और देखिए कैसे वो अपने पति पर थप्पड़ बरसा रही है और उन पर गुस्सा निकाल रही है। गुस्सा करते करते ताई जी भी हो गई हैं बेहोश, क्योंकि उन्हें जोर का झटका जो लगा है।
1: अपने परिवार से लड़ी क्या कहूंगी सबसे जाकर, किस घटिया आदमी ने पत्नी होने का सपना दिखाया, मुझे धोखे से मारने की कोशिश की। मैं किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगी शर्मिंदगी की वजह से। नहीं नहीं नहीं मम्मी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना, मैं सबको मना लूंगा, आप बस मेरे साथ घर चलो।
2: ताऊ जी अपने काला जादू वो सारी चीजों में फंसाकर, कुंडली और ज्योतिष वाली चीजों में फंसाकर, ब्लैक मैजिक जैसे ही कह सकते हैं, और ताई माँ को ले जाते हैं एक जगह, उनसे पूजा वूजा करवाते हैं कि इस जन्म में हमें कोई साथ नहीं रहने देगा, तो अब हम दोनों को ऊपर चले जाना चाहिए साथ में। तो दोनों पॉइजन पीने वाले होते हैं, ईशा बहुत रोकने की कोशिश करती है, वो नहीं रुकती है, और फिर मुझसे आकाश वीडियो बनवाता है कि आकाश सूरज ने मुझे हरेस किया है, और ये पूरा वीडियो लाइव हो जाता है कि सूरज ने उनकी सेक्रेटरी को ऑफिस में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हरेसमेंट की है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ सूरज पे लग गई, चरित्र पर लगा दाग एक लग गया है, तो वो बहुत सारा मेस्ड अप हो चुका है, और इसलिए ईशा बस ताइमा को बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है, क्योंकि ताइमा वरना सच में उनकी बातों में आ जाती है और ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो इसीलिए ईशा ये सब कर रही है और आकाश को कहती है कि अगर आकाश मैंने तुम्हारी बात मानी है, वीडियो बनाया, तो तुम भी मेरी बात मानो और अब ताई माँ को बचाओ।
0: तो भाई ताई माँ को ईशा ने बचा तो लिया है, लेकिन सूरज फंस चुका है। अब देखना होगा इस मुश्किल से ईशा सूरज को किस तरह से बाहर निकालती है, क्योंकि वो तो इन सब बातों से अब तक अनजान है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, वैसे हेल्थ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि गर्मी के इस मौसम में वाटरमेलन, क्यूकम्बर और कर्ड यानी कि दही रखते हैं हमारी बॉडी को ठंडा ठंडा कूल कूल। ये तीनों तो हैं मेरे ऑल टाइम फेवरेट। वैसे चलिए अब गर्मी से हटाते हैं फोकस और इस फोकस को शिफ्ट करते हैं हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर, जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, सो लेट्स चेक इट आउट।
0: काली ड्रेस में चला ईशा का जादू,
4: पोस्टर के जंगल में, ग्लैमर के दंगल में,
0: ईशा सिंह हुई ऑब्सेस,

0: फैंसों ने ईशा को दी नई फिल्म की बधाइयां। सीरियल इश्क का रंग सफेद की मासूमियत हो, एक था राजा एक थी रानी का रॉयल अंदाज हो, इश्क सुभान अल्लाह का पावरफुल कैरेक्टर हो या फिर नागिन सेवन का ग्लैमरस अवतार हो, ईशा सिंह ने अपने हर किरदार से अपने दर्शकों का दिल जीता है और घर घर में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन अब ये डर का सामना करने वाली है क्योंकि इनकी फिल्म ऑब्सेस आ रही है जिसमें वो खतरों का सामना करती हुई नजर आएंगी। देख लीजिए उनकी फिल्म का ये ट्रेलर।
1: Sorry to disturb you this late. Do you know if anyone came asking for help?
0: भाई फिल्म तो दहशत से भरी हुई है लेकिन अपनी फिल्म के आने पर ईशा सिंह बेहद खुश है और आज इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर देखिए कैसे ईशा सिंह ब्लैक कलर के फ्लेयर ड्रेस पहने अपनी खूबसूरती का जादू चला रही है और अपने मम्मी पापा का हाथ थामे

इस ग्लैमरस इवनिंग में ईशा के कई क्लोज फ्रेंड्स और इंडस्ट्री के सेलेब्स भी मौजूद रहे। हर तरफ एक्साइटमेंट नजर आई, ढेर सारी तस्वीरें खिंचाई गई और दिखे स्टाइलिश मोमेंट्स भी। वैसे बता दें कि ईशा को बधाइयां देने के लिए पहुंचे हैं उनके कई सारे क्लोज फ्रेंड्स जो उनके साथ कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं, जैसे कि सीरियल नागिन 7 से प्रियंका चहर चौधरी, कनिका मान और एलिस कौशिक आई हैं ईशा को ढेर सारी बधाइयां देने के लिए।

0: भाई सीरियल में भले ही कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन रियल लाइफ में ईशा सिंह का इनके साथ रिश्ता बहुत ही प्यारा है। इसी के साथ अर्जुन बिजलानी भी इनके साथ नजर आए हैं, जो ईशा सिंह को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। साथ ही ईशा सिंह को बधाइयां देने के लिए पहुंची हैं सीरियल इश्क सुभान अल्लाह से मोनिका खन्ना भी। भाई सीरियल में भले ही दोनों के बीच टेंशन था, लेकिन रियल में इनकी दोस्ती वाकई पक्की है, तभी तो दोस्त को बधाई देने के लिए मोनिका खन्ना आई है। इनके अलावा नजर आई हैं जिज्ञासा सिंह, मुस्कान बामने, इशिता गांगुली, साई देवधर, सारा और अरविंद खान, समर्थ जुरेल और चेतना पांडे, और भी कई सारे दोस्त पहुंचे हैं, जो आज ईशा सिंह को बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ईशा सिंह की ऑब्सेस फिल्म से सभी लोग ऑब्सेस हो जाएं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: जैसे समर वेदर अचानक हीट वेव बन जाता है ना, वैसे ही कहानियों में आए हुए ट्विस्ट्स अचानक टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। उफ उफ उफ। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपका ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ, क्योंकि जितनी सारी कहानियां हैं हमारे पास उतने ही सारे हैं उनमें आए हुए ट्विस्ट। आज तो ये ट्विस्ट ही बढ़ा रहे हैं इन कहानियों में गर्मी। लेट्स चेक इट आउट।
2: कैफे में जाएंगे, फिर बापूजी के घर जाएंगे, वहाँ मैं बा और बापूजी से मिलवाऊंगी।
0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज दिग्विजय बहुत खुश है, क्योंकि उसके कैफे में उसका दोस्त जो आया है, लेकिन तभी उसके दोस्त की नजर पड़ जाती है श्रुति और गौतम पर। बस फिर क्या, उसे याद आ जाता है और फिर वो दिग्विजय को बताता है कि उसने उन दोनों को रणविजय के साथ देखा था। बस फिर क्या, ये सुनकर दिग्विजय हैरान है।
3: अरे तू समझ नहीं रहा है, मैंने इन दोनों को सालगुंडा में देखा था रणविजय के साथ।
4: दोनों मेरे बेटे के
3: साथ, मैं 100% श्योर हूं यही दोनों थे और साथ में रणविजय था।
2: अरे बाप रे, आप लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं?
4: वो ऐसी किस बातों में लग गए थे।
2: बातें मुझे भी करनी है मेरे भाई से। चलिए चलिए अंदर आइए आइए।
3: चलो।
0: फिलहाल तो दिग्विजय ने अनुपमा को कुछ नहीं बताया, लेकिन दिग्विजय को डाउट है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए देखिए कैसे दिग्विजय गुस्से में आकर पहुंच गया है कोठारी हाउस में और मोटी बा गौतम के सामने भड़क रहा है और बता रहा है कि वो अनुपमा और उसके कैफे के खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रचे। लेकिन मोटी बा तो दिग्विजय पर ही नाराज हो रही है, लेकिन दिग्विजय भी शांत बैठने वाला नहीं।
5: ये शाह हाउस नाम की धर्मशाला नहीं है दिग्विजय जी, जो आप टहलते हुए अंदर घुसाएं। ये हमारा घर है, हमारा मंदिर है।
6: जहाँ इतने नीच इरादे रहते हो, वो मंदिर हो ही नहीं सकता।
5: दिग्विजय सूद, हम ये बदतमीजी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चले जाइए, जाइए यहाँ से।
4: सुराना, निकल जाओ, वरना उम्र का लिहाज नहीं करूंगा, धक्के मार के निकालूंगा यहाँ से।
7: हाथ लगाने की गलती मत करना, बहुत पछताओगे।
4: तुम ऐसे नहीं मानोगे, बोलना मत बाद में वार्निंग नहीं दी थी।
0: भाई दिग्विजय ने तो गौतम को अच्छा सबक सिखा दिया और तो और गौतम की बोलती बंद कर दी, लेकिन मोटी बा उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर है। इसी बीच आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि घर में अपनी मोटी बा और परिवार वालों की बेइज्जती देखकर प्रेम अपने आप को रोक नहीं पाएगा, जिसके चलते रिश्तों में ट्विस्ट आएगा।
8: आड़ में आप जो ये स्वांग रचा रहे हैं उसके आर पार मैं देख सकता हूं। अरे आप तो बिना शादी के बापूजी के घर जमाई बन गए।
2: राही क्या कहकर कह गए, अपने प्रेम को थप्पड़ मारा। ऐसा करके आपने मेरे और मेरे बच्चों के बीच के खाई को और गहरा कर दिया है सर। अरे आपको हमारे परिवार के मामले में पढ़ने की क्या जरूरत क्या थी दिग्विजय सर।
0: स्टार प्लस जिसके सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों मायरा पूरी तरह से फंस चुकी है। कोई अनजान व्यक्ति मायरा को परेशान कर रहा है। जरा देखिए कैसे मायरा डरी सहमी सी एक ही जगह पर खड़ी हुई है और वो नकाबपोश आदमी अपने ड्रोन के जरिए नायरा को डरा धमका रहा है। वो तो शुक्र है कि मुक्ति अभीरा और अरमान दोनों को सही समय पर ले आती है, जिसके चलते मायरा का डर थोड़ी देर के लिए दूर होता है।

0: आपकी वाली बीमारी लग गई है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप रियल में आ गए हो। मुझे बहुत डर लग रहा था मम्मा।
1: अपनी बेटी को इस तरह रोता बिलकता देख अभीरा बेहद परेशान है। वो अपनी बेटी को दिलासा दे रही है और हौसला बढ़ा रही है कि वो उसके साथ कुछ होने नहीं देगी। ऐसे में मुक्ति उद्रण उठाकर अरमान को देती है और अरमान फैसला लेता है कि वो सच का पता लगा कर ही रहेगा। ऐसे में घर में आकर अरमान और अभीरा दोनों इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये द्रोण किसका है। वहीं दूसरी ओर ऋषभ अपने खिलाफ सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है।

0: मुझे तो ट्रू लव मिलेगा।
1: कहीं वो ऋषभ तो नहीं?
0: और जोर से बोल लेना, उसे सुनाई नहीं दिया होगा।
1: ऋषभ मेरे टाइप का नहीं।
2: मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूं ना, अब दिखाता हूं कि मैं इंसल्ट का बदला कैसा पूरा करूंगा।
3: यहाँ ऋषभ अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है तो वहाँ अरमान और अभीरा दोनों पहुँच गए हैं उस दुकान में जहाँ से ड्रोन खरीदा गया है और जल्द ही अब उनके सामने आएगा ऋषभ का सच भी।
4: थैंक्स सर, इस आइडिया क्या करना है?
5: ये लड़का एक हफ्ता पहले ही आया, दो दिन में ही काम छोड़ गया, फेंक दे इसे।
6: अरे ये तो वो ऋषभ है ना?
7: पापा मुझे लगता है ये ड्रोन ऋषभ ने मंगवाया था।
8: अरमान किसी पे सॉलिड डाउट हो रहा है।
7: ऋषभ पे ना?
3: कलर्स के सीर मंगल लक्ष्मी में अदित को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो भी सौम्या पर, क्योंकि अब तक अदित के सारे प्लान फेल जो हो गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी बातें मंगल सुन रही है। यहाँ अदित प्लान बना रहा है आगे का ताकि वो फेल ना हो सके।
9: तुमने हर वक्त गलत इंसान पर भरोसा किया है सौम्या, पहले आरव और अब चुभी, लेकिन इस बार कुछ गलत हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, भले ही वो तुम क्यों ना।
10: सोमय, ये आज तक की हमारी सबसे बड़ी डील होगी। ये डील हमारे सीक्रेट लोकेशन पर होगी, लोकेशन पर हम साथ जाएंगे। अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई ना तो हमारे सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी, और सिर्फ यही नहीं, हम धंधे में भी नंबर वन हो जाएंगे।
3: भाई अदित तो तैयार है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन तभी उसे लगता है कि दरवाजे पर कोई उसकी बातें सुन रहा है। ऐसे में मंगल को लगता है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, इसीलिए अदित के आने से पहले ही वो जाकर छिप जाती है और झटपट जयराज को फोन करके सारा सच बताती है।
1: जयराज जी, मैंने अभी अभी अदित जी और सौम्य को बात करते सुना, वो सौम्य को कह रहे थे कि वो आज तक की सबसे बड़ी डील के लिए जा रहे हैं और दोनों किसी सीक्रेट लोकेशन पर भी जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमें उन्हें आज ही रंगे हाथों पकड़ लेना चाहिए। अब अदित जी का बच के निकलना नामुमकिन है।
3: अदित और सौम्या निकल पड़े हैं नकली रुपयों की तस्करी करने के लिए और उनका पीछा कर रहे हैं मंगल और जयराज भी। अब देखना होगा कि अदित को सच का पता लग पाएगा।
11: जगदात्री तो हमसे कह रही हैं कि समर के इस महीने में अपने बॉडी टेम्परेचर को रखें ठंडा ठंडा कूल कूल, इसलिए इंडल्ज करें सिर्फ ऐसे फूड्स में जो आपकी बॉडी को ठंडा रखते हैं, जैसे कि सब्जा सीड्स, जैसे कि वाटरमेलन, और एकदम होम कुक्ड सिंपल मील्स ही खाइए। चाय और कॉफी को अवॉइड कीजिए, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी को कंज्यूम कीजिए। तो क्या कुछ हो रहा है जगदात्री की इस कहानी में? क्या फिर से आई है यहाँ पर कोई नई सिचुएशन, या फिर से चल रहा है यहाँ पर कोई इंटेंस ड्रामा? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री के पास।

0: पर अत्याचार।
1: अरे प्लीज आओ मैं नहीं दे रही
2: नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? निकालना तो पड़ेगा ना।
1: निकाल लो बेटी।
0: रेखा और तपस्या का षड्यंत्र।
2: नुकसान करने से पहले मुझे सोचना चाहिए था ना।
0: शिवाय बना जगधात्री का रक्षक।
3: नहीं।
0: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में आज सभी लोग खाना खा रहे हैं। ऐसे में है जगधात्री की बहन तपस्या आई, उसकी सास और बाकी के घर वाले, और ऐसे में देखिए कैसे खाना खाते खाते तपस्या को खांसी आ जाती है और जगधात्री उसके लिए पानी लेकर आती है।
2: ना पड़े तो देखो ना किस जलेबियां चल रही है इसके मुंह पे। आराम से
4: देख रही हूँ
2: या फिर मक्खन लगाए पर जो लाख रुपए हैं तो करनी पड़ेगी।
0: ऐसे में जगधात्री की आई को मिल जाता है मौका उसे परेशान करने का। असल में जगधात्री की वजह से तपस्या और उसके हस्बैंड का 12 लाख का नुकसान हुआ है और ऐसे में वो यही उनसे वसूलना चाहते हैं। तभी तो देखिए कैसे जगधात्री की माँ उसकी सोने की कान की बालियाँ निकाल रही है। जगधात्री को ये बालियाँ उसकी आजी ने दी थी और वो ये उन्हें नहीं देना चाहती, लेकिन यहाँ तो सभी आ गई हैं साथ साथ जगधात्री को परेशान करने के लिए और देखिए कैसे जबरदस्ती उसके कान से ये बालियाँ छीन रही है।
2: पल्लवी जी, माँ अपनी बेटी की चिंता नहीं करेगी तो और कौन करेगी? लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जो इसने हमारी तपस्या और दामाद जी का नुकसान किया है उसकी भरपाई तो इसे करनी पड़ेगी ना।
3: सही कहा रेखा जी, ये तो सोचने वाली बात है। इसके पास तो एक ढंग की साड़ी भी नहीं है, ये कहाँ से लाएगी 12 लाख रुपए?
5: पल्लवी, ऐसे किसी की इंसल्ट नहीं करते। अब देखो जगधात्री वर्किंग वुमन है, स्पेशली किसको पढ़ाती है, तो इतनी सेविंग तो होगी ना इसके पास। इधर भी अकाउंट में 1000-2000 रुपए तो होंगे ना।
2: देख संपदा, ये देख कितने महंगे सोने के ये झुमकी पहनी हुई है, इतनी महंगाई में। हाँ रुक रुक, नुकसान करने से पहले मुझे सोचना चाहिए था ना।
0: लेकिन इससे पहले कि वो दोनों बालियां ले लेती, सही समय पर आ जाता है शिवाय जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है।
6: क्यों पता नहीं चल रहा क्या कर रहा है? आके बाहर छोड़ के आया क्या?
3: हमारे बाबा ना तो जो बॉस के ना तुम्हारी वाइफ उसे कवर करने की कोशिश।
2: ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद होती है और उसका ऊंचा दाम भी होता है, पर टीचर को क्या पता होगा। चल इसका ट्रीटमेंट शुरू करो।
0: भाई इतनी आसानी से ये तीनों कहाँ शिवाय की बातें सुनने वाली थी, इसलिए शिवाय लेकर आया वो बैग जिसमें है तपस्या और उसके हस्बैंड का ये सामान जो कि काफी महंगा है, और ऐसे में इस सामान के बदले वो जगधात्री की बालियां ले लेता है और जगधात्री को लेकर वहाँ से चला जाता है।
3: मैंने तो वहाँ हर खुद नहीं देखा था, मैंने हर एक कॉर्नर चेक किया था, वहाँ पर नहीं था ये।
4: आंखें खोल के देखती तो दिख जाती।
3: यस तो दो मुझे।
0: ऐसे में जगधात्री काफी खुश है और तपस्या भी, क्योंकि उसे अपना सामान जो मिल गया है। लेकिन यहाँ इनकी हो गई है टाई डाई फिश, क्योंकि शिवाय ने इन्हें चूना जो लगा दिया है, ये असली नहीं बल्कि नकली सामान है।
6: कुछ काम तो नहीं हुआ, काम तो नहीं हुआ,
3: नहीं
6: हुआ। क्यों मारा लगता है?
3: हाँ मुझे नहीं लगता है कि काम हुआ है।
6: ऐसी बात है क्या? समझ की मशीन वाला जमा
5: जी मॉम, ये ना मैंने निशान बना के रखा था यहाँ पर,
6: कंफर्म कर लिया। पर तूने इस नमक के चक्कर में ना जगधात्री हाथ से निकल गई। निकल गई तो निकल गई, कब तक निकलेगी और कहाँ तक जाएगी मैं भी ना देख लूँ। कि इसका कोई 12 रुपए भी नहीं देगा? तू कह रही थी 12 लाख, क्या बोलती हूँ वो एडियट आप, क्या उसकी बातों में आते हैं,
3: उसे कुछ नहीं पता।
6: क्या हुआ
3: मेरी खाना स्पेशल ब्लू सॉल्ट इंपोर्टेड मत टेस्ट कर।
6: ये तो एकदम घर वाले जैसे नमक है।
3: क्या
6: हाँ इसका तो रंग भी निकल रहे थे।
0: तो भाई शिवाय तो काफी चालाक निकला, लेकिन अब देखना होगा कि तपस्या और उसकी आई मिलकर अब जगधात्री को किस तरह से परेशान करती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: तो क्या कुछ हो रहा है लक्ष्मी, श्रीनिवास, राज और भूमिका के इस परिवार में, किस तरह ये सब बीट कर रहे हैं समर हीट। वेल, आज तो शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ समर टिप्स, तो चलिए इनसे भी लेकर आते हैं कुछ समर स्पेशल टिप्स। लेकिन उससे पहले वेट, यहाँ तो चल रहा है फिर से एक नया फैमिली ड्रामा। ऐसा क्या हो रहा है लक्ष्मी निवास की इस कहानी में, लेट्स चेक इट आउट।
0: राधिका वीर की नजदीकियां,

जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में अखिल और ईशा की पार्टी में हो गई है राधिका और वीर की मुलाकात। असल में निया के पापा अखिल ने निया के नाम का ऐप लॉन्च किया है, जहां पर राधिका निया को लेकर आई है। ऐसे में वहां पर वीर भी राधिका से मिल गया है और देखिए कैसे वो निया पर प्यार जता रहा है, उसे आइसक्रीम खिला रहा है। वीर और निया की बॉन्डिंग देखकर राधिका बेहद खुश है।

लेकिन उसकी खुशी अखिल और ईशा दोनों को रास नहीं आ रही। ऐसे में अखिल ने तय किया है कि वो राधिका को भीड़ के बीच बेइज्जत करके रहेगा। इसीलिए देखिए कैसे उसने अपने ड्रिंक में कर दी है मिलावट और वो ड्रिंक दे दिया है वेटर को ताकि वो राधिका को जाकर दे दे। ऐसे में राधिका जो निया के साथ बैठी हुई है वो अनजाने में मिलावटी जूस पी लेती है जिसके चलते उसे धीरे धीरे नशा चढ़ने लगता है।

0: उसे लगता है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए वो निया को लेकर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर आ जाता है वीर भी, जिसे पता चल जाता है कि राधिका ने मिलावटी ड्रिंक पी ली है। ऐसे में वो राधिका को संभालने की कोशिश कर रहा है, अपने दोस्तों से निया को संभालने के लिए कहता है और खुद राधिका के लड़खड़ाते कदम को संभाल रहा है। इसी बीच माही भी आती है और नशे की हालत में राधिका ढेर सारी बातें कह देती है, जिसमें वो वीर की तारीफें भी करती है। ऐसे में वीर कोशिश करता है राधिका को संभाल कर ले जाए।
1: अरे क्योंकि वीर देख रहा है कि राधिका जी दूर खड़ी लड़खड़ा रही हैं, वो माही से बात कर रहा होता है, माही उससे कुछ बात कर रही होती है और वीर को थोड़ा सा शक होता है कि इतना वियर्डली क्यों खड़ी है, लड़खड़ा क्यों रही है। वीर भाग के जाता है, उनकी ड्रिंक को सूंघता है, पता चलता है यार इसमें तो अल्कोहल मिली है, जबकि उसे पता है राधिका जी कभी शराब नहीं पीती। तो बस वही समझ के वो राधिका जी के पास जाता है और समझ जाता है कि उनकी क्या हालत है एंड कोशिश करता है कि सिचुएशन को कैसे भी करके पैसिफाई करते हैं।
0: पर राधिका तो नशे में इतनी चूर है कि वो चलने लायक नहीं है। ऐसे में वीर उसे बिठाता है और तो और उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन राधिका चुप होने का नाम नहीं लेती। ऐसे में राधिका कोई और तमाशा करे, वीर उसे खेल खेलने के लिए कहता है, वो भी छिपन छिपाई का। ऐसे में देखिए कैसे वो राधिका को संभालते हुए ले जाता है और टेबल के नीचे बिठा देता है और राधिका नशे की हालत में टेबल के नीचे बैठकर अपने बचपन के दिन को याद कर रही है कि कैसे वो छिपन छिपाई खेला करती थी।

भाई राधिका तो वीर की बात मानकर चुपचाप बैठी थी। यही चेक करने के लिए वीर आता है कि राधिका वीर का हाथ पकड़कर उसे भी छिपने के लिए कह देती है। और जैसे ही वीर और राधिका टेबल के नीचे छिपते हैं तो दोनों की नजरें टकराती हैं। और तो और दोनों के बीच की करीबियां भी बढ़ती हैं।

0: भाई यहाँ पे राधिका जी ड्रंक हैं क्योंकि अखिल इनकी ड्रिंक स्पाइक कर देते हैं अल्कोहल से, और वीर नहीं चाहता कि राधिका जी की इमेज पे कोई आ जाए, तो वो राधिका जी को टेबल के अंदर छुपा देता है। अब अंदर राधिका जी बिकॉज शी इज़ ड्रंक, वो बहुत ही मतलब बच्चों की तरह बिहेव कर रही हैं, एंड वीर ने उनको बताया कि हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, सो शी इज़ बीइंग ऑल किडिश। तो अभी सारी सिचुएशन हैंडल करने के बाद वीर जब वापस आया तो राधिका जी ने बोला अरे तुम भी छुप जाओ वरना निया में देख लेगी, क्योंकि छुपन छुपाई का गेम चल रहा है, और वो खींच लेती है। एंड देयर इज दिस मोमेंट बिटवीन राधिका एंड वीर, सो दैट्स द होल सीन, अमेजिंग सीक्वेंस, आप लोगों को बहुत मजा आएगा देखने में।
1: को ऐसा तो नहीं है ना, अल्कोहलिक है, उसने पहली बार पी है, उससे नहीं पता वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है। वो बच्ची बन गई, वो मस्ती करती फिर रही है, छुपन छुपाई खेल रही है, और वीर भी उसे उसी तरह से टैकल कर रहा है बच्चों की तरह। तो वो बोलता है छिपन छिपाई, छिपा देता है नीचे, और ऑफ कोर्स अपने बचपने में वो उसे भी अपने पास खींच लेती है कि तुम भी छुप जाओ। एंड यस अ मोमेंट।
2: अब राधिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वीर को अपने से दूर करने की, लेकिन आज वीर को एहसास हो ही गया है कि राधिका का दिल उसी के लिए धड़क रहा है। खैर दोनों के बीच अचानक हिचकिचाहट होती है, और राधिका जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी नजरों के सामने उसका मंगलसूत्र आता है और उसे अपना पुराना अतीत याद आता है।

0: राधिका के लिए मंगलसूत्र ऐसी चीज़ है ना, जैसे वो उसको देखती है वो सब भूल जाती है, उसको वही सारे फ्लैशेस आते हैं, वो उस पुराने, उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है जो उसके साथ हुआ है रिगार्डिंग दिस मंगलसूत्र थिंग, तो उसे बार बार वही सब याद आता है और वो किस भी मूड में हो अचानक ब्रेक हो जाता है और उसका सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है अपने इस मंगलसूत्र पे। तो ऑफकोर्स वो पेन में है ऑलरेडी और वीर वो पेन देख सकते हैं, तो वो भी बेचारे सिंपथाइज ही कर सकते हैं।
1: सिंपथाइज से ज़्यादा गिल्ट में है कि ये मेरे से क्या हो गया, क्योंकि एक सीन में मैंने बोला भी है कि माता रानी शायद से हमने आपका इशारा गलत समझ लिया, यहाँ पे हम राधिका जी को प्यार का इजहार तो कर नहीं पाए लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और लिया है। तो वीर में वो गिल्ट है, वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके राधिका जी को सब कुछ सच सच बता सके और चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सके। सो वही चल रहा है वीर के दिमाग में और दिल में भी कि सब कुछ ठीक हो जाए।
2: खैर राधिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वीर से दूर रहने की, लेकिन वीर अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो राधिका के दिल में सच्चा प्यार जगा सके। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: देखिए हम एक्टर्स तो नहीं बच सकते, क्योंकि चाहे कितनी भी गर्मी हो आउटडोर शूट्स होती हैं और बस समर टेम्परेचर बना देता है हर आउटडोर शूट को एब्सोल्युटली शॉकिंग। लेकिन क्या है ना, हमें अपना काम इतना पसंद है, इतने पैशन के साथ करते हैं हम अपने काम को कि फिर भी मूड रहता है एकदम रॉकिंग। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा अगला सेगमेंट, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। देख लीजिए रॉकिंग प्रोमो जी टीवी के सीरियल गंगा माई की बेटियां का, जहां पर सिद्धू और स्नेहा दोनों ही दूल्हा और दुल्हन बनकर तैयार हैं अपनी अपनी शादी रचाने के लिए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि दोनों की किस्मत जुड़ जाएगी, वो भी सिंदूर से।
4: बनारस की विशेषता जानते हैं क्या है? यहां पे जोड़ियां स्वयं महादेव चुनते हैं।
5: उन्होंने चुना है शांतनु बेटे को हमारी स्नेहा के लिए,
6: क्योंकि वही जानते हैं कौन किसके लिए सही है।

खबरें आ रही थी कि सलमान खान की आने वाली फिल्म मातृभूमि की रिलीजिंग पर अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन हाल ही में सलमान खान ने अपनी इस फिल्म के एक नए गाने की क्लिप्स अपने फैंस के साथ शेयर की है, ये बताते हुए कि ये फिल्म जरूर आएगी।

कलर्स के सीरियल लाफ्टर शेफ में जल्द ही लगने वाला है फिल्मी तड़का, जहां पर धुरंधर अंदाज में नजर आएंगे सुदेश लहरी और लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।

पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव जल्द ही रियलिटी शो में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। देख लीजिए जियो हॉटस्टार पर आने वाले रियलिटी शो भोजपुरी बवाल का ये टीजर, जहां तेज प्रताप यादव अपना टशन दिखा रहे हैं। स्टार प्लस का सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी जल्द ही अपने फैन से अलविदा लेने वाला है। सीरियल के सेट पर आखिरी दिन को शूट किया गया और ऐसे में अंजलि अवस्थी ने अपने फैंस को टाटा बाय बाय कहा है इस वीडियो के जरिए।

0: अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे आप?
1: हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो मैं, इसलिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। सच बताइए हमें, क्या आप सच में नाज़िमा से निकाह कर लेते?

0: सीरीज गुल्लक के बिट्टू की मम्मी और अमन का ये फनी वीडियो। भाई सीजन 5 आने वाला है, ऐसे में प्रमोशन तो बनता है।
1: फिर से पर्दा पहन लिया आपने?
2: मुफ्त मुरादाबादी, अपने पापा की तरह चैनल का है, इम्पोर्टेड लाए हैं बिट्टू के पापा।
1: चैनल एंटी शिनेल होता है, और हम ना मुरादाबाद से, ना हमारे पापा एक मामी जरूर है।
2: हमको मालूम था कोई ना कोई कनेक्शन निकालोगे, मामी जरूर है। वैसे भी हमें एक बात बता दे, यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है, आजकल हम इंस्टाग्राम कर रहे हैं, और उसमें हमारा रील वील बना देना, सब बढ़िया था।
1: अभी बनानी है रील?
2: और क्या बनाऊ ना,
1: इस पर बनानी है।
2: इस पर बनानी मतलब इंस्टाग्राम पर बनानी है?
1: मतलब कोई गाना है?
2: हम करेंगे ना, आए मस्कारा, तो हम जब ऐसे मस्कारा, अमन
0: सोनी टीवी के रियलिटी शो इंडियन आइडल में जल्द ही नजर आएंगे एआर रहमान और एक्ट्रेस आशा पारिक भी, और जमेगी सुरु की महफिल।

0: एक तो इतना ब्यूटीफुल गाना और दूसरा जस्ट प्योर ग्रेस ऑन स्टेज मैम. थैंक यू सो मच फॉर दैट.
1: जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में देख लीजिए उन्नति की वेडिंग सीन्स के बीटीएस नजारे.

सीरियल जगधात्री में तपस्या और रुद्र कोई भी कांड कर ले, लेकिन ऑफ कैमरा दोनों मस्ती करने में कभी नहीं चूकते। देख लीजिए इनका ये मस्ती भरा वीडियो।

0: गर्मी के इस मौसम में लाइट कॉटन आउटफिट्स सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं बल्कि कंफर्टेबल भी होते हैं। देखिए, गर्मी के इस मौसम में रखना है आपको अपनी हेल्थ का ख्याल और उसके साथ साथ अपने कंफर्ट का और अपने साथ साथ अपने आस पास वालों का भी रखें ख्याल। जैसे कि अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो उसमें हमेशा रखें कुछ बॉटल्स ऑफ वाटर, जिससे आप अगर किसी को भी देखें गर्मी से जूझते हुए तो उसकी हेल्प कर सकें। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको हमारी इस अगली खबर की ओर, जिसमें है सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल, क्योंकि यहाँ तो है आपके लिए एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा सब कुछ एक साथ।
1: आ गया है सीरियल्स का रिपोर्ट कार्ड। इस हफ्ते किस सीरियल ने टीआरपी की चार्ट पर छलांग लगाई और कौन सा सीरियल लुढ़का, ये सब बताएगा सास बहू और बेटियाँ।
2: अपने
1: पिछले चार हफ्ते से पहले नंबर की पोजीशन कायम रखी है सीरियल वसुधा ने, भाई वसुधा और देव के मिलन ने और चंद्रिका के ड्रामे ने सीरियल में पकड़ बना के रखी है, जिसे दर्शक बहुत खुश भी हैं।
3: गंगा माई की बेटी
1: दूसरे हफ्ते पर है दो दो सीरियल। एक है जी टीवी का सीरियल गंगा माई की बेटियां, जो पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी दूसरे नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर है स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2, जो पिछले हफ्ते तीसरे नंबर पर हुआ करता था। कई कहानी ने जोर लगाया है और ट्विस्ट के चलते सीरियल दूसरे नंबर पर आया है।
4: हो सकता है कि मैं हर बार टायर चेंज ना करती।
1: तीसरे नंबर पर है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक, जो पिछले हफ्ते की तरह ही कायम है। अनु और आर्या की शादी ने दर्शकों को जोड़ कर रखा है।
5: टायर बदलते हो भले में कितना हीरो बन जाओ, पर मुझे हिम्मत।
6: दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती।
1: इसी के साथ कनुप्पा ने छलांग लगाई है। पिछले हफ्ते वो पांचवें नंबर पर था, लेकिन इस हफ्ते वो आ गया है तीसरे नंबर पर। भाई माँ बेटी का ड्रामा दमदार रहा है।
6: गोलगप्पे वाली हंसी है दोस्ती।
1: चौथे नंबर पर एक नहीं बल्कि चार चार सीरियल्स हैं। स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, उड़ने की आशा, और क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, और सोनी सब का सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वैसे बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है पिछले हफ्ते 6 नंबर पर था, और इसी के साथ था उड़ने की आशा भी, लेकिन इस हफ्ते दोनों ने छलांग लगाई है और चौथे नंबर पर अपना कब्जा कायम किया है।

0: योर कॉफी।
1: छठवें नंबर पर है एक नहीं बल्कि तीन तीन सीरियल। जी टीवी का सीरियल जगधात्री और लक्ष्मी निवास दोनों साथ साथ छठवें नंबर पर चल रहे हैं। इसी के साथ स्टार प्लस का सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम भी छठवें नंबर पर कायम है।
2: बिरयानी, मैं नूडल्स खाऊंगी।
3: अरे सर, आप
2: जानते हैं इन्हें?
3: क्यों नहीं जानूंगा मैडम, उस दिन उन लड़कों को पीट कर सर ने बहुत अच्छा किया था।
4: और उनकी लाइफ में घुस के उसे ऐसा उधेड़ूंगा।
1: सातवें नंबर पर पहुंच गया है कलर्स का सीरियल डॉक्टर आरंभ भी। भाई ध्रुव की एंट्री ने कमाल कर दिया है और अब दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ध्रुव लक्ष्मी का सहारा बनेगा और कहानी में ट्विस्ट लाएगा।
5: आरंभ भी का सहारा।
1: आठवें नंबर पर कलर्स के ही तीन सीरियल्स ने अपनी सीट कायम रखी है। महादेव एंड सन्स, मंगल लक्ष्मी और सहर होने को है की कहानी ने दर्शकों को हिलने नहीं दिया और अपनी कहानी के साथ जोड़ कर रखा है।
2: आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
4: तुमसे कुछ खास बात करनी है।
1: नवे नंबर पर है स्टार प्लस का सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा। भाई रक्षित और अपराजिता की कहानी दर्शकों को पसंद आ रही है और अब इंतजार कर रहे हैं कि दोनों कब एक दूसरे से अपने दिल का हाल बयां करेंगे।
4: बस तुम देना साथ मेरा। I love you, अपराजिता शर्मा। I love you. I love you.
1: इसी के साथ नवे नंबर पर है कलर्स का सीरियल मन्नत, जिसमें पिछले हफ्ते से ड्रामा चल रहा है पापा बेटी का, कि कैसे पापा अपनी बेटी के दिल में जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
6: क्यों मेरी खुशियों पे कुंडली मार के बैठी है तू? पहले पन्नू और मनवा को मुझसे दूर कर दिया।
1: दसवें पायदान पर है सोनी सब का सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल। भाई इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने वाली पुष्पा ने वाकई अपना जोर दिखाया है और अब दसवें नंबर पर अपना स्थान ग्रहण किया है।
2: जिंदगी भर की नहीं, सारी जन्मों की।
7: नफरत ने की सारी हदें पार, पुष्पा कैसे संभालेगी अपना घर परिवार?
8: तो ये था हमारा समर स्पेशल एपिसोड, एंटरटेनमेंट के साथ साथ हाइड्रेशन और हेल्थ का फुल ऑन डोज। तो गर्मी के इन दिनों में आप अपना खास ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, हाइड्रेट रहिए और अपने मूड को भी रखिए ठंडा ठंडा कूल कूल। अब हम हाजिर होंगे कल फिर एक बार लेकर टीवी की और भी एक्साइटिंग खबरें। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल और रखिए अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
9: TuneIn has the music.
10: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
11: TuneIn Poolside has the music I love.
10: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii,
9: Let's go.
10: Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs and get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: रिकॉर्ड तोड़ रही चार धाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन, फिर हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर, दिल्ली यूपी समेत 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट, हवा चलने से तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट। केरल के कई जिलों में बारिश, तिरुवनंतपुरम में जमकर बरसे बादल, भीषण गर्मी से मिली राहत। नादिया के इस्कॉन मंदिर में पहुंचे पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, राधा कृष्ण की उतारी आरती, गौ माता की भी की सेवा। सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए दिग्गज क्रिकेटर सितारे सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्य कुमार यादव ने की तारीफ, वैभव के खेल को बताया अद्भुत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 24.5 लाख के पार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक करीब कई लाख लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगहों पर 8.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में लगा भक्तों का मेला, अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन पूजन। रामनगरी अयोध्या में फिर से दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव, आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन होगा। श्री झालरिया मठ में 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन, विश्व शांति, राष्ट्र समृद्धि, जन कल्याण की कामना की जाएगी। महोत्सव में 225 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ, श्रीमद्भागवत कथा, श्रीमद्भागवत कथा पाठ और सहस्त्र कलशाभिषेक जैसे दिव्य और भव्य धार्मिक कार्यक्रम होंगे। अयोध्या के मंदिरों में भगवान के लिए लगाए जा रहे एसी और कूलर, लगाया जा रहा खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का भोग। गर्मी और हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए अयोध्या में नगर निगम की खास पहल, शहर में लगाए जा रहे अस्थाई शेड और ग्रीन नेट। बद्रीनाथ में बाबा बागेश्वर के कथा वाचन का आज दूसरा दिन, 5 दिन चलेगी पवित्र सत्यनारायण की कथा। बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था। रामगढ़ में दिखा आस्था और संस्कृति का संगम, अच्छी बारिश, अच्छी फसल और गांव में सुख शांति के लिए धूमधाम से हुई मंडा पूजा। पूजा के दौरान लोटन सेवा के साथ जलते अंगारों पर नंगे पांव चलते नजर आए श्रद्धालु, परंपरा के अनुसार कील के सहारे झूला, 20 फीट ऊंचा बनस झूला। मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए मनाया जाता है ये पर्व, झारखंड में इस पर्व को लेकर लोगों में उत्साह। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल रजत चंद्र त्रिशूल त्रिपुंड से ड्राई फ्रूट से किया गया उनका श्रृंगार। बाबा महाकाल को अर्पित किए गए फूल और मिष्ठान, बाबा को रुद्राक्ष की माला और गुलाब के फूलों की माला की गई अर्पित। जैन के बाबा महाकाल के दरबार में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने की पूजा, भस्म आरती में शामिल। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, गर्मी की छुट्टियों को लेकर रेलवे चला रही कई स्पेशल ट्रेन। नादिया के इस्कॉन मंदिर में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किए दर्शन, सीएम ने की गौ माता की सेवा। दिल्ली चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के लिए की गई विशेष व्यवस्था, जानवरों के बाड़े में लगाए गए कूलर। बाड़ों में भरे गए पर्याप्त पानी, जरूरत जगहों पर लगाए गए कूलर। धौलपुर जिले की राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में दुर्लभ इंडियन स्कीमर के नन्हे मुन्ने चूजों की चहचहाट से गुलजार। दुनिया भर में करीब 3,000 की संख्या में बचे दुर्लभ पक्षी इंडियन स्कीमर के संरक्षण को लेकर सफल प्रयास, 164 अंडों में से 116 इंडियन स्कीमर के बच्चे। मैदानों में बढ़ते पारे के बीच में पहाड़ों में सैलानियों की भीड़, कुल्लू मनाली में टूरिज्म बूस्ट। एडवेंचर एक्टिविटी में मसरूफ नजर आए पर्यटक, बोटिंग का ले रहे मजा। हिमाचल सड़क परिवहन ने फिर से शुरू की दिल्ली लेह बस सेवा, उत्तरी भारत का सबसे लंबा रोड रूट, 1839 रुपए है किराया। लद्दाख के एलजीवी के सक्सेना ने लेह को दी विकास की सौगात, पर्यावरण के अनुकूल रॉक चेक डैम का उद्घाटन किया। सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत उद्घाटन, 11,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये डैम। मिडल ईस्ट संघर्ष के बीच में देश के लिए आई राहत वाली खबर, एलपीजी लेकर वतन आया स्वदेशी वेसल। पोरबंदर के तट पर पहुंचा CMD-23 वेसल, 4,000 टन एलपीजी लेकर लौटा वतन। कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग पर सफलतापूर्वक पा लिया गया है काबू, भारतीय वायुसेना ने आग को बुझाने का अभियान चलाया था। टिहरी के जंगलों में भड़की थी आग, ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा, आग बुझाने में जुटे। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को सजाया गया, इमारत लाल रोशनी से जगमगा उठी। देशभर में मनाई जा रही बकरीद, इस मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में सुबह 4 बजे खोला गया पवित्र जन्नती दरवाजा। सुबह सुबह अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए जुटे हजारों लोग, नमाज अदा कर मांगी अमन और शांति की दुआ। विशेष इस्लामी त्योहारों उर्स के मौके पर साल में केवल 4 बार खोला जाता है ये पवित्र दरवाजा, मान्यता है कि इस दरवाजे से गुजरना है आध्यात्मिक आशीर्वाद, जन्नत का मार्ग। दिल्ली की जामा मस्जिद में बकरीद की रौनक, प्रशासन द्वारा सुरक्षा पुख्ता की गई। अलग अलग शहरों में बकरीद के मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों की रौनक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वाराणसी की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी, शांति सद्भाव और सौहार्द की कामना की। मुंबई की YMCA मैदान में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की, लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। अजमेर में ईद उल अजहा पर जायरीन के लिए खुला ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, बड़ी संख्या में लोगों ने की यहां पर दुआएं। अजमेर में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। पटना में ईद उल अजहा पर लोगों ने मस्जिदों में पढ़ी नमाज, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम। पटना में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ईदगाह में पढ़ी नमाज, लोगों को दी बकरीद की बधाई। कोयम्बतूर में ईद उल अजहा की नमाज के लिए लगा लोगों का तांता, अमन शांति और तरक्की की कामना करते नजर आए। देहरादून में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बकरीद की बधाई। भोपाल में ईद उल अजहा की नमाज के लिए लगा लोगों का तांता, अमन शांति और तरक्की की कामना की गई। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी नमाज, जिलानी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भी नमाज अदा की। जम्मू के रामबन में ईद उल अजहा की नमाज के लिए मस्जिदों में उमड़ा सैलाब, लोगों ने घाटी में अमन चैन की दुआ की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
4: just
5: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं।

तरीके अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद, यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा।

0: मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, come home. It's supper time.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
1: Jack FM, playing what we want.
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: रिकॉर्ड तोड़ रही चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच में मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। दिल्ली यूपी समेत 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। हवा चलने से तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। केरल के कई जिलों में बारिश, तिरुवनंतपुरम में जमकर बरसे बादल। भीषण गर्मी से मिली राहत। नादिया के इस्कॉन मंदिर में पहुंचे पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी। राधा कृष्ण की उतारी आरती, गौ माता की भी की गई सेवा। सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए दिग्गज क्रिकेट सितारे सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्य कुमार ने की तारीफ। वैभव के खेल को बताया अद्भुत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
2: नमस्कार, प्रार्थना हूँ स्वीकार के सब खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। माना जाता है कि हर दिन कुछ नया और ईश्वरीय आशीर्वाद लेकर आता है। महादेव की कृपा पाने का भी एक ऐसा ही दिन होता है जिस दिन ना सिर्फ महादेव बल्कि माता पार्वती का आशीर्वाद भी एक साथ मिल जाता है। वो तिथि है प्रदोष की। आस्था से भरे सफर में आज बात करेंगे गुरु प्रदोष व्रत की। माना जाता है कि इस तिथि पर शिव जी की उपासना करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है क्योंकि गुरु प्रदोष पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं देवादिदेव महादेव। माना जाता है कि गुरु प्रदोष का व्रत करके कुंडली के गुरु को बलवान किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे गुरु प्रदोष की महिमा और क्या है व्रत के नियम।

0: गुरु प्रदोष पर महादेव देंगे वरदान। देव गुरु की कृपा से होगा आपका कल्याण। गुरु प्रदोष पर दूर होंगे संतान के दोष। धन धाने से भर जाएगा आपका कोष। आ गई है महादेव की महाकृपा की रात। गुरु प्रदोष पर शत्रुओं को मिलेगी मात। मान्यता है कि ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन पूजा उपासना ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष की तिथि। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब त्रयोदशी की तिथि गुरुवार के दिन आती है, तब गुरु प्रदोष का संयोग बनता है।
1: प्रदोष जब गुरुवार के दिन पड़ जाए, अर्थात त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल मिल रहा हो, तो उस दिन प्रदोष कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को मनवांछित कामना हो, सबसे समय कलयुग में व्यक्ति के जीवन में सुख की कल्पना, सम्मान वृद्धि, शत्रुओं का दमन और आरोग्यता, ये मन की इच्छाएं व्यक्ति के है। गुरु प्रदोष का उपवास रखने वाला इन चतुर्दिक लाभों को प्राप्त कर लेता है, ऐसा माना जाता है।
0: मान्यता है कि प्रदोष तिथि पर व्रत और महादेव के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो महादेव की परम कृपा पाने की तिथि है प्रदोष। चलिए आपको बताते हैं कि प्रदोष व्रत क्या है और इसका महत्व क्या है। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। ज्योतिष बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस भी दिन पड़ता है, उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है, तो व्रत करने वाले को उसको मनचाहा वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत से संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति की जा सकती है।
1: किसी भी व्यक्ति को अगर संतान संबंधी समस्या चली आ रही है, तो भगवान शिव के गुरु प्रदोष में रुद्राभिषेक करना, और रुद्राभिषेक भी विशेष तौर पे किस चीज से, के दूध में विशेष तौर पे घी मिलाने के बाद करने वाले व्यक्ति को संतान अवश्य प्राप्त होती है। साथ में इसके पश्चात सहस्त्रार्चन भी करें, अर्थात 1008 भगवान शिव के नाम बेलपत्री के साथ शिवलिंग पर चढ़ाने वाला अपनी मनवांछित मनोकामना सिद्ध कर लेता है।
0: माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव और देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पवित्र दिन है। माना ये भी जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होता है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, साथ ही दूर होती हैं विवाह संबंधी अड़चने। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा। गुरु प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं, मुकदमों और विवादों से विजय मिलती है।
1: किसी व्यक्ति को शत्रु संबंधी बाधाएं चली आ रही हो, तो वो गुरु प्रदोष वाले दिन विशेष तौर पे भगवान शिव का अर्पण करे। इसका पुण्य प्रताप ही इतना है कि व्यक्ति के शत्रुओं का दमन होने लगता है। शत्रु उसको गुरु के समान या अपने से बड़ा मानते हुए उसके अधीन आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है।
0: हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना बहुत सरल है, लेकिन गुरु प्रदोष व्रत में शिव की आराधना के कुछ विशेष नियम हैं। कहते हैं कि इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के सारे नियमों का पालन करते हैं।
1: भगवान शिव का पूजन किया जाता है और संध्या काल में जो प्रदोष का समय होता है, संध्या के समय पे और उसके पश्चात बढ़ते हुए समय के क्रम में, उस प्रदोष काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का विधान है। उनको बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि जल अर्पण करके दूध से स्नान आदि कराने का विधान है। ऐसा व्यक्ति करने वाला ही भगवान की पूजा के विधि पूर्वक उसका पुण्य फल प्राप्त करता है।
0: गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं, शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें, रात्रि के समय भी शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र का जप करें। रात्रि के समय 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाएं। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होता है। नमक और अनाज का सेवन न करें। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। ज्योतिषी इसीलिए प्रदोष व्रत को बहुत कारगर मानते हैं। आगे हम आपको गुरु प्रदोष से जुड़े महाप्रयोग भी बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए, प्रार्थना स्वीकार हो।
2: तो देखा आपने कितना पावन और मंगलकारी है गुरु प्रदोष का दिन। शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा होती है। इस दिन अगर विधि विधान से शिव पूजन किया जाए तो हर तरह के दोष दूर हो सकते हैं। विशेषकर अगर संतान संबंधी बाधा जीवन में हो या फिर किसी शत्रु ने कर रखा

0: मंगलकारी और सौभाग्यशाली है गुरु प्रदोष का व्रत। गुरु प्रदोष व्रत से बाधाएं नहीं आएंगी निकट। गुरु प्रदोष के व्रत से होगी संतान की उन्नति। शिव उपासना से दूर होंगी शत्रु रूपी विपत्ति। माना जाता है कि प्रदोष की तिथि पर देवाधिदेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि गुरु प्रदोष पर शिव उपासना से सभी संकटों का नाश होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके जीवन में संतान से जुड़ी बाधाएं आ रही हैं, तो गुरु प्रदोष व्रत आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। तो गौर से देखिए वो उपाय। संतान संबंधी बाधा होगी दूर। एक पीतल के लोटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालें, केले के पेड़ की जड़ में ये अर्पण कर दें और गाय की घी का दिया जलाएं। वहीं बृहस्पति स्रोत का 3 बार पाठ करें। घर वापस आते समय केले के पेड़ की जड़ से मिट्टी लें और अपने बच्चों के माथे पर तिलक करें।
1: किसी व्यक्ति को सम्मान वृद्धि चाहता हो तो गुरु प्रदोष का उपवास करना ही, उनके उस दिन भगवान शिव का पूजन करना ही, विशेष तौर पे दूध और जल से उनको स्नान कराना और उनको बिल्व पत्र चढ़ाना व्यक्ति के सम्मान में वृद्धि स्वयं करने लगता है। विशेष प्रयोग के तौर पे उनको पीला चंदन भगवान को अर्पण करने से भगवान की तुरंत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है।
0: ज्योतिषी बताते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना गया है। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकती है। गुरु को ज्ञान और सौभाग्य का कारक भी माना जाता है, जिसके कारण सभी मांगलिक कार्यों में गुरु की प्रधानता रहती है। तो गुरु प्रदोष व्रत कैसे दे सकता है आपको सुख सौभाग्य का वरदान, ये भी समझिए। गुरु प्रदोष व्रत देगा सौभाग्य का वरदान। अपने स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भर कर रखें। समय समय पर इसे बदलते रहें। पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करें। हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी हासिल होती है। शत्रु बाधा को दूर करने का एक और महा उपाय हम आपको बताते हैं।
1: किसी व्यक्ति को यदि शत्रु अत्यधिक परेशान कर रहे हो तो आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं बगलामुखी अनुष्ठान कराइए, वो तांत्रिक अनुष्ठान कराइए। एक सरल और बहुत ही प्रभावकारी है, गुरु प्रदोष वाले दिन किसी व्यक्ति को बोलें कि उसको मट्ठे से भगवान शिव का अभिषेक कराए, संध्या काल में कराए। ऐसे व्यक्ति के शत्रु तुरंत समाप्त हो जाते हैं, या तो उससे किसी प्रकार संधि कर लेते हैं, नहीं तो शत्रु पलायन कर जाते हैं।
0: गुरु प्रदोष पर दूर करें शत्रु बाधा। प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करें, शिव जी को पीले फूल अर्पित करें, ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 11 माला जाप करें, शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। तो अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देवगुरु से पाना चाहते हैं खुशहाल जीवन का वरदान, तो ज्योतिष में बताए गए ये महा उपाय विशेष लाभकारी होंगे। आगे हम आपको बताने जा रहे वो महावरदान जिससे देवगुरु बृहस्पति की महाकृपा आप पर बरस सकती है।
2: शिव के सबसे पावन व्रत पर उनकी उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। पंचांग की तिथि कहती है कि हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि गुरु प्रदोष के दिन क्या दान करें जिससे इस व्रत का पूर्ण लाभ आपको मिल सके।

0: कहते हैं कि महादेव क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं। बेलपत्र और धतूरे के अर्पण को वो भक्तों का श्रेष्ठतम उपहार समझते हैं। शिव तो बैरागी हैं, लेकिन उनकी कृपा से ही दुनिया में ऐश्वर्य है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि का आदि भी शिव है और अंत भी शिव ही है, और शिव ही पीड़ाओं को हरने वाले हैं। तभी तो शिव की आराधना से अमंगल मंगल में बदल जाता है। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं महादेव। आज हम बात कर रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत की। अगर व्रत के साथ दान को जोड़ दें तो कुंडली के ग्रहों के बुरे प्रभावों को भी आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि दान भी इंसान के सबसे उत्तम कर्मों में शामिल है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान से आप बिगड़े भाग्य को सवार सकते हैं। गुरु प्रदोष पर क्या दान करें? किसी भी जरूरतमंद कन्या के विवाह के लिए कुछ भोजन सामग्री दान करें। जरूरतमंद लोगों को पीले फल, पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी गुड़ तथा अन्य भोज सामग्री दान करें।
1: किसी भी व्यक्ति को अगर इसका पुण्य फल प्राप्ति का विशेष कामना चाहता है तो गुरु प्रदोष वाले दिन गरीब लोगों को, ब्राह्मण की जोड़ियों को अर्थात पति पत्नी दोनों को श्वेत वस्त्र धारण कराकर और उनको भोजन कराएं। पक्का भोजन कराने के पश्चात उनको फल फूल आदि के साथ में पीले लड्डू, सोने का वर्क चढ़ाकर दान करें। मन में कोई भी इच्छा हो, संतान संबंधी समस्या हो, किसी प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित हो, तो निश्चित आप पूर्ण रूपेण इस व्यक्ति को अपने मन की इच्छा पूर्ण पाएंगे।
0: आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो सके दान करें। यकीन मानिए, दान करने से आपकी हर मुश्किल आसान हो सकती है। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो देर किस बात की, इस महाफलदायी गुरु प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए, भगवान भोलेनाथ को मनाइए, फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे।
1: हमारे यहाँ जो गणना है कालखंड की, वो 360 दिनों की आती है, और हमारे यहाँ कलाओं का बढ़ना और घटना कहते हैं। जैसे हमारा हर मास संक्रांति से सौर मास बदलता है, जब सूर्य का संक्रमण अगली राशि में परिवर्तन करता है तो अगला माह आरंभ हो जाता है। ऐसे ही हमारे जब चार संक्रांतियां हो जाती हैं तब वो जाकर हमारा पूरा एक वर्ष पूरा होता है 360 दिन का। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि जो तिथि है वो घटती और बढ़ती भी रहती है, पूरा दिन अंग्रेजी तो 24 घंटे मानते हैं, पर हमारा जो दिन होता है वो 23 घंटे कुछ मिनट का रह जाता है। तो जब प्रतिदिन वो घटते घटते घटते जो समय बचता बचता रहता है, तो चार वर्ष में जाके पुनः एक वर्ष के समान हो जाता है। तो ये जो है ना, किसी भी मास में पड़ सकता है ये, जैसे इस बार ज्येष्ठ मास में है, पड़ने वाले इस मास को मल मास या अधिक मास कहते हैं, क्योंकि बढ़ गया है। सामान्यतः लोगों ने मान लिया कि ये एक कोई पाप का समय है, कोई अच्छा समय नहीं है। भगवान ने कहा कि ये सबसे सुंदर समय है, इस समय मेरी आराधना का समय है, ताकि आप किसी भी लोक लोकाचार में ना उलझो, इस समय केवल मेरी भक्ति करो, अपने पितरों को मनाओ, अपने पितरों के निमित्त प्रसन्नता के कार्य करो। इसी कारण से इसको उन्होंने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास।
2: और चलिए इसी के साथ प्रार्थनाओं स्वीकार के आज के संक में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
6: What you got for me, Jack?
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Oh, chilla chilli nahi hai. Kam se kam logon ko khabrein to aaram se sunne ko mil jaye. Iske upar, uske upar, aise. Achhi soch ke saath ek achhi shuruaat ki hai. Iske parinaam bhi achhe aane chahiye. Waise achhi cheezon ki market aajkal badh rahi hai.
7: Desh dekh raha hai achhi khabrein. Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा के बजाय अपने ही देश में सैर सपाटा करने की अपील की हुई है, तो गुड न्यूज टुडे भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजिए ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लेकर चलते हैं जहां बाखली पिकनिक रिजॉर्ट आपका इंतजार कर रहा है।
2: ये है माता बगलामुखी मंदिर का भव्य नजारा। और यहीं से आप नेचर पार्क के भी दर्शन कर सकते हैं।

इस स्थान को बाकली के नाम से जाना जाता है। माता बगलामुखी का यह मंदिर पहले नीचे हुआ करता था, जहां नेचर पार्क बनाया गया है। स्नो डैम के बनने के समय माँ बगलामुखी की इच्छा अनुसार मंदिर ऊपर बनाया गया। जिस स्थान पर अभी मैं मौजूद हूँ, हजारों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है। तो चलिए मंदिर के अंदर भी आपको माता के दर्शन करवाते हैं।

अब यहाँ से हम सीधा चलेंगे नेचर पार्क की ओर। नेचर पार्क की दूरी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, तो चलो मिलते हैं अब नेचर पार्क में। इस समय मैं पहुंच चुका हूं नेचर पार्क में। ये नेचर पार्क वन विभाग के अंतर्गत आता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ही सुंदर सुंदर हट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं और सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पर सुबह शाम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है जिस कारण इस भरी तपती गर्मी में आपकी इच्छा भी ना करे यहाँ से जाने की।

0: नेचर पार्क में घूमने के अलावा आप यहाँ पे पंडो डैम में बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बात रही इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने की, तो आप कई रास्तों से इस डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चंडीगढ़ की ओर से आ रहे हैं, तो जिस रोपवे की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, वह रोपवे हाईवे से महज कुछ ही मीटर दूर है और चंडीगढ़ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं, तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो कि भुंतर में स्थित है। अगर मैं फ्लाइट्स की बात करूँ, तो भुंतर एयरपोर्ट पे दिल्ली, अमृतसर, देहरादून और जयपुर से रेगुलर फ़्लाइट्स आती हैं। और फ़्लाइट्स के अलावा अगर आप ट्रेन से भी आना चाहते हैं, तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ से जोगिंद्रनगर का है, जो कि यहाँ से महज 70 किलोमीटर दूर है।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: गर्मी के मौसम में पानी में छपाक छपाक करने का मौका भला कौन छोड़ना चाहेगा। बंदरों का झुंड भी शायद समझ चुका है कि हीट को बीट करना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। फिर क्या था, पूरी की पूरी मंडली पानी पर छपाक छपाक करने लगी। कोई पानी में गोता लगाता दिखा, तो कोई अपने साथी के साथ मौज मस्ती करता नजर आया। माँ क्या होती है, इस तस्वीर को देखकर सहज अनुभव लगाया जा सकता है। हालात जैसे हो, काम का बोझ जितना भी हो, लेकिन माँ अपने जिगर के लाल को खुद से दूर नहीं करती। ये महिला खाना बना रही है और साथ में अपने लाल को सीने से लगाए हुए है। न चेहरे पर कोई शिकन, न थकान, माँ इसी को कहते हैं। नन्हे हाथों में किताब और ऊपर से फल और फूलों की तस्वीर, ये नन्ही बच्ची मानो किताब से फल फूल को निकाल कर ही मानेगी। बालपन इसी को तो कहते हैं। सारी दुनिया की टेंशन से दूर, अपने में मस्त। इस क्यूट वीडियो को देखकर इसे बनाने वाले ने ये जरूर लिख दिया कि ये LKG के एंट्रेंस की तैयारी कर रही है। तू यहाँ मैं वहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ, इस फॉर्मूले पर ये बतख अपने बच्चों को खतरों से निपटने की ट्रेनिंग दे रही है। पानी में अगर अचानक कोई खतरा आ जाए, तो उससे कैसे निपटा जाए, खुद को बचाने के लिए क्या किया जाए, इसी हुनर को सिखाती नजर आ रही है ये बतख। खेल खेल में तैराकी का गुर, बच्चों के साथ मस्ती और खतरों से निपटने की ट्रेनिंग, सब साथ साथ। सोशल मीडिया पर भालू और इंसान की दोस्ती की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सामने खूंखार और उसे प्रेम से खाना खिला रहा ये बुजुर्ग जोड़ा, ना डर ना ही हमले का खौफ। बेजुबान को भी पता है कि ये निश्चल प्यार है, यहाँ प्रेम से सब कुछ हासिल हो सकता है। वीडियो इस बात को भी सच साबित कर रहा है कि इंसान और बेजुबानों की भाषा भले ही अलग हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति संवेदना और प्यार एक है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: Hey, achhi khabrein. Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: रिकॉर्ड तोड़ रही चार धाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर, दिल्ली यूपी सहित 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। हवा चलने से तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट। केरल के कई जिलों में बारिश, तिरुवनंतपुरम में जमकर बरसे बादल, भीषण गर्मी से मिली राहत। नादिया के इस्कॉन मंदिर में पहुंचे पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, राधा कृष्ण की उतारी आरती, गौ माता की सेवा की। सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए दिग्गज क्रिकेटर सितारे सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्य कुमार ने की तारीफ, वैभव के खेल को बताया अद्भुत।

0: सच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। प्यार और भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव नहीं नींव होते हैं और पति और पत्नी का रिश्ता एक परिवार की खुशहाली का आधार बनता है। लेकिन तब क्या हो जब इस प्यार विश्वास में दरार आ जाए। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ एक परिवार में पति पत्नी के रिश्ते बेरंग हो रहे हैं। सवाल रंग को लेकर ही है, लेकिन क्या सांवले रंग से फीकी पड़ी रिश्तों की चमक, एसी आईफोन पर अटकी रिश्तों की टोन, रिश्तों का ब्लैक एंड व्हाइट सच क्या है, आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। इसी को लेकर अगले एक घंटे बातचीत होगी। हमारे साथ देश के जाने माने एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। आखिर मामला है क्या, विवाद क्या है। दरअसल ये मामला है पति पत्नी के बीच झगड़े का, विवाद का। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर माँ और बेटे ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप बहू के हैं। आरोप ये है कि बहू तंग कर रही है। ऐसे में परिवार ने एसपी दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाई। सास का दावा यह है कि बेटे के रंग पर बहू अपमानित महसूस करती है, जिससे उनका बेटा तनाव में है। साथ ही सास का आरोप यह भी है कि बहू ने झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी है। बहू पर एसी आईफोन जैसी चीजों की डिमांड करने का भी आरोप लगा है। पूरे मामले की शिकायत माँ और बेटे ने किलागेट थाने में की है। अब पुलिस के अधिकारियों ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि अभी ये भी बताते चले कि अभी बहू का पक्ष सामने नहीं आया है। हमने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी बात रखी नहीं गई है, क्योंकि वो अभी तक मीडिया के सामने आई ही नहीं है। ग्वालियर में ये चौंकाने वाला मामला सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। एक सास अपने बेटे के साथ बहू की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची। आरोप यह है कि बहू उसके बेटे को प्रताड़ित कर रही है। शिकायतकर्ता पति का भी कहना है कि ये महिला इस शख्स के सांवले रंग पर तंज कसती है, उन्हें अपमानित करती है। इतना ही नहीं, एसी आईफोन की डिमांड भी होती है।
1: समस्या ये है कि मेरी वाइफ बहुत शो कर रही है, उसे प्रताड़ित हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और प्रॉब्लम इस बात की है कि वो हर बात पे हर दिन लड़ाई झगड़ा करती है मेरे से बहुत ज़्यादा।
2: मार जगह लड़ाई
1: वजह बस यही है कि बोलती तो मेरे को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। और मेरे को मतलब हर दिन एक उसके पापा मेरे को फोन आता है तभी लड़ाई होती। पापा हमें दो तीन बार धमकी दे चुके हैं मेरे को जान से मारने की, और वो कहती है तुम्हें मेरी अपने हाथ से खुद को मारने की कोशिश करती है। और जब वो खुद को मारने की कोशिश करती है तो वो समझ लो कि मेरे को फंसा दूंगी। जो वो 15 लाख रुपए मांगती है मुझसे, मैं बड़े दिक्कत है। हाँ बोलती है, ये बोलती है कि तुम काले हो उसके लिए, और मेरा बेली करता है सब चीज़ें और सब घर पे।
2: आईफोन की मांग कर रही है,
1: आईफोन के डिमांड करती है।
2: शादी कितने साल,
1: अभी 2024 में शादी हुई थी, 18 फरवरी को हुई थी।
0: तो शिकायतकर्ता सास का कहना है कि उनकी बहू लंबे समय से उनके बेटे और पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने अपनी बहू पर कई संगीन आरोप लगाए। हालांकि अभी तक इस मामले में आरोपी का पक्ष सामने नहीं आया है।
3: 5.1 करती है,
2: आईफोन
3: चाहिए मुझे, आईफोन चाहिए। दो फोन तो टूट दिए, शादी को 2 साल हो गए, 3 साल चल रही है, आईफोन की डिमांड कर रही है। हम आईफोन कहाँ से दे सकेंगे इसको, हैं? शिकायत की हमने किलेगट थाना की, कले कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे आए सुनवाई करने के लिए, मेरे बेटे को न्याय मिला, बस बेटे को मारपीट करती है, टॉर्चर करती है रात दिन। घर से निकाल दूंगी तेरे माँ भाई को, घर से निकाल, और मेरे को घुमा में ले जा, सब जगह लेकर जाता, हम रोक टोक नहीं करते, तो भी रात दिन परेशान करती है उसको।
0: तो जब तक आरोपी का पक्ष सामने नहीं आता, ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सही है और कौन गलत। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जरूर जुट गई है। उम्मीद है कि जल्दी ही मामले का सच अब सामने होगा।
4: ग्वालियर के गोसपुरा नंबर 1 का मामला है। एक माँ और उनके बेटे के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनको उनकी बहू परेशान कर रही है। कुछ मांग वगैरह बहू के द्वारा रखी गई है, जिस संबंध में थाना पर आवेदन भेजकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है।
2: आत्महत्या की भी कोशिश कर चुकी है, धमकी देती है, मारपीट भी करती है, वीडियो भी दी है।
4: अब इस संबंध में जांच की जाएगी, जैसे तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
0: तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा हम इसी को लेकर कह रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त दीप्ति रंजन साहू जी जुड़ चुके हैं। ये प्रेसिडेंट हैं, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रोफेसर हैं, वुमेन जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज एंड सोशल ऑडिटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर भी हैं, ज्योति पांडे मेन राइट एक्टिविस्ट हैं, और मीनल पाठक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, ये भी एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी, अगर मेरी आवाज दीप्ति रंजन जी आप तक आ रही है तो आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
5: हाँ जी आ रही।
0: सर देखिए, मामला बहुत ही अजीब और बहुत ही चौंकाने वाला, हालांकि हम यहां पर यह भी बताते चलें कि अभी तक, क्योंकि बहू पर आरोप लगे हैं, बहू का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो दलील दी जा रही है, हम यहां पर किसी एक पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक जनरल सी बात करते हैं। सर ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि रंग काला है या मोटे हैं या तोंद निकली है, इस वजह से हम तलाक लेना चाहते हैं, ये एक आधार बना देते हैं लोग, और ये शिकायतें पुलिस स्टेशन तक पहुंचती हैं। कैसे देखते हैं सर आप इसको?
5: देखिए, इस तरह की सिचुएशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सिचुएशन है, हर मामलों में इसको सामान्यकरण करना मुश्किल है। जहां तक ये बात है कि अब महिलाओं की यदि आप डिमांड और उसकी जो एस्पिरेशन है, आकांक्षाओं को देखें, तो वो लोग भी मुखर होने लगे हैं। ऐसे समाज में जहां डाउरी और इस तरह की चीजें बातें पहले से चली आ रही थी, अब इसमें हो सकता है कि इनकी व्यक्तिगत एस्पिरेशन, व्यक्तिगत आकांक्षाएं ज्यादा हो, व्यक्तिगत आशाएं ज्यादा हो, और उसके बाद जो लग रहा था पिक्चर से तो दो बच्चे की माँ भी बनी है, लेकिन दो बच्चों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो उसमें जो जनरलाइज करना, सामान्यकरण करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, आरोप प्रत्यारोप की तो झड़ी लग जाती है, लेकिन ये एक परिवार के संदर्भ में, परिवार के जो उनकी माता पिता है, जो बहू की मतलब जो उनके उनका क्या कहना है, उसको बारे में तो हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी सास और उनकी जो उनकी जो उनके जो हस्बैंड है, उनकी तरफ से ये शिकायत की गई कि काले रंग के लिए, हो सकता है ये रंग का एक उनको एक सापेक्षिक वंचना, एक डिप्राइव फील कर रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड काले हैं, तो हो सकता है वो ज्यादा मुखर होगी, और उस मुखर होने की वजह से वो अपनी बात रख लेती है और उसको बुरा लगता होगा। दूसरी बात है कि जो आज की तारीख में जो भौतिकवादी समाज है उसमें डिमांड आज की तारीख में बहुत सारे लोगों का केवल पुरुषों की नहीं है, लड़कों का नहीं है, लड़कियों का भी होने लगा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये हमको शादी किए तो ये हमारा उनका जरूरी है कि हमको ये सारी चीजें दें, लेकिन ये कहाँ तक ये झगड़े की स्तर पे आ रहा है, सुसाइड की बात आ रही है, फिर वो एक प्रेशर एक है जिससे कि वो डरा रही है, तो उसमें ये व्यक्तिगत घटना होगी, उन परिवार की घटना होगी जिसके बारे में हम लोग सामान्य रूप में जानते नहीं है, इसलिए सामान्य रूप में नहीं जानते हैं, तो इसमें टीका टिप्पणी करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है कि आज की तारीख में पुरुष जितना मुखर हो रहा है, पुरुष जो डाउरी की बात करते हैं, महिलाओं को भी हमने देखा है कि बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे हस्बैंड्स को, परिवार को परेशान करने में भी आजकल आने लगे हैं, उस तरह की खबरें आ रही
0: है। बिल्कुल ज्योति जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए मामला बहुत हैरान करने वाला है, चौंकाता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज का सच भी सामने लेकर आता है, सोच भी सामने आती है। सोच किस तरह है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अब सोशल मीडिया का भी जमाना है, हम लोग बहुत आगे भी आगे चले गए हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जिसको इग्नोर करने लगे, रिश्तों को समझने लगे हैं। रिश्ता बनाने से पहले आजकल चर्चा इस बात की हो रही है कि लड़की और लड़के की काउंसलिंग होनी चाहिए, यहां तक बातचीत हो रही है, लेकिन शादी हुई, शादी के बाद किसी को इस तरह का तंज कसना कि आप काले हो, रंग को लेकर क्या अभी भी ये सोच हमारे समाज में, क्योंकि ये एक तरीके से नेगेटिव सोच है।
6: जैसा कि आपने कहा नवजोत जी, थोड़े रिश्ते बदल रहे हैं, ठीक है, हम मटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं।
0: हम यहाँ पर एक और चीज बार बार मैं उसका जिक्र करती चलूं ज्योति जी, वापस से बता दूं कि महिला का पक्ष सामने नहीं आया, हम एक जनरल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, एक पत्नी कालियोपति उस पर रंग को लेकर टिप्पणी करते, क्या रंग को लेकर टिप्पणी करना क्या सही है या नहीं? इनफैक्ट बॉडी शेमिंग भी क्या सही है या नहीं?
6: एक्चुअली बॉडी शेमिंग सही नहीं है, हमें पता है जब लड़कों पे ऐसे आरोप लगते हैं तो हम उस तरफ का पक्ष लेने भी नहीं जाते एक्चुअली, यहाँ तो हम फिर भी सोच रहे हैं कि लड़की की साइड का पक्ष नहीं आया है, पर सच यही है कि मटेरियलिज्म इतना बढ़ गया है, क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, और फर्क सिर्फ इतना है कि लड़की जब ये प्रॉब्लम होती है तो उसके पास वुमेन सेल है जाने के लिए, उसके पास 75 प्लेटफॉर्म्स हैं जाने के लिए, लेकिन देखिए उनको एसपी ऑफिस तक जाना पड़ा और फिर भी वो माँ कह रही है कि हम कोई मामला दर्ज नहीं किया गया क्योंकि पुरुष उत्पीड़न जैसा कुछ होता नहीं है। तो अब जैसा कि सब कुछ चेंज हो रहा है, बॉडी शेमिंग सही नहीं है, मुझे भी पता है, अगर लड़की को की जाए तो भी सही नहीं है, मैं खुद स्त्री हूं, मुझे खुद को बहुत बुरा लगेगा अगर इस तरह की बात हो, और अगर लड़के की जाए तो वो भी सही नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स दोनों को बराबर के हिसाब से जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। बार बार की मांग है हमारी कि इस तरफ की बात भी सुनी जाए, वो नहीं सुनी जा रही है, ये एक खराब बात है। इस महिला को एसपी ऑफिस तक नहीं जाना पड़ता अगर हमारे पास मेन कमीशन या मेन सेल जैसा कुछ होता, जहां पर बैठकर हम, और आपने भी टैगलाइन में भी दिया था कि तलाक हमेशा जो है सॉल्यूशन नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता है, मैं भी कह रही हूँ नहीं होता है, और ये जो काउंसलिंग की बात है ये बाद में भी की जा सकती है बैठाकर, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर दोनों की बात बराबर से सुनी जाए। और ये बिल्कुल गलत है, बॉडी शेमिंग आई एम अगेन सेइंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ दहेज और वो सब कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ ये बात हो रही है कि अगर यही बात स्त्री की तरफ से आई होती तो ये घरेलू हिंसा का केस बन सकता था, क्योंकि पुरुष की शेमिंग हो रही है इसलिए किसी तरह का कोई केस नहीं बन पा रहा है।
0: लेकिन उस पे जब उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है तो पुलिस ने भी उसको गंभीरता से लिया है। मीनल, मैं
6: कोई
0: अब
6: केस दर्ज नहीं होगा नवजोत जी, केस कोई भी दर्ज नहीं होगा, सिर्फ बला के समझाया ही जाएगा, केस कुछ भी नहीं बनेगा।
0: ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है महिला महिला का पक्ष हो सकता है तब तक सामने आ जाए, लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, निशा जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक जवाब मीनल से लेना जरूरी है। मीनल ये बताइए, आज की तारीख में गोरा काला मैटर करता है, मोटा पतला मैटर करता है?
7: मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन एनी टाइम्स आज की तारीख में बहुत मैटर करता है, बिकॉज अब इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप चाहे मिडिल क्लास से हैं चाहे लोअर क्लास से हैं, हर किसी को अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाना होता है कि हमारी किससे शादी हुई है, हमारे कैसे फंक्शंस हुए हैं, हम लोग कैसे दिख रहे हैं। तो आई बिलीव कि ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइड है सोशल मीडिया का, कि आप कैसे दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, इररिस्पेक्टिव कि आप नेचर वाइज कैसे हैं। लड़की की बहुत सारी अदर क्वालिटीज हैं यहाँ पर जिनको ध्यान देना चाहिए कि वो एक फैमिली को जोड़ के रख पाएगी कि नहीं, वो नेचर वाइज कैसे है, उसका अपने हस्बैंड से रिलेशन कैसे है, ये सारी बहुत ज्यादा अदर देन जस्ट द लुक्स। लेकिन इट्स अ वेरी स्टोरी स्टेट ऑफ अफेयर्स की इंडिया में तो हमेशा से ही लड़की के रंग पे बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, ये फेयर क्वांटिटी में बिक रही है और आज तक बिक रही है। देर इज नो टर्निंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट वी आर सम पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग आफ्टर दैट फेयर स्किन। मतलब हमारे यहाँ पर लड़की के अंदर जब आप देखने जाए तो सबसे पहले उसका रंग रूप देखा जाता है, इरिस्पेक्टिव कि वो क्या उसकी एजुकेशन है, क्या उसकी क्वालिटीज है, कैरेक्टर, ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस रेदर देन जस्ट स्किन कलर। हमें अब इस सोच से उभर के आना चाहिए, एंड बोथ जैसे आपने बोला कि लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ये सोच बहुत गलत है। आप किसी को किसी के रंग या रूप से बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे कि
0: जज नहीं कर सकते, हम टिप्पणी नहीं कर सकते। निशा जी अब आपको इंक्लूड करूंगी, बहुत सही पॉइंट यहाँ पर मीनल ने उठाया, यहीं से अपनी बात को आगे रखिए। हम अभी भी गुलाम हैं, हमारी मानसिकता अभी भी गुलाम है कि कोई इंसान अगर गोरा है तो वही एक खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम हो सकता है, लेकिन अगर कहीं उसका सांवला रंग है तो उससे लोग दूरी बनाते, ये होता है समाज में। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मीनल ने यहाँ पर कही है कि आज की तारीख में भी ऐसा होता है कि जब आप लड़की देखने जाएं या लड़का देखने जाएं, सबसे पहले उसके रंग पर बात होती है, फोन पर ही बात हो जाती कि लड़की देखिए अच्छा रंग गोरा है ना, ये बोला जाता है। इस मानसिकता से हम अभी तक क्यों नहीं उबर पाए हैं?
8: देखिए ऐसा है, मेरे ख्याल से ये सदियों से चलता है और एक लर्न्ड पैटर्न है, और जो बच्चे का बॉर्न एंड ब्रॉटअप भी होता है, इवन पेरेंट्स भी आई विल से फेयरनेस को लेकर बच्चों को कमेंट करते हैं। कई बार आपस में भी दो बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है, तुम्हारा भाई या बहन तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, इवन आपके कजन आपसे ज्यादा दिखने में खूबसूरत है। तो ये बचपन से आता है, इसी वजह से ये फेयर एंड लवली और कितने ज्यादा फेयरनेस प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी पॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन का हिस्सा है। क्योंकि अगर आपको पता हो अब्रॉड में भी बहुत ज्यादा रेसिज्म है, वो भी कलर को लेकर ही है। इवन अब बहुत सारे ऐसे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं जहां पर आपके कलर को नहीं इंपॉर्टेंस दी जाती, बट स्टिल अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो चाहे वो गोरा हो या काला हो या पतला या मोटा हो, अपीयरेंस से कैसे पार्टनर दिखता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट जो पार्टनर है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट में होता है। लड़की पतली हो मेरा पार्टनर जो है वो सिक्स पैक्स बनाता हो। आजकल की जो युवा जनरेशन है उनके भी ये थॉट्स है। इवन कुछ लोग जिम जो जाते हैं बॉयज उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर्ड, अगर आप गुड लुकिंग नहीं है, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द वाइब्स भी अपने पार्टनर को कंपेयर करती हैं कि तुम दिखने में अच्छे नहीं हो। तो ये फीमेल की भी बात है और मेल्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी वाइफ जो है वो से जितनी भी आइडियल, चाहे वो मलाइका अरोड़ा खान है या जितनी भी आई वुड से वो डांसर्स होती हैं, उनके जैसी नहीं दिखती हैं। तो क्योंकि शादी के बाद, बच्चा होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन अपनी हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसको बच्चों पर फोकस करना होता है, करियर पर या घर की लाइफ पर फोकस करना होता है। तो ऐसे समय में बहुत बार ऐसा होता है कंपेरिजन होता है। तो आपकी बॉडी शेमिंग हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बना हुआ है और बच्चे भी, इवन बचपन में अगर बच्चा मोटा होता है तो उसको उसके बुली किया जाता है, उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते हैं, पेरेंट्स जैसे मैंने बोला कंपेयर करते हैं, कजन्स, खुद के सिबलिंग्स आपको कंपेयर करते हैं, और कलर को लेकर कई बार इवन इतना बोला जाता है कि आपको दूसरे के घर से लाया गया, आपको अडॉप्ट किया गया है क्योंकि आपका कलर सेम नहीं है। तो ये एक बहुत नॉर्मल हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। हाँ, बट ये नॉर्मल नहीं है, बॉडी शेमिंग नॉर्मल नहीं है, ये अपने आप में एक अब्यूज है। आप वर्बली अब्यूज कर रहे हैं सामने वाले की सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ वर्थ को हार्म कर रहे हैं, सामने वाले को इंफीरियर दिखा रहे हैं, जिससे सीधा असर उनके कॉन्फिडेंस लेवल पर पड़ता है। और रिश्तों में तो आता ही है, क्योंकि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो आपका कंपैरिजन आपके जीजा के साथ किया जाता है, मेरे भाई मेरी बहन का पति सुंदर है, मेरी भाई दिखने में अच्छा है, मेरे पापा दिखने में अच्छे हैं। तो ये लड़की भी करती है और लड़का भी करता है। आई वुड से वी डन सर्टेन केसेस जहां पर मैन बोलता है कि मेरी बीवी जो है खूबसूरत नहीं है, उसका कॉम्प्लेक्शन व्हाइटिश है, बल्कि मेरी परिवार में मेरे समेत सब खूबसूरत है। वाइस वर्सा वाइफ भी ये कंप्लेंट करती है कि मेरा पार्टनर या तो दिखने में अच्छा नहीं है पर उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, आई एम नॉट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स दैट। तो ये एक नॉर्मल, मैं वही कह रही हूँ, कॉन्वर्जेशन में एक्सपेक्टेशन का हिस्सा है। अब देखिए, गलत या सही तो कुछ नहीं होता है, बट हाँ, अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन बुरा है उसके बेसिस पर जज कर रहे हैं तो ये एक सुपरफिशियल ट्रेट है जो मैरिज में लंबे समय तक नहीं चलता। पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जिसे मैं रोज सुबह उठकर जिसका चेहरा देखता हूँ, जिसे मैंने रोज देखना है सुबह उठकर, वो कम से कम खूबसूरत तो होना चाहिए, मेरी आंखों को वो आकर्षित तो लगना चाहिए।
9: लेकिन उसमें भी निशा जी वही आती है ना कि खूबसूरती तो सामने वाले की आंखों में है, खूबसूरती आप उस शख्सियत खूबसूरत है या चेहरे खूबसूरत तक आप चाहते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी एक बार दीप्ति रंजन साहू जी आपके पास आना चाहूंगी। सर, नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जब भी किसी शादी में मनमुटाव आता है, विवाद होता है, तो वो दहेज की बात हो गई या आपसी दोनों के रिश्ते नहीं निभे या फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं या बच्चों को संभालने को लेकर इश्यूज आ जाते हैं, इन लॉज को लेकर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि कॉम्प्लेक्शन डार्क है, इस वजह से दोनों के बीच में यहां तक बात पहुंच जाती है कि दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, ये बहुत अटपटा लगता है मामला। और जबकि पहले ऐसा तो नहीं है कि दोनों ने नहीं देखा होगा एक दूसरे को, दोनों ने पहले ही देखा होगा, उसके बाद ही शादी हुई है।
10: देखिए, प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, जब कंपैटिबिलिटी की बात आती है, जब ये शुरुआत में शादी हुई होगी, हो सकता है कि इनके घर वालों ने शादी किया जिसके लिए वो ज्यादा इच्छुक नहीं होगी, उसको मैनेज कर लिया, फिर उसके बाद देखा कि चलो काला है कोई बात नहीं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट व्यक्तिगत घटना को बताऊं। उसके बाद उन्होंने देखा कि मेरी जो डिमांड है वो भी पूरा नहीं हो रहे हैं, मेरी जो आकांक्षाएं हैं वो भी पूरा नहीं हो रहे हैं, और उस तरह की हो सकता है कि उनकी उम्मीदें अपने हस्बैंड से ज्यादा हो, जो कि फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में आज की तारीख में मैं देखता हूँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो

0: में संवेदनशीलता बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हमको लग रहा है कि शायद ये संयुक्त परिवार हो या उनके बातचीत करने के लिए कोई इस तरह की परिवार छोटे परिवार हो, तो उसमें हो सकता है कि इनकी परिवार उनके परिवार में कोई संबंध ना हो। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो एक संवाद है, ये संवादहीनता की स्थिति भी इस तरह की घटनाओं को लाता है जिसमें वो ब्लेम गेम शुरू होता है, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगता है। तो व्यक्तिगत घटना को लेके सामान्यकरण करना मुश्किल है, लेकिन ये जनरली बॉडी शेमिंग इज ए पार्ट ऑफ इंडियन माइंडसेट, और उसके लिए मार्केट भी किसी तरह से जिम्मेदार है। जो कंज्यूमर कल्चर है, जो उपभोक्ता संस्कृति है, आपने देखा होगा कि पुरुषों के लिए भी वो आ रहा है कि जो कॉस्मेटिक्स आ रहा है कि भाई गोरे बन जाएंगे, फलाना हो जाएंगे, बड़े बड़े स्टार उसको ऐड करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो कहने की मतलब ये है कि दैट उसका तो एक एक वो चलन है और उसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि जो हस्बैंड है उसके लिए वो बेपरवाह होगा, उससे कोई मतलब ही नहीं
1: ठीक
0: होगा
1: है।
0: कि भाई जो कलर है जो भी है हमारा है। तो रिएक्शंस कहाँ से आ रही है वो तो एक काउंसलिंग से, एक संवेदनशीलता से, दोनों
1: लेकिन
0: की बात
1: हाँ ठीक है सर, लेकिन ज्योति जी आपके पास आते हैं, लेकिन क्या यह आधार बन सकता है दोनों के डिवोर्स का? अभी हम कल ही एक मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने इसी को लेकर बातचीत की थी कि 25 साल बाद जो कोर्ट ने फैसला सुनाया वो ये कहा कि आधार ही नहीं, और आधार ये दिया गया था पति पत्नी की तरफ से कि पत्नी खाना नहीं बना पाती, अच्छा खाना नहीं बनाती, ये आधार दिया था। बहुत लंबा केस चला, आखिरकार हाईकोर्ट तक मामला गया और हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो आधार ही नहीं बनता है डिवोर्स का। तो यहां पर जब पत्नी कह रही है कि मेरे पति का रंग काला है, क्या रंग काला, उसका मोटा हो जाना या कुछ इस तरह की चीजें जो जो एक तरीके से बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग या फिर रेसिज्म सोच को दिखाती हैं, क्या ये आधार है? क्या कोर्ट इस बात को मानेगा?
2: नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मानेगा नवजोत जी। मैं खुद लॉयर भी हूं, तो ये तो पुरुष की तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। अगर ये पुरुष जाकर शिकायत भी करता है, मान लो आज को अगर ये कोई केस फाइल कर दे कि मेरे ऊपर जो है ये क्रुएलिटी के आधार पर मान लो डिवोर्स फाइल कर देता है, तो लड़की पहले इसके ऊपर दहेज हत्या दहेज का केस करेगी, अपने आप को कट कर ले। जैसे उसकी माँ कह रही है कि वो सुसाइड की धमकी देती है, तो वो मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तो वो दहेज हत्या का मामला बन जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस बन जाएगा, काफी सारे केसेस ये फाइल कर देगी। ये बिल्कुल भी तलाक का आधार नहीं है, और अगर है भी तो लड़के की तरफ से तो बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पहले बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर 25 साल बाद ये आएगा कि ये तो तलाक का मामला था ही नहीं और ये तलाक का आधार होता ही नहीं। तलाक के तो आधार चार हैं मोटा मोटी, और पांचवा भी अब जुड़ गया है कि हाँ इरेट्यूबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, दोनों साथ में नहीं रहना चाहते तो ना रहें। लेकिन ये आधार बॉडी शेमिंग वाला बिल्कुल नहीं है, दोनों ही साइड से नहीं है, लेकिन पुरुष की साइड से। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ बिकॉज देर इज नो लॉ, और अभी हम जज अमन शर्मा का सुइसाइड देख चुके हैं, उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी फीमेल्स के सुइसाइड पे काफी बहस होती है, होनी भी चाहिए। मुझे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस साइड की बहस नहीं होनी चाहिए या उस पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ काउंसिलिंग की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो अगर लड़की की साइड से होती तो घरेलू हिंसा का केस पक्का बनता। मैं खुद लॉयर हूं, मैं खुद सलाह देती हूँ लड़कियों को कि ये तो घरेलू हिंसा में आता है, यदि आपकी शेमिंग की जा रही है, यदि आपसे ऐसे डिमांड्स, अगर ये लड़की कह रही है कि हमें आईफोन मांगना चाहिए, एसी चाहिए, अगर लड़का मांग ले तो वो दहेज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, जो एक हमने खाई जो बना दी है ना, वो बहुत गलत है। जैसा कि सर ने कहा अभी कि एक किसी मामले से हम सबको नहीं आंक सकते हैं, वही बात है कि हम एक मामले से नहीं आंक सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे मामले रोज आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स पर, तो ये एक मामला नहीं है,
1: नहीं
2: ये
1: तो आपके
2: बहुत
1: पास
2: सारा
1: ऐसा कोई
2: प्रॉब्लम
1: केस
2: है,
1: आया
2: बहुत
1: है?
2: बड़ा प्रॉब्लम है।
1: मैं भाई, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी एक और ऐसा केस आया था जिसमें पति जो है वो पुलिस स्टेशन गया था अपनी पत्नी की शिकायत करने के लिए कि
2: जी
1: ये मुझे मोटा कहती है। तो ये
2: हाँ,
1: एक ऐसा एक और केस आया था जिसमें पति के बाल नहीं थे सर पे, उन्होंने
2: नवजोत
1: कहा
2: जी
1: कि ये
2: हाँ,
1: मुझे इस
2: फिल्म भी
1: तरीके
2: थी
1: की
2: ना
1: टिप्पणी करती
2: गंजेपन
1: है।
2: पे, आयुष्मान खुराना थे, उसमें वो फिल्म बनी थी जो गंजे थे, बाद में पता चलता है कि वो गंजे हैं, तो वो एक फिल्म पूरी बनी थी इस पर, ठीक से उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। मेरे हिसाब से बॉडी शेमिंग जो है वो बहुत ही सीरियस इशू है जिस पर बात नहीं होती, और मेल साइड से नहीं होती है, फीमेल साइड से फिर भी हम बोल रहे हैं। हालांकि ये गोरेपन को लेकर ऑब्सेशन ना मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे देश में अगर आप वैसे देखा जाए तो 60% लोग आपको सांवले, बीटेश, काले ऐसे सब मिलेंगे, ठीक है, भगवान भी काले, मतलब मैं इधर दक्षिण में रहती हूँ बैंगलोर में, भगवान भी सब काले हैं, लेकिन फिर भी हमें ये ऑब्सेशन है। वही मैम ने जो बोला, गुलामी गई नहीं है हमारे डीएनए से, मे बी वो प्रॉब्लम है
1: बिल्कुल। मीनल, अब
2: जी।
1: मैं
2: आप
1: आपके पास आना
2: बताइए।
1: चाहूंगी। आप देखिए, रिश्ते किस तरीके से बदल रहे हैं, वजहें बहुत अलग अलग हैं। कोई पतला, कोई काला है तो इस वजह से डिवोर्स ले लो, कोई मोटा है इस वजह से, किसी के सर पर बाल नहीं है तो इस वजह से ले लो, ऐसा दोनों तरफ हो सकता है, पुरुष के साथ भी और महिला के साथ भी। लेकिन इस तरह की शिकायतें

0: बार आ रही।
1: मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी और आजकल तो सब युवकों और युवतियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं ना, तो किसी रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज के साथ एंटर मत करें, बिकॉज इट विल नॉट स्टे। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में ये सोच के एंटर कर रहे हैं कि लड़का पैसे वाला है, अगर सुंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी इससे शादी कर लेती हूँ क्योंकि पैसे हैं तो मैं निभा लूंगी, अगर आप इस कॉम्प्रोमाइज के बेस पे शादी कर रहे हैं तो अनडाउटेडली ये टूट जाएगी। बिकॉज आप किसी भी कॉम्प्रोमाइज पे शादियां जब करते हैं तो वो जो कॉम्प्रोमाइज आपका बेस बनता है ना, वो बेस हिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आप शादी उसी व्यक्ति से करें, रिलेशनशिप उसी के साथ बनाएं जो आपको पसंद हो, इररिस्पेक्टिव, जिसको आप प्यार करते हैं, इररिस्पेक्टिव उसके रंग रूप शेप साइज पैसा, इस सबसे अलग हटके अगर आप उस इंसान से प्रेम करते हैं तभी आप अपनी जिंदगी के 50-60
0: ठीक
1: साल
0: है।
1: उसके साथ हैप्पीली निकाल पाएंगे। डू नॉट एंटर इन टू अ रिलेशनशिप थिंकिंग कि मेरे पास ये नहीं है उसके पास ये है चलो शादी कर लेते हैं। आप अपने में एक पूर्ण इंसान है, मतलब आप कॉन्फिडेंट खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद कमा रहे हो, खुद सोशली बिहेवियर हो, आपका सब कुछ आप खुद हो, और उसके बाद आप एज अ कंप्लीट
0: चलिए,
1: पर्सन और कंप्लीट पर्सन से शादी
0: यहाँ
1: करें।
0: कंपैटिबिलिटी की बात आप कर रही हैं, लेकिन जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि रंग काला है, जिसको लेकर पति को पुलिस स्टेशन कंप्लेंट तक करने के लिए जाना पड़ता है, तो यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ पर सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है, क्या इसकी वजह से ऐसा हो रहा है और क्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं, सॉल्यूशन क्या, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।

0: Tailgate Top 20.
1: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
0: The Tailgate Top 20.
2: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
1: Try to keep up.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: बच्चों के ब्लैक एंड व्हाइट सच को लेकर निशा जी आपके पास आना चाहूंगी। मतलब जिंदगी बहुत आगे बढ़ गई, लाइफ एडवांस हो गई, सोशल मीडिया पर लोगों का आधे से ज्यादा समय बीतता है। सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहा है?
1: देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत बार इवन फीमेल्स भी ये कंप्लेंट करती हैं कि मेरे जो पार्टनर हैं वो मॉडल्स को चेंज करते हैं। तो आप सोचिए, इवन मैंने अभी एक ऐसा केस भी किया था कि जिसमें एक वाइफ को इनसिक्योरिटी थी और उस इनसिक्योरिटी के चलते उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया और अपने पार्टनर को भी, क्योंकि उसने कहा कि ये रूल दोनों पर अप्लाई होगा। अगर मैं अपने पार्टनर को चाहती हूँ कि वो सोशल मीडिया पर ना रहे क्योंकि वो ऐसी लड़कियों को लाइक करता है जिनकी फिगर्स हैं, जो मॉडल लुक की हैं, तो मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी, मैंने अपना इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना होता है। और दूसरी बात, कंपैरिजन वहां से भी आता है क्योंकि लोग आजकल जो है फिल्टर्स लगाते हैं जिससे अपना चेहरा बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो हर किसी को खूबसूरत दिखना है, उसके चक्कर में कंपैरिजन अपने आप आ जाते हैं। इवन हम सबको पता है कि रील्स और पिक्चर्स को खिंचवाने के लिए पोज सही नहीं आया, चेहरे का कॉम्प्लेक्शन डार्क आया है, एंगल सही नहीं है, वीडियोस बनाना और ये फिल्टर, सारी चीजें जो है वो बहुत कॉमन है। और वो आई वुड से स्पेशली अगर देखा जाए, हम मानते हैं ऐसा कि जो लोग इन चीजों पर ज्यादा ध्यान भी देते हैं कलर पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज होते हैं। अगेन, आउटर ब्यूटी जो है उससे जिंदगी नहीं चलती है, बट मैं आपको बता दूं, कंपैटिबिलिटी में एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आपकी फिजिकल अपीयरेंस या आपके पार्टनर का लाइफस्टाइल, हैबिट, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो कई बार लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन महसूस नहीं होता है क्योंकि पार्टनर का कलर उनके अकॉर्डिंग नहीं है या जो पार्टनर है उनकी तरह जैसा वो चाहते हैं वो वैसा स्लिम या लीन नहीं है। तो ये अगेन कंपैटिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें अपीयरेंस का रोल आता है, क्योंकि अगेन कुछ भी सही या गलत की बात नहीं है, बट अगर किसी को कोई पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, तो आप इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। बट हम अगर ये कहें कि ये कंपैटिबिलिटी के क्राइटेरिया में नहीं आता है तो ये कंपैटिबिलिटी के क्राइटेरिया में आता है, ये हमें मानना पड़ेगा। अब ऑब्वियस है, बट अगेन लॉन्गिविटी में इंसान का कलर वक्त के साथ, उसके चेहरे पे झुर्रियां भी आती हैं, उसके कलर कॉम्प्लेक्शन से दुनिया नहीं चलती है, उसका दिल कैसा है, उसकी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो आपको किस तरह इमोशनल सपोर्ट करता है, आपके थिन एंड थिक में खड़ा रहता है या खड़ी रहती है, वो मैटर करता है। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम ये समझें, और जब हम काउंसलिंग भी करते हैं तो कपल को ये समझाते हैं कि लुक्स एक हद तक मैटर करती हैं, अगर आप लंबे समय कंपैटिबिलिटी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो वो पर्सनालिटी पर होता है, उसके बिहेवियर पर जाता है, नेचर पर जाता है। बट अगर
0: लेकिन आज की डेट में अभी भी ये मैच्योरिटी मिसिंग है, हर जगह ये मैच्योरिटी मिसिंग है, कोशिश तो की जाती है। लेकिन दीप्ति रंजन जी, क्या इस समस्या का समाधान है, बताइए।
2: पर यही कहता हूं कि व्यक्ति के बीच में जो शादी हो रही है और जो पहले परिवार के बीच में शादी होती थी और एक कलेक्टिव एक सपोर्ट था, अंडरस्टैंडिंग थे, कम्युनिकेशन था, एडजस्टमेंट था और वो एक लेवल था जिसे शेयरिंग की बात होती थी, ये आज की तारीख में शेयरिंग नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया में सब हम लोग घुस जाते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि भाई दैट इज माई वर्ल्ड, मेरे ही दुनिया। ये होता है कि भाई जो एक गांव में सब हम लोग घुस जाते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि भाई दैट इज माय वर्ल्ड, मेरे ही दुनिया यही है।
0: सर, क्या सोशल मीडिया रिश्ते खराब कर रहा है या बना रहा है?
2: तो साथ साथ साथ ये भी होता है कि भाई जो एक ईगो को यदि आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खाएंगे तो क्या होगा भाई, जब ये आपकी अपना जो एक है कि मैं जो कह रहा हूँ सही है, सो देन मैटर एंड्स हियर, मतलब समस्या खत्म वही हो गई, समस्याओं की जड़ शुरू हो गया कि मैं जो कह रहा हूँ सुनो, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो इन सब चीजों की वजह से जो व्यक्तिवादी समाज जो आजकल धीरे धीरे हम लोगों के जीवन में आ रहे हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, वो एकांतवाद को पसंद नहीं करते हैं। वो एकांतवाद नहीं, आइसोलेशन का मतलब है क्या, प्राइवेसी, प्राइवेसी चाहिए हमको, प्राइवेसी। और उस प्राइवेसी में उनको शायद आईफोन और उसको एसी वुड हैव बीन कंफर्टेबल लेवल पे ले आती, तो उन्होंने उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया। आई डू नॉट नो, मैं हम लोग पर्सनली
0: लेकिन
2: हम लोग तो
0: सवाल
2: नहीं
0: ये
2: जानते
0: है ना कि वो डिमांड्स अगर क्या वाकई यहीं तक रुकेंगी, जाहिर सी बात है कि वो महिला भी जानती होगी कि उसका पति कितना सक्षम है।
2: मैडम ऐसा है कि जब भी हम किसी को आरोप लगाते हैं ना, दो सही होगा 10 गलत होगा, तो उसमें हम लोग हर चीजों को भी जोड़ देते हैं, तो ये एक लेवलिंग कॉन्सेप्ट है, लेवलिंग लगा देते हैं कि भाई हमारे घर में नौकरानी आती तो यही चोरी की होगी, तो यही जो कमजोर है उसी ने किया होगा, हो सकता है कि बच्चे ने अपने पर्स से उठा लिया हो। सो द क्वेश्चन, तो सवाल ये उठता है कि एक ट्रस्ट, ये रेसिप्रोसिटी एक जो होता ना आपस में, एक है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, हो सकता है उस परिवार में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। आजकल हम लोग कुछ भी करते हैं, मैडम जो है काउंसलर उनके पास भी चले जाते हैं, लेकिन हमारा पहले जमाने में परिवार के लोग और परिवार के भाई बहन सारे सब कम्युनिकेशन उन्हीं के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, और आज की तारीख में यदि देखेंगे वो जो कलेक्टिव स्पिरिट है, कलेक्टिव लिविंग है, वो कम होने की वजह से इन सभी कमियों का आगे उजागर हो रहा है। और जहां तक लॉ है, लॉ संविधान के और नियमों के लिए इतने लोग जागरूक हो गए हैं कि कुछ भी हो तो हम किसी को परेशान करना है तो RTI कर दे, किसी को परेशान करना है तो हम FIR कर दे, तो ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी हो गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन ये नहीं कि महिलाओं ने गलती कर दिया, इट्स नॉट दैट, कि पुरुष महिलाएं दोनों इसमें आ रहे हैं, और पहले पुरुष बहुत धड़ल्ले से करते थे, महिलाएं अब करने लगे। क्वेश्चन यहाँ पे
0: लेकिन
2: आता
0: यहां
2: है
0: पर यहाँ हम वापस सर इस बात को भी कोट कर दें कि महिला का पक्ष अभी सामने नहीं आया है, हम केवल एक मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या रंग या फिर बॉडी शेमिंग एक आधार बनता है डिवोर्स का। ज्योति पांडे जी, सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, सोशल मीडिया ने क्या रिश्ते बनाए हैं या बिगाड़े हैं?
3: मैम बिगाड़े हैं, द वे केसेस आर कमिंग, मेरा प्लेटफॉर्म है श्रोत सखा, तो वहां पर लड़के लड़कियां एज आई सेड दोनों आते हैं, अनमेरिट भी आते हैं, क्योंकि मैंने अभी ये कहना शुरू किया है कि प्लीज जो आप कह रहे थे ना 101% सच है काउंसलिंग, लेकिन अब जैसा कि दीप्ति सर भी बोल रहे हैं कि हमारे पास बड़े परिवार नहीं है, हम लोग जो है आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, थोड़ा प्राइवेसी पसंद हो गए हैं, पर हमारे पास फिर भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमको ये बता सकें कि भाई ये सही है या नहीं। तो मैंने अभी लोगों से ये पूछना शुरू करा है कि तुम्हें शादी क्यों करनी है, क्या तुम्हें इंस्टाग्राम में शो ऑफ करने के लिए शादी करनी है, लहंगा खरीदने के लिए शादी करनी है, शेरवानी या वो एंट्री दुल्हन की कैसे होगी, इस पे डांस करेंगे, इस पे ये हल्दी लगेगी, इस पे ये मेहंदी, नहीं, लॉन्ग टर्म वही चीजें चलती हैं जो मैम अभी कह रही थी निशा मैम, कि जब आपकी पर्सनालिटीज, जब आप देखो सिंपल सी बात है, हर रिश्ता स्टेल होता चला जाता है, बोरिंग होता चला जाता है, क्योंकि हम सब कुछ जान गए हैं आपके बारे, एक दूसरे के बारे में, तो आप उस बोरिंग में आप कैसे रहेंगे? तो मेरा ये प्रश्न होता है लड़के लड़कियों से कि जब बोर हो जाओगे, जब मतलब आप जिस तरह से ऐश्वर्या राय की ट्रोलिंग चलती है, तो सबको हम लोग को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हमारी भी ट्रोलिंग हो सकती है, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत सारे फिल्टर्स, हम लोग दुख वाला चीज नहीं दिखाते ना, मैं भी अपनी फोटो शेयर करूंगी तो खुशी वाली करूंगी, मैं कभी नहीं बताऊंगी कि आज मेरा डिप्रेस्ड डे है, तो वहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा प्रेजेंट किया जा रहा है, लोगों की शादियां हो रही हैं तो तरह तरह के डेकोरेशंस और ये सब हो रहे हैं, तो वो लालसाएं जाग रही हैं, तो लड़के और लड़की से बिठा करके ये प्रश्न करना बहुत जरूरी है कि आपको विवाह आखिर करना क्यों है, और विवाह करना है तो आप कैसे निभा पाएंगे, तब जबकि झुर्रियां पड़ जाएंगी, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, दोनों के शरीर पर जो है स्ट्रेच मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, लड़का गंजा हो जाएगा, उसकी तोन निकल आएगी, डार्क सर्कल्स आते आते ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बहुत गोरा था वो आधा काला और आधा गोरा हो जाए, तब आप कैसे रहेंगे, तो ये सारे हार्ड प्रश्न पूछने बहुत जरूरी हैं। गुडी गुडी चीजें जो हमने फिल्मों में देखी है ना, कि रोज फूल लेके आता है, रोज बहुत प्यार कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैं अभी मैरिड हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड होंगे, उनको पता है ये चीज कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देर आर डेज जो बिल्कुल ग्लूमी होंगे, जहां बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आप उन दिनों को एक साथ कैसे हैंडल करेंगे, काला गोरा होना अगर मैटर करता है, अगर निकल के आता है काउंसिलिंग में, उनसे कहिए कि भाई अब अभी आपको और मैच्योर होने की जरूरत है, आप शादी मत कीजिए। इसके लिए और एक चीज जरूरी है कि जितनी थेरेपीज काउंसलिंग हम बता रहे हैं वो थोड़ी इकोनॉमिकल हो, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे लगता है इन सारे सॉल्यूशंस पे अगर ध्यान दें, और साथ में ये कि मेन को भी एक प्लेटफॉर्म दे दें जहां पर वो वेंट आउट तो एटलीस्ट कर सके कि भाई उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या शंकाएं, ऐसा नहीं हो सकता है कि उनकी समस्याएं ना हो, ये तो हम नहीं मान के चल सकते हैं। संविधान अगर स्त्रियों को अधिकार देता है तो वो ये नहीं कहता है कि पुरुषों के अधिकारों को दबा दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, आप अधिकार दीजिए लेकिन दूसरे के अधिकारों को दबा कर आप अधिकार ना दीजिए।
0: बिल्कुल, निशा जी कुछ कहना चाह रही है, निशा जी?
1: मैं एक्चुअली काउंसलिंग को लेकर कहना चाह रही थी, दीप्ति रंजन जी ने बोला, ज्योति पांडे जी ने बोला, पहली चीज मैं एज ए काउंसलर बता दूं, जो काउंसलिंग आप घरों में करते हैं, जो आप अपने दोस्तों की करते हैं, एक प्रोफेशनल काउंसलर उससे बिल्कुल अलग तरीके से काउंसलिंग करता है। ना कोई वकील उस लेवल की काउंसलिंग करता है। अभी मैं कुछ कंसेप्ट्स का नाम लूंगी, डॉक्टर दीप्ति रंजन को भी शायद उन कंसेप्ट्स का नहीं पता होगा, ज्योति जी को भी नहीं पता होगा। इनमेंचमेंट, सेवियर कॉम्प्लेक्स, माटे कॉम्प्लेक्स, आई एम रियली सॉरी टू से, जब हम बात करते हैं ट्रॉमा बॉन्ड की, आजकल हम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, देखिए बहुत सारे कोडिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंसी इन रिलेशनशिप्स की, ये सारी टर्मिनोलॉजी किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास होंगी जिसने पढ़ाई करी है। कोई भी अगर आपके भाई बहन है, इवन जब हम बोलते हैं सेल्फ सेक्रीफाइस, जो कई सालों से सदियों से एक नॉर्मलसी है हमारे परिवार में, जो मदर या फादर करते हैं अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए, मदर अपने बच्चों के लिए करती है, पति के लिए करती है, मोस्टली हमने फादर्स को देखा वो अपने भाई बहनों को, पूरे परिवार को पालते हैं। तो ऐसे में सेवियर कॉम्प्लेक्स या माटे कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं, हिंदुस्तान में इवन वर्ल्ड में माना जाता है कि सेल्फ सेक्रीफाइस साइकोलॉजी के अनुसार एक टॉक्सिक ट्रेट है। हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में। और हिंदुस्तान की जनता में स्पेशली अगर वुमेन और मेन दोनों की बात करें तो सेल्फ केयर नहीं सिखाया जाता। आज हम सेल्फ केयर की बात जो जनरेशन करती है, मिलेनियल्स या जो भी आजकल की जनरेशन जी जनरेशन है,
0: जेन जी,
1: वो एक अनदर जेन जी अनदर ही लेवल पर करती हैं। उनको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, जबकि आई वर्सेस वी होता है। अगर हम हाइपर इंडिपेंडेंट है, अगर हम अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज के लिए, वो भी ट्रॉमा बॉन्ड का हिस्सा है। अगर हम अपने पार्टनर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो वो भी एक डिपेंडेंसी ट्रेट है, जहां पर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। तो हर कपल में इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिस्ट मैरिज काउंसलर्स के पास जाने की जरूरत है। प्लीज पढ़े लिखे क्वालिफाइड काउंसलर्स के पास जाइए। देखिए मैं यही कहूंगी, उम्मीद करती हूँ अगर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे मैम कह रही थी, कुछ पढ़े लिखे साइकोलॉजिस्ट हैं जो यंग होते भी हैं, ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं। और मुझे लग रहा है अगर हम अपने गहनों को बनाने में, अपने लहंगों को बनाने में, शादी के में पूरे खानदान को खाना खिलाने के, पूरे परिवार, इवन आप अपने पूरे विलेजेस को खाना खिलाने में मनी स्पेंड करते हैं, तो काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर पैसा खर्च करने में क्या प्रॉब्लम है? हम सोचते हैं गोल्ड डालना जरूरी है, वो मुझे मेरी सास ने या मेरी माँ ने दिया है। क्या एक माँ या बाप, क्या एक सास या ससुर अपने बहू का या बेटे को काउंसलिंग क्यों नहीं करते? आज त्रिशा का केस देख लीजिए, अगर काउंसलिंग के लिए ये कपल गया होता तो शायद त्रिशा के भी अगर कोई डिप्रेशन के ट्रेड्स है, बॉर्डरलाइन के ट्रेड्स है, वो आगे आ जाते, सुसाइडल टेंडेंसीज है वो आगे आ जाते। यही अगर इनके ड्रग एडिक्ट्स के इश्यूज है, क्योंकि हम काउंसलिंग करते हैं, कपल्स ड्रग्स लेते हैं कई बार, दोनों हस्बैंड वाइफ ड्रग्स लेते हैं,
0: तो इसके साथ साथ काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। ज्योति जी एक छोटा सा कमेंट, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, फिर मीनल आपके पास लास्ट कमेंट के लिए।
3: नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं तो काउंसलिंग की बहुत पुरजोर समर्थक हूं, जो भी आपने टर्म्स बताए, डिग्री नहीं है मेरे पास, आई हैव बीन अटेंडिंग सो मेनी साइकोलॉजिस्ट के साथ, क्योंकि थैंकफुली आप लोग बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैडम काउंसलिंग इज मस्ट, शादी तो करिए ही मत। आप जो बोल रही है ना, वो इतना बड़ा टैबू है, काउंसलिंग बोल दो लोगों को लगता है पागल हो गया ये आदमी, इसलिए काउंसलिंग के पास जाना है, काउंसलर के पास। आज के
0: नहीं, बहुत जरूरी है, ठीक है।
3: लहंगा थोड़ा कम ले लीजिए, जैसा मैम ने बोला,
0: सस्ता ले लीजिए, वो पैसा थोड़ा काउंसलर को दिया जा सकता है।
3: शादी क्यों करनी है ये पूछो इनसे,
0: एग्जैक्टली,
3: और जिनको बच्चे करने हैं बच्चे क्यों करने हैं ये बताओ।
0: मीनल एक लास्ट कमेंट इसी पर, समाधान क्या है?
4: मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया है, चाहे आप इसे बुरा माने चाहे आप अच्छा माने, ये एक न्यू रियलिटी ऑफ लाइफ है। पीपल वुड वॉन्ट टू शो कि वो कैसे लग रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल और सब कुछ दिखाना चाहते हैं, अपने हस्बैंड्स को दिखाना चाहते हैं, अपनी वाइफ्स को दिखाना चाहते हैं, और दूसरों को देखकर अट्रैक्टेड भी फील हो रहे हैं। टिंडर जैसी एप्स इज अ न्यू वे ऑफ कनेक्शन और लोग इसको बहुत भारी मात्रा में यूज कर रहे हैं। इट्स जस्ट वन ऑफ द ऐप, बट देयर आर सो मेनी एप्स लाइक दैट इन द मार्केट। तो मैं यहाँ पर दो तीन बातें कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं या जो हमारी मानसिकता है, डेफिनेटली उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन यू नो, ये बॉडी पॉजिटिविटी या बॉडी शेमिंग के नाम पे ओबेसिटी सेल मत करिए। लोगों को ये मत बोलिए कि आप मोटे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप फिट है। आप ओबेसिटी को सेल नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ बॉडी शेमिंग। अगर आप मोटे हैं, आप अनफिट है, आपको ओबेसिटी और ऐसी बीमारियां आके झेल लेंगी और पकड़ लेंगी।
0: नहीं, कुल मिलाकर यहाँ पर कंपैटिबिलिटी की बात है, और सही कहा कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आपने।

0: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह भी गजब का है। कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में 6.5 लाख लोगों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं श्री हेमकुंड साहिब में भी बड़ी तादाद में सिख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।

0: जिस तरफ नजर फेरिए बस लोग ही लोग, अनजाने अजनबी चेहरे, एक दरबार और आस्था का सैलाब। चल पड़े हैं सैकड़ों कदम एक ही राह पर, आस्था की डोर थामे। ये राह भक्ति की है और चाह अपने आराध्य के दर्शन की। तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं। ये ईश्वर में इनकी आस्था ही है जो इन्हें यहाँ तक खींच लाई है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक उम्मीद जिसके सहारे यहाँ तक चले आए हैं हर चुनौतियों को पार करके। महादेव में आस्था ऐसी कि हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। करीब 30,000 श्रद्धालु हर दिन बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और कपाट खुलने के बाद बीते 35 दिनों में कुल आंकड़ा 9,00,000 को पार कर गया है। यानी महज 35 दिनों में 9,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं।
1: श्री केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो पिछले वर्ष की तुलना में जल्दी खुले थे और 22 अप्रैल को खुले थे, तो इस कारण से इस बार की यात्रा अवधि भी लंबी है और गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं और देश से विदेश से लोग भारी संख्या में आ रहे हैं और अभी तक 9,00,000 से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। यात्रा का जो मैनेजमेंट है वो हम इस कंट्रोल रूम से संचालित करते हैं।
0: बद्रीनाथ धाम में भी नजारा कुछ ऐसा ही है। भगवान विष्णु के इस सर्वश्रेष्ठ धाम की यात्रा इस साल अपने चरम पर है। इन दिनों यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, मंदिर परिसर हो, सड़क या पैदल रास्ते, हर तरफ जन सैलाब है। मई का महीना भी बीता भी नहीं और दर्शनार्थियों का आंकड़ा 6,50,000 पार कर गया। यानी कपाट खुलने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए अब तक 6,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे, तब से अब तक यहां 18,000 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है।
2: श्री गुरु गोविंद सिंह पिताजी ने मन नु पावे।
0: श्रद्धालु न सिर्फ यहाँ कठिन चढ़ाई कर पहुँच रहे हैं बल्कि ठंडे पानी के सरोवर में स्नान भी कर रहे हैं। देवभूमि में लगे आस्था के मेले के बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि साल 2026 के सतोपंथ ट्रैकिंग सीजन का पहला दल अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सुरक्षित वापस लौट आया है। इस साल के पहले आधिकारिक दल में गुजरात के 13 सदस्य शामिल थे, जिनमें 4 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल रहे। ये टीम बीते 23 मई को सतोपंथ ट्रैक के लिए रवाना हुई थी।
3: नमस्ते।
0: रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नैन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात एक ऐसे सुरक्षा घेरे की जो घर के बाहर संकट में महिलाओं की रक्षा करेगा। शॉकवेव तकनीक से के दम पर एक ऐसी स्मार्ट वॉच तैयार की गई है जो न सिर्फ समय बताती है बल्कि खतरे में महिलाओं की मदद भी करती है।

0: किसी आम स्मार्ट वॉच की तरह दिखने वाली ये घड़ी संकट के समय महिलाओं के लिए सुरक्षा घेरा बन जाएगी। फिटनेस ट्रैकिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग और स्मार्टफोन नोटिफिकेशन जैसी सुविधाओं के साथ मन चले लंपट या बदमाश व्यक्तियों को ये सबक भी सिखाएगी।
1: आज के दौर में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। घर से निकलने वाली हर एक महिला, हर एक लड़की के मन में कहीं ना कहीं डर जरूर होता है, लेकिन उसी डर के बीच अब महिलाओं की सुरक्षा में टेक्नोलॉजी भी आगे आ गई है। टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है महिलाओं की सुरक्षा की ढाल बनने की, और उस कोशिश का नाम है शक्ति बैंड। ये मैं आपको कुछ वॉचेस दिखा रही हूँ, हालांकि ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, ये फिनिश प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस शक्ति बैंड की हम बात कर रहे हैं और हाथ में एक ये स्मार्ट वॉच, दोनों ही स्मार्ट वॉच है लेकिन दोनों में ही बहुत ज्यादा अंतर है। दिखने में आपको ये आम वॉच की तरह ही लगेगी। ये किसी भी ब्रांड की स्मार्ट वॉच जो है मैंने अपने हाथ में ले रखी है, जो कि आपके हेल्थ, आपके फिटनेस को ट्रैक करने में काम आती है। समय तो बताती ही है लेकिन साथ ही साथ फिटनेस भी ट्रैक जरूर करती है। लेकिन इस शक्ति बैंड की अगर मैं बात करूंगी तो ये आपको समय भी बताएगी, आपका फिटनेस ट्रैक भी करेगी, लेकिन आपकी सुरक्षा में भी हर पल आपके साथ रहेगी।
0: महिलाओं की कलाई में रक्षा सूत्र की तरह काम करने वाली स्मार्ट वॉच का नाम है शक्ति बैंड, जिसके संपर्क में आते ही छेड़छाड़ करने वाले शोहदों को पछतावा हो जाएगा, जो सड़क पर अकेली आती जाती महिला से छेड़खानी की गुस्ताखी कर बैठते हैं। दरअसल एक बटन दबाते ही ये घड़ी बिजली के झटके देने लगेगी। यानी शक्ति बैंड को खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
2: ये है द शक्ति बैंड, वर्ल्ड का पहला वुमेन सेफ्टी वेरेबल। इसमें स्मार्ट वॉच के सारे फीचर्स हैं और सेफ्टी को लेकर कुछ दो USPs भी हैं जो हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को बनाकर यूज की गई है। आप नॉर्मल घड़ी की तरह इसमें टाइम देख सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड है, मैसेजेस है, म्यूजिक है और स्मार्ट वॉच के सारे फीचर्स हैं। ये टाइम भी दिखाती है, पर एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच से अलग कैसे है? सेफ्टी को लेकर जितने भी क्राइम्स हैं, अनफॉर्चुनेट, जैसे रेप, एसिड अटैक, मोलेस्टेशन, उस केसेस में किसी भी महिला ने जब इसे पहना है और उन्हें लग रहा है कि उनके साथ छेड़छाड़ जैसा कोई भी वारदात हो सकता है, आप सिर्फ इस बटन को दबाएंगे और यहाँ ये रेड लाइट जल जाएगी। जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं और ये रेड लाइट ब्लिंक करती है, तब हमारा USP नॉन लीथल इलेक्ट्रिक्यूशन फीचर एक्टिव हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जैसे ही ये लाइट ऑन हुई और आपने ये दो इलेक्ट्रोड्स किसी भी हमलावर अटैकर को टच कराए, तो उन्हें जोर से एक नॉन लीथल शॉक लगता है जो सीधा उनके नर्वस सिस्टम को 3 से 4 मिनट के लिए नम कर देगा। मतलब उनको किसी तरीके से मेडिकल इशू नहीं होगा या कोई हेल्थ हजार्ड नहीं होगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए वो नम हो जाएंगे, ताकि जो भी विक्टिम है उन्हें समय मिले वहां से अपनी जान बचाकर भागने के लिए।
0: सबसे खास बात यह है कि इस वॉच के पीछे दो खास तरह के सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इसे पहनने वाली महिला को शॉक वेव के दौरान किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
2: जैसे आप देख रहे हैं कि इस वॉच पे स्पेशलाइज्ड डेवलप्ड इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स ही इलेक्ट्रिक्यूशन का काम करते हैं। मान लीजिए आपने पहना और आपने इलेक्ट्रोड, मान लीजिए मैं अटैक करूं कहीं पे भी, हाथ पे या कहीं पे भी, 1 या 2 सेकंड में इलेक्ट्रोड्स टच कराए, इसमें से एक स्क्वायर वेव शॉक लगेगा जो सामने वाले अटैकर के नर्वस सिस्टम को नम करेगा। सो दीज इलेक्ट्रोड्स विल बेसिकली मेक श्योर दैट द इलेक्ट्रिक्यूशन हैपेंस बट इन अ नॉन लीथल वे। पर सबसे ज्यादा जरूरी, महिला कैसे सुरक्षित रहे? अगर महिला ने खुद अपना हाथ अपने पास लगाया तो हाउ इज शी प्रोटेक्टेड? इसके लिए हमने 3 साल R&D करके पीछे सेंसर्स डेवलप किए हैं। ये सेंसर्स भी हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया, और इस सेंसर्स में एक महिला का हार्ट रेट और स्किन कंडक्टेंस लेवल मेजर रहता है, जिससे इट मेक श्योर कि मान लीजिए आपने पहना है और मैं अटैकर हूं और मैंने आप ही का हाथ आपको वापस लगाया, तो आपको कभी भी शॉक नहीं लगेगा।
0: एक बात तो साफ है कि स्मार्ट वॉच जैसा दिखने वाला ये बैंड रात के समय या फिर सुनसान इलाकों में भी भरोसेमंद सुरक्षा देने की उम्मीद जताता है। दावा यह है कि ये घड़ी गलत इरादे से छूने या फिर हमले की किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगी। गुरुग्राम से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
6: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
5: Big 12 Radio.
7: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
5: and
7: down.
5: Talk sports.
8: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
5: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: नमस्कार,
0: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधवा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज बात उस क्रिकेटर की जिसका जिक्र हर किसी की जुबान पर है, वैभव सूर्यवंशी। तो आज चर्चा हम उसी की करेंगे, कौन कौन किस किस तरीके से तारीफ कर रहा है, इसको लेकर आगे होगी बात।
6: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, चर्चा केवल वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड की नहीं होगी, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चारों ओर इस वक्त बहुत गर्मी हो रही है। पारा कई शहरों में 48 डिग्री तक जा पहुंचा है, राजस्थान भट्टी की तरह जल रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मौसम कब करवट लेगा और गर्मी से राहत कब तक मिलेगी, इस सवाल पर भी आगे विस्तार से हम बात करेंगे।
5: नमस्कार, मैं शुगुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात उस भैंसे की भी करेंगे जो बांग्लादेश में इन दिनों सुपरस्टार बना है। इसके सुनहरे बालों की वजह से इसे डोनाल्ड ट्रंप नाम मिला था, बकरीद पर उसकी कुर्बानी भी होनी है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: रिकॉर्ड तोड़ रही चार धाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर, दिल्ली यूपी सहित 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। हवा चलने से तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट। केरल के कई जिलों में बारिश, तिरुवनंतपुरम में जमकर बरसे बादल, भीषण गर्मी से मिली राहत। नागा के इस्कॉन मंदिर में पहुंचे पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, राधा कृष्ण की उतारी आरती, गौ माता की भी सेवा की। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग। सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए दिग्गज क्रिकेट सितारे, सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्य कुमार ने की तारीफ, वैभव के खेल को बताया अद्भुत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुननी।

0: चले चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज चर्चा होगी आईपीएल में आंधी बनकर आए क्रिकेट के धुरंधर की। हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। भाई क्या कमाल है, क्या लड़का है यार, 15 साल, मैं इतना छोटा, इतने कम उम्र में, और जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, मतलब मैं जब पढ़ रही थी उन रिकॉर्ड्स के बारे में, नाम लीजिए आप बड़े बड़े दिग्गज, क्रिस गेल से लेकर डेविड वार्नर से लेकर हमारे यहाँ के सुरेश रैना से लेकर, किसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया,
1: सबके
0: कमाल कर दिया।
1: मैं कह रही हूँ जितने भी अंग्रेजी या हिंदी के एडजेक्टिव्स है ना, आउटस्टैंडिंग, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, सब कुछ आप जोड़ दीजिए इस लड़के के लिए, महज 15 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाना, क्या खाया है, क्या खा के उतरे हो आईपीएल में। अगले नेक्स्ट जो टूर्नामेंट आने वाले हैं T20 इंडिया के लिए आने वाला है, आप बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल करने वाले हैं, ये पक्का है कि आप इंडिया की टीम में वैभव सूर्यवंशी चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। और अभी जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं ना इतनी कम उम्र में, एक चीज मैंने बहुत वो पढ़ी, आर्टिकल में लिखी हुई कि 16 साल के थे सचिन तेंदुलकर जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था, ठीक है, तब टेस्ट नहीं होता था, तब ऐसे टूर्नामेंट्स बड़े बड़े नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने जो रिकॉर्ड्स किए ना उनको भी तोड़ता जा रहा है ये लड़का।
0: एग्जैक्टली,
1: वैभव सूर्यवंशी 15 मुझे लग रहा है कि बाकी टीमों के लिए वैभव एक तरीके से खौफ होगा, थ्रेट भी है, खौफ भी है। वैभव जब उतरेंगे मैदान में तो वाकई लगेगा कि इंडिया का धुरंधर आ गया है।
0: बिल्कुल, और जिस तरह का खेल, आई थिंक हम लोग पहले भी जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो सितारे जिस तरह से वो बनते जा रहे हैं रातों रात, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं और इनके खेलने के स्टाइल को लेकर जो हम बात करते रहे हैं उसमें ये बात रही है कि ये बहुत ही बेफिक्र होकर बिना प्रेशर के खेलते हैं, ये बहुत अंडर प्रेशर खेलने वालों में नहीं है। जो पुराने हमारे क्रिकेटर्स रहे, ऑल्दो बड़े बड़े दिग्गज रहे हैं, कई रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन जो ये युवा आ रही है ना, ये जेन जी आ रहा है, ये एक अलग तरह का क्रिकेट खेल रहा है, क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं, सही कहा आपने कि पहले थोड़ा प्रेशर हुआ करता था। मुझे आज भी याद है कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, या फिर उससे पहले अगर हम टीम की बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड का जब मैच हुआ करता था तो एक प्रेशर था कि हम अंग्रेजों के सामने खेल रहे हैं। इधर हमने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे हैं, लेकिन अब की अगर बात की जाए, इतना कॉन्फिडेंस है हमारे प्लेयर्स में कि लगता है मतलब वो मैदान में उतरते हैं सिर्फ जीतने के लिए।
0: एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, और वो जो है ना वो साफ तौर पर मैदान में दिखता है, और वो रिकॉर्ड में, वो स्कोर में, रन कार्ड में वो दिखता है कि किस तरह से ये सितारे अब रन मशीन बन रहे हैं। इनके नाम कितने रिकॉर्ड्स हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इस बार के आईपीएल की जो हम बात करें, विस्फोटक बल्लेबाजी हमने देखी इनकी, आईपीएल का जो ये नया यंग बॉय है ना, जिसको तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उनके उन्होंने जिस तरह से इस बार खेला है, रन मशीन बनकर जिस तरह से उन्होंने आंधी गर्दा उड़ा दिया है आईपीएल में, कल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इन्होंने खेला और हैदराबाद की टीम की ऐसी की तैसी कर दी, सारी उम्मीद जो हैदराबाद की टीम की थी उसको मिट्टी में मिला दिया इन्होंने, वो कमाल का था। और वो भी सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि बहुत ही कम उम्र में अपनी शानदार बल्लेबाजी से ऐतिहासिक रिकॉर्ड वैभव ने बनाया है, अपने नाम कई रिकॉर्ड्स किए हैं। आईपीएल का एलिमिनेटर मुकाबला कल हुआ जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से मात दे दी, लेकिन राजस्थान की शानदार जीत के नायक रहे, जिनकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो है वैभव, जिन्होंने 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेली।
1: बिल्कुल, देखिए महज 15 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी, लेकिन अपने बल्ले से इन्होंने कमाल करके दिखाया है और हर कोई इनका फैन बन गया है। जो चीज सचिन तेंदुलकर ने कही ना, भाई क्या लड़का है और कहां से आया है ये, सब के छक्के इसने छुड़ा दिए हैं, ऑरेंज कैप का तमगा इनके सर पर सज गया है। अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान वैभव ने ना सिर्फ केवल हैदराबाद को बैकफुट पर ला दिया, बल्कि क्रिस गेल, जिनके हमने नाम लिए हैं, ये देखिए दिग्गज क्रिकेटर्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, सुरेश रैना हो जाएं, डेविड वार्नर हो जाएं, ऐसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़कर इन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। हालांकि वैभव आईपीएल इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए, लेकिन आई वुड बी सेइंग कि 97 इज एनीवेज बेटर देन 100।
0: एग्जैक्टली,
1: 29 रनों में 97 रनों की ये शानदार पारी खेलना, आप कहां सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 97 रनों की बात कीजिए ना, 29 रनों पे। हालांकि वो 29वें गेंद खेलते हुए आउट जरूर हो गए, लेकिन अगर 29वें उस पे वो चौका या छक्का लगा देते तो फिर फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले आईपीएल के।
2: अभी तो बहुत बड़ा मैदान है सामने,
1: बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनने वाले
2: हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो देखिए, बीती रात न्यू चंडीगढ़ में तूफान आया छक्कों का, वैभव सूर्यवंशी का बल्ला ऐसा गरजा कि हैदराबाद के फाइनल में पहुंचने के अरमान हवा हो गए। सिक्सर किंग बेबी बॉस का जलवा ऐसा है कि हर गेंदबाज पानी मांग रहा था। यूं तो वैभव सूर्यवंशी ने महज 29 गेंदों की छोटी सी पारी खेली, लेकिन जलवा ऐसा था कि इस पारी को सालों साल याद रखा जाएगा।
1: बिल्कुल, देखिए आईपीएल के मैदान पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वो करिश्मा करके दिखाया है जिसे पिछले 14 साल से कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया था। वैभव सूर्यवंशी के इस रिकॉर्ड तोड़ कमाल का पूरा किस्सा बयां करेंगे, लेकिन पहले वैभव की तूफानी पारी की एक झलक आपको दिखाएंगे। 29 गेंद पर 12 छक्के और 5 चौकों से सजी हुई ये शानदार पारी।
3: Beautifully. In. That's the biggest. This is got. Picked up again. And the free hit.
0: चलिए आपको बता दें कि इस आतिशी पारी के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि वो अपने बल्लेबाजी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। हालांकि उन्हें दिमाग में ये जरूर था कि ये नॉकआउट मुकाबला है, लेकिन कोचों ने कहा था कि जैसे प्रैक्टिस में खेलते हो वैसे ही खेलो और दबाव मत लो।
4: नहीं सर, जीते तो अच्छा, पॉजिटिव इंटेंट लेके नेक्स्ट मैच पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट मैच को सेम जीत कर निकलेंगे फाइनल्स। नहीं सर, थोड़ा बहुत सोचता हूँ, ज्यादा सोचता नहीं हूँ, बस ट्राई करता हूँ जो गेम है वही खेलूँ, ज़्यादा सोचूँ ना, बट कहीं पे अगर मुझे लगता है मुझे काम करना है तो वो देखता हूँ मैं। नहीं सर, बस यही सोचता हूँ कि सामने वाली टीम के बॉलर्स कौन है, मैं इस विकेट पे किस तरीके से उनको फेस कर सकता हूँ, बाउंड्रीज कितनी भरी है, यही सब बस। नहीं सर, मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब मैं जब भी अच्छे इंटेंट में रहता हूँ तो बॉलर प्रेशर में रहते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको कंटिन्यू करूँ और डोमिनेट करके खेलूँ।
1: भाई ये प्रेशर नहीं लेते, किसी चीज का प्रेशर नहीं लेते,
2: हम यही तो बात कर रहे थे कि निडर होके जाते हैं मैदान में।
1: आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा कि इंटेंट जो होता है ना वो बस ये होता है कि अच्छे से खेलना है, ये परफॉर्मेंस देनी है। अब मैं देखिए 15 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी, एक खास नाम से उसे पुकारा जाने लगा है, उन्हें कहूंगी मैं, उन्हें इंटरनेशनल बेबी बॉस कहा जाने लगा है। आईपीएल के मौजूदा सीजन में वैभव ने बड़े बड़े नामचीन गेंदबाजों की क्लास लगाई। नॉकआउट स्टेज में हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया, वैभव ने ऐसी तूफानी पारी खेली कि एक नहीं कई बड़े रिकॉर्ड्स यहां पर धराशायी हो गए। सिक्सर किंग बेबी बॉस ने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने एक सीजन में क्रिस गेल के 59 छक्के जड़ने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आईपीएल में 15 साल के वैभव ने वो कारनामा करके दिखाया जो पिछले 14 साल से कोई कर ही नहीं पाया। इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या होगा कि खुद क्रिस गेल वैभव के मुरीद हो गए। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ वैभव ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते थे।
2: बिल्कुल, बड़े बड़े सुरमाओं को पछाड़कर वैभव इस सीजन में अब तक कुल 65 छक्के जड़ चुके हैं। हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में उन्होंने 12 छक्के जड़े, साथ ही प्लेऑफ के इतिहास की सबसे तेज हाफ सेंचुरी भी जमाई। इतना ही नहीं, एक सीजन में तीन बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वैभव आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। वो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप प्लेयर भी बन गए हैं।
0: चलिए तो आपको बता दें कि हमारी सहयोगी खुशी गुप्ता चूंकि चंडीगढ़ में वो मौजूद थी, कल जो इंटरेस्टिंग मैच हुआ है राजस्थान और हैदराबाद के बीच, उसमें कैसे युवा बल्लेबाज ने अपनी आतिशी पारी से हैदराबाद को बैकफुट पर धकेला, उन पलों को हम तफसील से आपको बता रहे हैं।
5: इस वक्त हर किसी की जुबा पर बस एक ही नाम है और वो नाम है वैभव सूर्यवंशी का, और हो भी क्यों ना, जिस तरह की परफॉर्मेंस ये 15 साल का बच्चा दे रहा है शायद किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपने नाम इतने रिकॉर्ड्स वैभव सूर्यवंशी ने कर लिए हैं, और जो पारी खेली हैदराबाद के खिलाफ जहां पर 29 बॉल्स में 97 100 चूक गया, लेकिन किसी 100 से कम भी नहीं था। ये प्लेयर माइंडसेट क्लियर है कि छक्के लगाने हैं। मैच के बाद भी ये बोला है कि जी सेंचुरी तो मैं फ्यूचर में कभी भी लगा लूंगा, मेरी सोच ये है कि मुझे बस छक्के लगाने हैं। मैदान पर जितने लोग आए, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद थी मुल्लापुर स्टेडियम के बाहर, मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा देखिए हम किसी और टीम के फैन हैं, हम शायद मैदान पर किसी और टीम को सपोर्ट करने आए थे, लेकिन जब जा रहे हैं ना तो वैभव सूर्यवंशी के फैन बनकर जा रहे हैं। सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रहे हैं और हर फॉर्मर प्लेयर इस वक्त वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा है। जहां पर सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उन्होंने आकर ये कहा है कि भाई वैभव सूर्यवंशी का बैट स्विंग सबसे जबरदस्त है। जिस तरीके से वो फ्रंट फुट को खोलकर एक रूम बनाकर शॉट्स लगाते हैं, काबिलियत तारीफ, जिसका रिप्लाई भी वैभव सूर्यवंशी ने करा है और उन्होंने कहा है कि देखिए सर, आपने भी उसी उम्र में शुरू करा था जिस उम्र में मैंने करा है और आज मुझे आपसे ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो मेरे लिए ये एक सपने जैसा है। हर कोई रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, ये पता है सबको कि जी क्रिस गेल का रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा छक्कों का आईपीएल में, वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और क्रिस गेल का जवाब ये आया है कि भाई ये प्लेयर जो है ना ये सिक्स हिटिंग मशीन है। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही 100 रह गया लेकिन आप एक दिन 100 भी बना लोगे, फास्टेस्ट 100 भी आईपीएल में बना लोगे। उसके अलावा अगर आप देखें युवराज सिंह ने इनको वैभव सूर्यवंशी को एक नाम दिया है, वो है बॉस बेबी। उन्होंने कहा बॉस बेबी ना सारे वर्ल्ड बॉसेस के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हरभजन सिंह, उन्होंने आकर ये बोला है कि भाई वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर देखा ही नहीं है, पूरी दुनिया एक तरफ और वैभव सूर्यवंशी एक तरफ। वही सुरेश रैना, उन्होंने ये कहा है कि जी डिक्शनरी में ना ऐसी बैटिंग देखी ही नहीं है और लोग जिस तरह से दीवाने हुए हैं सूर्यवंशी की बैटिंग के लिए और उनका वेट जिस तरह से किया जाता है कि भाई वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देख ले, वो अपने आप में बहुत कुछ चीजें कहता है। ये सब प्लेयर्स यही बात कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट, मतलब T20 क्रिकेट में टॉम मूडी एक प्लेयर है, उन्होंने ब्रैडमैन से कंपेयर कर दिया, उन्होंने कह दिया कि T20 क्रिकेट का अगर ब्रैडमैन कोई है तो वो वैभव सूर्यवंशी है। और ये प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि इन्होंने ये मैनिफेस्ट करा है, उन्होंने सीजन शुरू होने से पहले कहा था कि मेरा सपना ये है, मैं ये मैनिफेस्ट करता हूं कि मैं राजस्थान रॉयल्स को ये ट्रॉफी जिताऊं। अब अगला मुकाबला राजस्थान का गुजरात के साथ है और वहां पर देखना होगा कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी वो पारी खेलते हैं, क्योंकि एक वक्त पर ये बात होती थी कि वैभव सूर्यवंशी ना बड़े मैचेस में नहीं चल पाते, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल वो हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि भाई किस तरीके से बड़े मुकाबलों में भी वैभव सूर्यवंशी ने प्रूव कर दिखाया है। भाई उम्मीद है ये इसी तरह से खेलते जाएं, इंडिया का नाम रोशन करें, क्योंकि जिस उम्र में इन्होंने ये करा है ना, आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे वैभव सूर्यवंशी शायद वर्ल्ड क्रिकेट में रूल करते हुए दिखेंगे। खुशी गुप्ता चंडीगढ़ से सारी अपडेट्स आपके लिए जीएनटी पर लाती रहेंगे।
2: भाई और कितना प्रूव करेगा ये लड़का, करके तो दिखा दिया आगे भी, क्योंकि इतनी यंग एज है ना, अभी बहुत लंबी पारी खेलनी बाकी है।
1: मैं इस पे एक लाइन बोलूंगी, हाँ। अभी तो बैटिंग शुरू हुई।
2: हाँ, क्या बात है। अब देखिए आईपीएल के एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली तो वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल भी उनके मुरीद हो गए। वैभव की 97 रनों की पारी देखकर क्रिस गेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी, इसमें उन्होंने वैभव को न्यू सिक्स मशीन कहा। वैभव ने इस सीजन में 65 छक्के जड़कर गेल का एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि वैभव ने कहा कि उन्हें गेल के रिकॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था, बस टीम के लिए खेलना चाहते थे, वही उनका इंटेंट था, वही उनकी इंटेंशन थी।
1: 59 छक्के गेल के थे और इनके हो गए हैं 65।
2: यस यस, ऑलमोस्ट देयर।
1: चलिए अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं क्यों गेल से बेहतर हैं वैभव सूर्यवंशी। क्रिस गेल ने अपने आईपीएल करियर में एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया, वहीं वैभव सूर्यवंशी मौजूदा सीजन में अब तक 65 छक्के जड़ चुके हैं, जबकि अभी उनका क्वालिफायर 2 में उतरना बाकी है। क्रिस गेल ने 456 गेंदों में 59 छक्के लगाए थे, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 65 छक्कों के लिए महज 280 गेंदें खर्च की। गेल की तुलना में लगभग आधी गेंदों में उन्होंने ये कारनामा किया। क्रिस गेल के आईपीएल करियर स्टैट्स बताते हैं कि वो हर 8वीं गेंद पर सिक्सर लगाते थे, जबकि सूर्यवंशी हर 4थी गेंद पर छक्का जड़ रहे हैं।
0: आपको बता दें कि आईपीएल में क्रिस गेल का स्ट्राइक रेट 148 का था, जबकि वैभव सूर्यवंशी 231 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। आईपीएल में क्रिस गेल का औसत 39.7 का था, जबकि वैभव सूर्यवंशी का औसत 42.4 का है। हालांकि दोनों ही खिलाड़ियों में काफी समानता भी है, दोनों ही खम्बू बल्लेबाज हैं, ओपनर हैं और दोनों ही आतिशी तेवर और लंबे लंबे छक्कों के लिए खास पहचान बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बीते वक्त का लेजेंड है तो दूसरा आज के दौर का उभरता हुआ सुपरस्टार।
2: और देखिए पूरी दुनिया इस वक्त यही कह रही है कि वैभव जैसा भाई कोई है ही नहीं। फिलहाल इस सीजन वैभव सूर्यवंशी हाईएस्ट रन गेटर हैं। इस वक्त ऑरेंज कैप उनके ही पास है। वैभव ने इस सीजन 15 मैचों में आतिशी अंदाज में रिकॉर्ड 680 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 55 चौके और रिकॉर्ड तोड़ 65 छक्के जड़े हैं। मौजूदा सीजन में वैभव के बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक भी हम सब ने देखे हैं।
0: तो आईपीएल सीजन 19 मंजिल के बस दो कदम दूर है और बेबी बॉस पर सबकी निगाहें हैं। और हो भी क्यों ना, आपको बता दें कि मौजूदा सीजन में सबसे ज्यादा रन वैभव के नाम है। फिलहाल ऑरेंज कैप, जैसा कि हमने आपको बताया, वो ऑरेंज कैप होल्डर हैं। सीजन 19 में अब तक 680 रन बनाए हैं, 680 में से 610 रन चौके छक्कों से बनाए हैं। तकरीबन 90% रन चौके छक्कों से बनाते हैं वैभव। अब तक 55 चौके और 65 छक्के वो लगा चुके हैं। मौजूदा सीजन में एक शतक हाफ सेंचुरी उन्होंने जड़ा है।
2: तो राजस्थान और हैदराबाद के बीच कल का मैच खूब एंटरटेनिंग रहा। ऊपर से वैभव की विस्फोटक बल्लेबाजी, जिसका कहना ही क्या। जब मैच खत्म हुआ तो फैंस ने कैसे अपने जज्बातों को बयां किया, वो भी देखिए जरा।
6: वैभव सूर्यवंशी बहुत ही अच्छे प्लेयर है, मतलब बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, वो भी छोटी सी एज में, और वो बच्चों के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन बन चुके हैं आज की डेट में।
7: क्या कहेंगे वैभव सूर्यवंशी को?
8: कि मेरे को भी सिखा दो, इतनी अच्छी बैटिंग कैसे करते हो।
7: मैं सबसे जानना चाहूंगी वैभव सूर्यवंशी के बारे में यार, आप लोग किस तरह से वैभव सूर्यवंशी को आप कैसे।
9: मैडम मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात का माइंड मत करना, मैं सॉन्ग सुनाऊंगा, एक सुना सकता हूँ। ओ अखियां ला के हाण दिया, मिलनो भी रह गया वे, ओ हैदराबाद नु हरा के राजस्थान फाइनल विच पै गया वे।
10: मैडम हमारे लिए तो सूर्यवंशी है, हमारा चांद है, वो 100% हमारी राजस्थान को फाइनल में लेके जाएगा। मैं 101% कहता हूँ वो सूर्यवंशी हमारा भाई राजस्थान को फाइनल में लेके जाएगा।
7: सूर्यवंशी को आप आने वाले वक्त में क्या देखते हैं?
11: सूर्यवंशी आने वाले टाइम में भारत के लिए बहुत अच्छा खेलेगा और दूसरे देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगा।
12: लाइक आई ऑल्सो केम लाइक एन हैदराबाद फैन टूडे, बट नाउ आई एम अ डाई हार्ट सूर्यवंशी फैन जस्ट बिकॉज ऑफ द इनिंग।
13: सचिन के बाद अगर 15 साल की उम्र में अगर ऐसा कोई है ना, मैंने नहीं देखा उसके बाद।
12: वजह से हम लोग देखते थे टेस्ट मैचेस, गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि सूर्यवंशी की वजह से हम देखेंगे वो टेस्ट मैचेस आने वाले टाइम में।
7: आप ये बताइए वैभव सूर्यवंशी को कौन रोकेगा?
13: कोई नहीं रोक पा रहा, हम तो बोल ही रहे कोई रोक ही नहीं सकता उसको, फाइनल जीत रही है राजस्थान।
14: उसको वो खुद ही रोक सकता है, बाकी वो किसी से रुकने वाला है नहीं। जोफ्रा आर्चर और सूर्यवंशी दोनों है ना, सामने वाली टीम पर ऐसा अटैक कर रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर बॉलिंग लेके आ रहे हैं तो वो सामने वाली टीम की है ना बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर रहा है।
15: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उन्हें पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
16: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
17: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खेलता है,
7: बहुत
17: नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अपनी अलग क्लास है।
7: आप अपनी हरियाणवी वो जो ठेठ भाषा है उसमें अगर वैभव सूर्यवंशी के लिए कुछ कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे आप?
18: गर्दा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने,
2: बहुत बढ़िया लड़कियों। तुम बताओ पंजाबी में बोलो, वैभव की तारीफ करो तो कैसे करोगी
1: पंजाबी दे विच? हाँ। बहुत वधिया खेला मुंडा साडा,
2: कमाल ही कर देता।
0: बिहार में बोलते उन्होंने गलत हरियाणवी में, गर्दा उड़ा दिया तो सिर्फ बिहार में बोलते हैं जो उन्होंने उड़ा दिया है।
2: नहीं, पंजाबी में कौन नेरियां ले आती
1: हैं, छक्के छुड़ाते सारे आंदे। चलो आईपीएल फाइनल की रेस अब देखिए, महज 3 टीमों के बीच में सिमट कर रह गई है। बेंगलुरु पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। शुक्रवार को सीजन का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले में गुजरात का सामना होगा राजस्थान के साथ। जीतने वाली टीम फाइनल

0: जो योग करेगा उसका मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ रहेगा। तभी तो आज 100 से ज्यादा देश भारत का सिखाया योग करते हैं। लेकिन अब आप अपने इस हुनर से मेडल भी जीत सकते हैं। जी हाँ, दरअसल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में योग को प्रतियोगिता के तौर पर शामिल किया गया है।
1: बिल्कुल, ये है गुड न्यूज, क्योंकि 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होना है और मेजबान देश के पास ये अधिकार होता है कि वो दो पारंपरिक खेल इसमें शामिल कर सकता है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद योग को 2036 के ओलंपिक्स में शामिल करवाने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है।
2: सेहत का खजाना अब सम्मान का खजाना भी बनेगा। योग अब सिर्फ जीवन नहीं बल्कि जीत भी बनेगा। इसके लिए भारत ने 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में योग को शामिल करने की तैयारी कर ली है। केंद्र खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐलान किया कि 2030 अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स में योगासन को भारतीय पारंपरिक मेडल स्पोर्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। असल में मेजबान होने के नाते भारत के पास योग को शामिल करने का सुनहरा मौका मिला है। मेजबान देश को एक या दो पारंपरिक खेल शामिल करने का अधिकार होता है। भारत कुछ और स्वदेशी खेलों में कबड्डी, खो खो, मलखंब को भी शामिल करने पर भी विचार कर रहा है। यानी जब 2030 में अहमदाबाद में खेलों का महाकुंभ कॉमनवेल्थ होगा, तब पूरी दुनिया को भारत की इस प्राचीन विधा का नया रूप दिखेगा। इससे पहले देश में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप होने जा रही है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप होगी, जिसमें 75 से ज्यादा देश शामिल होंगे। 12 स्पर्धाओं में 500 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे। जूनियर, युवा और स्पेशल कैटेगरी भी होगी। मतलब ये हुआ कि जो लोग रोज सुबह पार्क में आसन लगाते हैं, वो अब कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल जीतने का सपना देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: कोई और होना हो, मैं बहुत खुश हूँ इस न्यूज के बाद।
1: और मैं चाह रही हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें, अभी प्रैक्टिस शुरू कर दो।
0: मुझे तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एनीवेज, चलिए फिल्मों की तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं अपने रुख को। डॉन 3 के बारे में जो क्राइसिस हुआ है, जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, एवरीबडी नोज दैट। रणवीर सिंह का फाइनली इस फिल्म से एग्जिट, निर्देशक फरहान अख्तर का करोड़ों का नुकसान, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज का रणवीर पर बैन, और इन सब विवादों के बीच में पहेली बन गया है कि भाई डॉन आखिर होगा कौन।
1: आखिर डॉन कौन होगा, डॉन 3 का लीड एक्टर। ये हम सारे काफी पहले से बड़े कयास लगा लेते हैं। अच्छी बात है, चाहे पर ऐसी चर्चा होती है।
0: क्या लगता है आप,
1: क्या यहाँ से शुरू करते हैं?
0: श्वेता, देखिए, मैं शाहरुख को देख चुकी हूँ और शाहरुख की फैन होने के नाते, मतलब पसंद रहे हैं,
1: कोई बुरा नहीं है,
0: मतलब वो बुरा नहीं है, वो लिए जा सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली, मतलब एज अ व्यूअर के नाते अगर मैं देखूं, तो मुझे लगता है कि कोई और, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि, मतलब अगर बॉलीवुड में नजर घुमाऊं तो मुझे लगता है कि थोड़ा साउथ की तरफ जाया जा सकता है। अगर आप डॉन सोचें, वो एक्शन सोचें जो आजकल फिल्मों में हमें देखने को मिलेगा, तो साउथ की तरफ सोच सकते हैं।
1: अच्छा, बॉबी देओल कैसा रहेगा?
0: बॉबी भी अच्छा है,
3: बढ़िया।
0: बॉबी भी अभी फिलहाल
1: गुड चॉइस, जिस रफ्तार के रोल कर रहे हैं,
3: जिस रफ्तार के साथ वो बढ़े हैं।
1: इनफैक्ट आई थिंक, हालांकि आई डोंट नो वो लीड रोल में कितना रहेंगे, अर्जुन रामपाल भी अच्छा,
0: अर्जुन रामपाल अच्छे चॉइस,
3: अनदर गुड चॉइस,
0: गुड चॉइस।
3: मेरे दिमाग में भी पहले जो स्ट्राइक हुआ ना, मैंने दिमाग में यही आया, किंग ही आया, शाहरुख खान ही आया,
1: किंग भी अंदर सही है ना कोई।
3: चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है।
4: शेर जो सो रहा है वो जागेगा कब, पूछते हैं ये सब। उनसे कह दो कि फिर जाग उठा हूं मैं। डॉन
5: बॉलीवुड का एक ऐसा अमर कैरेक्टर जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। लेकिन इस फिल्म के तीसरे पार्ट के लिए डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं, बल्कि फिलहाल निर्देशक फरहान अख्तर ढूंढ रहे हैं। रणवीर सिंह के डॉन 3 छोड़ते ही फिल्म न सिर्फ विवादों में घिर गई, बल्कि शुरू होने से पहले ही अधर में लटक गई है। लेकिन फिल्म लीड को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इनमें 3 नाम जो उभर कर आए हैं, वो हैं बिग बी अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। 1978 में सलीम जावेद ने डॉन के कैरेक्टर की कल्पना की और चंद्र बरोट के निर्देश में बनी फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 48 साल बाद एक बार फिर ओरिजिनल डॉन ही फरहान की नैया पार लगाएगा, यानी डॉन 3 में एक बार फिर अमिताभ डॉन के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर उतार सकते हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

0: लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है। इस कड़ी में किंग खान का नाम भी सुर्खियों में है। शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन के रीमेक में लीड रोल निभाया था। इस मूवी का निर्देशन भी फरहान अख्तर ने ही किया था। शाहरुख खान की इस प्रतिष्ठित सीरीज के बाद अब डॉन 3 का निर्माण भी फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट कर रही है। इसी वजह से फैंस में उम्मीद जगी है कि डॉन 3 से रणवीर की एग्जिट के बाद शाहरुख खान इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी में वापसी कर सकते हैं। हालांकि डॉन 3 को लेकर रणवीर फरहान विवाद के बीच सबसे पहले ऋतिक रोशन का नाम सामने आया था। कहा जा रहा था कि रणवीर को ऋतिक से रिप्लेस किया जा रहा था, इसलिए रणवीर फिल्म छोड़ रहे हैं। हालांकि ऋतिक ने पहले ही इन अफवाहों को दबा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर अफवाहें तेज हो गई हैं कि डॉन 2 में एक कैमियो करने वाले ऋतिक इस बार डॉन 3 में खुद डॉन के किरदार में नजर आएंगे। फिलहाल डॉन 3 बहुत सारे किंतु परंतु में उलझी है। ऐसे में इस बार सच में डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भीषण गर्मी से कैसे बन रहा है राहत का सीन।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाती है। News, sports, and more, all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
4: I have no idea how this election is going to play out,
3: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
12: Thank you.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: रिकॉर्ड तोड़ रही चार धाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। दिल्ली यूपी समेत 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। हवा चलने से तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट। केरल के कई जिलों में बारिश, तिरुवनंतपुरम में जमकर बरसे बादल। भीषण गर्मी से मिली लोगों को राहत।
14: चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की, जिसका रंग उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग नजर आ रहा है। उत्तर भारत में राहत का इंतजार है तो दक्षिण में राहत बरसने लगी है। केरल इस वक्त बारिश से तरबतर है। मॉनसून के आने से पहले केरल में हो रही ये बारिश राहत की शुभ संकेत लेकर के आ रही है, तो वहीं उत्तर भारत को राहत का अभी भी इंतजार है। भाई जहां तक हम यहाँ जहां मौजूद हैं, जहां से हम खबरें पूरे देश और दुनिया को दिखा रहे हैं, यहाँ का हाल तो फिलहाल बहुत बुरा है।
1: बहुत बुरा, मेरा तो बैकग्राउंड देखने का मन भी नहीं कर रहा, आग उगल रहा है हमारा बैकग्राउंड।
6: आपने तो ये कलर के कपड़े भी छोड़ दिए पहनने, है ना?
1: रेड, हाँ, रेड नहीं पहना।
6: It's burnt orange. नहीं, वैसे मैं अभी खबर देख रही थी, ये मौसम विभाग ने आज कहा था कि WD एक्टिव हो रहा है, और मैं अभी अभी इंस्टा पे ये पढ़ ही रही थी कि जिसमें ये है कि सेंट्रल इंडिया से एक धूल भरी आंधी का जो तूफान है वो उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं भले ही बारिश ना हो, लेकिन एटलीस्ट ये है कि टेम्परेचर में थोड़ा 1-2 डिग्री कम जरूर हो सकता है।
14: मैं आपको बता दूं, अभी पिछले 2 दिन मैं नागपुर में थी, कल ही रात पहुंची हूँ। पूरे इलाके में वहां जो LED स्क्रीन्स लगे हुए थे, वहां हर जगह लिखा हुआ था अधिक पानी पिया, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, और बड़े बड़े LED स्क्रीन्स पर वहां पर ये लिखा हुआ था गर्मी से आप बचें कैसे। तो हम यूजुअली यहाँ TV पे या फिर अखबारों में हम देखते हैं और पढ़ते हैं, वहां रास्तों में जब आप चल रही हैं तो आपको वैसा इतनी गर्मी बेतहाशा कि वहां कूलर काम नहीं कर रहा, पंखे काम नहीं कर रहे। इनफैक्ट AC का हाल ये है कि आप अगर 4 घंटे से ज्यादा चला ले तो वो भी काम करना फिर बंद कर देता है।
1: बिल्कुल, चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: ये तस्वीर गर्मी से जूझते राजस्थान के श्रीगंगानगर की है, जहां गर्मी का ताप लोगों को हलकान किए हुए है। बेतहाशा बढ़ती गर्मी में कहीं पानी, जगह जगह पर ठंडा शरबत और जूस बांटकर लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। कहीं तपती सड़कों को ठंडा करने के लिए नगर परिषद की ओर से पानी का छिड़काव भी जारी है, ताकि लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सके। गर्मी से बचाव के लिए चेहरे को ढकना भी तो जरूरी ही है, क्योंकि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।
1: राजस्थान में जगह जगह पे पानी की सेवाओं का बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जहाँ पे भी निकलो या तो खुद की वाटर बॉटल्स लेके निकलो, खुद को हाइड्रेटेड रखो, खाना अगर खा रहे हो तो ऐसा खाओ जो शरीर को ठंडक दे, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं किसी भी ज़रूरी काम से तो खुद को कवर करके चलें, कपड़े अगर पहन रहे हैं तो कॉटन या सूती कपड़ा पहने, तो वो चीज़ें सब फॉलो कर रहे हैं। जिनकी मीटिंग्स हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो मीटिंग्स जो है वो वर्चुअली की जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की जाए।
0: बेतहाशा गर्मी वाले नौतपा का आज चौथा दिन है। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी के चलते अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद श्रीगंगानगर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। यहां सुबह 10 बजे ही तापमान 40 डिग्री पार पहुंच गया था, और दोपहर तक शहर की सड़कें और बाजार लगभग खाली नजर आने लगे। श्रीगंगानगर में गर्मी से हालात ये हैं कि आज सुबह से ही गर्म हवाओं का असर शुरू हो गया। सुबह 10 बजे तक ही तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा हुआ था। नतीजा ये कि दोपहर तक सड़कें और बाजार सुनसान नजर आए और लोग केवल जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकलते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार केवल श्रीगंगानगर ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई और शहरों में भी तापमान बेतहाशा बढ़ रहा है। राजस्थान के पिलानी में 47 डिग्री, बीकानेर में 46.6 डिग्री, चूरू और जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 46.2 डिग्री और कोटा में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो जहां हीट वेव के कारण दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आईं, तो वहीं कूलर और एसी भी गर्मी के आगे बेअसर दिखाई दिए। राजस्थान में फिलहाल तो गर्मी का आलम ये बना हुआ है कि दिन ही नहीं बल्कि रात में भी राहत मिल नहीं पा रही, और लगातार बढ़ती गर्मी से हाल बेहाल है। ऐसे में शरीर को हाइड्रेटेड रखना ही समझदारी है।
2: इन दिनों में सामान्य सी बात है जिनको कि जो लोग बहुत धूप में काम करते हैं या बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई बहुत ज्यादा, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस समय रिदम ये रखना चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपके हाइड्रेशन पे ध्यान रखना, कि पानी रेगुलर हर 15-20 मिनट बाद पानी लेते रहें। उसके अलावा जो भी पानी के साथ में, केवल प्लेन वाटर ही जरूरी नहीं है, आप ORS भी ले सकते हैं, लेमन वाटर जो है वो सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी लेमन वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और उसके अलावा छाछ है, बटर मिल्क है, कोकम का शरबत है, जो इन दिनों सीजन की चीजें हैं, जैसे कि फालसे का रस है या प्याज का रस आप हाथों पैरों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब उससे रिलीफ मिले हीट से। उसके अलावा आम का पन्ना है, छाछ राबड़ी है जो कि हमारे राजस्थान का मेन खाना है, उसको आपको अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए।
0: फिलहाल तो जहां श्रीगंगानगर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में दूसरे स्थान पर रहा, तो पाकिस्तान का जैकोबाबाद 49 डिग्री तापमान के साथ पहले नंबर पर रहा। मौसम के जानकार बताते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जगह भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास हैं, इसलिए इनके आसपास थार मरुस्थल की उत्तर पश्चिमी हवाएं और पाकिस्तान में बहावलपुर के रेतीले इलाकों में सूखी और तेज गर्मी के कारण मई जून में जमीन तेजी से गर्म होती है। इन्हीं हवाओं की वजह से दोपहर में तापमान यहां तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का पूर्वानुमान दिया है, जिससे आने वाले 2-3 दिनों के अंदर आंधी और बारिश आ सकती है, लेकिन तब तक गर्मी के इस मौसम में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है।
1: राजस्थान में इस समय पे 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव का। आने वाले 2-3 दिन में ये हीट वेव तीव्र रहने वाली है, तो ऐसे में सभी को इस समय पर खुद का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
3: अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से GNT यानी गुड न्यूज टुडे आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजिए, ताकि हम आपके उन वीडियोस को GNT पर दिखाएं।
4: तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लिए चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक वीडियो भेजा है, जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में बताया है।

0: मैं आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसी पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाथ जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर हैं। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है, तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊँ आपको धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा, बनाइए ब्लॉग और हमें भेज दीजिए 7303409922 पर। हम इसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे कुर्बानी से बचा बांग्लादेश का सुपरस्टार भैंसा।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: 21 दिनों की कठिन एकांत साधना के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही बद्री विशाल मंदिर आए, उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का यहां पर तांता लग गया।
11: बिल्कुल, आपको बता दें बुधवार से ही बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का वाचन शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है। आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो मिलेंगे ही, साथ ही कथा के साथ अपने 21 दिनों के एकांत साधना के संस्मरण भी उन्हें सुनने को मिलेंगे।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है, वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहां पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं को यहां पर सुनाई जाएगी, यहां के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे, रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है। तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की, वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
6: I have no idea how this election is going to play out,
5: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen. Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चल एक इंटरेस्टिंग न्यूज आपको बताते हैं। वैसे तो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर, बांग्लादेश में इन दिनों एक बफेलो सुपरस्टार बना हुआ है। वजह है सिर्फ उसका विशाल शरीर नहीं, बल्कि उसके सिर पर लहराते सुनहरे बाल। यही वजह है कि लोगों ने इसका नाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप। करीब 700 किलो वजनी ये दुर्लभ अल्बिनो भैंसा अब सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुका है। बकरीद से पहले बांग्लादेश में पशु बाजारों की रौनक अपने चरम पर थी और इसी बीच ये अनोखा भैंसा लोगों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना। ब्लॉगर्स, पत्रकार, सोशल मीडिया क्रिएटर्स कैमरा लेकर उसके फार्म पर पहुंच गए। लोग सिर्फ उसे देखने ही नहीं बल्कि उसके साथ सेल्फी लेते भी नजर आए।
2: बिल्कुल, आपको बता दें लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि इस भैंसे को कुर्बानी के लिए बेच दिया गया है। जैसे ये खबर फैली लोगों की भीड़ और बढ़ गई। प्रशासन को डर था कि इतनी ज्यादा दिलचस्पी सुरक्षा समस्या ना खड़ी कर दे। आखिरकार बांग्लादेश सरकार को बीच में दखल देना पड़ा। अधिकारियों ने आखिरी वक्त पर हस्तक्षेप करते हुए नए खरीदार को पैसे वापस दिलवाए और डोनाल्ड ट्रंप नाम के इस भैंसे को सुरक्षित निकालकर राजधानी ढाका के नेशनल जू में शिफ्ट कर दिया गया।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल फिर शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी चाय पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति, अध्यात्म और सनातन संस्कृति के अलौकिक आभा में सराबोर। भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। रिकॉर्ड तोड़ रही चारधाम की यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। दिल्ली यूपी समेत 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। हवा चलने से तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट। केरल के कई जिलों में बारिश, तिरुवनंतपुरम में जमकर बरसे बादल। भीषण गर्मी से मिली लोगों को राहत। नादिया के इस्कॉन मंदिर में पहुंचे पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी। राधा कृष्ण की उतारी आरती, गौ माता की भी की सेवा। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ। दलाई लामा के 90वें जन्मदिवस को समर्पित आयोजन। संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग। सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए दिग्गज क्रिकेटर सितारे। सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्य कुमार यादव तक ने की तारीफ। वैभव के खेल को बताया अद्भुत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जयंती स्पेशल। जयंती स्पेशल में आज बात मौसम के शुभ समाचार की। इस बार गर्मियों ने मई के महीने में लोगों का कड़ा इम्तिहान ले लिया है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तप रहे हैं, तो उत्तर भारत में दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में देश को बेसब्री से इंतजार है तो मानसून की पहली बारिश का, उस राहत की फुहार का जो तपती धरती को सुकून दे पाए। हालांकि उससे पहले भी एक गुड न्यूज है कि आ रहा है वीकेंड कूल रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के कारण आंधी, गरज चमक के साथ बारिश या हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के आसपास आज और कल बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो 45 डिग्री की गर्मी से कुछ राहत देंगी। अच्छी बात यह है कि कई इलाकों में इसका असर दिखने भी लगा है। अगर आप इस समय दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, यूपी या पंजाब के किसी भी शहर से हमें देख पा रहे हैं, तो अपनी खिड़की से झांकने पर आसमान में पसरा बादलों का डेरा आपके शहर में राहत की दस्तक देकर जरूर जाएगा।

0: गर्मी आएगी ये तो मालूम था, लेकिन अब की बार ऐसी और इतनी आ जाएगी ये नहीं सोचा था। नौतपा में सूरज दादागिरी पर उतरा है और गर्मी को मनमानी का मौका मिल गया है। जब से नौतपा शुरू हुआ पूरा उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो या फिर यूपी और पूरा दिल्ली NCR, तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। बुधवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। यूं समझिए अब की बार ऐसा गर्माया तपाया है मई के महीने ने कि अब राहत का इंतजार करते नहीं बन रहा, लेकिन इंतजार अब ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। बारिश से पहले मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी ने गर्मी के सताए लोगों पर राहत की बौछार कर दी है।
1: जो अभी हीटवेव कंडीशन चल रही है, जो अधिकतम तापमान जो का स्तर जो ज्यादा चल रहा है, अनुमान यही है कि 28 तारीख से जो इसमें गिरावट देखी जाएगी और उसके बाद 29, 30, 31 तक आप मान के लिए 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो हीटवेव सीवेटवेव कंडीशन चल रही है अभी उसमें कल के बाद से जो है राहत मिल जाएगी।

0: मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम पलटने वाला है। देश के कई इलाकों में बादल बारिश की सौगात लाने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है जो गर्मी से तपते जलते उत्तर भारत के लिए राहत की फुहारें लेकर आ रहा है।
1: अनुमान ये है कि एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो है उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए 28 तारीख के बाद से जो थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से तेज हवा के साथ साथ में जो है लाइटनिंग घटना, हवा गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है।
0: ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों से लेकर मैदानों तक का मौसम बदलने वाला है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और हीट वेव से कुछ दिनों के लिए निजात मिल जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है, क्योंकि तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
1: देखिए, अभी टेम्परेचर जब इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देश के 14-15 राज्यों में दिखाई देगा। इसी के चलते राजस्थान, MP, बिहार और UP में अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए बिहार के 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान में जयपुर सहित 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जब से मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है, लोग बेसब्री से मौसम के बदलने की राह देख रहे हैं। दरअसल पिछले 1 महीने से दिल्ली समेत पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में गर्मी सितम ढा रही है।
2: 28 मई को पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। सामान्य से तापमान जो है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे, जिससे लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है। हालांकि अभी तापमान जो है वो 45 डिग्री पार है। अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जाए तो वहां पर जो है मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार वहां पर जो उमस की स्थिति है, गर्मी की स्थिति है, वो बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर मैदानी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहे हैं, लोगों को चिलचिलाती गर्मी खासा दिक्कत दे रही है। तो इसी के साथ ही लोगों को राहत का भी इंतजार है कि मानसूनी बारिश जो है कब दस्तक देगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा इंतजार लोगों को करना पड़ सकता है।
0: बहरहाल मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की तो गुरुवार की सुबह इसका असर कई जगहों पर नजर आने भी लगा। चंडीगढ़ में लोग सुबह सोकर उठे तो ठंडी हवाओं ने स्वागत किया, आसमान में बादल छाए दिखे और तापमान में आई गिरावट से लोगों की सुबह सुहानी हो गई।
3: चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। जो पारा 45-40 डिग्री था, अब देखिए कि किस तरीके से मौसम सुहावना हुआ है। चंडीगढ़ सुखना लेक पर इस समय सुबह के वक्त जो बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था, चहल पहल अब आपको लोगों की नजर आएगी। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ठंडी हवाएं बिल्कुल चल रही हैं, ठंडी हवा, और इससे पारे में गिरावट आई है और बादल छाए हैं इस समय। और ये पूरा मौसम का आलम उत्तर भारत में, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, तो इस तरीके का मौसम बदला हुआ है। और आप क्योंकि कल सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई थी फरीदकोट के अंदर, पंजाब में 46.1 डिग्री तापमान था और हरियाणा के रोहतक में 46.6 डिग्री टेम्परेचर था। और कल हमने यहीं पे तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आप देखिए दूर तक जहाँ आपको नजर जाएगी तो लोग किस तरीके से सुबह सैर सपाटे के लिए और सुबह की रूटीन और चहल पहल जो यहाँ पर रहती है, क्योंकि इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए लोग पहुँचते हैं। गर्मी से राहत है और चिलचिलाती गर्मी थी, चंडीगढ़ में बाहर नहीं निकला जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा था, लेकिन अब अगले 2-3 दिन हो सकता है, मौसम विभाग का जैसा कहना है कि मौसम में राहत रहेगी, इस तरीके से ही गर्मी से लोगों को अब राहत रहेगी।
0: आपको बता दें कि दक्षिण और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में पहले से ही प्री मॉनसून बारिश का दौर जारी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 29 मई से 5 जून तक देश के 80-90% हिस्से में बारिश होगी।
1: अभी ये फिलहाल प्री मानसून बारिश है क्योंकि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, हीटिंग होती है, कई बार ट्रफ रेखा भी है, सर्कुलर सर्कुलेशन है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पर क्लाउड का सडन डेवलपमेंट होता है जिस वजह से तेज हवाएं और बारिश जो है देखने को मिलती है। तो आप जो भी ये जो बारिश का अभी स्थिति देख पा रहे हैं, जो वार्निंग इशू की गई है, वो सारी की सारी प्री मानसून वर्षा में आएगी।

0: मॉनसून से ठीक पहले की ये बारिश इसलिए भी अहम है क्योंकि मॉनसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग ने 26 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन यहां नमी कमजोर होने से मॉनसून आगे नहीं बढ़ पाया है। दरअसल लक्षद्वीप, केरल और मंगलुरु के 14 तय स्टेशन में लगातार 2 दिन 2.5 mm बारिश होने पर ही मॉनसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है।
1: 14 rainfall monitoring stations in Lakshadweep, Kerala, and one station from Karnataka, that is Mangalore. So consecutively for 2 days, at least 60% of stations should report 2.5 millimeters of rainfall, and then the second day is declared as the onset of monsoon.

यानी फिलहाल मॉनसून थोड़ा सा इंतजार और करवाएगा, लेकिन तब तक गर्मी के सितम के बीच वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते होने वाली बारिश का फोरकास्ट कई राज्यों के लिए राहत की गुड न्यूज लेकर आया है।

0: चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: मॉनसून का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। राहत की बारिश भी पहुंचने को है, लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही, गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी काफी जरूरी है। तो मई की विदाई और मॉनसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम का उत्सव चल रहा है। कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मॉनसून के इंतजार के बीच में गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इस बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अच्छी खासी रौनक पहाड़ों पर आपको नजर आएगी। कुल्लू मनाली में पर्यटक राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये सभी शहर की गर्मी से दूर पहाड़ों पर खूब इंजॉय भी कर रहे हैं।
2: रिवर राफ्टिंग करी है ब्यास रिवर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हरियाणा में तो अभी बहुत गर्मी है सोनीपत में, और यहाँ क्या राहत मिल रही है हमें, कितना अच्छा मौसम है और अभी तो ठंडे ठंडे पानी में राफ्टिंग करी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
3: सो द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज सूटेबल फॉर अस, इट इज वेरी डिफरेंट एडवेंचर टूर फॉर अस।
1: तो मैदानों के मुसाफिर गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं राहत का इंतजाम उनके लिए भी तो करना है। गर्मी को देखते हुए शहर शहर चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है।
4: तपती धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारे राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदकानन जियोलॉजिकल पार्क में 4000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
5: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4000 के आसपास है।
4: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खानपान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है ताकि लोग तेज गर्मी से बच सके। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो राहत की बारिश आने तक यूं ही गर्मी के विरुद्ध युद्ध तो जारी रखना है। वेदर हॉट है, सॉल्यूशन कूल होना चाहिए। तो देश के अलग अलग हिस्सों से गर्मी को मात देने के लिए कूल सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। चिड़ियाघरों में बेजुबानों के लिए कूलिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं, तो अस्पतालों में लोगों के लिए खास हीट स्ट्रोक रूम तैयार किए जा रहे हैं। बिजली विभाग भी शहर शहर खास एहतियात बरत रहा है। कई शहरों में मुसाफिरों को कड़ी धूप से बचाने के लिए सड़कों पर ग्रीन शेड्स लगाए जा रहे हैं। दरअसल दिन में गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कामकाजी लोगों को बाहर निकलना मजबूरी है। इस दौरान चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने पर सीधी धूप का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अयोध्या, लखनऊ समेत कई शहरों में चौराहे पर वाहन चालकों को भीषण गर्मी से चिलचिलाती धूप और हीट वेव से बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने ग्रीन नेट लगवाया है।
6: प्रदेश में गर्मी भीषण है, प्रचंड है, नौतपा का कहर है, लेकिन अब उससे बचने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा प्रदेश जब हीटवेव से जूझ रहा है तो आप मेरे चेहरे पर भी धूप देख रहे होंगे, लेकिन दो कदम जब मैं आगे लूंगा तो मेरे चेहरे की ये धूप भी छट जाएगी और मुझे थोड़ी राहत महसूस होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं, आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट 2 मिनट की अगर है तो 2 मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है, ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है। तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा, और इतना ही नहीं, इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इस पे स्प्रिंकल करेगा। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर काम किया है। अब आपको मैं दिखाऊं, यहां पर इस चीज को देखें, एक वाटर टैंकर लगा गया है। इस वाटर टैंकर में एक ये मशीन है, पानी इसके जरिए ऊपर जाएगा और इन व्हाइट पाइप्स के जरिए, जो सफेद पाइप बने हुए हैं, इनके जरिए ऊपर जाएगा। और ऊपर जो है वो जो छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के पाइप के बीच में दिख रहे हैं, एक नल रूपी स्वरूप छोटे से, उनसे पानी की बौछार, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा। तो उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी का कहर है, जो गर्मी का प्रकोप है, जो यहाँ पर लोग रुकते हैं आकर, क्योंकि हजरतगंज है लखनऊ का, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, सुबह दोपहर शाम गर्मी प्रचंड है, तो ऐसे में एक सहूलियत मिल सकती है।
1: तमाम एहतियातों के बीच ही 45 डिग्री के पार वाली इस गर्मी में डाइट का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं हेल्थ एक्सपर्ट से ही कि नौतपे की गर्मी में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है।
7: सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपके हाइड्रेशन पे ध्यान रखना, कि पानी रेगुलर हर 15-20 मिनट बाद पानी लेते रहें। उसके अलावा जो भी पानी के साथ में, केवल प्लेन वाटर ही जरूरी नहीं है, आप ORS भी ले सकते हैं, लेमन वाटर जो है वो सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी लेमन वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और उसके अलावा छाछ है, बटर मिल्क है, कोकम का शरबत है, जो इन दिनों सीजन की चीजें हैं, जैसे कि फालसे का रस है या प्याज का रस आप हाथों पैरों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब उससे रिलीफ मिले हीट से। उसके अलावा आम का पन्ना है, छाछ राबड़ी है, जो कि हमारे राजस्थान का मेन खाना है, उसको आपको अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मैं लोगों को कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल लोगों का बिजी शेड्यूल हो गया है तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो नाश्ता जरूर करके निकलना चाहिए, बिना कुछ खाए हुए घर से नहीं निकले। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि ये जो हीट वेव का जो असर है वो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो हार्ट पेशेंट जो है, जिनका कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, या डायबिटिक पेशेंट्स पे जिनका कि ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये सीजन। तो उनको तो स्पेशली अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। कुछ चीजें आप घर से कैरी करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम बाहर का फ्रूट्स खाते हैं तो कई बार कटे होते हैं, तो उनसे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हमेशा फ्रेश पीने वाले पानी से फ्रूट्स को आप धोइए और फिर उनको आप साफ हाथों से काटें, और काटने के बाद आप फ्रेश फ्रेश ही खाएं, मतलब घर का बना हुआ भी खाना कभी भी बासे खाने को नहीं खाएं। ये ध्यान रखें कि जितना आपको खाना मतलब कंज्यूम होना है उतना ही आप बनाएं, बहुत ज्यादा नहीं। साथ में उसका जो टेम्परेचर है वो कोशिश कीजिए कि यदि आपके ऑफिस में रेफ्रिजरेटर है तो आप वहां पर उसको कर सकते हैं, मतलब कोई भी सब्जी या दाल खराब हो गई है वो आपने खाया तो आपका गट डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, इन दिनों में ये भी है कि जब आप घर से निकले तो हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहन के निकले, और 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम यदि आप अवॉइड करें तो वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस समय जो आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है 12 से 4।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा के बजाय अपने ही देश में सैर सपाटा करने की अपील की हुई है। तो गुड न्यूज टुडे भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपके उन वीडियोस

अब यहाँ से हम सीधा चलेंगे नेचर पार्क की ओर। नेचर पार्क की दूरी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, तो चलो मिलते हैं अब नेचर पार्क में। इस समय मैं पहुँच चुका हूँ नेचर पार्क में। ये नेचर पार्क वन विभाग के अंतर्गत आता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ही सुंदर सुंदर हट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं और सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पर सुबह शाम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है जिस कारण इस भरी तपती गर्मी में आपकी इच्छा भी ना करे यहाँ से जाने की।

0: नेचर पार्क में घूमने के अलावा आप यहाँ पे पंडो डैम में बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बात रही इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने की, तो आप कई रास्तों से इस डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चंडीगढ़ की ओर से आ रहे हैं तो जिस रोपवे की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, वह रोपवे हाईवे से महज कुछ ही मीटर दूर है और चंडीगढ़ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो कि भुंतर में स्थित है। अगर मैं फ़्लाइट्स की बात करूँ तो भुंतर एयरपोर्ट पे दिल्ली, अमृतसर, देहरादून और जयपुर से रेगुलर फ़्लाइट्स आती हैं। और फ़्लाइट्स के अलावा अगर आप ट्रेन से भी आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ से नगर का है, जो कि यहाँ से महज 70 किलोमीटर दूर है।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस आपको करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा, स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि गर्मी से आप सबको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है और कूल कूल पैगाम आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छे कपड़ों के लिए देखते रहिए चीज।
2: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
3: Jack, come home. It's supper time.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Hey Jack, could you play that one song with the words?
2: Jack FM, playing what we want.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: हमारी जिम्मेदारी इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का

0: आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति, अध्यात्म, सनातन संस्कृति के अलौकिक आभा में सराबोर। भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। रिकॉर्ड तोड़ रही चारधाम की यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। दिल्ली, यूपी समेत 10 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। हवा चलने से तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट। केरल के कई जिलों में बारिश, थिरुवनंतपुरम में जमकर बरसे बादल। भीषण गर्मी से मिली राहत। नादिया के इस्कॉन मंदिर में पहुंचे पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी। राधा कृष्ण की उतारी आरती, गौ माता की भी की सेवा। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ। दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन। संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग। सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए दिग्गज क्रिकेट सितारे सचिन तेंदुलकर के लेकर सूर्य कुमार ने की तारीफ। वैभव के खेल को बताया अद्भुत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक 24.5 लाख के पार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक करीब 7 लाख लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगहों पर 8.5 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का लगा मेला, अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का अभूतपूर्व सैलाब। सुबह से टोकन काउंटरों पर लगी श्रद्धालुओं की कतारें। मई खत्म होने में से पहले ही यात्रा ने पकड़ी रिकॉर्ड रफ्तार। जून शुरू होते होते 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भी जबरदस्त भीड़, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा 40 लाख के पार। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी बनाए गए विशेष केंद्र। मंदिरों में दर्शन व्यवस्था को लगातार किया जा रहा बेहतर। बद्रीनाथ हेमकुंड मार्ग पर SDRF जवान बने श्रद्धालुओं का सहारा। बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को कंधे पर बैठाकर करवा रहे दर्शन। रामनगरी अयोध्या में फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन। श्री झालरिया मठ में 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन। विश्व शांति, राष्ट्र समृद्धि और जन कल्याण की कामना की जाएगी। महोत्सव में 225 कुंडी, श्री महालक्ष्मी महायज्ञ, श्रीमद भागवत कथा पाठ और तमाम तरह के आयोजन होंगे। अयोध्या के मंदिरों में भगवान के लिए लगाए जा रहे AC और कूलर, लगाया जा रहा खीरे तरबूज जैसे ठंडे फलों का भोग। गर्मी और हीटवेव से लोगों को बचाने के लिए अयोध्या में नगर निगम की विशेष पहल। शहर में जगह जगह लगाए जा रहे हैं अस्थायी शेड और ग्रीन नेट्स। बद्रीनाथ में बाबा बागेश्वर की कथा वाचन का आज दूसरा दिन। 5 दिन चलेगी पवित्र सत्यनारायण की कथा। बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था। रामगढ़ में दिखा आसा संस्कृति का अद्भुत संगम, अच्छी बारिश अच्छी फसल और गांव में सुख शांति के लिए धूमधाम से हुई मंडा पूजा। पूजा के दौरान नूतन सेवा के साथ जलते अंगारों पर नंगे पांव चलते दिखे श्रद्धालु। परंपरा के अनुसार कील के सहारे झूला 20 फीट ऊंचा बनस झूला। मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए मनाया जाता है ये पर्व। झारखंड में इस पर्व को लेकर लोगों में उत्साह। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई बाबा की आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल रजत चंद्र त्रिशूल त्रिपुंड से ड्राई फ्रूट से किया गया उनका श्रृंगार। बाबा महाकाल को अर्पित किए गए फूल और मिष्ठान, बाबा को रुद्राक्ष की माला और गुलाब के फूलों की माला भी अर्पित की गई। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने की पूजा, भस्म आरती में शामिल। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई, गर्मी की छुट्टियों को लेकर रेलवे चला रही कई स्पेशल ट्रेनें। धर्मशाला में 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिवस को समर्पित आयोजन। तिब्बती संस्कृति कला और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग, उत्सव में तिब्बती खान पान पारंपरिक कला बने आकर्षण का केंद्र। स्कूली बच्चे और सांस्कृतिक दलों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने बांधा समा। दलाई लामा के जीवन पर आधारित फिल्में और डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। कोटा का एक स्टेडियम बना फिटनेस लवर्स की पहली पसंद, सुबह शाम खिलाड़ियों युवाओं बुजुर्गों से गुलजार ये स्टेडियम। रनिंग वॉक क्रिकेट से लेकर टेनिस तक बह रहा खिलाड़ियों का पसीना, लड़कियां भी वॉलीबॉल बास्केटबॉल टेबल टेनिस में दिखा रही दम। नादिया के इस्कॉन मंदिर में सुबह सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किए दर्शन, सीएम ने की गौ माता की सेवा। दिल्ली गए चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के लिए की गई विशेष व्यवस्था, जानवरों के बाड़े में लगाए गए कूलर। बाड़ों में भरे गए पर्याप्त पानी, जरूरी जगहों पर लगाए गए कूलर। धौलपुर जिले की राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में दुर्लभ इंडियन स्कीमा के नन्हे मुन्हे चूजों की चहचहाहट से गुलजार हुआ ये इलाका। दुनिया भर में करीब 3,000 की संख्या में बचे दुर्लभ पक्षी, इंडियन स्कीमा के संरक्षण को लेकर सफल प्रयास। 164 अंडों में 116 इंडियन स्कीमर के बच्चे निकले। मैदानों में बढ़ते पारे के बीच में पहाड़ों में सैलानियों की भीड़, कुल्लू मनाली में टूरिज्म बूस्ट। एडवेंचर करने एक्टिविटी में मसरूफ नजर आए पर्यटक, बोटिंग का ले रहे यहां पर मजा। हिमाचल सड़क परिवहन ने फिर से शुरू की दिल्ली ले बस सेवा, उत्तरी भारत का सबसे लंबा रोड रूट ये बनाया गया। लद्दाख के एलजीवी के सेना ने लेह को विकास की सौगात, कहा पर्यावरण के अनुकूल रोड चेक डैम का किया उद्घाटन। सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत उद्घाटन, 11,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये डैम। मिडल ईस्ट संघर्ष के बीच में देश के लिए आई राहत वाली खबर, एलपीजी लेकर वतन आया स्वदेशी वेसल। पोरबंदर के तट पर पहुंचा सीएमडी 23 वेसल, 4,000 टन एलपीजी लेकर लौटा वतन। कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग पर सफलतापूर्वक पा लिया गया काबू, भारतीय वायुसेना ने किया ये अभियान। टिहरी के जंगलों में भड़की आग, ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा, आग बुझाने में जुटे। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को सजाया गया, इमारत लाल रोशनी से जगमगाई। गांधीनगर को गृहमंत्री अमित शाह के विकास कार्यों की सौगात, जेडवा गांव जलाशय का उद्घाटन हुआ, कलोल गांव में जलाशय की आधारशिला रखी। अमित शाह ने गांधीनगर में नए ग्राम पंचायत दफ्तर का शुभारंभ किया, जिले के कई गांवों के लोगों को मिलेगा फायदा। गांधीनगर के कलोल में मोती भोयान प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन, सर्व शिक्षा अभियान के तहत अमित शाह ने किया शुभारंभ। गांधीनगर में नवनिर्मित आधुनिक पुस्तकालय का उद्घाटन, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और गुजरात सरकार के बीच निवेश को लेकर खास एमओयू पर साइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ 7 दिन में 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ को सौंपी। दिल्ली में 45 डिग्री तापमान के बीच में पानी की भारी किल्लत, गोविंदपुरी के आशा किरण फ्लैट में पानी का संकट खड़ा हुआ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस, आज हीट वेव का यहां पर अलर्ट जारी किया गया था। राजस्थान के धौलपुर में नौतपा का कहर, पारा 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। नौतपा की आग में तप रहा राजस्थान, फतेहपुर में तापमान 45.3 डिग्री दर्ज किया गया। 47 डिग्री तापमान से यूपी का बांदा बना हीट चेंबर, भीषण गर्मी और लू की चपेट में बांदा, जूस और ठंडी चीजें खा रहे लोग। देश भर में मनाई जा रही बकरीद, इस मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में सुबह 4 बजे खोला गया पवित्र जन्नती दरवाजा। सुबह सुबह अजमेर शरीफ की दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए जुटे हजारों लोग, नमाज अदा कर मांगी अमन शांति की दुआ। विशेष इस्लामी त्योहारों और उर्स के मौके पर साल में केवल 4 बार खोला जाता है पवित्र दरवाजा। मान्यता है कि इस दरवाजे से गुजरना आध्यात्मिक आशीर्वाद और जन्नत का मार्ग है। दिल्ली की जामा मस्जिद में बकरीद की रौनक, प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने के बंदोबस्त। अलग अलग शहरों में बकरीद के मौके पर ईदगाहों मस्जिदों में नमाजियों की रौनक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वाराणसी की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी, शांति सद्भाव और सौहार्द की कामना की। मुंबई की YMCA मैदान में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की, लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की मुबारक दी। अजमेर में ईद उल अजहा पर जायरीन के लिए खुला ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को बड़ी संख्या में लोगों ने की दुआएं। अजमेर में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए। पटना में ईद उल अजहा पर लोगों ने मस्जिदों में पढ़ी नमाज, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। पटना में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ईदगाह में पढ़ी नमाज, लोगों को दी बकरीद की बधाई। कोयम्बटूर में ईद उल अजहा की नमाज के लिए लगा लोगों का तांता, अमन शांति तरक्की की कामना की गई। देहरादून में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। भोपाल में ईद उल अजहा की नमाज के लिए लगा लोगों का तांता, अमन शांति और तरक्की की कामना की। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी नमाज, जिलानी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भी नमाज अदा की। जम्मू के रामबन में ईद उल अजहा की नमाज के लिए मस्जिदों में उमड़ा सैलाब, लोगों ने घाटी में अमन चैन की दुआ मांगी। मदुरै में ईद उल अजहा की नमाज पर मस्जिदों में दिखी रौनक, लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। जयपुर में ईद उल अजहा की नमाज पर मस्जिदों में दिखी रौनक, लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। गुवाहाटी में ईद उल अजहा पर छाई रौनक, लोगों ने नमाज अदा कर बकरीद की मुबारकबाद दी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड में ईद उल अजहा की नमाज के लिए मस्जिदों में उमड़ा सैलाब, लोगों ने घाटी में अमन चैन की दुआ मांगी। आगरा में ताजमहल में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी, एक दूसरे को सौहार्द भाईचारे का दिया संदेश। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों के साथ दिल्ली में ईद उल अजहा की नमाज अदा की, नकवी ने लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी। अयोध्या में कड़ी सुरक्षा के बीच में ईद उल अजहा की पढ़ी गई नमाज, शांति और सौहार्द का दिया संदेश। देश भर में ईद उल अजहा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लखनऊ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कान में आयोजित प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस के लिए मिला बेस्ट अवार्ड। अक्षय कुमार की प्रेडेटर एलियन थ्रिलर फिल्म समूह में दिखेगा हॉलीवुड का जादू, प्रेडेटर फिल्म का हिस्सा रहे एलेक गिलिस डिजाइन कर रहे एलियन क्रिएटर। कोलकाता में दादा द सौरव गांगुली स्टोरी बायोपिक की शूटिंग शुरू, मैदान ईडन गार्डन पर कैमरा क्रू संग नजर आए सौरव का किरदार निभा रहे राजकुमार राव। ओटीटी के बाद अब बड़े पर्दे पर नजर आएगा कालीन भैया साम्राज्य, 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी। फिल्म नागाबंधम में अहमद शाह अब्दाली और उनके मॉडर्न अवतार के डबल रोल में नजर आएंगे ऋषभ साहनी। 3 जुलाई को फिल्म रिलीज होगी। पोप लियो ने संभाला फरारी की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार का स्टीयरिंग। रोम के पास कैस्टल गंडाल्फो में अपने आवास पर देखी लग्जरी कार। पोप ने फरारी के चेयरमैन जॉन एल्कान के साथ मिलकर हाल ही में लॉन्च हुए लूसे मॉडल का मुआयना किया। कारों के जाने माने शौकीन है पोप लियो। फरारी के चेयरमैन ने पोप के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कार का स्टीयरिंग व्हील किया भेंट। इस मौके पर कंपनी के अधिकारियों इंजीनियरिंग भी टीम भी यहां पर मौजूद रही। फरारी के इस ईवी को रोम में आयोजित एक भव्य समारोह में दुनिया के सामने किया गया था पेश। लॉन्च के तुरंत बाद इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला और पोप लियो ने देखी कार। 4 दरवाजों वाली 5 सीटर कार है फरारी की लूसे। इसे इटालियन कार ब्रांड की तरफ से लाई गई पहली ईवी। क्वालालंपुर में शैडो पपेट्री का पौराणिक परंपरा को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ा रहा अंतर्राष्ट्रीय ऑल फीमेल ट्रूप। महिलाओं के नजरिए से लोक कथाएं पेश करती हैं। वायांग विमेन इस अंतर्राष्ट्रीय महिला समूह का नाम दिया गया है। इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस के सदस्य शामिल हैं। चीन में आयोजित 22वें चीन अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उद्योग मेले का यहां पर आयोजन किया गया। मेले में आकर्षण का केंद्र बनी ट्रेंडी खिलौने। मेले में खिलौनों की आईपी पिलो सीरीज ने खींचा लोगों का ध्यान। प्राचीन चाइनीज क्लासिक शान हाइजिंग में वर्णित सपनों को खाने वाले टैपिर पर आधारित ये स्लीप पिलो। चीन के साथ विदेशों में भी खासा प्रचलित ये स्लीप पिलो। दक्षिण पूर्व एशिया के बाद अब यूरोप और अमेरिकी बाजारों में इसके विस्तार की योजना। दुनिया भर में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान। पश्चिम यूरोप में भीषण गर्मी। राहत के लिए एथेंस के बीच पर समुद्र किनारे जुटे लोग। स्लोवाकिया में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। अपने पेट्स के साथ ले रहे समुद्र में नहाने का मजा। पुर्तगाल में भी सूरज की तपिश से लोगों का हाल बेहाल। गर्म लू के बीच छुट्टियों के सीजन में घूमने आए टूरिस्ट परेशान। मिलान के बाहरी इलाके में जानवर भी तेज गर्मी से बेहाल। घोड़ों पर की जा रही पानी की बौछार। लू से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे इंतजाम। इस साल की अपनी पहली बड़ी लू का सामना कर रहा इटली।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: जिस तरह से गर्मी भीषण पड़ रही है, हीट वेव से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तर भारत में आज से एक्टिव हुए मौसमी पश्चिमी विक्षोभ के असर को लेकर पूर्वानुमान दिया है। दरअसल इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कई राज्यों में बारिश, तेज आंधी, गरज चमक की संभावना बन गई है, यानी आग उगलता हुआ आसमान, पानी भी जल्द बरसा सकता है।
12: आसमान से आग बरस रही है, उम्मीद भी उसी आसमान से ही है। उम्मीद ये कि इसी आसमान पर बादल छाएंगे, राहत की बूंदें बरसेंगी और मौसम की मौजूदा गर्म मिजाजी हल्की पड़ेगी। अभी हाल ये है कि उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में पारा 43 से 46 डिग्री तक बना हुआ है। दिन जल रहे हैं, रातें सुलग रही हैं, लेकिन लगता है जल्द ही जीवन की ये अग्नि परीक्षा खत्म होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने गर्मी से राहत की भविष्यवाणी कर दी है। आज से उत्तर भारत में मौसम का नया स्पेल शुरू हो चुका है, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है और उसके असर से कई राज्यों में बारिश, तेज आंधी और गरज चमक की संभावना बन गई है। यानी जो आसमान अब तक आग बरसा रहा था, वही अब पानी बरसाने की तैयारी में है।
13: 29-30-31 तक आप मान के लिए 5-7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6-8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो हीटवेव सीवेड कंडीशन चल रही है अभी, उसमें कल के बाद से जो राहत मिल जाएगी।
4: कितने दिनों तक राहत मिलेगी?
13: देखिए अभी टेम्परेचर जब इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा। तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2-3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटवेव कंडीशन अपडेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर में पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।
12: मौसम विभाग के मुताबिक 29 से 31 मई के बीच तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। दिल्ली NCR में जहां तापमान 43 से 44 डिग्री तक पहुंच चुका है, वहां अब पारा गिरकर 36 से 38 डिग्री तक भी आ सकता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है, जबकि उत्तराखंड और यूपी में गरज चमक लोगों को गर्मी से राहत दे सकती है।
13: अभी ये फिलहाल प्री मॉनसून बारिश है, क्योंकि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, हीटिंग होती है, कई बार ट्रफ रेखा भी है, साइक्लोन सर्कुलेशन है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पर क्लाउड का सडन डेवलपमेंट होता है जिस वजह से तेज हवाएं और बारिश जो है देखने को मिलती है। तो आप जो भी ये जो बारिश का अभी स्थिति देख पा रहे हैं, जो वार्निंग इशू की गई है, वो सारी की सारी प्री मॉनसून वर्षा में आई।
12: इस बार नौतपा ने लोगों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ गए हैं। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गांव में पशु पानी और छांव के लिए भटक रहे हैं, खेतों में फसलें झुलसने लगी हैं। ऐसे में अब बारिश की खबर सिर्फ मौसमी अपडेट नहीं बल्कि राहत की सांस बनकर आई है। उधर दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विशेषज्ञों को उम्मीद है कि जून के पहले हफ्ते तक मॉनसून उत्तर भारत में दस्तक दे सकता है। यानी फिलहाल सूरज की तानाशाही पर ब्रेक लगने वाला है। कई दिनों से जो धरती आग की तरह तप रही थी, अब शायद वही मिट्टी बारिश की पहली बूंदों की खुशबू से महकने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से भक्ति और सनातन संस्कृति के रंग में रंग गई है। बड़ा भक्तमाल की बगिया सिर फिर झालरिया मठ में आज से 3 जून तक भव्य पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। महोत्सव की शुरुआत भव्य कलश यात्रा और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। 7 दिनों तक यहाँ 225 कुंडी महालक्ष्मी महायज्ञ श्रीमद भागवत कथा और कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे। आयोजकों का कहना है कि विश्व में बढ़ते तनाव के बीच में ये आयोजन शांति मानव कल्याण आध्यात्मिक जागरण का संदेश देगा। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या अब देश के कई बड़े धार्मिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनती जा रही है।
14: पवन कुंड की शुरुआत तो कल सुबह, अभी आज उसकी पूजा विधि है। आज से भागवत महापुराण की शुरुआत हुई है। आज भगवान की भव्य शोभा यात्रा राम पथ पे निकली थी, जिसमें हजारों लोग उसमें शामिल हुए और बहुत गाजे बाजे के साथ भागवत को लेकर के सभी ये जो भक्तगण है, परिवारगण है, वो यहाँ पे पधारे हैं। भगवत आज से शुरू हो गई है। कल सुबह से आज शाम को इस हवन कुंड के अंदर कुछ पूजन होगा। कल सुबह से रोज सुबह 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पे आहुतियाँ दी जाएंगी। 8 से 10 हजार लोग पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र से यहाँ आए हुए हैं और इस आयोजन से हम सब हमारे गुरुजी की जो आज्ञा है उसके अंतर्गत ये आयोजन कर रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: Your Saturday nights will never be the same.
16: The biggest hits back to back in the mix.
17: Get ready for the biggest mix show on the planet.
18: The Tailgate Block Party.
15: The Tailgate Block Party.
17: 6 hours non-stop. Non-stop.
18: The best DJs from around the world.
15: The Tailgate Block Party.
17: Saturday night.
15: 8 p.m. Eastern.
18: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
17: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
10: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
9: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
19: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज़ टुडे।

0: का कौन सा राजयोग छोटी जगह से ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है? बृहस्पति का कौन सा राजयोग जीवन की हर बाधा को दूर कर देता है? और बृहस्पति का कौन सा राजयोग बहुत सारा सम्मान दिलवाता है? कौन से हैं बृहस्पति के राजयोग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति के अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। रिकॉर्ड तोड़ रही चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्मदिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग। सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए दिग्गज क्रिकेट सितारे सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्य कुमार ने की तारीफ, वैभव की खेल को बताया अद्भुत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, आस्था और आध्यात्म की पावन धरती देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा अपने चरम पर है, यहाँ हर रोज यात्रा का रिकॉर्ड टूट रहा है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। आपको बता दें कि हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के जयकारों के साथ हिमालय की वादियों में भक्ति की अलग जगाने पहुंच रहे हैं, वहीं बद्रीनाथ में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

0: केदारनाथ धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री में माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। और बद्री विशाल के धाम में तो आस्था की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। अलकनंदा के तट पर बसे भगवान बद्रीनाथ के दरबार में पहुंचकर श्रद्धालु भक्ति में सराबोर हैं। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु कठिन यात्रा कर पवित्र धाम पहुंच रहे हैं और चारों धामों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ये बता रही है कि देवभूमि में आस्था आज भी उतनी ही अटूट है जितनी सदियों पहले थी। चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन ऋषिकेश की ओर से जारी आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 9.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 7 लाख, गंगोत्री धाम में 4.5 लाख और यमुनोत्री धाम में 4.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में भी यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 20,000 श्रद्धालु पहुँचे हैं।
1: श्री केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो पिछले वर्ष की तुलना में जल्दी खुले थे और 22 अप्रैल को खुले थे, तो इस कारण से इस बार की यात्रा अवधि भी लंबी है और गर्मी की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और देश से विदेश से लोग भारी संख्या में आ रहे हैं और अभी तक 9 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। यात्रा का जो मैनेजमेंट है वो हम इस कंट्रोल रूम से संचालित करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं।
0: राहत की बात यह है कि यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसरों तक चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार मुस्तैद हैं और CCTV के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है।
1: इस कंट्रोल रूम के माध्यम से कई बार हम लोगों को मदद ये मिलती है कि कहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर भीड़ ज्यादा है और यहाँ से हम लोग अनाउंसमेंट भी कर लेते हैं, तो ये कंट्रोल रूम हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है।
0: बद्रीनाथ धाम में भी नजारा कुछ ऐसा ही है। भगवान विष्णु के इस सर्वश्रेष्ठ धाम की यात्रा इस साल अपने चरम पर है। इन दिनों यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। मई का महीना अभी बीता भी नहीं और दर्शनार्थियों का आंकड़ा 6.5 लाख पार कर गया।
2: भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ में इस समय यात्रा अपने पूरे चरम पर चल रही है। सड़कों पर लगातार गाड़ियों की कतार, तो बद्रीनाथ धाम में पैदल श्रद्धालुओं का जाम देखने को मिल रहा है। अब तक बद्रीनाथ धाम में 6.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीसार के दर्शनों को बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। आदि मई का महीना नहीं दिखता है, आने वाला जून का महीना सबसे बुक होता है जिसमें सबसे ज्यादा छुट्टियां होती हैं। सभी लोग बद्री विशाल चारधाम की यात्रा पे आते हैं, तो आज जून का जो महीना होगा वो और अत्यधिक भीड़ का होगा।
0: आस्था की ऐसी भव्य तस्वीर सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी देखने के लिए मिल रही है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट सिख श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और तभी से यहां आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। अब तक 18,000 से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचकर मत्था टेक चुके हैं।
3: देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सिख संगतें जो है वो हेमकुंड साहिब के पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचते हैं। ऐसे में इस समय हेमकुंड साहिब पर्यटकों से, यात्री हैं, पर्यटक हैं, जो यात्रियों से गुलजार दिखाई दे रहा है। हर कोई उत्साहित है। हेमकुंड साहिब की यात्रा भले ही कठिन होती है, 19 किलोमीटर पैदल होती है, ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो कोई नहीं डिगा पाता है।
0: प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से यात्रा पूरी कर सके। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुजरात के पाटन में गंगा मैया की वाड़ी में विराजमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में एक अनोखी तस्वीर देखने के लिए मिली। यहां अधिक मास के शुभ महीने में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान का 1,51,000 रुपए के नोटों से भव्य श्रृंगार किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है पाटन के मंदिर में नोटों से श्रृंगार। पाटन के पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में नोटों से भगवान का दिव्य और आकर्षक अंगीय श्रृंगार किया गया जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस विशेष श्रृंगार में 5 से लेकर 500 रुपए तक के नोटों का इस्तेमाल किया गया और कुल 1,51,000 रुपए नोटों का भगवान के श्रृंगार में इस्तेमाल किया गया। रंग बिरंगे नोटों से सजे भगवान के अलौकिक स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भक्ति से सराबोर पूरा वातावरण नजर आया। पाटन में उत्तर गुजरात में पूर्व पुरुषोत्तम भगवान का ये एकमात्र स्वयंभू मंदिर माना जाता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं में इसकी विशेष धार्मिक मान्यता है। अधिक मास की अग्यारस पर आयोजित इस अनोखे श्रृंगार को पूजा अर्चना ने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय वातावरण से भर दिया। दरअसल अधिक मास के अवसर पर मंदिर में प्रतिदिन सुबह 9 बजे कथा तथा शाम को भव्य महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा शाम के समय श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में साथिया पूजन भी किया जाता है। कोटा स्थित ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में करीब 300 वर्षों से एक अनोखी धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है। यहां हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 14 दिन का विशेष बीमारी अवकाश दिया जाता है और इन 14 दिनों तक भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है भगवान के बीमार पड़ने की अनोखी धार्मिक परंपरा। आपको बता दें कि मान्यता है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आम रस का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसके चलते मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
5: जैसी भक्त की आस्था उसी रंग में रंग जाते हैं भगवान भी। राजस्थान में कोटा के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में करीब 300 सालों से एक अनूठी धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 14 दिन का विशेष बीमारी अवकाश दिया जाता है। मान्यता है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आम रस का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसके चलते मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
6: 8 कुंडों से स्नान होता है और उसी दिन भगवान का 108 किलो का आमरस का भोग भी लगाया जाता है। और जगन्नाथ भगवान जो है वो बाल स्वरूप माने जाते हैं कृष्ण भगवान के, तो क्योंकि जैसे एक छोटा सा बच्चा जैसे ही उसको इतना ज़्यादा स्नान कराया जाए और इतना ज़्यादा खिलाया जाए, भोग कराया जाए, तो उससे उसकी तबीयत नरम हो जाती है।
5: परंपरा के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान का 51 जल कलशों और पंचामृत से विशेष अभिषेक किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के पूर्ण होने के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और अगले 14 दिनों तक पुजारी प्रतिदिन भगवान के स्वास्थ्य की प्रतीकात्मक देखभाल करते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए दूध और काली मिर्च का विशेष काढ़ा भी अर्पित किया जाता है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आईआईटी दिल्ली का सेंट्रल रिजर्व फैसिलिटी यानी कि सीआरएफ देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं में से एक माना जाता है। यहां पर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, बायोमेडिकल रिसर्च, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की जा रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है आईआईटी में अत्याधुनिक रिसर्च और तकनीक का संगम। सीआरएफ ने देश में रिसर्च को एक नई दिशा दी है और यहां पर क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समेत कई उपकरणों के माध्यम से अत्याधुनिक रिसर्च किए जा रहे हैं।
7: आईआईटी दिल्ली में मौजूद सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी यानी सीआरएफ देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, बायोमेडिकल रिसर्च, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की जा रही है। बुधवार को आईआईटी दिल्ली के कैंपस में सीआरएफ डे के मौके पर देश की अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। इन्हीं में से एक है अत्याधुनिक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से वैज्ञानिक प्रोटीन, वायरस और बायोमोलिक्यूल की 3D संरचना को बेहद सूक्ष्म स्तर पर देख सकते हैं। यह तकनीक मेडिकल रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहद अहम मानी जा रही है।
8: क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है हम जानते हैं, किसी भी वायरस की बारीक से बारीक इमेजेस निकालने के लिए, किसी वायरस का या प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है ये जानने के लिए। एक बार जब रिसर्चर स्ट्रक्चर जान जाते हैं तो उसके बाद ही उसकी जो दवा है वो तैयार होती है या फिर वैक्सीन जो है वो तैयार किया जाता है। जब कोविड के लिए वैक्सीन बनी तो उसके लिए भी इसी तरह का प्रोसेस अपनाया गया कि पहले उसका वायरस का स्ट्रक्चर जाना गया, उसके हिसाब से फिर उसकी जो वैक्सीन है वो तैयार की गई। ये माइक्रोस्कोप दुनिया के सबसे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप में से एक माना जाता है।
7: इस मशीन के जरिए किसी भी वायरस को समझकर उसके लिए वैक्सीन या दवा तैयार की जा सकती है। यह अत्याधुनिक मशीन -190 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम करती है और जैविक नमूनों की हाई रेजोल्यूशन इमेज तैयार करती है। इस तकनीक की मदद से वायरस प्रोटीन और सेलुलर संरचनाओं को उनकी वास्तविक अवस्था में समझा जा सकता है। इस तकनीक को आधुनिक बायोमेडिकल रिसर्च की रीढ़ माना जा रहा है।
9: इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, ये हाईली ऑटोमेटेड है, थ्रूपुट ज्यादा है कि हम एक टाइम पे हम 12 सैंपल्स लोड कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काफी एडवांसमेंट है। आप ओवरनाइट डेटा कलेक्शन लगा सकते हैं जो कि मैन पावर को कम करता है।
7: FESEM यानी फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी एक अत्याधुनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल यहाँ के वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये एक बेहद हाई मैग्निफिकेशन पर मटेरियल की सतह की विस्तृत इमेज उपलब्ध कराती है। इससे वैज्ञानिक नैनो स्तर की संरचना और बेहद सूक्ष्म खामियों का अध्ययन कर सकते हैं जिन्हें सामान्य माइक्रोस्कोप से देख पाना संभव नहीं होता।
8: आप कभी अस्पताल जाते होंगे तो आपको जो पट्टी किसी घाव पर बांधी जाती होगी वो महज 5-10 रुपए की आती होगी, लेकिन आजकल ऐसे बैंडेज भी आते हैं जो सर्जरी के बाद बांधे जाते हैं, उनकी कीमत लगभग 3,000 रुपए तक होती है। अंतर क्या है? दरअसल ये इसी रिसर्च का हिस्सा था। ये अब एक ऐसे बैंडेजेस बन गए हैं जिनसे कोई भी बैक्टीरिया आपके घाव तक पहुंच ही नहीं सकता। इस तरह की रिसर्च इस माइक्रोस्कोप के जरिए होती है।
7: इस मशीन का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाने और सिविल कंस्ट्रक्शन में बेहतर क्वालिटी के लिए किया जा रहा है।
10: पहले हम लोग जो कन्वेंशनल हमारे माइक्रोस्कोप होते थे उनका जो मैग्निफिकेशन होता था, जो बड़ा करने की बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को जूम करके देखने की जो पावर थी वो 1000x ज़्यादा से ज़्यादा होती थी, 100x 200x 1000x तक हम लोग जाते थे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होते थे। बट इसमें हमारा क्या है कि सोर्स कोड जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम किसी भी सरफेस को, किसी भी सैंपल के सरफेस को 300,000 या 400,000 गुना तक देख सकते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि नैनो पे रियल में काम होता है। तो ये मशीन जब से नैनो में काम होना शुरू हुआ तो नैनो के लिए ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी टूल है।
7: इन उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक परमाणु स्तर तक रिसर्च और विश्लेषण कर सकते हैं। IIT दिल्ली का यह प्रयास न सिर्फ देश में वैज्ञानिक शोध को नई दिशा देगा बल्कि स्टार्टअप्स, MSMEs और युवा वैज्ञानिकों के लिए भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
4: बिहार के जमुई के गांव से निकल रही है संघर्ष से संकल्प तक की ऐसी कहानी जिसकी हर ओर प्रशंसा हो रही है। यहां पर एक युवक के संकल्प ने बस्ती की तस्वीर बदल दी है। यहां का एक युवक बच्चों में शिक्षा का अलग जगाने के लिए उन्हें अपने ई रिक्शा से स्कूल पहुंचा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है जमुई में बदल रही समाज की तस्वीर। बस्ती के बच्चों की पढ़ाई के लिए युवक के प्रयास ने पूरे गांव में शिक्षा की लकीर खींच दी है। युवक ने खुद के पैसों से ई रिक्शा खरीदी और हर रोज करीब 80 बच्चों को ई रिक्शा चलाकर स्कूल पहुंचाता है।

0: जयकांत मांझी हर दिन करीब 80 बच्चों को घर से स्कूल और फिर स्कूल से वापस उनके घर तक पहुंचाते हैं। और यहाँ मांझी सिर्फ वाहन चालक की भूमिका नहीं निभा रहे, बल्कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए खुद गांव के अलग अलग टोले में जाकर आवाज लगाते हैं, कई छोटे बच्चों को तैयार करवाते हैं और फिर उन्हें अपने ई रिक्शा में बैठाकर स्कूल लेकर जाते हैं।
1: मैंने बातें गार्जियन बोलता था कि उतना दूर बच्चा कैसे जाता है, थक जाता है, तो यह होता है, वो होता है। तो इस कारण से हम सोचे कि हम एगो पहले, सबसे पहले हम TVS एगो सेकेंड हैंड लिए लूना, और उससे बच्चा को तीन गो चार गो हर एक हम लाते थे, कम से कम दस बार। एक लीटर मतलब 120 रुपया का तेल हमेशा मतलब खाली बच्चा में ही खत्म, एक दिन का। तो हम सोचे कि बहुत दिन होगा, तो हम सोच रहे कि नहीं अब एगो टोटो खरीद ले नहीं, तो टाइम भी बचत हो जाए और बच्चा भी सुरक्षित जाएगा उसमें।
0: जयकांत मांझी बताते हैं कि बचपन में गरीबी ने उनकी पढ़ाई को कई बार रोकने की कोशिश की। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि किताब कॉपी खरीदना भी मुश्किल हो जाता था। कभी ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ी तो कभी दिहाड़ी कर पढ़ाई का खर्च निकालना पड़ा। कई बार हालात ऐसे बने कि पढ़ाई छोड़ देने का मन हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही संघर्ष आज उन्हें समाज के बच्चों के लिए कुछ अलग करने की प्रेरणा देता है।
1: गुजरा है जो हम देखे हैं, गरीबी और जो हालत देखे हैं महादरी टोले बच्चे को, जितना भी है तो हम लोग तो किसी तरह से तो इतना तक पहुंचे और देखे कि बच्चा का यहाँ आना जाना बहुत कम था, मतलब एक भी महादलित का बच्चा यहाँ, एक भी बच्चा नहीं पढ़ा।
0: पहले जिन गलियों में सुबह बच्चों की आवाज नहीं सुनाई देती थी, वहाँ अब हर दिन स्कूल जाने की उत्सुकता नजर आती है।
2: टोटो खरीदे तो बच्चा में कुछ उत्साह आया, जिसके कारण बच्चा में उपस्थिति बढ़ने लगा और छोटे छोटे बच्चे भी विद्यालय आने लगे जो पहले कभी नहीं आते थे, जिसके कारण विद्यालय का शैक्षणिक माहौल बदलने लगा।
0: मांझी की इस पहल का असर अब पूरे इलाके में साफ दिखाई देने लगा है। पहले जिन परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वे अब नियमित रूप से पढ़ाई के लिए पहुंच रहे हैं और अब करीब 100 बच्चे शिक्षा से जुड़ चुके हैं।
3: स्कूल के प्रयास को देखता हूं, उनके प्रयास काफी प्रशंसनीय है, प्रेजवर्दी है और काफी ही उनका काम काफी सराहनीय है।
0: जयकांत मांझी ने ये साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति से भी बड़े बदलाव संभव हैं। केंडी गांव में दौड़ता ये ई रिक्शा अब सिर्फ बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचा रहा, बल्कि एक पूरे समाज को शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चमोली की प्रसिद्ध फूलों की घाटी एक बार फिर से सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। दरअसल फूलों की घाटी 1 जून से देश विदेश के सैलानियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए खुलने वाली है और इसके लिए उद्यान प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार फूलों की घाटी। चमोली की प्रसिद्ध फूलों की घाटी सैलानियों के लिए तैयार है। इस फूलों की घाटी को 1 जून से खोला जाएगा। कपाट खुलने से पहले ही वादियों में फूलों की खुशबू तैरने लगी है। सैलानियों और प्रकृति प्रेमी इस राष्ट्रीय उद्यान के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष घाटी की सबसे खास बात यह है कि घाटी खुलने से पहले ही यहां मौसम सुहाना हो चुका है और कई दुर्लभ प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल पूरी तरह खिलकर वादियों को महका रहे हैं। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। घाटी खुलने की तैयारियों को लेकर वन विभाग की एक विशेष टीम पहले ही मौके पर पहुंच चुकी है। विभाग द्वारा ट्रैक रूट के निरीक्षण और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस बार मौसम अनुकूल होने के कारण समय से पहले ही घाटी में कई सुंदर फूलों ने अपनी छटा बिखेरनी शुरू कर दी है और फूलों की घाटी में इस बार 23 प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिल चुके हैं।
5: एक जून को फूलों की घाटी आम पर्यटकों के लिए खुलने जा रही है। वहीं फूलों की घाटी खुलने से पूर्व वन विभाग नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जो वन क्षेत्र अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर लौट चुकी है, वन कर्मी निरीक्षण कर लौट चुके हैं, रास्ते बनाए जा चुके हैं। वहीं जो पर्यटक आएंगे वो फूलों की घाटी का दीदार 1 जून से कर पाएंगे। वहीं हेमकुंड साहिब के जो यात्री होते हैं वो भी फूलों की घाटी का दीदार करने जाते हैं। ऐसे में अभी से इस वर्ष जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है फूलों की घाटी में फूल खिलने शुरू हो चुके हैं। इस वर्ष पहली बार 23 किस्म के फूल भी फूलों की घाटी में खिल चुके हैं। अलग अलग प्रजाति के यहाँ पर फूल खिले हुए हैं। बताते चले जो फूलों की घाटी में 500 किस्म के अलग अलग प्रजाति के फूल होते हैं, इन सब की जो लाइफ होती है वो 15 से 20 दिनों की होती है। ऐसे में 15-15 दिनों के ये फूल यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग किस्म के खिलते रहते हैं। अभी जो फूल खिले हैं इनकी प्रजाति 23 किस्म की अलग अलग है, जो वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया है। वहीं अब 1 जून से जब पर्यटकों के लिए घाटी खुलेगी तो फिर पर्यटक भी इस घाटी का दीदार कर सकेंगे।
4: बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 29 बॉल पर 57 रन बनाकर इतिहास रच दिया। सूर्यवंशी ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए महज 29 बॉल में 12 छक्के लगाए, जिससे कि खास करके समस्तीपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है और वो है बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी के घर पर जश्न। आपको बता दें वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही उनके शहर बिहार के समस्तीपुर में जश्न का माहौल है। वैभव सूर्यवंशी के गांव ताजपुर में सूर्यवंशी की सफलता का जश्न लोगों ने मनाया। वैभव के गांव में लोगों ने केक पर 29 बॉल 57 रन लिखकर केक काटा और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और समय से पहले दिवाली मनाई। ताजपुर में स्थानीय लोगों ने वैभव के समर्थन में ताजपुर का टाइगर के नारे लगाए। वैभव की पारी के बाद उनके पैतृक गांव में लोग वैभव की तारीफ करते नहीं थक रहे। लोगों को उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी लंबी पारी खेलकर बिहार और देश का नाम रोशन करेंगे। वैभव ने आईपीएल में तूफानी पारी खेलकर ये साबित कर दिया कि उनमें कुछ ना कुछ खास जरूर है जो उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाता है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
7: बदलेगा मौसम, मिलेगी राहत,

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
2: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
1: to live sports action.
3: To the near side corner, to wrap around, he scores!
1: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn. Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: TuneIn is Podcast Central. Hear them all here. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
0: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से भक्ति, आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभास से सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। रिकॉर्ड तोड़ रही चारधाम यात्रा, 44 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती संस्कृति उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन, सांस्कृतिक और परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं लोग। सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए दिग्गज क्रिकेट सितारे, सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्य कुमार ने की तारीफ, वैभव के खेल को बताया अद्भुत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे के साथ शेयर की जाती हैं और बिजली की रफ्तार के साथ फैलाई जाती है। किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर बता दिया जाता है तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। तो ऐसे में हम सच और झूठ के पीछे की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात हम करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि असम के एक मस्जिद के अंदर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सच्चाई क्या है, आगे करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
7: देशभर में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP काफी चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स के मामले में इसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज के दूसरे मुद्दे उठाए जाएंगे। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले को दबोचे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक आदमी उस पुलिस वाले की जेब से नोटों की गड्डियां निकालता है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रभाव और जागरूकता के चलते इस रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, 30,000 की रिश्वत लेते हुए दरोगा को धर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में सड़े गले सिस्टम की सफाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 30,000 की रिश्वत लेने वाले दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में पुलिस वालों को कुछ लोगों को गिरफ्त में देखा जा रहा है। एक शख्स को उनकी जेब से रुपए निकालते हुए भी देखा जा रहा है और फिर उसे गिनते हुए भी देखा जा सकता है। इस दौरान पुलिस वाला ये कह रहा है कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, पीछे से आवाज आती है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसे देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वीडियो घूसखोरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन बाद में फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और छत्तीसगढ़ की लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला। लेकिन मई महीने में हमें ऐसा कोई भी वीडियो या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई को बनाई गई थी और ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि ये व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज में उनके मुद्दे उठाए जाएंगे। तो ऐसे में हमें मामला पुराना लगा, लिहाजा वायरल वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ का है तो यह घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं वीडियो को जानबूझकर एक नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है देखिए।
7: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकालकर उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें ये 26 फरवरी के एक्सपोस्ट में मिला। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि इस घटना का कॉकरोच जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पार्टी हाल ही में 16 मई को बनाई गई थी और ये घटना इससे पहले की है। पोस्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब्दुल मुनाफ नाम के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था। सर्च के दौरान हमें इससे संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स भी मिली। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का है। अंबिकापुर के ग्राम कोड़ी के रहने वाले किसान सत्येंद्र प्रजापति ने ACB में जाकर शिकायत की थी कि SI अब्दुल ने उन्हें एक मर्डर केस में फंसाने की धमकी दी थी और इससे बचाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद ACB की टीम ने SI अब्दुल मुनाफ को पैसे के साथ पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज किया। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि ये वीडियो फरवरी का है, जब छत्तीसगढ़ में एसीबी ने एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: सोशल मीडिया पर भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को पोस्ट करने वाले यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि असम की एक मस्जिद से हथियार बरामद हुए हैं। लेकिन जब हमने वायरल हो रहे वीडियो का फैक्ट चेक किया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
7: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा रखा हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपा कर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47, हैंड ग्रेनेड और खतरनाक हथियार शामिल हैं। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा कि असम की एक मस्जिद से हथियारों का जखीरा बरामद। वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा देखने को मिल रहा है, आसपास जवानों को भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को उसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपाकर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड खतरनाक हथियार शामिल है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तहकीकात की। इससे पहले सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये असमिया नहीं लगा। आप भी सुनिए। अगर वीडियो असम से जुड़ा हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि सुनने में असमिया भाषा ही मिलती। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: एक टीम वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें ये मणिपुर पुलिस के एक्स अकाउंट पर देखने को मिला। यहाँ इस वीडियो को 21 मई को शेयर किया गया था। वीडियो को शेयर करके बताया गया था कि लामशांग इलाके में लूटे गए हथियार और गोला बारूद बेचने के बारे में मिली एक जानकारी के आधार पर मणिपुर पुलिस ने 20 मई 2026 को लामशांग पुलिस स्टेशन के तहत लामदेंग में एक विशेष अभियान चलाया। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर इससे जुड़ी रिपोर्ट देखने को मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स और CRPF के साथ मिलकर उग्रवाद विरोधी बड़े अभियानों में 67 हथियार बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में 27 AK सीरीज की राइफलें, 11 US निर्मित राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक शामिल हैं। इम्फाल पश्चिम में चलाए गए अभियानों के दौरान यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पाम्बेई गुट के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने नामशांग इलाके में अवैध हथियारों की बिक्री को निशाना बनाते हुए एक अभियान शुरू किया। उग्रवादियों के साथियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी किए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी हुई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो असम की मस्जिद का नहीं बल्कि मणिपुर का है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। रश्मि गुप्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: Good news today.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
10: ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें एक छोटा बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार नजर आता है। आमतौर पर छोटे बच्चे टीवी पर कार्टून देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजारा कुछ अलग दिखाई देता है। वीडियो में घर का माहौल नजर आता है, जहां एक बच्चा आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। वहीं दूसरा छोटा बच्चा कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे छोटा बच्चा टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, वो चुपचाप सोफे और दीवार के बीच बची छोटी सी जगह में जाकर बैठ जाता है। वहाँ बैठकर वो बच्चों की किताब देखने लगता है। किताब में फलों, जानवरों और अलग अलग चीजों की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिन्हें बच्चा बड़े ध्यान से देखता नजर आता है। उसकी मासूमियत और पढ़ाई में दिलचस्पी ने लोगों को काफी प्रभावित किया है। क्रिकेट के मैदान पर इस वक्त सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा है। मैदान पर उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने के बाद हर कोई दंग है। इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ वैभव के नाम की ही चर्चा हो रही है। उनकी तारीफ में जहां एक तरफ मजेदार मीम्स की बाढ़ सी आई हुई है, वहीं दूसरी ओर एक अनोखा वीडियो नेटिजन्स का ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो है वैभव सूर्यवंशी 40 का, जो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।
11: बचपन से भरा है इनमें गोन, क्रिकेट खेले के खूब जनान, लंबी तो होते हैं वैसे।
10: बच्चे की क्यूटनेस और फल वाले के सब्र ने पब्लिक का दिल जीत लिया है। वायरल क्लिप में दिख रहा है कि कियारा नाम की एक बच्ची कार की पिछली सीट पर बैठी है और लीची वाले भैया से बात कर रही है।
11: मेरी दादी तो लेकर आते हैं, उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते तो हमारे पास ज्यादा ही नहीं पैसे हैं। दे दो थोड़े कम पैसों में।
12: दे देना पैसे।
11: हम अपने साथ के पैसे दे रहे हैं आपको।
10: लीची के दाम सुनकर बच्ची बड़े ही गंभीर एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, कार में बैठे हैं तो क्या अमीर हैं? वो इतने में नहीं रुकती बल्कि लीची वाले भैया से बार बार प्लीज कहकर दाम कम करने की जिद करती है। इस पूरी बातचीत के दौरान सबसे खूबसूरत बात ये थी कि फल विक्रेता बच्ची की बातों से परेशान होने की बजाय लगातार मुस्कुरा रहा था। उसने बेहद धैर्य और प्यार से बच्ची की बातें सुनी और इस क्यूट सी नोकझोंक का पूरा लुत्फ उठाया।
13: लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक आउटसाइड द एयरक्राफ्ट यू माइट कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर।
10: रात के अंधेरे में जमीन पर चमकती एक लंबी रोशनी की लाइन इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। ये कोई आम सा नजारा नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का ऐसा नजारा है जिसे एक विमान से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक इंडिगो पायलट ने उड़ान के दौरान अपने कैमरे में कैद किया। ऊंचाई से देखने पर दोनों देशों के बीच की सीमा किसी चमकती हुई पट्टी जैसी नजर आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था लेकिन बॉर्डर पर लगी तेज रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
14: बृहस्पति का कौन सा राजयोग छोटी जगह से ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है? बृहस्पति का कौन सा राजयोग जीवन की हर बाधा को दूर कर देता है? और बृहस्पति का कौन सा राजयोग बहुत सारा सम्मान दिलवाता है? कौन से हैं बृहस्पति के राजयोग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
15: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे।
2: आपके साथ में मौजूद रंधावा, एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तपती गर्मी के बीच राहत वाली खबर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदल गया मौसम। क्रिकेट के वैभव के गांव में कैसा है जश्न का माहौल दिखाएंगे आपको। और IIT दिल्ली में क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की झलक, जिससे छिप नहीं पाता वायरस। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से भक्ति अध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभा से सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। रिकॉर्ड तोड़ रही चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग। सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए दिग्गज क्रिकेट सितारे, सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्य कुमार ने की तारीफ, वैभव के खेल को बताया अद्भुत। शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात मौसम की, जिसका मिजाज उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में बदल चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसके असर से आंधी बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस बदलाव की वजह से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर स्थितियां लगातार अनुकूल बनी हुई हैं, जिसके चलते उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्दी ही ये केरलम के तट पर दस्तक देने वाला है।

0: आसमान में काले घने बादलों का डेरा और झमाझम बारिश। ये तस्वीरें दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरलम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आई हैं, जहां प्री मानसून बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। ऐसी ही प्री मानसून बारिश जल्द ही उत्तर पश्चिम प्रदेश के राज्यों में एक साथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसके प्रभाव से न सिर्फ बारिश होगी बल्कि आंधी और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई जा रही है।
1: पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए या दक्षिणी छोर की बात की जाए, क्या हम इसको प्री मानसून बारिश बोलेंगे?
2: जी, अभी ये फिलहाल प्री मानसून बारिश है, क्योंकि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, हीटिंग होती है, कई बार ट्रफ रेखा भी है, साइक्लोन सर्कुलेशन है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पर क्लाउड का सडन डेवलपमेंट होता है, जिस वजह से तेज हवाएं और बारिश जो है देखने को मिलती है। तो आप जो भी ये जो बारिश का अभी स्थिति देख पा रहे हैं, जो वॉर्निंग इशू की गई है, वो सारी की सारी प्री मानसून वर्षा में आएगी। अभी अनुमान ये है कि एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो है उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए 28 तारीख के बाद से जो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से तेज हवा के साथ साथ में जो है लाइटनिंग घटना, हवा गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है।
0: मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि इस नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 से 3 दिन मौसम का मिजाज बदला रहेगा, जिसके चलते तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन आंधी और ओलावृष्टि को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।
2: अगर हम उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से जो तापमान जो अधिक चल रहे थे, अधिकतम तापमान जो है 45 डिग्री या उसके ऊपर चल रहे थे, हमारा अनुमान यह है कि अगले आने वाले 3 दिनों के दौरान जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव में और साथ साथ में जो ईस्टर्ली विंड्स है उसका आगमन भी उत्तर पश्चिम भारत के प्लेन एरियाज में हो रहा है, जिसको देखते हुए जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में साथ साथ में उसके जो प्लेन एरियाज है वहां पर जो है वो देखने को मिलेगी 28 से 30 तारीख के बीच में, जिससे अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड और कहीं कहीं पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट भी देखने को मिलेगी। इसकी वजह से जो लू की स्थिति या हीटवेव कंडीशन जो चल रही है मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी में भी काफी राहत मिलने जो हमें मिलेगी। अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की तो वो भी जो है लार्ज स्केल एक्टिविटी हो सकती है, जिसको देखते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में जो हवा गति है वो काफी तेज रह सकती है, 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर 80 से 90 प्रति घंटे की रफ्तार से भी जो है देखने को मिल सकती है, जो कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है, जिसको देखते हुए जो एडिक्वेट प्रिकॉशन लेने की सबको जो है वो सलाह दी गई है।
0: हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर देखने से पहले कई जगहों पर भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, खासकर मैदानी राज्यों में, जहां गर्मी से लोगों को बचाने के लिए तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू में तो शिक्षा विभाग ने समर जोन यानी गर्म इलाकों में आने वाले स्कूलों के लिए गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए 1 जून से 22 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी, जबकि कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए 8 जून से 22 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी।
3: स्वास्थ्य विभाग ने जो है एडवाइजरी जारी की है और लोगों को कहा है कि जो लोग दोपहर के समय बाहर रहते हैं उनको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना होगा, यानी कि उनको पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना होगा, नींबू पानी पीना होगा, ताकि उनको डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। जम्मू संभाग के जो समर जोन में जो स्कूल्स हैं उस पर भी बड़ा फैसला लिया है शिक्षा विभाग ने और गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं वो घोषित कर दी गई हैं।
0: वहीं यूपी के लखनऊ और अयोध्या में लोगों को हीट वेव और झुलसाने वाली धूप से बचाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन नेट की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में तो ग्रीन नेट के साथ वाटर स्प्रिंकलर को भी जोड़ा गया है।
4: ये ग्रीन शेड्स क्या हैं? आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि रेड लाइट होती है, तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट 2 मिनट की अगर है तो 2 मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है, ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है, तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। अब आपको मैं दिखाऊं यहां पर इस चीज को देखें, एक वाटर टैंकर लगा गया है, इस वाटर टैंकर में एक ये मशीन है, पानी इसके जरिए ऊपर जाएगा और इन व्हाइट पाइप्स के जरिए जो सफेद पाइप बने हुए हैं इनके जरिए ऊपर जाएगा और ऊपर जो है वो जो छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के पाइप के बीच में दिख रहे हैं एक नल रूपी स्वरूप छोटे से, उनसे पानी की बौछार यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा, तो उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी का कहर है, जो गर्मी का प्रकोप है, जो यहाँ पर लोग रुकते हैं आकर, क्योंकि हजरतगंज है लखनऊ का, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, सुबह दोपहर शाम गर्मी प्रचंड है, तो ऐसे में एक सहूलियत मिल सकती
5: है। जगह जगह हर एक चौराहे पे जहाँ तक रेड लाइट आपको दिखेगी, वहाँ हर एक चौराहे पे जो है इस ग्रीन कलर की जो है नेट को लगाया गया है, और हर तरफ जो है जो गर्मी से बचाव के लिए जो कि यहाँ जो पुलिस वाले भी बैठते हैं चौराहे पे, जो ड्यूटी करते नजर आ रहे होंगे, वो भी इन नेट के नीचे जो है छाए का पूरा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और गर्मी से बचाव के लिए नगर निगम ने यहाँ पे एक नई पहल की।
0: झुलसा देने वाली गर्मी से इंसानों का ही नहीं, चिड़ियाघर के जानवरों का भी हाल बेहाल है। ऐसे में चिड़ियाघर के जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए रोजाना पानी का छिड़काव, वाटर स्प्रिंकलर, कूलर, पंखा और ग्रीन नेट का इंतजाम किया गया है। दिल्ली और भुवनेश्वर के जू में ऐसे ही इंतजाम देखने को मिले।
6: अलग अलग इंक्लोजर के हिसाब से, अलग अलग एनिमल और उसके स्पीसीज के हिसाब से हमने उसका प्लानिंग किया है। जैसा कि जो हमारे लार्ज कार्निवोर है, टाइगर, लायन है, लेपर्ड है, इनके लिए, और भालू है, इन सब के लिए हमने व्यवस्था की है कि उनके लिए अलग अलग जगह दिया जाए। जैसे शेडेड एरिया भी है, उनके लिए पूल है, पॉन्ड है, जिसमें वो पानी है, और उस पानी को भी हम थोड़ा सा आइस, थोड़ा ठंडा पानी हम दे रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे फॉगर और मिस्ट स्प्रे भी लगाया गया है, जिसके हिसाब से एनिमल मूवमेंट भी कर सके डिस्प्ले यूनिट में रहने से, और वो वहाँ पे हीट स्ट्रेस ना महसूस करें। जो प्राइमेट सेल है वहाँ पे हमने उनके लिए स्प्रे के साथ में, मिस्ट स्प्रे और स्प्रिंकलर के साथ में, हमने वहाँ पे खाने के लिए उनके विशेष ध्यान दिया गया है। उनके डाइट के अलावा उनको जो वाटर सफिशिएंट फ्रूट्स है, जैसे वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, वो उनको दिया जाता है।
0: इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिससे राहत पाने के लिए लोग बेसब्री से मॉनसून की राह देख रहे हैं, जिसके 26 मई तक केरलम तट पर टकराने का अनुमान था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून को लेकर स्थितियां लगातार अनुकूल बनी हुई है। अगले 2 से 3 दिनों में ये अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ सकता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, जम्मू से सुनील जी भट्ट, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: बात करते हैं उभरते हुए क्रिकेटर स्टार वैभव सूर्यवंशी की, जिसने आईपीएल के अपने दूसरे सीजन में ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी की कि आज हर तरफ वैभव के तूफानी खेल की चर्चा हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक दिन पहले खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने महज 29 गेंदों में 97 रन बनाए, और इसके साथ ही वैभव ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। 15 साल के वैभव की बल्लेबाजी देखकर वर्ल्ड क्रिकेट में न सिर्फ हर कोई हैरान है, बल्कि सचिन तेंदुलकर सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस युवा बल्लेबाज को जमकर सराहा भी है।

0: 15 साल का ये लड़का आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वैभव सूर्यवंशी आज वो नाम बन चुका है जिसकी चर्चा वर्ल्ड क्रिकेट में हो रही है। हालांकि वैभव ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन आईपीएल के करियर में वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। 2026 के पूरे आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस कदर चला है कि मैदान के अंदर और बाहर सिर्फ वैभव की धुआंधार बैटिंग की ही चर्चा हो रही है। एक दिन पहले भी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने दमदार बल्लेबाजी से सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके मारे। वैभव की इस तूफानी पारी को देखने के बाद उनके गृह जिले बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने केक काटकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। साथ ही लोगों ने वैभव के मौजूदा प्रदर्शन की खूब तारीफ भी की। तारीफ करने वालों में उनके शुरुआती दिनों के कोच भी शामिल हैं।
1: जिस लहजे में अभी वैभव खेल रहे हैं, उसकी तैयारी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट उस समय वैभव बच्चा था, तो हमारा ऑब्जेक्टिव और उस समय का प्लानिंग स्टेट मैचेस के लिए था।
2: तब भी वैभव ऐसी ही बल्लेबाजी करता था जैसा कल की रात?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं उस ओपन नेट सेशन के, जब वैभव बैटिंग कर रहा है, उसके साथ सीनियर बच्चे बैटिंग कर रहे हैं जो उससे मिनिमम 5-6 साल 7 साल बड़े रहते थे। तो आप जब बैटिंग को देखेंगे तो वो सीनियर बच्चों से भी ज्यादा बेहतर अपने गेम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाता था।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि वो समस्तीपुर का ही नाम रोशन नहीं कर रहा, बिहार का ही नहीं कर रहा, पूरे देश का कर रहा है, और एक दिन हम लोग उसको भारतीय टीम में खेलना देखना चाहते हैं। और जो लगता है, जो प्रतिभा है उसके प्रति, खेल के प्रति जो प्रतिभा वो दिखा रहा है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एक दिन भगवान की इच्छा रही वो भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर हम लोग का मान और सम्मान जो है और आगे बढ़ाएगा।
0: हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव भले ही सबसे तेज शतक लगा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने खेल से इस आईपीएल सीजन में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। वो अब तक इस सीजन में 65 छक्के लगा चुके हैं। इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल के 59 सिक्सेस के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये कि गेल ने 456 गेंदे खेलकर 59 छक्के लगाए थे, लेकिन वैभव सिर्फ 280 गेंदे खेलकर ही अब तक 65 छक्के मार चुके हैं। इतना ही नहीं, एक सीजन में 4 बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वैभव आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। वहीं वो आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज भी बन गए हैं। ये कुछ ऐसे आईपीएल रिकॉर्ड हैं जिसने क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों को भी वैभव की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर तक, क्रिस गेल से लेकर केविन पीटरसन तक, और सूर्य कुमार यादव से लेकर युवराज सिंह और सुरेश रैना तक, हर किसी ने सोशल मीडिया पर वैभव के खेल की खूब सराहना की, जिसके लिए वैभव ने इन दिग्गज क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा किया।
4: इतने सारे रिकॉर्ड्स वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किए हैं, जिसमें से सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही था जहां पर उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हों। क्रिस गेल 59 सिक्सेस उन्होंने लगाए थे, 65 वैभव सूर्यवंशी लगा चुके हैं। और क्रिस गेल ने यही बोला है उनके लिए कि जी जो 100 फास्टेस्ट 100 का जो रिकॉर्ड था वो भी आने वाले वक्त में हो जाएगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं 6 हिटिंग मशीन। इसके अलावा क्या कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं वैभव सूर्यवंशी ने वो मैं आपको बताऊंगी। जहां पर मोस्ट रन्स इन पावर प्ले, वो आते हैं पावर प्ले में ही गेम खत्म कर देते हैं, सामने वाली टीम देखती रह जाती है और पावर प्ले में वो रन्स उतने बना देते हैं। 490 रन्स पावर प्ले में उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन पावर प्ले, 8 छक्के वो जो है पावर प्ले में लगा चुके हैं। और मतलब आप देखेंगे कि किस तरीके से पावर प्ले में ही वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि ये मैच तो मैं ही अपनी टीम को जिताऊंगा। हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग, एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के जो है वो भी वैभव सूर्यवंशी ने ही लगाए हैं। उसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन आईपीएल नॉकआउट्स, आप जानते हैं नॉकआउट्स उनका प्रेशर ही अलग होता है, प्रेशर वहां पर नॉकआउट्स का सबसे ज्यादा होता है, और वहां पर आकर सबसे ज्यादा छक्के वैभव सूर्यवंशी ने लगाए हैं। 12 छक्के लगा चुके हैं, इससे पहले 10 छक्के वहां पर शुभमन गिल ने लगाए थे। इसके बाद में बात करूंगी मोस्ट रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर, सबसे ज्यादा रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर। अभी इंडिया के लिए खेले नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा रन्स उन्होंने लगा ली है 680 रन्स। इससे पहले उन्हीं के साथ ही जयसवाल, उनके थे 626 रन 2023 में, लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं वो अनकैप्ड प्लेयर।
0: एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान को मिली जीत में वैभव की भूमिका अहम रही। अब राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से 29 मई को है। इस मैच में जीतने वाली टीम आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में आरसीबी से 31 मई को सामना करेगी। यानी अभी दो चांस हैं जब वैभव अपने मौजूदा फॉर्म की बदौलत कुछ नया इतिहास रच सकते हैं। चंडीगढ़ से खुशी गुप्ता और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आईआईटी दिल्ली ने क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की झलक दिखाई। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे रिसर्च के काम में काफी आसानी होगी। हाईली ऑटोमेटेड होने की वजह से इसमें एक वक्त पर 12 सैंपल लोड किए जा सकते हैं। इन उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक परमाणु स्तर तक रिसर्च और विश्लेषण कर पाएंगे। आईआईटी दिल्ली का यह प्रयास न सिर्फ देश में वैज्ञानिक शोध को नई दिशा देगा बल्कि नई वैक्सीन बनाने में भी मदद करेगा।

0: तकनीक के सहारे कोविड जैसी महामारी को भी हराया जा सकता है, ये बात साबित हो चुकी है। कोविड 19 के दौरान रिकॉर्ड समय में वैक्सीन तैयार करने में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया। कुछ ऐसी ही तकनीक और अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं की झलक दिल्ली के प्रतिष्ठित IIT दिल्ली में दिखी। मौका CRF डे का था, यानी सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी दिवस का, जिसमें क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की झलक दिखी।
1: ये एक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है हम जानते हैं, किसी भी वायरस की बारीक से बारीक इमेजेस निकालने के लिए, किसी वायरस का या प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है ये जानने के लिए। एक बार जब रिसर्चर स्ट्रक्चर जान जाते हैं, उसके बाद ही उसकी जो दवा है वो तैयार होती है, या फिर वैक्सीन जो है वो तैयार किया जाता है। जब कोविड के लिए वैक्सीन बनी तो उसके लिए भी इसी तरह का प्रोसेस अपनाया गया कि पहले उसका वायरस का स्ट्रक्चर जाना गया, उसके हिसाब से फिर उसकी जो वैक्सीन है वो तैयार की गई। ये माइक्रोस्कोप दुनिया के सबसे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप में से एक माना जाता है।
0: क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीक है, जिसके जरिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर यानी अत्यधिक कम तापमान पर जैविक नमूने जैसे प्रोटीन, वायरस और कोशिकाओं का 3D मॉडल आसानी से तैयार हो जाता है, जिसकी बदौलत उनसे निपटने के लिए वैक्सीन यानी कि दवा तैयार करने में मदद मिलती है।
2: मैं फैसिलिटी मैनेजर हूँ यहाँ साथी फाउंडेशन IIT दिल्ली में। ये एक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो कि ऑपरेट करता है क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पे, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पे। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, वायरसेस और बायोलॉजिकल असेंबली, जो कि आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज और लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज में ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करता है काफ़ी। जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि कोविड का वैक्सीन, तो कोविड टाइम पे क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिसर्च से बहुत हेल्प हुआ वैक्सीन डेवलपमेंट में। हमारे यूज़र्स एकेडमिक यूज़र्स हैं और इंडस्ट्री यूज़र्स हैं, और रूटीनली दे आर सॉल्विंग स्ट्रक्चर्स।
0: क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने रिसर्च के काम को काफी आसान बना दिया है। हाईली ऑटोमेटेड होने की वजह से एक वक्त पर 12 सैंपल लोड किए जा सकते हैं, और उनकी जटिल संरचनाओं का अध्ययन कर कम समय में और कम मैन पावर से ज्यादा डेटा कलेक्शन हो सकता है।
1: कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स को, खासकर जो प्रॉब्लम्स रिसर्च के आड़े आती थी कि ज्यादा मैन पावर लगना है, बहुत देर तक बैठना है, आपने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया, ये उन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है?
2: इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, ये हाईली ऑटोमेटेड है, थ्रूपुट ज़्यादा है कि हम एक टाइम पे हम 12 सैम्पल्स लोड कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर काफ़ी एडवांसमेंट है, आप ओवरनाइट डेटा कलेक्शन लगा सकते हैं जो कि मैन पावर को कम करता है। PhD स्टूडेंट थी, IIT दिल्ली से ही हूँ, और मैं उस टाइम पे एक 200 KV थर्मोफिशर साइंटिफिक का ही माइक्रोस्कोप पे ऑपरेट करती थी, और तब मैं ऑपरेट करते टाइम ओवरनाइट डेटा कलेक्ट करती थी मैन्युअली, तो मुझे एक एक माइक्रोग्राफ मैन्युअली कलेक्ट करना पड़ता था। अभी यहाँ पे मैं एक सेटअप लगाती हूँ जो कि एक EPU करके सॉफ्टवेयर है, एंड इट कलेक्ट्स ऑटोमेटिकली द डेटा फॉर मी।
0: क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वैज्ञानिकों को शरीर में वायरस की संरचना और काम करने का तरीका पता चल जाता है, जिसके आधार पर वायरस को रोकने के लिए दवा विकसित की जाती है।
3: सबसे पहले तो हमें एक EPU सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें जैसा कि मैडम ने बताया, उसमें हम पैरामीटर्स फीड कर देते हैं, तो उसमें हम पैरामीटर्स जब फीड करते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेट कर देता है प्रोसेस, तो जनरली वो इमेजेस एक्वायर शुरू कर देता है। तो इसमें जो जनरली जो मैनुअली किया जाता है आपका एक्विजिशन, अगर कोई ऑपरेटर करता है, तो 25 या 30 इमेजेस एक घंटे में होते हैं, बट इस मशीन के थ्रू हमारे 300 और 350 इवन 400 तक भी स्पीड अचीव होती है पर आवर के हिसाब से, और फिर हम इनको आगे इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं क्रायोस्पार्क या रिलायंस सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है, और हमें जो बेस्ट पार्टिकल्स होते हैं हर एक सिंगल इमेज से वो सॉफ्टवेयर पिक करता है, और आखिरी में जिस सारी इमेजेस से जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्लब किया जाता है और उसका 3D मॉडल जनरेट किया जाता है, और फाइनली हमें उसका स्ट्रक्चर मिलता है।
0: IIT दिल्ली के साथी फाउंडेशन में फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी दिखा, जो परंपरागत ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तुलना में बेहतर काम करता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जूम करने की क्षमता आमतौर पर 1000x होती है, जबकि फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से किसी भी सतह को तीन या फिर चार लाख गुना तक देखा जा सकता है, चाहे किसी फैब्रिक की सतह ही क्यों ना हो।
4: पहले हम लोग जो कन्वेंशनल हमारे माइक्रोस्कोप होते थे उनका जो मैग्निफिकेशन होता था, जो बड़ा करने की बेसिकली कहते हैं किसी चीज को जूम करके देखने की जो पावर थी, वो 1000x ज्यादा से ज्यादा होती थी। 100x, 200x, 1000x तक हम लोग जाते थे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होते थे। बट इसमें हमारा क्या है कि सोर्स कोड जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम किसी भी सरफेस को, किसी भी सैंपल के सरफेस को 3 लाख या 4 लाख गुना तक देख सकते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि नैनो पे रियल में काम होता है, तो ये मशीन जब से नैनो में काम होना शुरू हुआ तो नैनो के लिए ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी टूल है।
5: आप पहले नैनो में कोई कुछ मेजरिंग हो ही नहीं पाती थी आप पदार्थ,
4: मतलब आप कह सकते हो कि मेजरिंग हो पाती थी बट वो इतना क्लियर रिजल्ट उसका नहीं आता था।
0: GCMS का पूरा नाम है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो खाद्य पदार्थों, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे घी और दूध और परफ्यूम की शुद्धता और गुणवत्ता को गति से जांचती है। पहले ही इस काम में कई दिन लग जाते हैं।
6: दूध में सर हमारा फैटी एसिड ही होता है, तो अगर उसमें किसी तरह का भी मिलावट है तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये दूध प्योर है या इम्प्योर है। या दूसरा एग्जांपल ले लीजिए जो देसी घी।
5: इम्प्योरिटी का मतलब क्या है कि उसमें पानी कितना है या फिर कोई ऐसे बैक्टीरिया नहीं जो हार्मफुल हो?
6: पानी तो दूध में होगा ही, होगा ही। उसके अलावा जैसे यूरिया डाल के बनाते हैं दूध, तो जो प्योर दूध होगा उसमें फैटी एसिड होगा, और जो हमारा मार्केट में बनेगा उसमें हो सकता है कुछ हार्मफुल केमिकल होगा।

0: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
1: So they were disallowed from speaking their language.
0: In-depth conversations with A-list celebrities.
2: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
0: True crime podcasts you just can't stop listening to.
3: Others escape justice to live and die in infamy. These
0: individuals. Plus the news and sports content you crave in podcast form.
4: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
0: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
0: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
9: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
9: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन

0: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे शुभ और सबसे पवित्र ग्रह है बृहस्पति और आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के राजयोग कौन से हैं और अगर बृहस्पति के राजयोग आपकी कुंडली में हैं तो इसका प्रभाव जीवन पर क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 मई 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 9:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 10:38 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 मई 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। बृहस्पति का पहला राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का पहला और सबसे ताकतवर राजयोग है हंस योग। ये हंस योग बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। जब बृहस्पति कर्क राशि में हो, धनु राशि में हो या मीन राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है और हंस योग वालों को बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान मिल जाता है। हंस योग वाले लोग राजनीति में, कानून में, शिक्षा में,
धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। और ये भी देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा भी होती है। अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए और ऐसे लोगों को हमेशा अपने खाने की आदत पर भी ध्यान देना चाहिए। हंस योग होने के नुकसान ये हैं कि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, जरूरत से ज्यादा खाता है और सेहत बिगाड़ता है। तो अगर आप अपने अहंकार पर और अपने खान पान पर काबू रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बृहस्पति के अन्य राजयोगों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति के दूसरे राजयोग के बारे में। दूसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है? बृहस्पति का दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग कुंडली में बन जाता है। अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो ये सामान्य व्यक्ति को भी विशेष व्यक्ति बना देता है। गजकेसरी योग कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में ज्यादा प्रभावशाली होता है। जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग होता है, इस योग वाले लोग
शासन में और राजनीति में विशेष सफल होते हैं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जीवन के जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। गजकेसरी योग वाले लोग बड़ी छोटी जगह से उठ करके ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और अपने क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनते हैं, एक बड़ा व्यक्तित्व बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है तो व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए और सलाह लेकर अगर संभव हो तो पीला पुखराज धारण करना चाहिए, ऐसा करना बेहतर होगा। बृहस्पति के तीसरे राजयोग पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रिश्तों की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि बृहस्पति का तीसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति, यानी बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा हो, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, तो ये भी एक तरीके का राजयोग है। बृहस्पति केंद्र में काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है और उसमें भी अगर लग्न में बैठा हो, फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो बृहस्पति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति अकेला कुंडली के तमाम दोषों को
नष्ट कर देता है। और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति जीवन की तमाम मुश्किलों से व्यक्ति की रक्षा करता है। ऐसा बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है तो धर्म स्थानों पर जरूर जाएं। साथ ही साथ अगर नियमित रूप से तिलक लगाएं तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, बृहस्पति के राजयोग आपको तभी फायदा पहुंचाएंगे जब आपका आचरण, आपका व्यवहार और आपका खान पान शुद्ध होगा। कुंडली में अगर बृहस्पति का राजयोग है, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बृहस्पति का राजयोग आपको शुभ फल नहीं देगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का राजयोग है तो आपको जीवन में पवित्रता और शुभता का पालन अवश्य करना होगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है आज का लकी टिप। अगर आप जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज सवेरे शिव जी की पूजा करिए और पूजा के दौरान शिवलिंग पर अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
अब जान लेते हैं दिनांक 29 मई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है।

मिश्री का भोग लगाइए, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिश्री खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
1: I have no idea how this election is going to play out,
0: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen. Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबर।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति, आध्यात्म और सनातन संस्कृति के अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साईं बाबा के एक भक्त ने भेंट किए 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों को आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ रही चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग। सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए दिग्गज क्रिकेट से सितारे, सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्य कुमार ने की तारीफ, वैभव के खेल को बताया अद्भुत। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा आगरा में बकरीद पर मुस्लिम परिवार की अनोखी पहल की भी हो रही है।
4: ईद उल अजहा के मौके पर विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में आज विशेष रौनक देखने को मिल रही है। दरगाह का ऐतिहासिक जन्नती दरवाजा आज सुबह से जायरीनों के लिए खोल दिया गया था, जिसे देखने और वहां से गुजरने के लिए देश विदेश से आए हजारों अकीदमंदों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर दरगाह शरीफ के खादिम ने बताया कि जायरीन बहुत सुकून और शांति के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा कर रहे हैं। उन्होंने कामना की कि हमारे देश में इसी तरह अमनो अमान और भाईचारा बना रहे और सब मिलजुल कर इस त्योहार को मनाए। त्योहार के अवसर पर दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आगरा में बकरीद पर मुस्लिम परिवार की अनोखी पहल चर्चा का विषय बन गई। शाहगंज क्षेत्र में तिरंगा मंजिल शेरवानी मार्ग पर एडवोकेट गुल चमन शेरवानी और उनके परिवार ने बकरे की तस्वीर वाला केक काटकर जीव हत्या रोकने का संदेश दिया। इस अनोखी पहल को देखने के लिए इलाके में लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुटी और हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने इसकी काफी सराहना की। एडवोकेट गुल चमन शेरवानी ने कहा कि अल्लाह को दिखावा नहीं बल्कि इंसान की नीयत पसंद है। उन्होंने कहा कि असली कुर्बानी अपने अंदर की बुराइयों, लालच, नफरत और अहंकार को छोड़ने में है। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 1 जून से खुलेगी। पर्यटक जैसे ही घाटी में जाएंगे उन्हें वहां विभिन्न प्रजाति के फूल देखने को मिल जाएंगे। घाटी का निरीक्षण करने के लिए वन क्षेत्र अधिकारी चेताना कांडपाल के नेतृत्व में गई टीम वापस लौट आई है। उन्होंने बताया कि घाटी में फूलों के खिलने का क्रम शुरू हो चुका है। इस समय यहां 2 दर्जन से अधिक प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई और अगस्त के बीच यहां करीब 300 प्रजाति के फूल खिलते हैं। गुजरात के पाटन में गंगा मैया की वाड़ी में विराजमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अनोखा श्रृंगार देखने को मिला। अधिक मास की अग्यारस के पावन अवसर पर भगवान का 1.51 लाख रुपए के चलनी नोट से भव्य और दिव्य आंगी श्रृंगार किया गया। इस सजावट में 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की विभिन्न मूल्यों की नोटों का उपयोग किया गया। उत्तर गुजरात में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ये एकमात्र स्वयंभू मंदिर होने के कारण श्रद्धालुओं में इसका विशेष धार्मिक महत्व है। 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद से अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंच चुके हैं। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ इन पैदल यात्रा मार्गों पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मौसम बदलते ही बर्फ का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ जबरदस्त ठंड भी बढ़ गई है। इस समय जहाँ मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, तो वहीं हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ से ठंडा पानी पवित्र सरोवर में दिखाई दे रहा है और हेमकुंड साहिब के आसपास हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है।
2: और अब बात करते हैं मौसम की, जिसमें बदलाव का अनुमान जताया गया। इसका असर दिल्ली एनसीआर में देखने को भी मिल रहा है, जहां कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश भी हुई। इससे भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओला गिरने की संभावना भी है। जाहिर है इससे तापमान कम होगा, यानी कि प्री मानसून बारिश तपती गर्मी से राहत दिलाने वाली है।

0: ज्यादातर इलाके भीषण गर्मी से तप रहे हैं और हर कोई आसमान से राहत की बूंदों के बरसने का इंतजार कर रहा है। गर्मी का आलम यह है कि देश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो 48.2 डिग्री तक का पारा रिकॉर्ड किया जा चुका है। नौतपा के दौरान राजस्थान के कई इलाके झुलस रहे हैं। धौलपुर में भी तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए मैदानी इलाके के लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। मसलन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे इन पर्यटकों को देखिए, जो वहां पहुंचकर बेहद सुकून का एहसास कर रहे हैं।
1: हरियाणा में तो अभी बहुत गर्मी है सोनीपत में, और यहाँ क्या राहत मिल रही है हमें, कितना अच्छा मौसम है, और अभी तो ठंडे ठंडे पानी में राफ्टिंग करिए तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
0: अब जो लोग अपनी जगह पर रहकर ही चुभती जलती गर्मी और लू के थपेड़ों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए मौसम विभाग की ओर से गुड न्यूज आई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्री मानसून बारिश की संभावना बनी है, जिससे तापमान भी घटेगा और राहत भी मिलने वाली है। देश के 80-90% हिस्से में 29 मई से 5 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आंधी और कुछ जगह ओले गिरने का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के साथ ही उत्तराखंड में आंधी और बादलों की गरज चमक की संभावना है, तो कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं। कई इलाकों में 8 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है।
2: हमारा अनुमान ये है कि अगले आने वाले 3 दिनों के दौरान जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव में और साथ साथ में जो ईस्टर्ली विंड्स है उसका आगमन भी उत्तर पश्चिम भारत के प्लेन एरियाज में हो रहा है, जिसको देखते हुए जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में साथ साथ में उसके जो प्लेन एरियाज है वहां पर जो है वो देखने को मिलेगी 28-30 तारीख के बीच में, जिससे अधिकतम तापमान में 5-8 डिग्री सेंटीग्रेड और कहीं कहीं पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट भी देखने को मिलेगी। इसकी वजह से जो लू की स्थिति या हीटवेव कंडीशन जो चल रही है मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी में भी काफी राहत मिलने जो हमें मिलेगी। अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की तो वो भी जो है लार्ज स्केल एक्टिविटी हो सकती है, जिसको देखते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में जो हवा की गति है वो काफी तेज रह सकती है, 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है।
0: साफ है कि देश के पहाड़ी हिस्सों से लेकर मैदानी हिस्सों तक में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान गिरने से राहत मिलने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर समेत 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो हरियाणा के 4 जिलों में आंधी और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 50-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बारिश का भी अनुमान है। यूपी में तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक से हवा चल सकती है।
2: उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर 80-90 प्रति घंटे के रफ्तार से भी जो हवा देखने को मिल सकती है, जो कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है, जिसको देखते हुए जो एडिक्वेट प्रिकॉशन लेने की सबको जो है वो सलाह दी गई है। इसके साथ साथ में जो ओलावृष्टि है, अगर हम देखेंगे तो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और आसपास उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, यहां पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं विदर्भ और साथ साथ जो दक्षिण प्रायद्वीप भारत के क्षेत्र है यहां पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेशन है, पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल हम देखेंगे तो भारतवर्ष में कल के बाद से काफी जगहों पर जो है तापमान जो है गिरावट देखने को मिलेगी और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलेगी।
0: विदर्भ का इलाका हो या फिर उत्तर दक्षिण से लेकर पूर्वी भारत तक में हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी में अगले 3 दिन बारिश होने का अनुमान है। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते सड़कें सूनी सूनी नजर आ रही हैं, क्योंकि लोग घरों में रहना ही मुनासिब समझ रहे हैं और जिन्हें जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ रहा है उन्हें तेज धूप झुलसा रही है।
3: गाड़ी इतनी जल्दी गर्म हो जा रही है। मैं बस 5 मिनट के लिए एक दुकान में गया था, लेकिन आते से देखा तो गाड़ी इतनी ज्यादा गर्म हो गई कि बैठना और हाथ भी लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए मुझे एक ठंडे बोतल की पानी गाड़ी की सीट पर और हैंडल पर मारना पड़ा ताकि मैं अच्छे से गाड़ी को पकड़ सकूं।
0: भीषण गर्मी से बचाव को लेकर लोग तरह तरह के इंतजाम भी कर रहे हैं।
4: तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ दुकानों के सामने इस तरीके से ग्रीन मैट लगे हुए हैं ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। और आप यहाँ आप देखेंगे हर जगह, आप रोड के उस तरफ भी देखेंगे तो भी यहाँ पर यही स्थिति आपको नजर आ रही है, क्योंकि ग्रीन मैट से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
0: यहाँ भी लोग जल्द से जल्द राहत की बूंदों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं। प्री मॉनसून की बारिश इसलिए भी अहम है क्योंकि मॉनसून अभी केरल नहीं पहुंचा है।
5: 28 मई को पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। IMD द्वारा जो है तारीख दी गई थी कि 26 मई को केरल में मॉनसून दस्तक देगा, हालांकि अभी जो है थोड़ी सी देरी जरूर देखी जा रही है क्योंकि 26 तारीख निकल चुकी है और वहां पर मॉनसून की स्थिति अभी नहीं देखी जा रही है। हालांकि प्री मॉनसूनी बारिश जरूर देखी जा रही है, चाहे पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए या दक्षिणी छोर की बात की जाए, लगातार अलग अलग राज्यों में जो है बारिश की स्थिति जो है बनी हुई।
0: मॉनसून के केरल पहुंचने से पहले देश के तपते इलाके के लिए प्री मॉनसून की बारिश का अनुमान राहत का एहसास कराने वाला है, इसलिए लोगों की नजरें अपने अपने इलाकों में मौसम में होने वाले बदलाव पर टिकी हुई है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, चंद्रपुर से विकास राजूरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धीरेन्द्र शास्त्री ने किया गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अभियान का आह्वान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में सुरक्षित और महिला अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गुलाबी बस सेवा शुरू की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और समावेशिता को मजबूत करना है। भारत की राष्ट्रपति इस योजना को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगी। सिक्किम सरकार द्वारा शुरू की गई पहल शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गुलाबी बसें महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा का वातावरण मुहैया कराएंगी। बद्रीनाथ धाम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार से श्रीमद् सत्यनारायण कथा का शुभारंभ किया है। पहले दिन उन्होंने धाम की महिमा का वर्णन किया और गौ माता राष्ट्र माता अभियान का आह्वान भी किया। देश भर से श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि 21 दिनों की साधना के अनुभव भी वो कथा के दौरान बताएंगे। प्रशासनिक सहयोग से उन्होंने नीलकंठ के नारायण पर्वत पर परिक्रमा कर कठिन साधना पूर्ण की है। मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को विशेष लाल रोशनी से सजाया गया है। इसे मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता का प्रतीक बनाया गया है। इस पहल का उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़ी गरिमा, स्वच्छता और समान संसाधनों की उपलब्धता पर जागरूकता फैलाना है। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर सुरक्षित प्रथाओं, किफायती स्वच्छता उत्पादों और बेहतर सुविधाओं के महत्व पर जोर दिया गया है। ये अभियान कलंक को कम करने और खुली चर्चा को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC ने देश के सबसे लंबे दिल्ली मनाली लेह रूट पर बस सेवा दोबारा शुरू की है। करीब 8 महीने बाद शुरू हुई इस सेवा से पर्यटक, व्यापारी और स्थानीय लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। बस दिल्ली से केलोंग होते हुए लेह तक 990 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस बस में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। ये सेवा सर्दियों में बंद थी, जिसे अब मार्ग बहाल होने के बाद फिर शुरू किया गया है। अब यात्री इस बस को ऑनलाइन बुक करके अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं।
6: और खबरों के एक्सप्रेसवे में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राम नगरी अयोध्या की, जहां एक बार फिर भव्य आयोजन की दिव्य छटा बिखर रही है। यहां पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा से हुआ। इस 7 दिवसीय आयोजन में श्रद्धालु आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर होंगे। 3 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में कई तरह के अनुष्ठान के साथ हर दिन श्रीमद् भगवत कथा सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा।

0: रामनगरी अयोध्या में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अयोध्या आने वाले भक्तों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा परिसर बेहद आकर्षित कर रहा है। यहां जगह जगह आस्था और भक्तिभाव का वास नजर आता है। भगवान राम की इस नगरी में एक से बढ़कर एक आयोजन होते रहते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा उत्सव के समान होते हैं। यहाँ एक और भक्ति, अध्यात्म और संस्कृति की छटा बिखरने जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग ही आनंद है। भक्तमाल की बगिया स्थित श्री ज्वालरिया मठ में श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसकी शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गाजे बाजों के साथ निकली इस शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक रहा। पूरा वातावरण भगवान राम के जयकारों से गूंजता रहा।
1: आज से भागवत महापुराण की शुरुआत हुई है। आज भगवान की भव्य शोभा यात्रा रामपथ पे निकली थी, जिसमें हजारों लोग उसमें शामिल हुए और बहुत गाजे बाजे के साथ भागवत को लेकर के सभी ये जो भक्तगण हैं, परिवारगण हैं, वो यहाँ पे पधारे हैं। भगवत आज से शुरू हो गई है। रोज सुबह 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पे आहुतियाँ दी जाएंगी। 8 से 10 हजार लोग पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र से यहाँ आए हुए हैं और इस आयोजन से हम सब हमारे गुरुजी की जो आज्ञा है उसके अंतर्गत ये आयोजन कर रहे हैं। उनका जो तरीका है, घनश्यामाचार्य जी महाराज जो झालरिया पीठ के अभी पीठाधिपति हैं, वो भारत के दिव्य क्षेत्रों में जाके इस तरह के आयोजन करते हैं।
0: 7 दिवसीय इस पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन जगत गुरु झालरिया पीठाधिपति घनश्यामाचार्य के सानिध्य में हो रहा है। इस महोत्सव में 225 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ, श्रीमद् भगवत कथा, 108 श्रीमद् भगवत पाठ, श्री कल्याणोत्सव, सहस्त्र कलशाभिषेक और लक्षार्चना महोत्सव जैसे कई दिव्य और भव्य धार्मिक कार्यक्रम सम्पन्न होंगे।
2: 2026 का अधिक माह, ज्येष्ठ अधिक माह, हमारी पीठ के परंपरा में अधिक मास जगह जगह होता रहा। अब के अयोध्या की इच्छा हुई। 3 वर्ष पहले भक्त लोगों ने तिरुपति में जब यज्ञ हुआ था तो उसी में ऐलान कर दिया कि अब के अयोध्या 3 वर्ष बाद या 2.5 वर्ष बाद तो यज्ञ का उत्सव। हमारा उत्सव का उद्देश्य है विश्व में सुख शांति बढ़े और हमारे राष्ट्र की उन्नति हुए। आजकल जो विदेश में लड़ाई झगड़ा चला है वो शांत हुए। मनुष्य मनुष्य को पहचाने, जीव मात्र को पहचाने, कितने मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला, उसको व्यसन में दिखाने के लिए थोड़ी लड़ाई झगड़े के लिए थोड़ी, अपने आप भी सुखी रहे, दूसरे को भी सुखी करो।
0: राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या धार्मिक आयोजनों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी है। इसी कड़ी में यहां इस पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव में रोजाना दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक श्रीमद् भगवत कथा सुनने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिलेगा।
3: जो कुंड दिख रहे हैं ये 225 कुंड है, जहां महालक्ष्मी महायज्ञ होगा और इसका उद्देश्य यह है कि राष्ट्र की समृद्धि हो और विश्व में शांति हो, सर्वजन का कल्याण हो। झालरिया पीठ के स्वामी जी जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज, उनके तत्वावधान में ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है और पूरे देश विदेश से महाराज के 10,000 से ज्यादा भक्त लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। इसमें अभी हजारों लोग पहुंच चुके हैं और लगातार आवागमन बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यज्ञ मंडप है, इधर पास में ही कथा मंडप है, इधर जो कथा मंडप है और इधर भोजनशाला है, इधर वो भागवत जी के 108 मूल पाठ होंगे।
0: आयोजकों के अनुसार पुरुषोत्तम मास महोत्सव की परंपरा लगभग 300 साल पुरानी है। इससे पूर्व तिरुपति, बद्रीनाथ और चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी इसका आयोजन हो चुका है और अब अयोध्या में इसका आयोजन हुआ है। अयोध्या में हुए विकास कार्यों के चलते यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालुओं के साथ ही यहां रहने वाले लोगों की सुख सुविधा के लिए भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ही शहर के प्रमुख चौराहों, ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट्स और धार्मिक स्थलों के आसपास अस्थायी शेड और ग्रीन नेट लगाए जा रहे हैं।
4: गर्मी काफी ज्यादा है तो जगह जगह हर एक चौराहे पे, जहां जहां रेड लाइट आपको दिखेगी वहां हर एक चौराहे पे जो है इस ग्रीन कलर की जो है नेट को लगाया गया है और हर तरफ जो है जो गर्मी से बचाव के लिए, जो कि यहाँ जो पुलिस वाले भी बैठते हैं चौराहे पे, जो ड्यूटी करते नजर आ रहे होंगे वो भी इन नेट के नीचे जो है छाए का पूरा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और गर्मी से बचाव के लिए नगर निगम ने यहाँ पे एक नई पहल की है। पूरे अयोध्या में यहाँ से लेकर अगर हम शहर की बात करें, शहर में रिकाबगंज चौराहे पे राम जन्मभूमि के पास उस चौराहे पर और ये टेढ़ी बाजार चौराहे पे इस वक्त खड़े हैं। निशादार चौराहा जो नाम हो चुका है वहाँ पे भी ये ग्रीन कलर की नेट लगाएगी। जैसे
0: नगर निगम की इस पहल से हर कोई राहत महसूस कर रहा है, खासकर ट्रैफिक सिग्नल के पास रुकने के दौरान उन्हें छांव मिल रही है। प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए भी खास व्यवस्था है ताकि उन्हें भी राहत मिल सके और वो भी बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी निभा पाएं।
5: अयोध्या के उन सभी चौराहों पे जहां पर ट्रैफिक रुकता है, जहां पर लोगों को वेट करना पड़ता है, तो उनको गर्मी से बचाव के लिए हम लोगों ने ग्रीन नेट लगाए हैं। कुछ देर आदमी वहाँ पे रहता है तो कुछ टेम्परेचर वहाँ पे कम रहता है, धूप का प्रभाव उतना नहीं रहता है, क्योंकि गर्मी एक्सट्रीम बहुत कड़ी गर्मी पड़ रही और लोगों को परेशानी ना हो, लोग अगर धूप में खड़े हों तो उनको बहुत असुविधा ना हो, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो, इस दृष्टिकोण से अयोध्या नगर निगम ने इस नेट्स की व्यवस्था की है और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं उनको एक साया मिलता होगा और उनका गर्मी से बचाव होता है।
0: अयोध्या के महापौर के अनुसार शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर अस्थायी शेड लगाए जाएंगे ताकि गर्मी के इस मौसम में श्रद्धालु हों या यहां के रहने वाले लोग, हर किसी को भीषण गर्मी में राहत के लिए छांव का सहारा मिल सके। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: डॉन 3 को लेकर विवादों में घिरे रणवीर सिंह पर नहीं लगा आधिकारिक बैन। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
7: कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म भारत भाग्य विधाता का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। ये फिल्म 12 जून को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म कामा अस्पताल की उन घटनाओं पर आधारित है जहां आतंक के साए के बीच डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग 400 जिंदगियां बचाई थी। निर्देशक मनोज तापड़िया की इस फिल्म में कंगना के साथ गिरिजा ओक और स्मिता तांबे नजर आएंगी और ये मानवता के साथ साहस को सलाम करती कहानी है। बेबी डू डाई डू की रिलीज डेट घोषित कर दी गई है। फिल्म 3 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने रिलीज डेट के साथ एक दिलचस्प पोस्टर भी जारी किया है। इस फिल्म का निर्माण साकिब सलीम द्वारा किया गया है जबकि निर्देशन नचिकेत सामंत ने संभाला है। ये फिल्म सलीम सिबलिंग्स और पुणे 4 फिल्म के सहयोग से बनाई गई है। डॉन 3 से बाहर होने के बाद रणवीर सिंह विवादों में घिर गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फरहान अख्तर ने फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स से जुड़ी संस्था FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज में शिकायत दर्ज कराई है और बताया कि फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इसके बाद संस्था ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए रणवीर सिंह को कई बार बुलाया लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए और इसी के चलते इस संगठन ने निर्देश जारी किया कि उनके साथ काम ना किया जाए। हालांकि इसे आधिकारिक बैन नहीं कहा गया है।
6: रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बिहार में जमुई जिले के एक गांव में जयकांत मांझी नाम का एक नौजवान शिक्षा की अलख जगा रहा है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए इस युवक के प्रयास ने पूरे गाँव में शिक्षा की रोशनी फैला दी है।

0: जयकांत मांझी हर दिन करीब 80 बच्चों को घर से स्कूल और फिर स्कूल से वापस उनके घर तक पहुंचाते हैं। और यहाँ मांझी सिर्फ वाहन चालक की भूमिका नहीं निभा रहे, बल्कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए खुद गांव के अलग अलग टोले में जाकर आवाज लगाते हैं, कई छोटे बच्चों को तैयार करवाते हैं और फिर उन्हें अपने ई रिक्शा में बैठाकर स्कूल लेकर जाते हैं।
1: बोलता है हम नहीं जाएंगे, मैंने बातें गार्जियन बोलता था कि हो उतना दूर बच्चा कैसे जीता, थक जाता है, यह होता है, वो होता है।

0: कुछ अलग करने की प्रेरणा देता है।
1: गुजरा है जो हम देखे हैं, गरीबी और जो हालत देखे हैं महादेव टोले बच्चे को जितना भी है, हम लोग तो किसी तरह से तो इतना तक पहुंचे और देखे कि बच्चा का यहाँ आना जाना बहुत कम था, मतलब एक भी महादलित का बच्चा यहाँ एक भी बच्चा नहीं पढ़ा।
0: पहले जिन गलियों में सुबह बच्चों की आवाज नहीं सुनाई देती थी, वहाँ अब हर दिन स्कूल जाने की उत्सुकता नजर आती है।
2: टोटो खरीदे तो बच्चा में कुछ उत्साह आया, जिसके कारण बच्चा में उपस्थिति बढ़ने लगा और छोटे छोटे बच्चे भी विद्यालय आने लगे जो पहले कभी नहीं आते थे, जिसके कारण विद्यालय का शैक्षणिक माहौल बदलने लगा।
0: मांझी की इस पहल का असर अब पूरे इलाके में साफ दिखाई देने लगा है। पहले जिन परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वे अब नियमित रूप से पढ़ाई के लिए पहुंच रहे हैं और अब करीब 100 बच्चे शिक्षा से जुड़ चुके हैं।
3: स्कूल के प्रयास को देखता हूं, उनके प्रयास काफी प्रशंसनीय है, प्रेजवर्दी है और काफी ही उनका काम काफी सराहनीय है।
0: जयकांत मांझी ने ये साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति से भी बड़े बदलाव संभव हैं। केंडी गांव में दौड़ता ये ई रिक्शा अब सिर्फ बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचा रहा, बल्कि एक पूरे समाज को शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति, आध्यात्म और सनातन संस्कृति के अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साईं बाबा के एक भक्त ने भेंट किए 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आमरस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
7: नवजात भाई को पहली बार देखकर छोटी बहन की खुशी देखने लायक है। ठुमक ठुमक कर चलते हुए वो मासूमियत से जमीन पर बैठ गई और अपने नन्हे भाई को गोद में लेने के लिए हाथ फैला दिए। उसकी चमकती आंखों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे घर के माहौल में खुशियां भर दी। भाई को सीने से लगाने की उसकी मासूम चाहत ने सभी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि भाई बहन के अनमोल रिश्ते और निश्चल प्रेम की प्यारी शुरुआत बन गया। जहाँ लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, वहीं ये शख्स हौसले की नई मिसाल बनकर सामने आया है। एक हाथ न होने के बावजूद अपने हुनर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान और आत्मविश्वास दोनों सजा रहा है। इनका काम सिर्फ हेयर कटिंग का नहीं है, बल्कि ये साबित करना है कि मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। अपने हौसले से ये अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। माँ और बच्चे का ये प्यारा सा अंदाज किसी का भी दिल जीत लेगा। माँ जैसे ही मस्ती में झूमती है, बच्चा भी उनकी नकल करने लगता है, फिर अपनी मासूम अदाओं पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये नजारा सिर्फ हंसी का नहीं, बल्कि माँ बेटे के खूबसूरत रिश्ते और बेफिक्र बचपन की प्यारी झलक है। ऐसी मासूम खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वो है जिसके घर लौटने पर परिवार खुशियों से झूम उठे। ये प्यारी बच्चियां अपनी

0: माँ के साथ डांस करते हुए पिता का स्वागत कर रही हैं। बेटियों की मुस्कान और अपनापन देख पिता भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये नजारा सिर्फ स्वागत का नहीं बल्कि परिवार के प्यार, अपनेपन और रिश्तों की असली दौलत की खूबसूरती का है। इतना नन्हा किसान शायद ही किसी ने देखा होगा जो अपनी मासूम उम्र में भी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये छोटा सा बच्चा होटल के कर्मचारियों के साथ बागवानी में मदद कर रहा है। उनकी क्यूट हरकतें देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मासूम कोशिशों से माहौल और भी खुशनुमा हो गया। उसकी ये लगन और सादगी ये सिखाती है कि सीखने और मदद करने की कोई उम्र नहीं होती।
1: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचाने वाले वंडर बॉय की। आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से धूम मचा रहे वैभव सूर्यवंशी ने बड़े बड़े रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए हैं। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले इस बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस साल के आईपीएल में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 12 छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ ही उन्होंने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा 65 छक्के लगाकर क्रिस गेल का 59 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव 285.42 के स्ट्राइक रेट से रन बना आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप रेस में भी सबसे आगे चल रहे हैं। वैभव ने 15 मैच में कुल 680 रन बनाए, जिसमें 65 छक्के और 55 चौके शामिल हैं। वैभव ने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मात्र 14 साल की उम्र में 35 गेंदों में 101 रन बनाकर शतक ठोक दिया था। वो T20 क्रिकेट इतिहास में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी। ये आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक भी है। नवंबर 2024 में हुए आईपीएल मेगा ऑक्शन में जब वैभव केवल 13 साल के थे, तब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1,10,00,000 रुपए में खरीदा था। दूसरा सीजन खेल रहे वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले और खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। साल 2026 की शुरुआत में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने में वैभव की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच में मात्र 80 गेंदों पर 175 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली थी, जो किसी भी आईसीसी फाइनल का सबसे बड़ा निजी स्कोर है। वैभव ने जनवरी 2024 में बिहार के लिए खेलते हुए सिर्फ 12 साल 284 दिन की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। वैभव एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी बिहार में एक किसान हैं। वैभव के भीतर क्रिकेट का जुनून देखकर उनके पिता ने अपनी जमीन बेच दी और घर के पीछे ही उनके अभ्यास के लिए एक छोटी पिच तैयार कर दी। जाहिर है वैभव सूर्यवंशी के रूप में क्रिकेट फैंस को एक नया स्टार मिला है। उनके आक्रामक खेल को देखते हुए क्रिकेट के दिग्गज से लेकर फैंस तक उन्हें टीम इंडिया में शामिल किए जाने की मांग उठा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन को लेकर हमने क्रिकेट फैंस से बात की और उनकी राय जानी।
2: वैभव भाई जो है उनके साथ हम लोग भी शुरू से उनको जानते हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। उनसे बच्चे लोग को प्रेरणा मिलना चाहिए और सीखना चाहिए, और उस मुकाम पर जाने के लिए उनके पिताजी जो बहुत मेहनत करी, मेहनत के साथ जो है उनका जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है ना। इसके लिए जो हम लोग भी उनसे सीखना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी भाई को हम इंडिया टीम में देखना चाह रहे हैं।
3: वैभव सूर्यवंशी एक चमत्कारी लड़का, और उसको हम बचपन से हम लोग देख रहे हैं। उस खेल के प्रति बड़ा वफादार एक ढंग से वो खेल खेलता था, और क्रिकेट के प्रति तो बचपन से ही जो है एग्रेसिव था। और उसके पिताजी जो है संजीव सूर्यवंशी, अपने बेटे को इस मुकाम पर लाने के लिए जो बच्चे की इच्छा थी उसके अनुरूप उन्होंने काम किया। जहां कोचिंग हुआ वहां कोचिंग कराया, और आज आप देख रहे हैं कि आईपीएल में वो सारे रिकॉर्ड को धराशाही करने के लिए, तोड़ने के लिए एकदम वो प्रयत्नशील है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो समस्तीपुर का ही नाम रोशन नहीं कर रहा, बिहार का ही नहीं कर रहा, पूरे देश का कर रहा है। और एक दिन हम लोग उसको भारतीय टीम में खेलना देखना चाहते हैं।
4: हमारे समस्तीपुर जिला का गौरव शान वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, हमारे जिला के पटेल मैदान में इसी ग्राउंड पे वो खेलते थे, और उनका जो आईपीएल में सुनामी चल रहा है, जैसे सुनामी होता है, स्टॉर्म तूफान, उस तरह से वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि वो एक दिन भारत के लिए भी दूसरे सचिन तेंदुलकर साबित होंगे।
5: वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर जैसे एक छोटे से जिले से निकल करके जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कम उम्र के बच्चे ने, एक मध्यम वर्गीय परिवार ने जो नाम रोशन किया है, वो अपने आप में अनुकरणीय है। काफ़ी ये हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए, गर्व की बात है समस्तीपुर जिलावासियों के लिए भी, बिहार के लिए भी। और जब राजस्थान का जब वो मैच होता है जो सूर्यवंशी जी खेलते हैं, तो ये मैच काफ़ी रोमांचक हो जाता है। पूरे देश दुनिया की नज़र उस मंच मैच में होती है, उस मंच पर होती है जहाँ वो खेलते होते हैं।
6: जिस तरीके का गेम उसका यहाँ पर था और जिस लेवल का गेम उसका वहाँ पर दिखा है, तो वो तो ऐसा दिखा है कि वो वर्ल्ड लेवल का क्रिकेट वहाँ पर खेल रहा है। सिर्फ छः चार ही नहीं मार रहा है बल्कि थोड़ा सा मैच्योरिटी भी दिखा रहा है अब आके अपने बैटिंग में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उसका बैटिंग देख कर। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इंडिया के लिए खेलेगा और इस बार आईपीएल में उम्मीद ये भी करते हैं कि ऑरेंज कैप होल्डर होगा।
1: ढाका में नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप नाम के भैंसे की कुर्बानी। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अट्ठाईस मई को सियोल में गैलेक्सी कॉरपोरेशन ने MACH 33 यानी कि फिजिकल AI फैशन शो का आयोजन किया, जिसमें रोबोट और इंसानी मॉडल एक जैसे कपड़ों में रनवे पर उतर आए। गैलेक्सी रोबोट पार्क में हुए इस शो में केप पहने रोबोट्स ने वॉक किया, जिनके बाद मॉडल्स ने उसी डिजाइन के कपड़े पहनकर परफॉर्म किया। शो में फैशन, रोबोटिक्स और कोरियोग्राफी का अनोखा मेल देखने को मिला। CEO चोई यंग हो ने कहा कि भविष्य में रोबोट और इंसान एक दूसरे से प्रेरित फैशन शेयर करेंगे। चीन की मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बड़ा घरेलू बाजार कलाकारों को वैश्विक मंच देने में मदद कर रहा है। चीन की पॉप संस्कृति कंपनी पॉप मार्ट के चेयरमैन और CEO वांग निंग ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य एक विश्व स्तरीय ब्रांड बनाना है। स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में CEO वांग निंग ने इसे और बढ़ाने की बात कही। 27 मई को ब्रिटेन के सेंट अब्बास गांव के पास स्थित 55 मीटर ऊंची प्रतिष्ठित चाक आकृति सेंट अब्बास जायंट को स्वयं सेवकों और नेशनल ट्रस्ट के कर्मचारियों ने भीषण गर्मी के बावजूद दोबारा रंगने का काम शुरू किया है। ये आकृति आखिरी बार 2019 में पुनर्स्थापित की गई थी। नेशनल ट्रस्ट के अनुसार बदलते मौसम, भारी बारिश और शैवाल की वृद्धि के कारण इसका रखरखाव कठिन हो गया था। बांग्लादेश में एक अनोखा अल्बिनो भैंसा देखने को मिला, जिसका वजन करीब 700 किलो है। ये भैंसा सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से वायरल हो गया है। इसके सिर पर सुनहरे बालों जैसी बनावट के कारण ये लोगों का आकर्षण बन गया है। दरअसल बकरीद से पहले ये पशु बाजार में चर्चा का केंद्र रहा और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे। बाद में इसे कुर्बानी के लिए बेचे जाने की खबर आई, जिससे भीड़ बढ़ गई। अंत में प्रशासन ने हस्तक्षेप कर इसे ढाका के नेशनल जू में शिफ्ट कर दिया है। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक
8: Hi, I'm Kingston Bagbues. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: आईपीएल क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस के लिए राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी बड़ी चुनौती। खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
19: आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर में एक बार फिर सबकी नजरें राजस्थान रॉयल्स के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी। शुक्रवार 29 मई को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर में क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा, जिसमें जीटी के लिए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। एलिमिनेटर में वैभव की महज 29 गेंदों में बनाए गए तूफानी 97 रन की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल के सीजन से बाहर कर दिया, जिसके बाद कल राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला क्वालिफायर 1 में हार का सामना करने वाली टीम जीटी से होगा। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम की 31 मई को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़त होगी। भारत की युवा शूटर ईशा सिंह ने कायम किया विश्व रिकॉर्ड। जर्मनी के म्यूनिक में 21 साल की ईशा ने ISSF वर्ल्ड कप 2026 में विमेंस 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीतकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। फाइनल में ईशा ने 50 में से 43 सटीक निशाने लगाए, जिसके चलते उन्होंने सीनियर और जूनियर दोनों कैटेगरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनका स्कोर 43 हिट्स तक पहुंचा, जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अब नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं दिलाया, बल्कि सीधे ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करा दिया, जो इसी साल रोम में होगा। राजस्थान के अलवर में आयोजित 5वीं सब जूनियर स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोटा के मुक्केबाजों ने बॉयज और गर्ल्स दोनों वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अलग अलग भार वर्ग में कोटा के बॉक्सर्स ने 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज समेत कुल 8 मेडल अपने नाम किए।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
20: Your Saturday nights will never be the same.
21: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
22: The Tailgate Block Party.
20: The Tailgate Block Party.
21: 6 hours non-stop. Non-stop.
22: The best DJs from around the world.
20: The Tailgate Block Party.
21: Saturday night.
20: 8 p.m. Eastern.
22: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
21: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
14: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: Good News Today.
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
14: अविश्वास में विश्वास बसता है.
18: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
16: गुड न्यूज टुडे.
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
14: अविश्वास में विश्वास बसता है.
18: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
16: गुड न्यूज टुडे.
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: बृहस्पति की कौन सी राशि नेतृत्व की क्षमता देती है? बृहस्पति की कौन सी राशि आपको बहुत अच्छा हीलर और डॉक्टर बना सकती है? बृहस्पति की कौन सी राशि बुध के लिए खराब है और शुक्र के लिए उत्तम है? कौन सी हैं बृहस्पति की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।

हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति, आध्यात्म और सनातन संस्कृति के अलौकिक आभा में सराबोर। भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साईं बाबा के एक भक्त ने भेंट किए 3,507 किलो केसर आम। 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा। आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ रही चार धाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ। दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन। संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दावानल की। दावानल यानी कि जंगल की आग, जो इस वक्त उत्तराखंड की नहीं बल्कि हिमाचल के कई इलाकों में लगी है। दोनों जगहों पर सैकड़ों की तादाद में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ये आग बुझ सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज आपको विस्तार से बताएंगे कि पहाड़ी इलाकों के जंगल में आग क्यों लगती है और इसे रोकने का उपाय क्या है। जंगल में लगी आग न सिर्फ आर्थिक तौर पर चोट देती है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। जो स्थानीय लोग जंगल से जुड़े हैं, उन्हें भी बड़ा घाटा होता है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तराखंड में महिलाओं की टीम ने आग से दो दो हाथ किए और उसे बढ़ने से रोक दिया। आखिर में इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन दिखाएंगे। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने किस तरह हिमाचल में आग पर काबू पाया, दिखाएंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगी आग से। अरसे से ये जंगल सुलग रहे हैं। इस साल गर्मी में आग लगने की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं और जंगल का भारी नुकसान हुआ है। जानकार मान रहे हैं कि आग लगने की वजह गर्मी और सूखा मौसम है। हालांकि इसकी वजह लापरवाही भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल बड़ी चुनौती इस आग पर काबू पाना है, जिसके लिए प्रशासन और सरकार दोनों मुस्तैदी से जुटे हैं। अच्छी बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि इसकी वजह से जंगल की आग काबू में आ जाएगी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।

0: अंधेरे में दूर से चमकती दमकती गहरे लाल रंग की ये रेखा कोई कलाकृति नहीं बल्कि जंगल में लगी आग है जो दरख्तों को राख किए जा रही है, जो भी चपेट में है उसे खाक किए जा रही है। उत्तराखंड के जंगलों में दावानल की ये तस्वीर नई बात नहीं, लेकिन ये भी सच है कि भारी नुकसान के बावजूद इस साल भी इसका अभी तक समाधान नहीं। हालांकि सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोग अपनी अपनी तरह से इसे बुझाने में लगे हैं, लेकिन आग है कि थमती नजर नहीं आ रही। पहाड़ों के शिखर पर इस आग का धुआं फैल रहा है और पूरी वादी इस धुएं के आगोश में है। सबसे ज्यादा प्रभावित चमोली है। चमोली में कर्णप्रयाग से नारायण बगड़, आदि बद्री और गोपेश्वर के जंगलों में भीषण आग से हर तरफ धुआं धुआं है।
1: चमोली जनपद में इस समय भीषण जंगलों में आग लगी है। चाहे नारायण बगड़ की बात करें, कर्णप्रयाग इलाके की बात करें या फिर चमोली के गोपेश्वर के इलाके की बात करें, हर तरफ इस समय आग लगी हुई है। जो पहाड़ी चोटियां हैं वो अब यहां से साफ भी नहीं दिखाई दे रही। हालांकि जोशीमठ क्षेत्र में आग जंगलों में नहीं है, लेकिन यहां पूरा धुआं जो जोशीमठ शहर है वहां तक इस समय धुआं दिखाई दे रहा है। पहाड़ी चोटियां साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। आसमान भी इस समय जो नीला दिखाई देता था, जहां बादल दिखाई देते थे, वो नहीं दिखाई दे रहे। सब कुछ इस समय धुएं की आगोश में इस समय पूरे जनपद में दिखाई दे रहा। वहीं लोगों की जो सांसों में है, धुएं की जो खुशबू है वो साफ साफ यहाँ पे पता चल रही है। इस तरह से जो चमोली जनपद का इस समय वातावरण है, धुआं ही धुआं हर तरफ, इस समय जो माहौल है हर तरफ आग लगी हुई है। जंगलों की आग का धुआं पूरे जनपद में जगह जगह फैला हुआ है।
0: यकीनन चारधाम यात्रा और सैलानियों की भीड़ देखते हुए जंगल की आग हर रोज चिंता बढ़ा रही है, लेकिन इसके कई और पहलू। उत्तराखंड के जंगल सिर्फ पहाड़ों की हरियाली का हिस्सा नहीं, बल्कि उत्तर भारत की नदियों, स्वच्छ हवा और करोड़ों वन्य जीवों के लिए जीवन रेखा माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ जंगलों में लगातार बढ़ रही आग पर्यावरण और जैव विविधता के लिए खतरा बनती जा रही है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में चल रहे फायर सीजन के दौरान अब तक जंगल में आग लगने की 394 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इन घटनाओं में 331 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुका है। आग की चपेट में आने से जान माल का भी नुकसान हुआ है। आग की वजह भीषण गर्मी और सूखे जंगल को माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे इंसानी लापरवाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चमोली में लगातार लग रही आग की वजह से कई इलाकों में आग की लपटें दूर तक नजर आ रही। किसी के पास इसे बुझाने का तरीका नहीं और आग पर काबू नहीं पाया गया तो तय है कि ग्रामीण इलाकों के लिए चुनौती बढ़ेगी। ये है कि कई पहाड़ी कस्बों में दोपहर के समय भी धुएं और धुंध जैसे हालात बन रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में जलन है। सवाल है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग फैलने की वजह क्या है। राज्य में करीब 25,138 वर्ग किलोमीटर सुरक्षित वन क्षेत्र है, जिसमें करीब 3,890 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीड़ के जंगलों का है। चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियां बेहद ज्वलनशील होती हैं और आग को तेजी से फैलाने का काम करती हैं। गर्मियों में थोड़ी सी चिंगारी भी दावानल का रूप ले लेती है। गर्मी के दिनों में प्रशासन ऐसे हालात के लिए तैयार भी रहता है। इन दिनों भी आग से प्रभावित इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। किसी भी घटना की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की गई है और जंगलों की सुरक्षा के लिए ज्यादा टीमें तैनात कर दी गई है। सरकार जो नया प्लान लाई है उसमें बेहतर काम करने वाली टीमों और लोगों के लिए 1,00,000 रुपए के अलावा 75,000 और 51,000 रुपए के पुरस्कार भी तय किए गए हैं, ताकि लोग आग बुझाने में प्रशासन की मदद करें। अच्छी खबर ये है कि उत्तराखंड में बादल मेहरबान है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं और मौसम विभाग ने सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून और टिहरी समेत राज्य के दूसरे इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक राज्य में हल्की या ज्यादा बारिश की उम्मीद है। और जब बारिश होगी तो जंगलों में लगी आग थम सकती है। वादी में फैल रहा ये धुआं भी गायब हो सकता है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जंगल में लगी आग पर काबू पाना आसान नहीं होता। सूखी पत्तियों और झाड़ियों के जरिए आग तेजी से फैलती जाती है। बेशक प्रशासन और वन विभाग की टीम आग को आगे बढ़ने से रोकने में जुटी है। इसके लिए नई तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन आग को रोकने में सबसे अहम भूमिका स्थानीय लोगों की होती है। टिहरी गढ़वाल के इलाके में जब जंगल में आग फैलनी शुरू हुई तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। अपने महिला प्रधान की अगुवाई में उन्होंने पेड़ की डालियों से ही आग पर काबू पा लिया। देखिए हिम्मत और जज्बे की ये शानदार तस्वीर।
3: जंगल में आग की लपटें, चारों तरफ धुआं, लेकिन इसी बीच कुछ महिलाएं उम्मीद बनकर सामने आई। हाथों में आग बुझाने का कोई आधुनिक तरीका नहीं है। धधकती आग को बुझाने के लिए कुछ है तो पेड़ की डालियां हैं, लेकिन महिलाओं के मन में विश्वास है कि ये आग थम जाएगी, बुझ जाएगी। अपने जंगलों को बचाने की इसी जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ महिलाएं आग बुझाने में जुटी रही। उत्तराखंड में सिर्फ सरकार और प्रशासन ही आग बुझाने में नहीं जुटे हैं, बल्कि स्थानीय लोग भी इस चुनौती से लड़ रहे हैं, क्योंकि इन जंगलों से इन्हें लगाव है, रोजी रोटी का नाता है।

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गजा और पोखाल रेंज के सियूरी गांव के आसपास जंगलों में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलने लगी। गांव के लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत जंगल बचाने के प्रयास शुरू कर दिए।

0: ग्राम प्रधान जमुना राणा गांव की महिलाओं के साथ खुद जंगलों में पहुंची। सभी महिलाओं ने मिलकर आग बुझाने का मोर्चा संभाला। किसी ने पेड़ों की टहनियों से आग रोकी, किसी ने मिट्टी डाली तो किसी ने पानी पहुंचाया। कई घंटों तक लगातार कोशिशें चलती रहीं। इन महिलाओं की हिम्मत ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी किया जा सकता है। नई टिहरी और आसपास के कई इलाकों में भी जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई, लेकिन राहत की बात ये रही कि स्थानीय लोग वन विभाग और प्रशासन लगातार मिलकर स्थिति को संभालने में जुटे रहे। आग की चुनौती से निपटने के लिए सरकार और वन विभाग कई स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हजारों फायर वॉचर तैनात किए गए हैं, फायर लाइन तैयार की गई है और आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। वन विभाग स्थानीय लोगों को भी वन सुरक्षा अभियान से जोड़ रहा है। गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोग जंगलों की अहमियत को समझें और उनकी रक्षा में भागीदारी निभाएं। इसके साथ ही वन विभाग के मुख्यालय स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। राज्य में 1438 क्रू स्टेशन, 40 मास्टर कंट्रोल रूम और 174 फायर वॉचर टावर बनाए गए हैं। संचार व्यवस्था के लिए 35 वायरलेस रिपीटर, 248 मोबाइल सेट और 1507 GPS सेट उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही राज्य में कुल 13,000 किलोमीटर फायर लाइन तैयार की गई है। इसके साथ ही चीड़ की सूखी पत्तियां यानी पिरुल इकट्ठा करने की योजना भी चलाई जा रही है। इससे एक तरफ जंगलों में आग का खतरा कम होगा तो दूसरी तरफ ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
1: ये सब कुछ है जाकर की जो हमारे वनों में आग लगती है तो तो भारत सरकार के एनडीएम ने जो 2025 को इससे गाइडलाइंस लिखा है उसके हिसाब से अगर वना की घटना एक दिन के लिए होती है तो उसका स्मॉल इंसिडेंट माना जाएगा और वो वन विभाग और स्थानीय समुदाय तो अगर 2 से 3 दिन तक चलती है और जिससे प्रभावित क्षेत्र 21 से 22 सेक्टर तक है वो लार्ज फॉरेस्ट फायर की श्रेणी आएगा, जिसमें वन विभाग अपने अतिरिक्त संसाधन एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। स्थानीय समुदाय अन्य विभाग और डिस्ट्रिक्ट मैग्नेट अथॉरिटी इससे सम्मिलित होंगी। लार्ज फॉरेस्ट फायर की 4 से 6 दिन चलाएंगे जिसमें की 80 हेक्टेयर तक क्षेत्र प्रभावित होगा, उसमें एससीएफ का इनिशिएट हो सकता है, यूएसडीपी का इनिशिएट हो सकता है और जो 6 दिन से अधिक होगा वहां पर एडीआरएफ राज्य सरकार की रिकमेंडेशन की आवश्यकता है।
0: लेकिन सबसे अहम बात है लोगों की भागीदारी, जो न सिर्फ आग रोकने में बल्कि आग बुझाने के लिए अहम है।
2: विभाग ने विभाग काफी परेशान है आग की वजह से और जनता परेशान हो गई है ये धुआं से, और विभाग जो है इतना परेशान है हर व्यक्ति को नजर रखना चाहिए, हर व्यक्ति और विभाग तो नजर रख ही रहा लेकिन हर व्यक्ति को नजर रखना चाहिए कि जंगल में आग न लगाए, कितने नुकसान हो रहा है, कितने क्षति वो हो रही है। देखो पशु पक्षी हर जीव ये जो है, अरे हम लोग कितना हुआ है प्रदूषण की बीमार हो रहे हैं, ये धूप बारिश हो नहीं रही है, हर व्यक्ति परेशान है भाई। देखो
0: ये तो जाहिर है कि जंगल की आग उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए खतरा है। इसके साथ ही आग का असर कारोबार पर भी पड़ता है। विकास नगर के देवधार रेंज में जंगल की आग की चपेट में सेब के बगीचे आ गए जो धू धू करके जल उठे, जल्द ही पूरा बगीचा राख हो गया। एक तरफ चुनौती वाली तस्वीरें हैं तो दूसरी ओर इससे एकजुट होकर लड़ने वाली मिसाल भी है। जब गांव के लोग मोर्चे पर डट जाएं तो नतीजा क्या हो सकता है ये इन तस्वीरों से जाहिर है। उत्तराखंड में आग बुझाने की तस्वीर साहस, एकता और जागरूकता की है। जहां एक तरफ जंगलों को बचाने की मुहिम चल रही है वहीं दूसरी तरफ महिलाएं, ग्रामीण और वन विभाग मिलकर नई मिसाल पेश कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: उत्तराखंड ही नहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भी हालात चिंता बढ़ाने वाले हैं। कसौली के जंगलों में आग लगी हुई है जिसके पास ही भारतीय वायुसेना का स्टेशन है, इसलिए आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर उड़े और बैम्बी बकेट का इस्तेमाल करते हुए जंगलों पर बरसात कर दी। हालांकि हिमाचल में आग अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है लेकिन प्रशासन के साथ इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन के लिए मुस्तैद है। देखिए ये रिपोर्ट।

अगर मिशन पर एयरफोर्स के धुरंधर हो तो कामयाबी की गारंटी है। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर ने सुखना लेक से बाम्बी बकेट में पानी निकाला और लेकर उड़ चला कसोली के जंगलों की ओर, जहां भीषण आग लगी है। ठीक जलते हुए जंगल की तरफ एक साथ हजारों लीटर पानी ऐसे गिरा जैसे बारिश हुई हो। ये तस्वीर है हिमाचल के कसौली की, जहां जंगल में लगी आग बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने मिशन शुरू किया। झील से करीब 15 फेरों में 40,000 लीटर से ज्यादा पानी निकाला गया और उसे आग पर बरसाया गया, और इस तरह आग पर काबू पाने में एयरफोर्स कामयाब हुई। हालांकि गर्मी की वजह से जंगल में लगी ये आग फिर सुलग उठी और फैलने लगी है, पर एयरफोर्स के साथ प्रशासन इसे बुझाने के लिए मुस्तैद है। कोशिश की जा रही है कि आग का दायरा न फैले। उत्तराखंड की तरह ही गर्मी के इस मौसम में जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है। सोलन के क्यारी घाट गाँव में कंडा घाट के जंगल भयानक आग से जल रहे हैं और धुएं का गुबार सैकड़ों फीट ऊंचाई तक नजर आ रहा है। इस साल राज्य के 11 आरक्षित वन क्षेत्रों में इस वर्ष अब तक 248 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 241 घटनाएं 15 अप्रैल से 27 मई के बीच यानी गर्मी में दर्ज की गई हैं। मंडी वन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां पिछले दो महीनों में ही 81 जंगल में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। धर्मशाला वन क्षेत्र में 59 घटनाओं के साथ दूसरा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। सोलन का इलाका जिसमें कसौली के जंगल शामिल है, वहां आग लगने की 9 बड़ी घटनाएं हुई हैं। यह आग इतनी भयानक है कि आग बुझाने के अभियान में वायुसेना को उतरना पड़ा। आपको बता दें कि कसौली के जंगलों की सीमा वहां मौजूद वायुसेना स्टेशन से लगती है। हिमाचल के जंगलों में आग की चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक करीब 3,000 हेक्टेयर जंगल जल चुका है, जिससे लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और अगर बात पिछले 10 साल की करें तो आग लगने की करीब 15,000 घटनाओं में 23,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल प्रभावित हुए हैं। ऐसे हालात में सरकार और स्थानीय लोग मिलकर आग की घटनाओं को रोकने में जुटे हैं। संवेदनशील इलाकों में स्टाफ अलर्ट है। मंडी और सुरमौर जैसे इलाकों में फ्रेंड्स की मदद से एक परियोजना की तैयारी है, जिसके तहत आग बुझाने में मदद मिलेगी। साथ ही शक्तिशाली कैमरों से लैस ड्रोन खरीदा जा रहा है, जो जंगल पर नजर भी रखेंगे और आग लगाने वालों की पहचान भी करेंगे। फिलहाल उम्मीदें बारिश से हैं। हिमाचल में बारिश का अलर्ट है और माना जा रहा है कि भरपूर बारिश हुई तो ये आग जल्दी बुझ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: AI is changing the rules in tech, and staying relevant takes more than just keeping up. At WGU, our online technology master's programs give you the skills to keep pace with what's next. Learn more at wgu.edu.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Your Saturday nights will never be the same.
3: The biggest hits back to back in the mix.
4: Get ready for the biggest mix show on the planet.
5: The Tailgate Block Party.
2: The Tailgate Block Party.
4: 6 hours nonstop. Nonstop.
5: The best DJs from around the world.
2: The Tailgate Block Party.
4: Saturday night.
2: 8 p.m. Eastern.
5: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
4: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
6: परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: बृहस्पति की कौन सी राशि नेतृत्व की क्षमता देती है? बृहस्पति की कौन सी राशि आपको बहुत अच्छा हीलर और डॉक्टर बना सकती है? बृहस्पति की कौन सी राशि बुध के लिए खराब है और शुक्र के लिए उत्तम है? कौन सी हैं बृहस्पति की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति, आध्यात्म और सनातन संस्कृति के अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साईं बाबा के एक भक्त ने भेंट किए 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आमरस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: अयोध्या में भक्ति और आध्यात्म का भव्य संगम, श्री झालरिया मठ में शुरू हुआ 7 दिवसीय भव्य श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव, 3 जून तक चलेगा दिव्य धार्मिक आयोजन, कलश यात्रा के साथ महोत्सव का शुभारंभ, वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण हुआ भक्तिमय। 225 कुंडे श्री महालक्ष्मी महायज्ञ बना मुख्य आकर्षण, श्रीमद भगवत कथा में गूंज रहे प्रेरणादायक प्रसंग, ध्रुव चरित्र से लेकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव तक का वाचन। सहस्त्र कलशाभिषेक और लक्षार्चना से बढ़ी आध्यात्मिक ऊर्जा, देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे अयोध्या, 300 साल पुरानी परंपरा को दिया जा रहा विस्तार। राम मंदिर के बाद अयोध्या बनी धार्मिक आयोजनों का बड़ा केंद्र, श्रद्धालुओं के लिए करीब 4,000 कमरों की व्यवस्था की गई। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 24.5 लाख से पार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक करीब 7 लाख लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगहों पर 8.5 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का लगा मेला, अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का अभूतपूर्व सैलाब, सुबह से टोकन काउंटर्स पर लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। मई खत्म होने से पहले ही यात्रा ने पकड़ी रिकॉर्ड रफ्तार, जून शुरू होते होते 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भी जबरदस्त भीड़, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा 40 लाख के पार। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी बनाए गए विशेष केंद्र, मंदिरों में दर्शन व्यवस्था को लेकर लगातार किया जा रहा बेहतर। बद्रीनाथ हेमकुंड मार्ग पर SDRF जवान बने श्रद्धालुओं का सहारा, बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को कंधे पर बैठाकर करवाया जा रहा दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल, रजचंद्र, त्रिशूल और त्रिपुण से ड्राई फ्रूट से किया गया श्रद्धा। बाबा महाकाल को अर्पित किए गए फूल और मिष्ठान, बाबा को रुद्राक्ष की माला और गुलाब के फूलों की माला की गई है। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने की पूजा, भस्म आरती में हुए शामिल। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, गर्मी की छुट्टियों को लेकर रेलवे चला रही कई स्पेशल ट्रेन। धर्मशाला में 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का भव्य शुभारंभ, तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित है आयोजन। तिब्बती संस्कृति, कला और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग, उत्सव में तिब्बती खान पान और पारंपरिक कला बनी आकर्षण का केंद्र। स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक दलों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने बांधा समा, दलाई लामा के जीवन पर आधारित फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की होगी स्क्रीनिंग। कोटा का श्रीनाथपुरम स्टेडियम बना फिटनेस लवर्स की पहली पसंद। सुबह शाम खिलाड़ियों, युवाओं और बुजुर्गों से गुलजार हो रहा है स्टेडियम। रनिंग, वॉक, क्रिकेट से लेकर टेनिस तक कर बन रहा है खिलाड़ियों की बह रहा है खिलाड़ियों का पसीना। लड़कियां भी वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस में दिखा रही दम। नादिया में इस्कॉन मंदिर में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किए दर्शन। सीएम ने की गौ माता की सेवा। दिल्ली चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के लिए की गई विशेष व्यवस्था। जानवरों के बाड़े में लगाए गए कूलर। बाड़ों में भरे गए पर्याप्त पानी। जरूरी जगहों पर लगाए गए कूलर। धौलपुर जिले की राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में दुर्लभ इंडियन स्कीमर के नन्हे मुन्ने चूजों की चहचहाट से गुलजार। दुनिया भर में करीब 3,000 की संख्या में बचे दुर्लभ पक्षी। इंडियन स्कीमर के संरक्षण को लेकर सफल प्रयास। 164 अंडों में 116 इंडियन स्कीमर के बच्चे निकले। मुजफ्फरपुर की शाही लीची अब खुशबू से जीत रही दिल। शाही लीची अगरबत्ती बनी देश विदेश में नई पहचान। बांस की सीख पर तैयार होती है खास अगरबत्ती। लीची फ्रेग्रेंस से आती है मीठी और प्राकृतिक खुशबू। शाही लीची अगरबत्ती से सालाना 50 से 60 लाख रुपए की हो रही आमदनी। कारोबार को 2 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य। भरतपुर में भीषण गर्मी से ट्रांसफार्मर पर बढ़ा दबाव। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाए गए 2 कूलर। गर्मी से हीटिंग की समस्या रोकने के लिए अनोखा प्रयोग। बिजली विभाग ने सिस्टम को दिया नया कूलिंग सपोर्ट। मैदानों में बढ़ते पारे के बीच पहाड़ों में सैलानियों की भीड़। कुल्लू मनाली में टूरिज्म बूस्ट। एडवेंचर एक्टिविटी में मशरूफ नजर आए पर्यटक। बोटिंग का उठा रहे लुत्फ। हिमाचल सड़क परिवहन ने फिर से शुरू की दिल्ली लेह बस सेवा। उत्तरी भारत का सबसे लंबा रूट 1839 रुपए किराया। लद्दाख के LGVK सक्सेना ने लेह को दी विकास की सौगात। पर्यावरण के अनुकूल रॉक चेक डैम का किया उद्घाटन। सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत उद्घाटन। 11,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है डैम। मिडल ईस्ट संघर्ष के बीच देश के लिए आई राहत की खबर। LPG लेकर वतन आया स्वदेशी वेसल। पोरबंदर के तट पर पहुंचा CMD-23 वेसल। 4,000 टन LPG लेकर लौटा वतन। कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग सफलतापूर्वक किया गया काबू। भारतीय वायुसेना ने आग को बुझाने के अभियान में निभाई अहम भूमिका। टिहरी के जंगलों में भड़की आग। ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा, आग बुझाने में जुटे। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन को सजाया गया। इमारत लाल रोशनी से जगमगाती दिखी। गांधीनगर को गृहमंत्री अमित शाह की विकास कार्यों की सौगात। जीडवा गांव जलाशय का उद्घाटन। कलोल गांव में जलाशय की आधारशिला। अमित शाह ने गांधीनगर में नए ग्राम पंचायत दफ्तर का किया शुभारंभ। जिले के कई गांवों के लोगों को मिलेगा लाभ। गांधीनगर के कलोल में मोती भोयान प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अमित शाह ने किया शुभारंभ। गांधीनगर में नवनिर्मित आधुनिक पुस्तकालय का उद्घाटन। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और गुजरात सरकार के बीच निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर अहम MOU पर हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ 7 दिन में 600 हेक्टेयर भूमि BSF को सौंपी। दिल्ली में 45 डिग्री तापमान के बीच पानी की भारी किल्लत। गोविंदपुरी के आशा किरण फ्लैट में पानी का संकट। घंटों लाइन में लगने को मजबूर लोग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। आज हीट वेव का था अलर्ट। कल जिले में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। राजस्थान के धौलपुर में नौतपा का कहर। पारा 46.5 डिग्री पहुंचा। बिजली कटौती से लोग बेहाल। ठंडे पेय पदार्थ का लोग ले रहे सहारा। नौतपा की आग में तप रहा राजस्थान। फतेहपुर में तापमान 45.3 डिग्री दर्ज तो श्रीगंगानगर 48.2 डिग्री के साथ बना सबसे गर्म जिला। 43 डिग्री तापमान से यूपी का बांदा बना हीट चैम्बर। भीषण गर्मी और लू की चपेट में बांदा, जूस और ठंडी चीजें खा पी रहे लोग। सियोल में रोबोट्स का अनोखा फैशन शो गैलेक्सी कॉरपोरेशन ने पेश किया मार्च 3 फिजिकल एआई फैशन शो। गैलेक्सी रोबोट पार्क में दिखा टेक्नोलॉजी और फैशन का संगम, रोबोट्स ने इंसानी मॉडल्स के साथ रैंप वॉक कर चौंकाया। केप एन रोबोट्स ने स्टाइलिश अंदाज में किया कैटवॉक, मॉडल्स ने रोबोट्स के साथ एक जैसे आउटफिट्स में किया प्रदर्शन। टैम्पर फैशन और एआई की कोरियोग्राफ परफॉर्मेंस ने मोहा मन, रोबोट्स और मॉडल्स ने साथ मिलकर दिए शानदार पोज। फैशन शो में देखा फिजिकल एआई का भविष्यवादी कॉन्सेप्ट, रोबोट्स ने कोरियोग्राफी के साथ किया परफॉर्म। चीन में पॉपमार्ट ने वैश्विक ब्रांड बनने का रखा बड़ा लक्ष्य, विशाल घरेलू बाजार को बताया कलाकारों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म। यूनिक कैरेक्टर्स को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का लक्ष्य, नए डिजाइन और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर निवेश बढ़ेगा। योशिकी की शानदार वापसी, स्पाइन सर्जरी के बाद फिर गूंजेगा संगीत, एक्स जापान के फैंस ने के लिए बड़ी खुशखबरी, अमेरिका में 2 खास कॉन्सर्ट। वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल में 16-17 जुलाई को होगा संगीत का जादू, स्कारलेट नाइट में दिखेगा जुनून, दर्द और दमदार ऊर्जा का संगम। क्लासिकल और रॉक म्यूजिक का अनोखा फ्यूजन बनेगा शो की खास पहचान, वॉल्ट नाइट में योशिकी सुनाएंगी संघर्ष से वापसी की प्रेरणादायक कहानी। इंग्लैंड के सर्न एबाज जायंट की फिर से चुने से पुताई शुरू, 180 फीट ऊंची ऐतिहासिक आकृति पर चला मरम्मत अभियान। 55 मीटर ऊंची चूने की आकृति का अनोखा स्वरूप फिर निखरा, योद्धा का गदा वाली आकृति है ऐतिहासिक पहचान। प्राइज जापान के शिकडाउन में टोयोटा का दमदार प्रदर्शन, सेबेस्टियन ओगेयर ने सबसे तेज समय निकालकर रैली में दिखाई बढ़त। टोयोटा गैजू रेसिंग ने 1-2-3 पोजीशन पर कब्जा जमाया, ओगेयर ने 1:55:03 का शानदार लैप टाइम दर्ज किया। सेंजाओ 21 और सेंजो 23 के बीच ऑर्बिट में सफल हैंडओवर, चीन के स्पेस स्टेशन की चाबी औपचारिक रूप से सेंजाओ 23 क्रू को सौंपी गई। कोपलियो ने संभाला फरारी की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार का स्टेयरिंग, रोम के पास कैस्टल में अपने आवास पर देखी लग्जरी कार। कोप ने फरारी के चेयरमैन जॉन एल्कॉन के साथ मिलकर हाल ही में लॉन्च हुए लूसे मॉडल का किया मुआयना, कारों के जाने माने शौकीन हैं पोपलियो। फरारी के चेयरमैन ने पोप के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कार का स्टीयरिंग व्हील किया भेंट, इस मौके पर कंपनी के अधिकारी और इंजीनियर भी रहे मौजूद। फरारी के इस ईवी को रोम में आयोजित एक भव्य समारोह में दुनिया के सामने किया गया पेश, लॉन्च के तुरंत बाद इटली के राष्ट्रपति सर्जियो और पोपलियो ने देखी कार। 4 दरवाजों वाली 5 सीटर कार है फरारी की लूसे, इस इटालियन कार ब्रांड की तरफ से लाई गई पहली ईवी। कुआलालंपुर में शाडो कोविट्री की पौराणिक परंपरा को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऑल फीमेल ट्रुप, महिलाओं के नजरिए से लोक कथाएं करती हैं पेश। वायांग विमन है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला समूह का नाम, इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और फिलीपींस के सदस्य शामिल। चीन में आयोजित 22वें चीन अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उद्योग मेले का हुआ आयोजन, मेले में आकर्षण का केंद्र बने ट्रेंडी खिलौने। मेले में खिलौने के आईपी पिलो सीरीज ने खींचा लोगों का ध्यान, प्राचीन चाइनीज क्लासिक शांघाई जिंग में वर्णित सपनों को खाने वाले टैपर पर आधारित है यह स्लीप पिलो। चीन के साथ विदेशों में भी खास प्रचलित है स्लीप पिलो, दक्षिण पूर्व एशिया के बाद अब यूरोप और अमेरिकी बाजारों में इसके विस्तार की योजना। अगले 5 सालों में दुनिया का तापमान रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचेगा। यूएन और यूके की मेट ऑफिस की बड़ी रिपोर्ट जारी। दुनिया का औसत तापमान 1.3 से 1.9 डिग्री ऊपर रहने की संभावना। औद्योगिक पूर्व स्तर से लगातार बढ़ रहा वैश्विक तापमान। 2024 को बताया गया अब तक का सबसे गर्म साल। 2026 से 2030 के बीच नया रिकॉर्ड बनने की आशंका। आर्कटिक क्षेत्र में सबसे तेज गर्मी बढ़ने का अनुमान। आर्कटिक सर्दियां वैश्विक औसत से 3.5 गुना ज्यादा गर्म होंगी। समुद्री बर्फ के तेजी से पिघलने की चेतावनी। बैरेंस बेरिंग और ओखोत्सक सागर में बर्फ घटने की आशंका। 2027 तक अलनीनो में बढ़ा सकता है वैश्विक तापमान। रोमेलू के बीच पर्यटकों ने फव्वारों का लिया सहारा। भीषण गर्मी में फव्वारे बने राहत का बड़ा ठिकाना। स्थानीय लोग और टूरिस्ट ठंडक के लिए फव्वारों के पास जुटे। उत्तर और मध्य इटली में तापमान 35 डिग्री के पार। फ्रांस के बोर्डो में भीषण गर्मी से सड़क मजदूर बेहाल। असामान्य लू ने बढ़ाया मजदूरों का कामकाजी दबाव। धूप में काम करते मजदूरों को हो रही है डिहाइड्रेशन की समस्या। हवा न चलने से बढ़ा हीट स्ट्रेस का खतरा। बोर्डो में तापमान 36 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद। मई में ही लू ने मौसम को सामान्य से बहुत किया गर्म। बढ़ती गर्मी से लोग परेशान। पश्चिमी यूरोप में भी भीषण गर्मी। राहत के लिए एथेंस के बीच समुद्र पर जुट रहे लोग। स्लोवाकिया में भी बढ़ती गर्मी से लोग परेशान। अपने पेट्स के साथ ले रहे समुद्र में नहाने का मजा। पुर्तगाल में भी सूरज की तपिश ने लोगों को किया बेहाल। गर्म लू के बीच छुट्टियों के सीजन में घूमने आए टूरिस्ट परेशान। मिलान के बाहरी इलाके में जानवर भी तेज गर्मी से बेहाल। घोड़ों पर की जा रही है पानी की बौछार। लू से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे इंतजाम। इस साल की अपनी पहली बड़ी लू का सामना कर रहा है इटली। बॉलीवुड के एक्टर दीपक तिजोरी को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। कान में आयोजित प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोस ऑफ अस के लिए मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। अक्षय कुमार की प्रीडेटर एलियन थ्रिलर फिल्म समुख में दिखेगा हॉलीवुड का जादू। प्रीडेटर फिल्म का हिस्सा रहे एलेक गिलेस डिजाइन कर रहे हैं एलियन क्रिएचर वेनम के एक्टर डायरेक्टर ल्यूक एक्शन सीन्स करेंगे डायरेक्ट। कोलकाता में दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी बायोपिक की शूटिंग शुरू। मैदान ईडन गार्डन पर कैमरा क्रू संग नजर आए। सौरभ का किरदार निभा रहे राजकुमार राव। ओटीटी के बाद अब बड़े पर्दे पर नजर आएगा कालीन भैया साम्राज्य। 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी। नागाबंधम में अहमद शाह अब्दाली और उनके मॉडर्न अवतार के डबल रोल में नजर आएंगे ऋषभ साहनी। 3 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: बृहस्पति की कौन सी राशि नेतृत्व की क्षमता देती है? बृहस्पति की कौन सी राशि आपको बहुत अच्छा हीलर और डॉक्टर बना सकती है? बृहस्पति की कौन सी राशि बुध के लिए खराब है और शुक्र के लिए उत्तम है? कौन सी हैं बृहस्पति की राशियां और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: कोटा स्थित ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में करीब 300 वर्षों से एक अनोखी धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 14 दिन का विशेष बीमारी अवकाश दिया जाता है। मान्यता है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आम रस का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसके चलते मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
1: जैसी भक्त की आस्था उसी रंग में रंग जाते हैं भगवान भी। राजस्थान में कोटा के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में करीब 300 सालों से एक अनूठी धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 14 दिन का विशेष बीमारी अवकाश दिया जाता है। मान्यता है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आम रस का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसके चलते मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
2: 8 कुंडों से स्नान होता है और उसी दिन भगवान का 108 किलो का आम रस का भोग भी लगाया जाता है। और जगन्नाथ भगवान जो है वो बाल स्वरूप माने जाते हैं कृष्ण भगवान के, तो क्योंकि जैसे एक छोटा सा बच्चा, जैसे ही उसको इतना ज्यादा स्नान कराया जाए और इतना ज्यादा खिलाया जाए, भोग कराया जाए, तो उससे उसकी तबीयत नरम हो जाती है।
1: परंपरा के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान का 51 जल कलशों और पंचामृत से विशेष अभिषेक किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के पूर्ण होने के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और अगले 14 दिनों तक पुजारी प्रतिदिन भगवान के स्वास्थ्य की प्रतीकात्मक देखभाल करते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए दूध और काली मिर्च का विशेष काढ़ा भी अर्पित किया जाता है। ये तस्वीरें गुजरात के पाटन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मंदिर की हैं, जहां भगवान का श्रृंगार फूलों और गहनों से नहीं बल्कि नोटों से किया गया है, वो भी 1,51,000 नकदी नोटों से। इस सजावट में 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। असल में अधिक मास की एकादशी के मौके पर यहां विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उनके भक्तों ने भगवान का अनूठा श्रृंगार किया। पाटन से सुनील पटेल और कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: Sage University, transforming your passion into profession.
0: दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति के अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने भेंट किया 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ाई चारधाम यात्रा 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ। दलाई लामा के 9वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन। संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं बृहस्पति की राशियों के बारे में। पंडित जी आपको जानकारी देंगे कि बृहस्पति की राशियों की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं, उनको कौन सी बातों का ख्याल अपने जीवन में रखना चाहिए। ये सारी चर्चा पंडित जी के साथ आगे करेंगे। बहुत सारे प्रश्न होंगे जो हमने और आपने पूछने हैं पंडित जी से, लेकिन शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ।
1: देखिए, अपने परिवार का संयुक्त चित्र, माता पिता, बेटा बेटी, पूरे परिवार का ज्वाइंट चित्र घर के पूर्वी दीवार पर, घर के ईस्ट वॉल पर लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे परिवार के लोगों में आपसी प्रेम और आपसी सौहार्द बढ़ेगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं 29 मई 2026 शुक्रवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 29 मई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 9:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 10:38 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। हमने शुरुआत में आपको बताया कि बृहस्पति की राशियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस खास एपिसोड में। तो बृहस्पति की राशियों की विशेषताएं क्या होती हैं, वो जानते हैं पंडित जी से।
1: जी देखिए, ज्योतिष में राशियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राशियां आपकी मानसिक स्थिति के बारे में और आपकी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट बता देती हैं। राशियों को और गहराई से समझने के लिए इनके नक्षत्र को भी देखा जाता है। हम आपको ब्रीफली बताते हैं, मोटे तौर पे बताते हैं बृहस्पति की राशियों के बारे में। बृहस्पति आकाश तत्व का ग्रह माना जाता है, स्काई एलिमेंट का प्लेनेट है। दो राशियों के स्वामी हैं बृहस्पति, धनु और मीन। धनु राशि बृहस्पति की अग्नि तत्व की राशि है और मीन राशि बृहस्पति की जल तत्व की राशि है। दोनों राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं, धनु के भी और मीन के भी। बृहस्पति धनु राशि में ज्यादा मजबूत होते हैं। धनु को बृहस्पति की ज्यादा निकट राशि माना जाता है और शक्ति के लिहाज से धनु बड़ी ताकतवर राशि है, धनु ऊर्जावान राशि है। मीन जो है ये सौम्य राशि है, मीन के अंदर वाटर एलिमेंट होता है, तो ये सॉफ्ट, केयरिंग और चिकित्सा की राशि मानी जाती है। धनु का मतलब एग्रेशन होता है, धनु का मतलब युद्ध होता है, नेतृत्व होता है। मीन का मतलब सॉफ्टनेस होता है।
0: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली तीन राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है सबसे पहले पहली तीन राशियों की, मेष, वृष और मिथुन।
1: मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिख रही हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पंडित जी से जानते हैं पहला प्रश्न। पंडित जी, प्रश्न ये है कि बृहस्पति की पहली राशि है धनु, धनु वालों की विशेषताएं क्या हैं, उनको जीवन में आगे किस रफ्तार के साथ और कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो बताइए।
1: देखिए, बृहस्पति की जो धनु राशि है उसके स्वामी तो बृहस्पति ही हैं, और धनु वालों के लिए सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए धनु राशि वालों के जीवन में सूर्य इनको भाग्यवान बनाता है, सूर्य इनको जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाता है। धनु राशि वालों के पास साहस, ज्ञान, गणना और नेतृत्व का गुण होता है। धनु का मतलब जिसके हाथ में धनुष है, यानी जो युद्ध करने को तैयार है, जो युद्ध की मुद्रा में है। तो इस राशि के लोग अक्सर सेना में या पुलिस में देखे जाते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। धनु वालों के अंदर नेतृत्व की ताकत बहुत जबरदस्त होती है और धनु वाले कठिनाइयों से जूझते भी बड़े ताकतवर तरीके से हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इनका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, अपनी जबान पर लगाम नहीं रख पाते, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, जिस चक्कर में अक्सर इनके रिलेशनशिप खराब होते हैं। धनु राशि के लोगों को सलाह लेकर एक माणिक्य पहनना चाहिए और धनु राशि वालों को भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, यानी धनु वाले प्रातः काल उठ करके स्नान करके अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और चलिए बृहस्पति की बाकी राशियों के बारे में भी जानेंगे पंडित जी से। अब बारी आती है राशिफल पर वापस आने की। कर्क, सिंह और कन्या वालों के राशिफल में क्या लिखा है वो पंडित जी आपको बताएंगे।
1: कर्क राशि, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम एक दो दिन के लिए टाल दीजिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं कि बृहस्पति की दूसरी राशि है मीन, इनकी विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं और इनको किन किन बातों का ख्याल अपने जीवन में रखना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, पंडित जी बताएंगे।
1: बृहस्पति की जो दूसरी राशि है वो है मीन और मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं, लेकिन याद रखिए धनु बृहस्पति के ज्यादा करीब है, मीन उतना करीब नहीं है। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी राशि मीन है तो आपके जीवन में बृहस्पति की भूमिका तो होगी ही, लेकिन चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होगी। मीन राशि वालों के पास ज्ञान, ग्लैमर, कला और शिक्षा का गुण होता है। मीन वाले ज्ञानी होते हैं, ग्लैमर के फील्ड में, कला के क्षेत्र में, क्रिएटिव क्षेत्र में या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तरक्की करते हैं। मीन वाले बड़े अच्छे हीलर होते हैं, यानी मीन वाले दूसरों की बीमारियों को, दूसरे की समस्याओं को दूर करने की योग्यता रखते हैं। और मीन वालों के साथ एक बात ये भी है कि मीन वाले अगर मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो बड़े अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। मीन वालों की मुश्किल ये है कि ये अक्सर युवावस्था में भटक जाते हैं, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में, आकर्षण के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी बड़ी सफलताओं को कम कर देते हैं। बाद में मीन वालों को जब सही डायरेक्शन मिलता है, कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिलता है, तब ये जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। मीन वालों की दो बड़ी समस्या है, पहला हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि संभव नहीं है, और दूसरा मीन वालों के साथ अगर कहीं शुक्र का कनेक्शन आ गया तो दिखावे में फोकस में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मीन वालों को सलाह लेकर एक मोती या एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए और जितना संभव हो अगर ये भगवान शिव की उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी राशि मीन है तो इमोशनल ट्रॉमा से बचिए, बेवजह की चिंताएं मत करिए और अगर पेट की हार्मोन्स की कोई दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही मत करिएगा।
0: और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं पंडित जी से ही कि इनके भाग्य में क्या लिखा है।
1: तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होती दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि अगर आपकी राशि धनु है और जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो कौन से उपाय हैं जो आपको जीवन में करने चाहिए।
1: देखिए, अगर आपकी राशि धनु है तो कुछ खास तरह की समस्या, रिश्तों के टूटने की, दुर्घटना की, चोट चपेट की, करियर के उतार चढ़ाव की, ये समस्या आपको ज्यादा परेशान करेगी। तो अगर आपकी राशि धनु है और करियर में दिक्कतें हैं या जीवन में दिक्कतें हैं तो क्या उपाय करें। धनु राशि वालों को हमेशा उतार चढ़ाव से और दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। धनु राशि आकस्मिकता वाली राशि मानी जाती है। धनु राशि को जैमिनी ज्योतिष में बहुत डेंजरस राशि माना जाता है। सडन चीजें जीवन में पैदा कर देती है। तो अगर धनु वाले जीवन की मुश्किलों से निकलना चाहते हैं तो इनको नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। चांदी का एक कड़ा या चांदी का एक छल्ला पहनना चाहिए। और अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। नमः शिवाय का जप ज्यादा से ज्यादा करना इनके लिए लाभकारी होगा।
0: और चलिए पंडित जी से जानते हैं कि अगर आपकी राशि मीन है तो जीवन में समस्याएं अगर आपको आ रही हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए कौन से उपाय हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं?
1: देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो कुछ विशेष तरह की समस्या आपके जीवन में आ सकती है। ज्यादातर मीन राशि वालों को इमोशनल प्रॉब्लम से बचना चाहिए, भावनात्मक समस्याओं से, क्योंकि जब ये ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो इनके साथ सपोर्ट करने वाला, इनको इमोशनली हैंडल करने वाला आम तौर पर कोई नहीं होता। ये करियर में जितनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे आइसोलेशन उतना ज्यादा होगा। अक्सर मानसिक तनाव की वजह से, मन की चिंताओं की वजह से मीन वाले कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी राशि मीन है तो नियमित रूप से बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज सुबह जप करिए। सलाह लेकर एक पीला पुखराज आपको पहनना चाहिए, आपको बैलेंस कर देगा ये। और अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करें। मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। तो मुख्यतः अगर आपकी राशि मीन है तो आपको अपनी भावनात्मक चीजों पर काम करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन से बचिए और थोड़ा आध्यात्मिक हो जाएं, थोड़ी पूजा उपासना करें तो मन को अंदर से शक्ति मिलेगी, मन को अंदर से ताकत मिलेगी।
0: और चलिए राशिफल के अंत की तरफ हम बढ़ चले हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है।
1: मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल यह है कि आपने बृहस्पति की राशियों के बारे में तमाम जानकारियां बताई हैं, तो बृहस्पति की राशियां किसी और ग्रह के साथ भी संबंध रखती हैं, ऐसा है?
1: जी, देखिए बृहस्पति की दो राशियां हैं धनु और मीन, दोनों के स्वामी हैं बृहस्पति, लेकिन यहां पर जो मीन राशि है वो बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है, क्योंकि मीन राशि में आकर के बुध बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। बुध की नीच राशि है मीन राशि, यानी अगर बुध का संपर्क हुआ मीन राशि से तो बुध अत्यंत कमजोर होगा और कमजोरी में आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। मीन राशि शुक्र की सबसे प्रिय राशि है। शुक्र जब मीन राशि में बैठता है तो शुक्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए अगर किसी की कुंडली में भी मीन राशि से शुक्र का संपर्क होता है या शुक्र का संबंध बनता है तो शुक्र के जो गुण हैं, लग्जरी है, कंफर्ट है, ग्लैमर है, सुख है, आनंद है, वो उसको जीवन में प्राप्त हो जाता है। हालांकि देखिए मीन राशि के तीन नक्षत्र भी हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन तीनों में भी थोड़ा फर्क आता है, लेकिन याद रखिए कि मीन राशि से अगर शुक्र का संबंध होगा कुंडली में आपके, तो आपको ग्लैमर, नाम, यश, कंफर्ट, आराम, लग्जरी, बढ़िया मकान, बढ़िया वाहन, ये सब मिलने

0: अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत ताकतवर हो जाता है।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं, जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 29 मई को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका ये अच्छा वाला दिन उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है पंडित जी।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 29 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आर्थिक स्थिति और करियर के मामले में सुधार होगा। अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर आप उपासना करें, उनका मंत्र पढ़ें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र जप करने के बीच में जल पी सकते हैं? देखिए, अगर आप बोल बोल कर मंत्र नहीं जप रहे हैं, मानसिक रूप से मंत्र जप रहे हैं, तो जल पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर मंत्र जप के बीच में जल पीने की जरूरत पड़ती है, तो आचमन से दो घूंट जल पी सकते हैं। बहुत सारा जल मत पीजिएगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 29 मई 2026 शुक्रवार के शुभपहर के बारे में।
0: दिनांक 29 मई 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 29 मई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुडलक राशि, यानी आपकी राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। आज की गुडलक राशि है सिंह। जीवन की बेहतरी के लिए नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करें और जब मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए पंडित जी ने तमाम उपाय और तमाम जानकारियां आपसे साझा की हैं, अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी आपसे ही जानते हैं कि खास उपाय कौन सा है।
0: जी, अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो, जो स्वाभाविक है, हो सकती है, और आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? जिसके प्रति गलती हुई है उससे हृदय से क्षमा याचना करिए। एक दिन का उपवास रखिए और उपवास वाले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए। भविष्य में गलती ना करने का संकल्प लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलतियों का प्रायश्चित होगा, उसके अशुभ प्रभाव से आप बच जाएंगे।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: नमस्कार।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।

0: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इस
2: दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने भेंट किया 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ रही चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे के साथ शेयर की जाती हैं और बिजली की रफ्तार के साथ फैलाई जाती है। किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर बता दिया जाता है, तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, इन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। तो ऐसे में हम सच और झूठ के पीछे की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात हम करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि असम के एक मस्जिद के अंदर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सच्चाई क्या है, आगे करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
4: तक कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी काफी चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स के मामले में इसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज के दूसरे मुद्दे उठाए जाएंगे। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले को दबोचे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक आदमी उस पुलिस वाले की जेब से नोटों की गड्डियां निकालता है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रभाव और जागरूकता के चलते इस रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, 30,000 की रिश्वत लेते हुए दरोगा को धर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में सड़े गले सिस्टम की सफाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 30,000 की रिश्वत लेने वाले दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में पुलिस वालों को कुछ लोगों को गिरफ्त में देखा जा रहा है। एक शख्स को उनकी जेब से रुपए निकालते हुए भी देखा जा रहा है और फिर उसे गिनते हुए भी देखा जा सकता है। इस दौरान पुलिस वाला ये कह रहा है कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, पीछे से आवाज आती है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसे देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वीडियो घूसखोरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन बाद में फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और छत्तीसगढ़ की लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला। लेकिन मई महीने में हमें ऐसा कोई भी वीडियो या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई को बनाई गई थी और ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि ये व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज में उनके मुद्दे उठाए जाएंगे। तो ऐसे में हमें मामला पुराना लगा, लिहाजा वायरल वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ का है तो ये घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं वीडियो को जानबूझकर एक नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है देखिए।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकालकर उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें ये 26 फरवरी के एक्सपोस्ट में मिला। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि इस घटना का कॉकरोच जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पार्टी हाल ही में 16 मई को बनाई गई थी और ये घटना इससे पहले की है। पोस्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब्दुल मुनाफ नाम के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था। सर्च के दौरान हमें इससे संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स भी मिली। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का है। अंबिकापुर के ग्राम कोड़ी के रहने वाले किसान सत्येंद्र प्रजापति ने एसीबी में जाकर शिकायत की थी कि एसआई अब्दुल ने उन्हें एक मर्डर केस में फंसाने की धमकी दी थी और इससे बचाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने एसआई अब्दुल मुनाफ को पैसे के साथ पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज किया। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि ये वीडियो फरवरी का है जब छत्तीसगढ़ में एसीबी ने एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को पोस्ट करने वाले यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि असम की एक मस्जिद से हथियार बरामद हुए हैं। लेकिन जब हमने वायरल हो रहे वीडियो का फैक्ट चेक किया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा रखा हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपा कर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड और खतरनाक हथियार शामिल हैं। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा कि असम की एक मस्जिद से हथियारों का जखीरा बरामद। वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा देखने को मिल रहा है। आसपास जवानों को भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को उसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपाकर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड खतरनाक हथियार शामिल है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तहकीकात की। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये असमिया नहीं लगा। आप भी सुनिए। अगर वीडियो असम से जुड़ा हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि सुनने में असमिया भाषा ही मिलती। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: टीम वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें ये मणिपुर पुलिस के एक्स अकाउंट पर देखने को मिला। यहाँ इस वीडियो को 21 मई को शेयर किया गया था। वीडियो को शेयर करके बताया गया था कि लामशांग इलाके में लूटे गए हथियार और गोला बारूद बेचने के बारे में मिली एक जानकारी के आधार पर मणिपुर पुलिस ने 20 मई 2026 को लामशांग पुलिस स्टेशन के तहत लामदेंग में एक विशेष अभियान चलाया। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर इससे जुड़ी रिपोर्ट देखने को मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स और CRPF के साथ मिलकर उग्रवाद विरोधी बड़े अभियानों में 67 हथियार बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में 27 AK सीरीज की राइफलें, 11 US निर्मित राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक शामिल हैं। इम्फाल पश्चिम में चलाए गए अभियानों के दौरान यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पामबेई गुट के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने नामशांग इलाके में अवैध हथियारों की बिक्री को निशाना बनाते हुए एक अभियान शुरू किया। उग्रवादियों के साथियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी किए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी हुई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो असम की मस्जिद का नहीं बल्कि मणिपुर का है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। रश्मि गुप्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।

0: definitely नहीं है.
1: Tailgate Top 20. Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
2: The Tailgate Top 20.
3: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
1: Try to keep up.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला.
4: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है.
5: लेकिन इस वीडियो में नजारा कुछ अलग दिखाई देता है. वीडियो में घर का माहौल नजर आता है, जहां एक बच्चा आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है. वहीं दूसरा छोटा बच्चा कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे छोटा बच्चा टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा. वो चुपचाप सोफे और दीवार के बीच बची छोटी सी जगह में जाकर बैठ जाता है. वहाँ बैठकर वो बच्चों की किताब देखने लगता है. किताब में फलों, जानवरों और अलग अलग चीजों की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिन्हें बच्चा बड़े ध्यान से देखता नजर आता है. उसकी मासूमियत और पढ़ाई में दिलचस्पी ने लोगों को काफी प्रभावित किया है. क्रिकेट के मैदान पर इस वक्त सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा है. मैदान पर उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने के बाद हर कोई दंग है. इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ वैभव के नाम की ही चर्चा हो रही है. उनकी तारीफ में जहां एक तरफ मजेदार मीम्स की बाढ़ सी आई हुई है, वहीं दूसरी ओर एक अनोखा वीडियो नेटिजन्स का ध्यान खींच रहा है. ये वीडियो है वैभव सूर्यवंशी 40 का, जो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.
6: बचपन से भरा है इनमें गोन, क्रिकेट खेले के खूब जनून.
7: ना इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बहुत ज्यादा पैसे, थोड़ी कम भी तो होते पैसे.
5: बच्चे की क्यूटनेस और फल वाले के सब्र ने पब्लिक का दिल जीत लिया है. वायरल क्लिप में दिख रहा है कि कियारा नाम की एक बच्ची कार की पिछली सीट पर बैठी है और लीची वाले भैया से बात कर रही है.
7: मेरी दादी तो लेकर आते हैं, उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते. तो हमारे पास ज्यादा ही नहीं पैसे हैं, दे दो थोड़े कम पैसे होंगे.
8: दे देना पैसे,
7: हम अपने हिसाब के पैसे दे रहे हैं आपको.
5: लीची के दाम सुनकर बच्ची बड़े ही गंभीर एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, कार में बैठे हैं तो क्या अमीर हैं? वो इतने में नहीं रुकती, बल्कि लीची वाले भैया से बार बार प्लीज कहकर दाम कम करने की जिद करती है. इस पूरी बातचीत के दौरान सबसे खूबसूरत बात ये थी कि फल विक्रेता बच्ची की बातों से परेशान होने की बजाय लगातार मुस्कुरा रहा था. उसने बेहद धैर्य और प्यार से बच्ची की बातें सुनी और इस क्यूट सी नोकझोंक का पूरा लुत्फ उठाया.
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक आउटसाइड द एयरक्राफ्ट, यू माइट कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर.
5: रात के अंधेरे में जमीन पर चमकती एक लंबी रोशनी की लाइन इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. ये कोई आम सा नजारा नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का ऐसा नजारा है जिसे एक विमान से रिकॉर्ड किया गया. वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रही है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक इंडिगो पायलट ने उड़ान के दौरान अपने कैमरे में कैद किया. ऊंचाई से देखने पर दोनों देशों के बीच की सीमा किसी चमकती हुई पट्टी जैसी नजर आ रही थी. चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बॉर्डर पर लगी तेज रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी. यही वजह है कि ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत.
10: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the

0: Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और अब बात उभरते हुए क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी की, जिसने आईपीएल के अपने दूसरे सीजन में ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी की। आज हर तरफ वैभव के तूफानी खेल की चर्चा हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक दिन पहले खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने महज 29 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए। इसके साथ ही वैभव ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। 15 साल के वैभव की बल्लेबाजी देखकर वर्ल्ड क्रिकेट में न सिर्फ हर कोई हैरान है, बल्कि सचिन तेंदुलकर सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस युवा बल्लेबाज को जमकर सराहा।

0: 15 साल का ये लड़का आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वैभव सूर्यवंशी आज वो नाम बन चुका है जिसकी चर्चा वर्ल्ड क्रिकेट में हो रही है। हालांकि वैभव ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन आईपीएल के करियर में वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। 2026 के पूरे आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस कदर चला है कि मैदान के अंदर और बाहर सिर्फ वैभव की धुआंधार बैटिंग की ही चर्चा हो रही है। एक दिन पहले भी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने दमदार बल्लेबाजी से सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके मारे। वैभव की इस तूफानी पारी को देखने के बाद उनके गृह जिले बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने केक काटकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। साथ ही लोगों ने वैभव के मौजूदा प्रदर्शन की खूब तारीफ भी की। तारीफ करने वालों में उनके शुरुआती दिनों के कोच भी शामिल हैं।
1: जिस लहजे में अभी वैभव खेल रहे हैं उसकी तैयारी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट उस समय वैभव बच्चा था तो हमारा ऑब्जेक्टिव और उस समय का प्लानिंग स्टेट मैचेस के लिए था।
2: तब भी वैभव ऐसी बल्लेबाजी करता था जैसा कल की रात?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं उस ओपन नेट सेशन के, जब वैभव बैटिंग कर रहा है उसके साथ सीनियर बच्चे बैटिंग कर रहे हैं जो उससे मिनिमम 5-6 साल 7 साल बड़े रहते थे। तो आप जब बैटिंग को देखेंगे तो वो सीनियर बच्चों से भी ज़्यादा बेहतर अपने गेम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाता था।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि वो समस्तीपुर का ही नाम रोशन नहीं कर रहा, बिहार का ही नहीं कर रहा, पूरे देश का कर रहा है, और एक दिन हम लोग उसको भारतीय टीम में खेलना देखना चाहते हैं। और जो लगता है जो प्रतिभा है उसके प्रति, खेल के प्रति जो प्रतिभा वो दिखा रहा है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एक दिन भगवान की इच्छा रही वो भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर हम लोग का मान और सम्मान जो है और आगे बढ़ाएगा।
0: हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव भले ही सबसे तेज शतक लगा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने खेल से इस आईपीएल सीजन में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। वो अब तक इस सीजन में 65 छक्के लगा चुके हैं। इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल के 59 सिक्सेस के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये कि गेल ने 456 गेंदे खेलकर 59 छक्के लगाए थे, लेकिन वैभव सिर्फ 280 गेंदे खेलकर ही अब तक 65 छक्के मार चुके हैं। इतना ही नहीं, एक सीजन में 4 बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वैभव आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। वहीं वो आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज भी बन गए हैं। ये कुछ ऐसे आईपीएल रिकॉर्ड हैं जिसने क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों को भी वैभव की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर तक, क्रिस गेल से लेकर केविन पीटरसन तक, और सूर्य कुमार यादव से लेकर युवराज सिंह और सुरेश रैना तक, हर किसी ने सोशल मीडिया पर वैभव के खेल की खूब सराहना की, जिसके लिए वैभव ने इन दिग्गज क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा किया।
4: इतने सारे रिकॉर्ड्स वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किए हैं, जिसमें से सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही था जहां पर उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हों। क्रिस गेल 59 सिक्सेस उन्होंने लगाए थे, 65 वैभव सूर्यवंशी लगा चुके हैं। और क्रिस गेल ने यही बोला है उनके लिए कि जी जो 100 का जो रिकॉर्ड था वो भी आने वाले वक्त में हो जाएगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं 6 हिटिंग मशीन। इसके अलावा क्या कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं वैभव सूर्यवंशी ने वो मैं आपको बताऊंगी। जहां पर मोस्ट रन्स इन पावर प्ले, वो आते हैं पावर प्ले में ही गेम खत्म कर देते हैं, सामने वाली टीम देखती रह जाती है और पावर प्ले में वो रन्स उतने बना देते हैं। 490 रन्स पावर प्ले में उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन पावर प्ले, 8 छक्के वो जो है पावर प्ले में लगा चुके हैं। और मतलब आप देखेंगे कि किस तरीके से पावर प्ले में ही वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि ये मैच तो मैं ही अपनी टीम को जिताऊंगा। हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग, एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के जो है वो भी वैभव सूर्यवंशी ने ही लगाए हैं। उसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन आईपीएल नॉकआउट्स, आप जानते हैं नॉकआउट्स उनका प्रेशर ही अलग होता है, प्रेशर वहां पर नॉकआउट्स का सबसे ज्यादा होता है, और वहां पर आकर सबसे ज्यादा छक्के वैभव सूर्यवंशी ने लगाए हैं। 12 छक्के लगा चुके हैं, इससे पहले 10 छक्के वहां पर शुभमन गिल ने लगाए थे। इसके बाद में बात करूंगी मोस्ट रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर, सबसे ज्यादा रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर। अभी इंडिया के लिए खेले नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा रन्स उन्होंने लगा ली है, 680 रन्स। इससे पहले उन्हीं के साथ ही जयसवाल, उनके थे 626 रन 2023 में, लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं वो अनकैप्ड प्लेयर।
0: एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान को मिली जीत में वैभव की भूमिका अहम रही। अब राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से 29 मई को है। इस मैच में जीतने वाली टीम आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में आरसीबी से 31 मई को सामना करेगी। यानी अभी दो चांस हैं जब वैभव अपने मौजूदा फॉर्म की बदौलत कुछ नया इतिहास रच सकते हैं। चंडीगढ़ से खुशी गुप्ता और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: 21 दिनों की कठिन एकांत साधना के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही बद्री विशाल मंदिर आए, उनकी एक झलक के लिए श्रद्धालुओं का यहां तांता लग गया। बुधवार से ही बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का वाचन शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो करने को मिलेंगे ही, और साथ ही कथा के साथ अपने 21 दिनों के एकांत साधना के संस्मरण भी सुनने को मिलेंगे।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाटचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है, वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम है तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय पातेरी।
4: लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया, ये पत्नी का धर्म है। छत्ता बना करके खड़ी हुई, नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है, आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है, ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं, साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है, तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण

0: इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने भेंट किया 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ाई चार धाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के शुभ समाचार की। इस बार गर्मियों ने मई के महीने में लोगों का कड़ा इम्तिहान ले लिया है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तप रहे हैं, तो उत्तर भारत में दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में देश को बेसब्री से इंतजार है तो मानसून की पहली बारिश का, उस राहत की फुहार का जो तपती धरती को सुकून दे पाए। हालांकि उससे पहले भी एक गुड न्यूज है कि आ रहा है वीकेंड कूल कूल रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के कारण आंधी, गरज चमक के साथ बारिश या हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के आसपास आज और कल बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो 45 डिग्री की गर्मी से कुछ राहत देंगी। अच्छी बात यह है कि कई इलाकों में इसका असर दिखने भी लगा है। अगर आप इस समय दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, यूपी या पंजाब के किसी भी शहर से हमें देख पा रहे हैं, तो अपनी खिड़की से झांकने पर आसमान में पसरा बादलों का डेरा आपके शहर में राहत की दस्तक देकर जरूर जाएगा।

0: गर्मी आएगी ये तो मालूम था, लेकिन अब की बार ऐसी और इतनी आ जाएगी ये नहीं सोचा था। नौतपा में सूरज दादागिरी पर उतरा है और गर्मी को मनमानी का मौका मिल गया है। जब से नौतपा शुरू हुआ पूरा उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो या फिर यूपी और पूरा दिल्ली NCR, तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। बुधवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। यूं समझिए अब की बार ऐसा गर्माया तपाया है मई के महीने ने कि अब राहत का इंतजार करते नहीं बन रहा, लेकिन इंतजार अब ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। बारिश से पहले मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी ने गर्मी के सताए लोगों पर राहत की बौछार कर दी है।
1: जो अभी हीटवेव कंडीशन चल रही है, जो अधिकतम तापमान जो का स्तर जो ज्यादा चल रहा है, अनुमान यही है कि 28 तारीख से जो इसमें गिरावट देखी जाएगी और उसके बाद 29-30-31 तक आप मान के लिए 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो हीटवेव सीवेव कंडीशन चल रही है अभी उसमें कल के बाद से जो है राहत मिल जाएगी।

0: मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम पलटने वाला है। देश के कई इलाकों में बादल बारिश की सौगात लाने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है जो गर्मी से तपते जलते उत्तर भारत के लिए राहत की फुहारें लेकर आ रहा है।
1: अनुमान ये है कि एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो है उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए 28 तारीख के बाद से जो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से तेज हवा के साथ साथ में जो है लाइटनिंग घटना, हवा गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है।
0: ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों से लेकर मैदानों तक का मौसम बदलने वाला है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और हीट वेव से कुछ दिनों के लिए निजात मिल जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है, क्योंकि तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
1: देखिए, अभी टेम्परेचर इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर में पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देश के 14-15 राज्यों में दिखाई देगा। इसी के चलते राजस्थान, MP, बिहार और UP में अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए बिहार के 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान में जयपुर सहित 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जब से मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है, लोग बेसब्री से मौसम के बदलने की राह देख रहे हैं। दरअसल पिछले 1 महीने से दिल्ली समेत पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में गर्मी सितम ढा रही है।
2: 28 मई को पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। सामान्य से तापमान जो है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे, जिससे लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है। हालांकि अभी तापमान जो है वो 45 डिग्री पार है। अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जाए तो वहां पर जो है मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार वहां पर जो उमस की स्थिति है, गर्मी की स्थिति है, वो बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर मैदानी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहे हैं, लोगों को चिलचिलाती गर्मी खासा दिक्कत दे रही है। तो इसी के साथ ही लोगों को राहत का भी इंतजार है कि मानसूनी बारिश जो है कब दस्तक देगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा इंतजार लोगों को करना पड़ सकता है।
0: हाल मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की तो गुरुवार की सुबह इसका असर कई जगहों पर नजर आने भी लगा। चंडीगढ़ में लोग सुबह सोकर उठे तो ठंडी हवाओं ने स्वागत किया, आसमान में बादल छाए दिखे और तापमान में आई गिरावट से लोगों की सुबह सुहानी हो गई।
3: चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। जो पारा 45-40 डिग्री था, अब देखिए कि किस तरीके से मौसम सुहावना हुआ है। चंडीगढ़ सुखना लेक पर इस समय सुबह के वक्त जो बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था, चहल पहल अब आपको लोगों की नजर आएगी। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ठंडी हवाएं बिल्कुल चल रही हैं, ठंडी हवा, और इससे पारे में गिरावट आई है और बादल छाए हैं इस समय। और ये पूरा मौसम का आलम उत्तर भारत में, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, तो इस तरीके का मौसम बदला हुआ है। और आप क्योंकि कल सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई थी फरीदकोट के अंदर, पंजाब में 46.1 डिग्री तापमान था और हरियाणा के रोहतक में 46.6 डिग्री टेम्परेचर था। और कल आपने यहीं पे तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आप देखिए दूर तक जहाँ आपको नजर जाएगी तो लोग किस तरीके से सुबह सैर सपाटे के लिए और सुबह की रूटीन और चहल पहल जो यहाँ पर रहती है, क्योंकि इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए लोग पहुँचते हैं। गर्मी से राहत है और चिलचिलाती गर्मी थी, चंडीगढ़ में बाहर नहीं निकला जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा था, लेकिन अब अगले 2-3 दिन हो सकता है मौसम विभाग का जैसा कहना है कि मौसम में राहत रहेगी, इस तरीके से ही गर्मी से लोगों को अब राहत रहेगी।
0: आपको बता दें कि दक्षिण और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में पहले से ही प्री मॉनसून बारिश का दौर जारी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 29 मई से 5 जून तक देश के 80-90% हिस्से में बारिश होगी।
1: अभी ये फिलहाल प्री मानसून बारिश है, क्योंकि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, हीटिंग होती है, कई बार ट्रफ रेखा भी है, सर्कुलेशन है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पर क्लाउड का सडन डेवलपमेंट होता है, जिस वजह से तेज हवाएं और बारिश जो है देखने को मिलती है। तो आप जो भी ये जो बारिश का अभी स्थिति देख पा रहे हैं, जो वार्निंग इशू की गई है, वो सारी की सारी प्री मानसून वर्षा में आएगी।

0: मॉनसून से ठीक पहले की ये बारिश इसलिए भी अहम है क्योंकि मॉनसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग ने 26 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन यहां नमी कमजोर होने से मॉनसून आगे नहीं बढ़ पाया है। दरअसल लक्षद्वीप, केरल और मंगलुरु के 14 तय स्टेशंस में लगातार दो दिन 2.5 mm बारिश होने पर ही मॉनसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है।
1: 14 रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस इन लक्षद्वीप केरला एंड वन स्टेशन फ्रॉम कर्नाटका दैट इज मैंगलोर। सो कंसेक्यूटिवली फॉर टू डेज एटलीस्ट 60% ऑफ स्टेशंस शुड रिपोर्ट 2.5 millimeters of rainfall, and then the second day is declared as the onset of monsoon.

यानी फिलहाल मॉनसून थोड़ा सा इंतजार और करवाएगा, लेकिन तब तक गर्मी के सितम के बीच वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते होने वाली बारिश का फोरकास्ट कई राज्यों के लिए राहत की गुड न्यूज लेकर आया है।

0: चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मॉनसून का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, राहत की बारिश भी पहुंचने को है, लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही। गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी काफी जरूरी है। तो मई की विदाई और मॉनसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम का उत्सव चल रहा है। कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मॉनसून के इंतजार के बीच में गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इस बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अच्छी खासी रौनक पहाड़ों पर आपको नजर आएगी। कुल्लू मनाली में पर्यटक राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये सभी शहर की गर्मी से दूर पहाड़ों पर खूब इंजॉय भी कर रहे हैं।
2: रिवर राफ्टिंग करी है ब्यास रिवर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हरियाणा में तो अभी बहुत गर्मी है सोनीपत में, और यहाँ क्या राहत मिल रही है हमें, कितना अच्छा मौसम है, और अभी तो ठंडे ठंडे पानी में राफ्टिंग करी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
3: सो द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज सूटेबल फॉर अस, इट इज वेरी डिफरेंट एडवेंचर टूर फॉर अस।
1: तो मैदानों के मुसाफिर गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं राहत का इंतजाम उनके लिए भी तो करना है। गर्मी को देखते हुए शहर शहर चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है।
4: तपती धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारें राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क में 4000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
5: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4000 के आसपास है।
4: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खान पान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियाँ की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सरा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है ताकि लोग तेज गर्मी से बच सके। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो राहत की बारिश आने तक यूं ही गर्मी के विरुद्ध युद्ध तो जारी रखना है। वेदर हॉट है, सॉल्यूशन कूल होना चाहिए, तो देश के अलग अलग हिस्सों से गर्मी को मात देने के लिए कूल सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। चिड़ियाघरों में बेजुबानों के लिए कूलिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं, तो अस्पतालों में लोगों के लिए खास हीट स्ट्रोक रूम तैयार किए जा रहे हैं। बिजली विभाग भी शहर शहर खास एहतियात बरत रहा है। कई शहरों में मुसाफिरों को कड़ी धूप से बचाने के लिए सड़कों पर ग्रीन शेड्स लगाए जा रहे हैं। दरअसल दिन में गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कामकाजी लोगों को बाहर निकलना मजबूरी है। इस दौरान चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने पर सीधी धूप का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अयोध्या, लखनऊ समेत कई शहरों में चौराहे पर वाहन चालकों को भीषण गर्मी से चिलचिलाती धूप और हीट वेव से बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने ग्रीन नेट लगवाया है।
6: प्रदेश में गर्मी भीषण है, प्रचंड है, नौतपा का कहर है, लेकिन अब उससे बचने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा प्रदेश जब हीट वेव से जूझ रहा है तो आप मेरे चेहरे पर भी धूप देख रहे होंगे, लेकिन दो कदम जब मैं आगे लूंगा तो मेरे चेहरे की यह धूप भी छट जाएगी और मुझे थोड़ी राहत महसूस होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं, आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट दो मिनट की अगर है तो दो मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है, ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है। तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा, और इतना ही नहीं, इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इस पे स्प्रिंकल करेगा। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर काम किया है। अब आपको मैं दिखाऊं यहां पर, इस चीज को देखें, एक वाटर टैंकर लगा गया है। इस वाटर टैंकर में एक ये मशीन है, पानी इसके जरिए ऊपर जाएगा और इन व्हाइट पाइप्स के जरिए, जो सफेद पाइप बने हुए हैं, इनके जरिए ऊपर जाएगा। और ऊपर जो है वो जो छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के पाइप के बीच में दिख रहे हैं, एक नल रूपी स्वरूप छोटे से, उनसे पानी की बौछार, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा, तो उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी का कहर है, जो गर्मी का प्रकोप है, जो यहाँ पर लोग रुकते हैं आकर, क्योंकि हजरतगंज है लखनऊ का, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है सुबह दोपहर शाम, गर्मी प्रचंड है, तो ऐसे में एक सहूलियत मिल सकती है।
1: तमाम एहतियातों के बीच ही 45 डिग्री के पार वाली इस गर्मी में डाइट का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं हेल्थ एक्सपर्ट से ही कि नौतपे की गर्मी में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है।
7: सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपके हाइड्रेशन पे ध्यान रखना, कि पानी रेगुलर हर 15-20 मिनट बाद पानी लेते रहें। उसके अलावा जो भी पानी के साथ में, केवल प्लेन वाटर ही जरूरी नहीं है, आप ORS भी ले सकते हैं, लेमन वाटर जो है वो सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी लेमन वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और उसके अलावा छाछ है, बटर मिल्क है, कोकम का शरबत है, जो इन दिनों सीजन की चीजें हैं, जैसे कि फालसे का रस है या प्याज का रस आप हाथों पैरों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब उससे रिलीफ मिले हीट से। उसके अलावा आम का पन्ना है, छाछ राबड़ी है, जो कि हमारे राजस्थान का मेन खाना है, उसको आपको अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मैं लोगों को कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल लोगों का बिजी शेड्यूल हो गया है तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो नाश्ता जरूर करके निकलना चाहिए, बिना कुछ खाए हुए आप घर से नहीं निकले। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि ये जो हीट वेव का जो असर है वो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो हार्ट पेशेंट जो है, जिनका की ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, या डायबिटिक पेशेंट्स पे जिनका की ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये सीजन। तो उनको तो स्पेशली अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। कुछ चीजें आप घर से कैरी करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम बाहर का फ्रूट्स खाते हैं तो कई बार कटे होते हैं, तो उनसे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हमेशा फ्रेश पीने वाले पानी से फ्रूट्स को आप धोइए, और फिर उनको आप साफ हाथों से काटे, और काटने के बाद आप फ्रेश फ्रेश ही खाएं, मतलब घर का बना हुआ भी खाना कभी भी बासे खाने को नहीं खाएं। ये ध्यान रखें कि जितना आपको खाना मतलब कंज्यूम होना है उतना ही आप बनाएं, बहुत ज्यादा नहीं। साथ में उसका जो टेम्परेचर है वो कोशिश कीजिए कि यदि आपके ऑफिस में रेफ्रिजरेटर है तो आप वहां पर उसको कर सकते हैं, मतलब कोई भी सब्जी या दाल खराब हो गई है वो आपने खाया तो आपका गट डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, इन दिनों में ये भी है कि जब आप घर से निकले तो हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहन के निकले, और 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम यदि आप अवॉइड करें तो वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस समय जो आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है 12 से 4।
1: तो तैयार हो जाइए क्योंकि गर्मी से आप सबको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है, कूल कूल पैगाम आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छे खबरों के लिए देखते रहिए चीज।
8: Biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: दिनों की कठिन नेकान साधना के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही बद्री विशाल मंदिर आए, उनकी एक झलक के लिए श्रद्धालुओं का यहां तांता लग गया। बुधवार से ही बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का वाचन शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो करने को मिलेंगे ही, और साथ ही कथा के साथ अपने 21 दिनों के एकांत साधना के संस्मरण भी सुनने को मिलेंगे।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाटचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है, वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम है तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय बद्रीनाथ।
4: पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया। ये पत्नी का धर्म है, छत्ता बना करके खड़ी हुई। नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे, जो भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है। आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है, ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे, रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है, तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की, वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
7: Thank God I get to wake.
6: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Your Saturday nights will never be the same.
9: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
10: The Tailgate Block Party.
8: The Tailgate Block Party.
9: 6 hours non-stop. Non-stop.
10: The best DJs from around the world.
8: The Tailgate Block Party.
9: Saturday night.
8: 8 p.m. Eastern.
10: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
9: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
11: बृहस्पति की कौन सी राशि नेतृत्व की क्षमता देती है? बृहस्पति की कौन सी राशि आपको बहुत अच्छा हीलर और डॉक्टर बना सकती है? बृहस्पति की कौन सी राशि बुध के लिए खराब है और शुक्र के लिए उत्तम है? कौन सी हैं बृहस्पति की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
12: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने भेंट किया 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ाई चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
13: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे के साथ शेयर की जाती हैं और बिजली की रफ्तार के साथ फैलाई जाती है। किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर बता दिया जाता है, तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। तो ऐसे में हम सच और झूठ के पीछे की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात हम करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि असम के एक मस्जिद के अंदर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सच्चाई क्या है, आगे करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
13: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
14: देशभर में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP काफी चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स के मामले में इसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज के दूसरे मुद्दे उठाए जाएंगे। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले को दबोचे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक आदमी उस पुलिस वाले की जेब से नोटों की गड्डियां निकालता है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रभाव और जागरूकता के चलते इस रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, 30,000 की रिश्वत लेते हुए दरोगा को धर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में सड़े गले सिस्टम की सफाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 30,000 की रिश्वत लेने वाले दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
13: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में पुलिस वालों को कुछ लोगों को गिरफ्त में देखा जा रहा है। एक शख्स को उनकी जेब से रुपए निकालते हुए भी देखा जा रहा है और फिर उसे गिनते हुए भी देखा जा सकता है। इस दौरान पुलिस वाला ये कह रहा है कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, पीछे से आवाज आती है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसे देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वीडियो घूसखोरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन बाद में फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और छत्तीसगढ़ की लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन मई महीने में हमें ऐसा कोई भी वीडियो या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई को बनाई गई थी और ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज में उनके मुद्दे उठाए जाएंगे। तो ऐसे में हमें मामला पुराना लगा, लिहाजा वायरल वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ का है तो ये घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं वीडियो को जानबूझकर एक नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है देखिए।
14: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकालकर उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें ये 26 फरवरी के एक्सपोस्ट में मिला। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि इस घटना का कॉकरोच जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पार्टी हाल ही में 16 मई को बनाई गई थी और ये घटना इससे पहले की है। पोस्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब्दुल मुनाफ नाम के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था। सर्च के दौरान हमें इससे संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट भी मिली। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का है। अंबिकापुर के ग्राम कोड़ी के रहने वाले किसान सत्येंद्र प्रजापति ने एसीबी में जाकर शिकायत की थी कि एसआई अब्दुल ने उन्हें एक मर्डर केस में फंसाने की धमकी दी थी और इससे बचाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने एसआई अब्दुल मुनाफ को पैसे के साथ पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज किया। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि ये वीडियो फरवरी का है जब छत्तीसगढ़ में एसीबी ने एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
13: सोशल मीडिया पर भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को पोस्ट करने वाले यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि असम की एक मस्जिद से हथियार बरामद हुए हैं। लेकिन जब हमने वायरल हो रहे वीडियो का फैक्ट चेक किया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
14: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा रखा हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपा कर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड और खतरनाक हथियार शामिल हैं। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा कि असम की एक मस्जिद से हथियारों का जखीरा बरामद। वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा देखने को मिल रहा है। आसपास जवानों को भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को उसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
13: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपाकर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड खतरनाक हथियार शामिल है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तहकीकात की। इससे पहले सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये असमिया नहीं लगा। आप भी सुनिए। अगर वीडियो असम से जुड़ा हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि सुनने में असमिया भाषा ही मिलती। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें ये मणिपुर पुलिस के एक्स अकाउंट पर देखने को मिला। यहाँ इस वीडियो को 21 मई को शेयर किया गया था। वीडियो को शेयर करके बताया गया था कि लामशांग इलाके में लूटे गए हथियार और गोला बारूद बेचने के बारे में मिली एक जानकारी के आधार पर मणिपुर पुलिस ने 20 मई 2026 को लामशांग पुलिस स्टेशन के तहत लामदेंग में एक विशेष अभियान चलाया। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर इससे जुड़ी रिपोर्ट देखने को मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स और सीआरपीएफ के साथ मिलकर उग्रवाद विरोधी बड़े अभियानों में 67 हथियार बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में 27 AK सीरीज की राइफलें, 11 US निर्मित राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक शामिल हैं। इम्फाल पश्चिम में चलाए गए अभियानों के दौरान यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पामबेई गुट के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने नामशांग इलाके में अवैध हथियारों की बिक्री को निशाना बनाते हुए एक अभियान शुरू किया। उग्रवादियों के साथियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी किए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी हुई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो असम की मस्जिद का नहीं बल्कि मणिपुर का है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। रश्मि गुप्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: चेक में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
0: ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें एक छोटा बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार नजर आता है। आमतौर पर छोटे बच्चे टीवी पर कार्टून देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजारा कुछ अलग दिखाई देता है। वीडियो में घर का माहौल नजर आता है, जहां एक बच्चा आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। वहीं दूसरा छोटा बच्चा कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे छोटा बच्चा टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। वो चुपचाप सोफे और दीवार के बीच बची छोटी सी जगह में जाकर बैठ जाता है। वहाँ बैठकर वो बच्चों की किताब देखने लगता है। किताब में फलों, जानवरों और अलग अलग चीजों की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिन्हें बच्चा बड़े ध्यान से देखता नजर आता है। उसकी मासूमियत और पढ़ाई में दिलचस्पी ने लोगों को काफी प्रभावित किया है। क्रिकेट के मैदान पर इस वक्त सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा है। मैदान पर उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने के बाद हर कोई दंग है। इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ वैभव के नाम की ही चर्चा हो रही है। उनकी तारीफ में जहां एक तरफ मजेदार मीम्स की बाढ़ सी आई हुई है, वहीं दूसरी ओर एक अनोखा वीडियो नेटिजन्स का ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो है वैभव सूर्यवंशी 40 का, जो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।
4: बचपन से भरा है इनमें खून, क्रिकेट खेले के खूब जुनून।
0: बच्चे की क्यूटनेस और फल वाले के सब्र ने पब्लिक का दिल जीत लिया है। वायरल क्लिप में दिख रहा है कि कियारा नाम की एक बच्ची कार की पिछली सीट पर बैठी है और लीची वाले भैया से बात कर रही है।
5: मेरी दादी तो लेकर आते हैं, उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते, तो हमारे पास ज्यादा ही नहीं पैसे हैं। हमारे कम पैसों में
6: दे देना पैसे।
5: हम अपने से आपके पैसे दे रहे हैं आपको।
0: लीची के दाम सुनकर बच्ची बड़े ही गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहती है, कार में बैठे हैं तो क्या अमीर हैं? वो इतने में नहीं रुकती बल्कि लीची वाले भैया से बार बार प्लीज कहकर दाम कम करने की जिद करती है। इस पूरी बातचीत के दौरान सबसे खूबसूरत बात ये थी कि फल विक्रेता बच्ची की बातों से परेशान होने की बजाय लगातार मुस्कुरा रहा था। उसने बेहद धैर्य और प्यार से बच्ची की बातें सुनी और इस क्यूट सी नोकझोंक का पूरा लुत्फ उठाया।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक आउटसाइड द एयरक्राफ्ट यू माइट कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर।
0: रात के अंधेरे में जमीन पर चमकती एक लंबी रोशनी की लाइन इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। ये कोई आम सा नजारा नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का ऐसा नजारा है जिसे एक विमान से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक इंडिगो पायलट ने उड़ान के दौरान अपने कैमरे में कैद किया। ऊंचाई से देखने पर दोनों देशों के बीच की सीमा किसी चमकती हुई पट्टी जैसी नजर आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था लेकिन बॉर्डर पर लगी तेज रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत
8: पर असर डालती है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
8: और अब बात उभरते हुए क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी की, जिसने आईपीएल के अपने दूसरे सीजन में ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी की। आज हर तरफ वैभव के तूफानी खेल की चर्चा हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक दिन पहले खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने महज 29 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए। इसके साथ ही वैभव ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। 15 साल के वैभव की बल्लेबाजी देखकर वर्ल्ड क्रिकेट में न सिर्फ हर कोई हैरान है बल्कि सचिन तेंदुलकर सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस युवा बल्लेबाज को जमकर सराहा।

0: 15 साल का ये लड़का आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वैभव सूर्यवंशी आज वो नाम बन चुका है जिसकी चर्चा वर्ल्ड क्रिकेट में हो रही है। हालांकि वैभव ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन आईपीएल के करियर में वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। 2026 के पूरे आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस कदर चला है कि मैदान के अंदर और बाहर सिर्फ वैभव की धुआंधार बैटिंग की ही चर्चा हो रही है। एक दिन पहले भी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने दमदार बल्लेबाजी से सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके मारे। वैभव की इस तूफानी पारी को देखने के बाद उनके गृह जिले बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने केक काटकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। साथ ही लोगों ने वैभव के मौजूदा प्रदर्शन की खूब तारीफ भी की। तारीफ करने वालों में उनके शुरुआती दिनों के कोच भी शामिल हैं।
1: जिस लहजे में अभी वैभव खेल रहे हैं उसकी तैयारी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट उस समय वैभव बच्चा था तो हमारा ऑब्जेक्टिव और उस समय का प्लानिंग स्टेट मैचेस के लिए था।
2: तो अभी वैभव ऐसी बल्लेबाजी करता था जैसे कल की रात?
1: बिल्कुल। आप मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं उस ओपन नेट सेशन के, जब वैभव बैटिंग कर रहा है उसके साथ सीनियर बच्चे बैटिंग कर रहे हैं जो उससे मिनिमम 5-6 साल 7 साल बड़े रहते थे। तो आप जब बैटिंग को देखेंगे तो वो सीनियर बच्चों से भी ज्यादा बेहतर अपने गेम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाता था।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि वो समस्तीपुर का ही नाम रोशन नहीं कर रहा है, बिहार का ही नहीं कर रहा, पूरे देश का कर रहा है, और एक दिन हम लोग उसको भारतीय टीम में खेलना देखना चाहते हैं। और जो लगता है, जो प्रतिभा है उसके प्रति, खेल के प्रति जो प्रतिभा वो दिखा रहा है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एक दिन भगवान की इच्छा रही वो भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर हम लोग का मान और सम्मान जो है और आगे बढ़ाएगा।
0: हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव भले ही सबसे तेज शतक लगा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने खेल से इस आईपीएल सीजन में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। वो अब तक इस सीजन में 65 छक्के लगा चुके हैं। इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल के 59 सिक्सेस के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये कि गेल ने 456 गेंदे खेलकर 59 छक्के लगाए थे, लेकिन वैभव सिर्फ 280 गेंदे खेलकर ही अब तक 65 छक्के मार चुके हैं। इतना ही नहीं, एक सीजन में 4 बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वैभव आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। वहीं वो आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज भी बन गए हैं। ये कुछ ऐसे आईपीएल रिकॉर्ड हैं जिसने क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों को भी वैभव की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर तक, क्रिस गेल से लेकर केविन पीटरसन तक, और सूर्य कुमार यादव से लेकर युवराज सिंह और सुरेश रैना तक, हर किसी ने सोशल मीडिया पर वैभव के खेल की खूब सराहना की, जिसके लिए वैभव ने इन दिग्गज क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा किया।
4: इतने सारे रिकॉर्ड्स वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किए हैं, जिसमें से सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही था जहां पर उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हों। क्रिस गेल 59 सिक्सेस उन्होंने लगाए थे, 65 वैभव सूर्यवंशी लगा चुके हैं। और क्रिस गेल ने यही बोला है उनके लिए कि जी जो 100 फास्टेस्ट 100 का जो रिकॉर्ड था वो भी आने वाले वक्त में हो जाएगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं 6 हिटिंग मशीन। इसके अलावा क्या कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं वैभव सूर्यवंशी ने वो मैं आपको बताऊंगी। जहां पर मोस्ट रन्स इन पावर प्ले, वो आते हैं पावर प्ले में ही गेम खत्म कर देते हैं, सामने वाली टीम देखती रह जाती है और पावर प्ले में वो रन्स उतने बना देते हैं। 490 रन्स पावर प्ले में उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन पावर प्ले, 8 छक्के वो जो है पावर प्ले में लगा चुके हैं। और मतलब आप देखेंगे कि किस तरीके से पावर प्ले में ही वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि ये मैच तो मैं ही अपनी टीम को जिताऊंगा। हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग, एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के जो है वो भी वैभव सूर्यवंशी ने ही लगाए हैं। उसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन आईपीएल नॉकआउट्स, आप जानते हैं नॉकआउट्स उनका प्रेशर ही अलग होता है, प्रेशर वहां पर नॉकआउट्स का सबसे ज्यादा होता है, और वहां पर आकर सबसे ज्यादा छक्के वैभव सूर्यवंशी ने लगाए हैं। 12 छक्के लगा चुके हैं, इससे पहले 10 छक्के वहां पर शुभमन गिल ने लगाए थे। इसके बाद में बात करूंगी मोस्ट रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर, सबसे ज्यादा रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर, अभी इंडिया के लिए खेले नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा रन उन्होंने लगा ली है 680 रन। इससे पहले उन्हीं के साथ ही जायसवाल, उनके थे 626 रन 2023 में, लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं वो अनकैप्ड प्लेयर।
0: एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान को मिली जीत में वैभव की भूमिका अहम रही। अब राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से 29 मई को है। इस मैच में जीतने वाली टीम आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में आरसीबी से 31 मई को सामना करेगी। यानी अभी दो चांस हैं जब वैभव अपने मौजूदा फॉर्म की बदौलत कुछ नया इतिहास रच सकते हैं। चंडीगढ़ से खुशी गुप्ता और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: 21 दिनों की कठिन एकांत साधना के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही बद्री विशाल मंदिर आए, उनकी एक झलक के लिए श्रद्धालुओं का यहां तांता लग गया। बुधवार से ही बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का वाचन शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो करने को मिलेंगे ही, और साथ ही कथा के साथ अपने 21 दिनों की एकांत साधना के संस्मरण भी सुनने को मिलेंगे।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है, वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम है तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय बद्रीनाथ।
4: पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया। ये पत्नी का धर्म है, छत्ता बना करके खड़ी हुई। नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे, जो भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है। आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है, ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे, रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है, तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की, वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमलनयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: बृहस्पति की कौन सी राशि नेतृत्व की क्षमता देती है? बृहस्पति की कौन सी राशि आपको बहुत अच्छा हीलर और डॉक्टर बना सकती है? बृहस्पति की कौन सी राशि बुध के लिए खराब है और शुक्र के लिए उत्तम है? कौन सी हैं बृहस्पति की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत।

रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभा में सराबोर। भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने भेंट किया 3,507 किलो केसर आम। 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा। आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ रही चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ। दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन। संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के शुभ समाचार की। इस बार गर्मियों ने मई के महीने में लोगों का कड़ा इम्तिहान ले लिया है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तप रहे हैं, तो उत्तर भारत में दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में देश को बेसब्री से इंतजार है तो मानसून की पहली बारिश का, उस राहत की फुहार का जो तपती धरती को सुकून दे पाए। हालांकि उससे पहले भी एक गुड न्यूज है कि आ रहा है वीकेंड कूल कूल रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के कारण आंधी, गरज चमक के साथ बारिश या हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के आसपास आज और कल बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो 45 डिग्री की गर्मी से कुछ राहत देंगी। अच्छी बात यह है कि कई इलाकों में इसका असर दिखने भी लगा है। अगर आप इस समय दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, यूपी या पंजाब के किसी भी शहर से हमें देख पा रहे हैं, तो अपनी खिड़की से झांकने पर आसमान में पसरा बादलों का डेरा आपके शहर में राहत की दस्तक देकर जरूर जाएगा।

0: गर्मी आएगी ये तो मालूम था, लेकिन अब की बार ऐसी और इतनी आ जाएगी ये नहीं सोचा था। नौतपा में सूरज दादागिरी पर उतरा है और गर्मी को मनमानी का मौका मिल गया है। जब से नौतपा शुरू हुआ पूरा उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो या फिर यूपी और पूरा दिल्ली NCR, तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। बुधवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। यूं समझिए अब की बार ऐसा गर्माया तपाया है मई के महीने ने कि अब राहत का इंतजार करते नहीं बन रहा, लेकिन इंतजार अब ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। बारिश से पहले मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी ने गर्मी के सताए लोगों पर राहत की बौछार कर दी है।
1: जो अभी हीटवेव कंडीशन चल रही है, जो अधिकतम तापमान जो कष्ट जो ज्यादा चल रहा है, अनुमान यही है कि 28 तारीख से जो इसमें गिरावट देखी जाएगी और उसके बाद 29-30-31 तक आप मान के लिए 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो हीटवेव सीवियर कंडीशन चल रही है अभी उसमें कल के बाद से जो है राहत मिल जाएगी।

0: कई इलाकों में बादल बारिश की सौगात लाने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है जो गर्मी से तपते जलते उत्तर भारत के लिए राहत की फुहारें लेकर आ रहा है।
1: अनुमान ये है कि एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो है उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए 28 तारीख के बाद से जो एक थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से तेज हवा के साथ साथ में जो है लाइटनिंग घटना, हवा गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है।
0: ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों से लेकर मैदानों तक का मौसम बदलने वाला है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और हीट वेव से कुछ दिनों के लिए निजात मिल जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है, क्योंकि तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
1: देखिए, अभी टेम्परेचर इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देश के 14-15 राज्यों में दिखाई देगा। इसी के चलते राजस्थान, MP, बिहार और UP में अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए बिहार के 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान में जयपुर सहित 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जब से मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है, लोग बेसब्री से मौसम के बदलने की राह देख रहे हैं। दरअसल पिछले 1 महीने से दिल्ली समेत पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में गर्मी सितम ढा रही है।
2: 28 मई को पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। सामान्य से तापमान जो है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे, जिससे लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है। हालांकि अभी तापमान जो है वो 45 डिग्री पार है। अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जाए तो वहां पर जो है मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार वहां पर जो उमस की स्थिति है, गर्मी की स्थिति है, वो बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर मैदानी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहे हैं, लोगों को चिलचिलाती गर्मी खासा दिक्कत दे रही है। तो इसी के साथ ही लोगों को राहत का भी इंतजार है कि मानसूनी बारिश जो है कब दस्तक देगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा इंतजार लोगों को करना पड़ सकता है।
0: हाल मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की तो गुरुवार की सुबह इसका असर कई जगहों पर नजर आने भी लगा। चंडीगढ़ में लोग सुबह सोकर उठे तो ठंडी हवाओं ने स्वागत किया, आसमान में बादल छाए दिखे और तापमान में आई गिरावट से लोगों की सुबह सुहानी हो गई।
3: चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। जो पारा 45-40 डिग्री था, अब देखिए कि किस तरीके से मौसम सुहावना हुआ है। चंडीगढ़ सुखना लेक पर इस समय सुबह के वक्त जो बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था, चहल पहल अब आपको लोगों की नजर आएगी। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ठंडी हवाएं बिल्कुल चल रही हैं, ठंडी हवा, और इससे पारे में गिरावट आई है और बादल छाए हैं इस समय। और ये पूरा मौसम का आलम उत्तर भारत में, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, तो इस तरीके का मौसम बदला हुआ है। और आप क्योंकि कल सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई थी फरीदकोट के अंदर, पंजाब में 46.1 डिग्री तापमान था और हरियाणा के रोहतक में 46.6 डिग्री टेम्परेचर था। और कल आपने यहीं पे तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आप देखिए दूर तक जहाँ आपको नजर जाएगी तो लोग किस तरीके से सुबह सैर सपाटे के लिए और सुबह की रूटीन और चहल पहल जो यहाँ पर रहती है, क्योंकि इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए लोग पहुँचते हैं। गर्मी से राहत है और चिलचिलाती गर्मी थी, चंडीगढ़ में बाहर नहीं निकला जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा था, लेकिन अब अगले 2-3 दिन हो सकता है मौसम विभाग का जैसा कहना है कि मौसम में राहत रहेगी, इस तरीके से ही गर्मी से लोगों को अब राहत रहेगी।
0: आपको बता दें कि दक्षिण और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में पहले से ही प्री मॉनसून बारिश का दौर जारी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 29 मई से 5 जून तक देश के 80-90% हिस्से में बारिश होगी।
1: अभी ये फिलहाल प्री मानसून बारिश है क्योंकि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, हीटिंग होती है, कई बार ट्रफ रेखा भी है, साइक्लोन सर्कुलेशन है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पर क्लाउड का सडन डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से तेज हवाएं और बारिश जो है देखने को मिलती है। तो आप जो भी ये जो बारिश का अभी स्थिति देख पा रहे हैं, जो वार्निंग इशू की गई है, वो सारी की सारी प्री मानसून वर्षा में आएगी।

0: मॉनसून से ठीक पहले की ये बारिश इसलिए भी अहम है क्योंकि मॉनसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग ने 26 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन यहां नमी कमजोर होने से मॉनसून आगे नहीं बढ़ पाया है। दरअसल लक्षद्वीप, केरल और मंगलुरु के 14 तय स्टेशंस में लगातार 2 दिन 2.5 mm बारिश होने पर ही मॉनसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है।
1: 14 rainfall monitoring stations in Lakshadweep, Kerala, and one station from Karnataka, that is Mangalore. So consecutively for 2 days, at least 60% of stations should report 2.5 millimeters of rainfall, and then the second day is declared as the onset of monsoon.

यानी फिलहाल मॉनसून थोड़ा सा इंतजार और करवाएगा, लेकिन तब तक गर्मी के सितम के बीच वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते होने वाली बारिश का फोरकास्ट कई राज्यों के लिए राहत की गुड न्यूज लेकर आया है।

0: अलीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मॉनसून का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, राहत की बारिश भी पहुंचने को है, लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही, गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी काफी जरूरी है। तो मई की विदाई और मॉनसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम का उत्सव चल रहा है। कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मॉनसून के इंतजार के बीच में गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इस बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अच्छी खासी रौनक पहाड़ों पर आपको नजर आएगी। कुल्लू मनाली में पर्यटक राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये सभी शहर की गर्मी से दूर पहाड़ों पर खूब इंजॉय भी कर रहे हैं।
2: रिवर राफ्टिंग करी है ब्यास रिवर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हरियाणा में तो अभी बहुत गर्मी है सोनीपत में, और यहाँ क्या राहत मिल रही है हमें, कितना अच्छा मौसम है, और अभी तो ठंडे ठंडे पानी में राफ्टिंग करी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
3: सो द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज सूटेबल फॉर अस, इट इज वेरी डिफरेंट एडवेंचर टूर फॉर अस।
1: तो मैदानों के मुसाफिर गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं, राहत का इंतजाम उनके लिए भी तो करना है। गर्मी को देखते हुए शहर शहर चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है।
4: तपती धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारे राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क में 4,000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गयी है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
5: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है, इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4,000 के आसपास है।
4: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खानपान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सरा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है ताकि लोग तेज गर्मी से बच सके। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो राहत की बारिश आने तक यूं ही गर्मी के विरुद्ध युद्ध तो जारी रखना है। वेदर हॉट है, सॉल्यूशन कूल होना चाहिए, तो देश के अलग अलग हिस्सों से गर्मी को मात देने के लिए कूल सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। चिड़ियाघरों में बेजुबानों के लिए कूलिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं, तो अस्पतालों में लोगों के लिए खास हीट स्ट्रोक रूम तैयार किए जा रहे हैं। बिजली विभाग भी शहर शहर खास एहतियात बरत रहा है। कई शहरों में मुसाफिरों को कड़ी धूप से बचाने के लिए सड़कों पर ग्रीन शेड्स लगाए जा रहे हैं। दरअसल दिन में गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कामकाजी लोगों को बाहर निकलना मजबूरी है। इस दौरान चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने पर सीधी धूप का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अयोध्या, लखनऊ समेत कई शहरों में चौराहे पर वाहन चालकों को भीषण गर्मी से चिलचिलाती धूप और हीट वेव से बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने ग्रीन नेट लगवाया है।
6: प्रदेश में गर्मी भीषण है, प्रचंड है, नौतपा का कहर है, लेकिन अब उससे बचने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा प्रदेश जब हीट वेव से जूझ रहा है तो आप मेरे चेहरे पर भी धूप देख रहे होंगे, लेकिन दो कदम जब मैं आगे लूंगा तो मेरे चेहरे की यह धूप भी छट जाएगी और मुझे थोड़ी राहत महसूस होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं, आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट दो मिनट की अगर है तो दो मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है, ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है। तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा, और इतना ही नहीं, इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इस पर स्प्रिंकल करेगा। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर काम किया है। अब आपको मैं दिखाऊं यहां पर इस चीज को देखें, एक वाटर टैंकर लगा गया है। इस वाटर टैंकर में एक ये मशीन है, पानी इसके जरिए ऊपर जाएगा और इन वाइट पाइप्स के जरिए, जो सफेद पाइप बने हुए हैं इनके जरिए ऊपर जाएगा, और ऊपर जो है वो जो छोटे छोटे आपको वाइट कलर के पाइप के बीच में दिख रहे हैं एक नल रूपी स्वरूप छोटे से, उनसे पानी की बौछार यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा। तो उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी का कहर है, जो गर्मी का प्रकोप है, जो यहाँ पर लोग रुकते हैं आकर, क्योंकि हजरतगंज है लखनऊ का, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है सुबह दोपहर शाम, गर्मी प्रचंड है, तो ऐसे में एक सहूलियत मिल सकती है।
1: तमाम एहतियातों के बीच ही 45 डिग्री के पार वाली इस गर्मी में डाइट का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं हेल्थ एक्सपर्ट से ही कि नौतपे की गर्मी में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है।
7: सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपके हाइड्रेशन पे ध्यान रखना, कि पानी रेगुलर हर 15-20 मिनट बाद पानी लेते रहें। उसके अलावा जो भी पानी के साथ में, केवल प्लेन वाटर ही जरूरी नहीं है, आप ORS भी ले सकते हैं, लेमन वाटर जो है वो सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी लेमन वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और उसके अलावा छाछ है, बटर मिल्क है, कोकम का शरबत है, जो इन दिनों सीजन की चीजें हैं, जैसे कि फालसे का रस है या प्याज का रस आप हाथों पैरों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब उससे रिलीफ मिले हीट से। उसके अलावा आम का पन्ना है, छाछ राबड़ी है जो कि हमारे राजस्थान का मेन खाना है, उसको आपको अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मैं लोगों को कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल लोगों का बिजी शेड्यूल हो गया है तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो नाश्ता जरूर करके निकलना चाहिए, बिना कुछ खाए हुए आप घर से नहीं निकले। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि ये जो हीट वेव का जो असर है वो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो हार्ट पेशेंट जो है, जिनका की ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, या डायबिटिक पेशेंट्स पे जिनका की ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये सीजन। तो उनको तो स्पेशली अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। कुछ चीजें आप घर से कैरी करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम बाहर का फ्रूट्स खाते हैं तो कई बार कटे होते हैं तो उनसे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो हमेशा फ्रेश पीने वाले पानी से इन फ्रूट्स को आप धोइए और फिर उनको आप साफ हाथों से काटे, और काटने के बाद आप फ्रेश फ्रेश ही खाएं, मतलब घर का बना हुआ भी खाना कभी भी बासे खाने को नहीं खाएं। ये ध्यान रखें कि जितना आपको खाना मतलब कंज्यूम होना है उतना ही आप बनाएं, बहुत ज्यादा नहीं। साथ में उसका जो टेम्परेचर है वो कोशिश कीजिए कि यदि आपके ऑफिस में रेफ्रिजरेटर है तो आप वहां पर उसको कर सकते हैं, मतलब कोई भी सब्जी या दाल खराब हो गई और वो आपने खाया तो आपका गट डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, इन दिनों में ये भी है कि जब आप घर से निकले तो हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहन के निकले, और 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम यदि आप अवॉइड करें तो वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस समय जो आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है 12 से 4।
1: तो तैयार हो जाइए क्योंकि गर्मी से आप सबको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है और कूल कूल पैगाम आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छे खबरों के लिए देखते रहिए चीज़।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: 21 दिनों की कठिन नेकांत साधना के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही बद्री विशाल मंदिर आए, उनकी एक झलक के लिए श्रद्धालुओं का यहां तांता लग गया। बुधवार से ही बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का वाचन शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो करने को मिलेंगे ही, और साथ ही कथा के साथ अपने 21 दिनों की एकांत साधना के संस्मरण भी सुनने को मिलेंगे।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है, वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम है तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय पातेरी की साला लगा।
4: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया। ये पत्नी का धर्म है, छत्ता बना करके खड़ी हुई। नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे, जब भगवान के नेत्र खुले भगवान ने कहा देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है। आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है, ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है, तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
7: Thank God I get to wait.
6: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC. Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
9: बृहस्पति की कौन सी राशि नेतृत्व की क्षमता देती है? बृहस्पति की कौन सी राशि आपको बहुत अच्छा हीलर और डॉक्टर बना सकती है, बहुत अच्छा हीलर और डॉक्टर बना सकती है। पति कौन सी राशि बुध के लिए खराब है और शुक्र के क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी ना
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने भेंट किया 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ाई चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे के साथ शेयर की जाती हैं और बिजली की रफ्तार के साथ फैलाई जाती है। किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर बता दिया जाता है, तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। तो ऐसे में हम सच और झूठ के पीछे की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात हम करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि असम के एक मस्जिद के अंदर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सच्चाई क्या है, आगे करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
10: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
12: देशभर में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP काफी चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स के मामले में इसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज के दूसरे मुद्दे उठाए जाएंगे। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले को दबोचे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक आदमी उस पुलिस वाले की जेब से नोटों की गड्डियां निकालता है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रभाव और जागरूकता के चलते इस रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, 30,000 की रिश्वत लेते हुए दरोगा को धर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में सड़े गले सिस्टम की सफाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 30,000 की रिश्वत लेने वाले दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
10: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में पुलिस वालों को कुछ लोगों को गिरफ्त में देखा जा रहा है। एक शख्स को उनकी जेब से रुपए निकालते हुए भी देखा जा रहा है और फिर उसे गिनते हुए भी देखा जा सकता है। इस दौरान पुलिस वाला ये कह रहा है कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, पीछे से आवाज आती है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसे देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वीडियो घूसखोरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन बाद में फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और छत्तीसगढ़ की लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन मई महीने में हमें ऐसा कोई भी वीडियो या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई को बनाई गई थी और ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज में उनके मुद्दे उठाए जाएंगे। तो ऐसे में हमें मामला पुराना लगा, लिहाजा वायरल वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ का है तो ये घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं वीडियो को जानबूझकर एक नया एंगल

0: होता है कि वीडियो घूसखोरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन बाद में फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और छत्तीसगढ़ की लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन मई महीने में हमें ऐसा कोई भी वीडियो या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई को बनाई गई थी और ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज में उनके मुद्दे उठाए जाएंगे। तो ऐसे में हमें मामला पुराना लगा, लिहाजा वायरल वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ का है तो ये घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं वीडियो को जानबूझकर एक नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है देखिए।
1: छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब्दुल मुनाफ नाम के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था। सर्च के दौरान हमें इससे संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स भी मिली। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का है। अंबिकापुर के ग्राम पोड़ी के रहने वाले किसान सत्येंद्र प्रजापति ने एसीबी में जाकर शिकायत की थी कि एसआई अब्दुल ने उन्हें एक मर्डर केस में फंसाने की धमकी दी थी और इससे बचाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने एसआई अब्दुल मुनाफ को पैसे के साथ पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज किया। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि ये वीडियो फरवरी का है जब छत्तीसगढ़ में एसीबी ने एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को पोस्ट करने वाले यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि असम की एक मस्जिद से हथियार बरामद हुए हैं। लेकिन जब हमने वायरल हो रहे वीडियो का फैक्ट चेक किया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा रखा हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपा कर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड और खतरनाक हथियार शामिल है। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा कि असम की एक मस्जिद से हथियारों का जखीरा बरामद। वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा देखने को मिल रहा है, आसपास जवानों को भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को उसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपाकर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड खतरनाक हथियार शामिल है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तहकीकात की। इससे पहले सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये असमिया नहीं लगा। आप भी सुनिए। अगर वीडियो असम से जुड़ा हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि सुनने में असमिया भाषा ही मिलती। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: यहाँ इस वीडियो को 21 मई को शेयर किया गया था। वीडियो को शेयर करके बताया गया था कि लामशांग इलाके में लूटे गए हथियार और गोला बारूद बेचने के बारे में मिली एक जानकारी के आधार पर मणिपुर पुलिस ने 20 मई 2026 को लामशांग पुलिस स्टेशन के तहत लामदेंग में एक विशेष अभियान चलाया। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर इससे जुड़ी रिपोर्ट देखने को मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स और सीआरपीएफ के साथ मिलकर उग्रवाद विरोधी बड़े अभियानों में 67 हथियार बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में 27 AK सीरीज की राइफलें, 11 US निर्मित राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक शामिल हैं। इम्फाल पश्चिम में चलाए गए अभियानों के दौरान यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पामबेई गुट के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने नामशांग इलाके में अवैध हथियारों की बिक्री को निशाना बनाते हुए एक अभियान शुरू किया। उग्रवादियों के साथियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी किए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी हुई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो असम की मस्जिद का नहीं बल्कि मणिपुर का है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। रश्मि गुप्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
0: ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें एक छोटा बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार नजर आता है। आमतौर पर छोटे बच्चे टीवी पर कार्टून देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजारा कुछ अलग दिखाई देता है। वीडियो में घर का माहौल नजर आता है, जहां एक बच्चा आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। वहीं दूसरा छोटा बच्चा कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे छोटा बच्चा टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, वो चुपचाप सोफे और दीवार के बीच बची छोटी सी जगह में जाकर बैठ जाता है। वहाँ बैठकर वो बच्चों की किताब देखने लगता है। किताब में फलों, जानवरों और अलग अलग चीजों की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिन्हें बच्चा बड़े ध्यान से देखता नजर आता है। उसकी मासूमियत और पढ़ाई में दिलचस्पी ने लोगों को काफी प्रभावित किया है। क्रिकेट के मैदान पर इस वक्त सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा है। मैदान पर उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने के बाद हर कोई दंग है। इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ वैभव के नाम की ही चर्चा हो रही है। उनकी तारीफ में जहां एक तरफ मजेदार मीम्स की बाढ़ सी आई हुई है, वहीं दूसरी ओर एक अनोखा वीडियो नेटिजन्स का ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो है वैभव सूर्यवंशी 40 का, जो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।
5: बचपन से भरा है इनमें गोन, क्रिकेट खेले के खूब जनून।
6: ना इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बहुत ज्यादा पैसे, थोड़ी लंबी तो होते पैसे।
0: बच्चे की क्यूटनेस और फल वाले के सब्र ने पब्लिक का दिल जीत लिया है। वायरल क्लिप में दिख रहा है कि कियारा नाम की एक बच्ची कार की पिछली सीट पर बैठी है और लीची वाले भैया से बात कर रही है।
6: मेरी दादी तो लेकर आते हैं, उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते, क्योंकि हमारे पास ज्यादा ही नहीं पैसे हैं। दे दो, थोड़े कम पैसे हो गए।
7: दे देना पैसे।
6: हम मिस आपके पैसे दे रहे हैं आपको।
0: लीची के दाम सुनकर बच्ची बड़े ही गंभीर एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, कार में बैठे हैं तो क्या अमीर हैं? वो इतने में नहीं रुकती बल्कि लीची वाले भैया से बार बार प्लीज कहकर दाम कम करने की जिद करती है। इस पूरी बातचीत के दौरान सबसे खूबसूरत बात ये थी कि फल विक्रेता बच्ची की बातों से परेशान होने की बजाय लगातार मुस्कुरा रहा था। उसने बेहद धैर्य और प्यार से बच्ची की बातें सुनी और इस क्यूट सी नोकझोंक का पूरा लुत्फ उठाया।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक आउटसाइड द एयरक्राफ्ट यू माइट कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर।
0: रात के अंधेरे में जमीन पर चमकती एक लंबी रोशनी की लाइन इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। ये कोई आम सा नजारा नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का ऐसा नजारा है जिसे एक विमान से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक इंडिगो पायलट ने उड़ान के दौरान अपने कैमरे में कैद किया। ऊंचाई से देखने पर दोनों देशों के बीच की सीमा किसी चमकती हुई पट्टी जैसी नजर आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था लेकिन बॉर्डर पर लगी तेज रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
9: और अब बात उभरते हुए क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी की, जिसने आईपीएल के अपने दूसरे सीजन में ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी की। आज हर तरफ वैभव के तूफानी खेल की चर्चा हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक दिन पहले खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने महज 29 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए। इसके साथ ही वैभव ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। 15 साल के वैभव की बल्लेबाजी देखकर वर्ल्ड क्रिकेट में न सिर्फ हर कोई हैरान है बल्कि सचिन तेंदुलकर सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस युवा बल्लेबाज को जमकर सराहा।

चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें मणिपुर पुलिस के एक्स अकाउंट पर देखने को मिला।

0: 15 साल का ये लड़का आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वैभव सूर्यवंशी आज वो नाम बन चुका है जिसकी चर्चा वर्ल्ड क्रिकेट में हो रही है। हालांकि वैभव ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन आईपीएल के करियर में वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। 2026 के पूरे आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस कदर चला है कि मैदान के अंदर और बाहर सिर्फ वैभव की धुआंधार बैटिंग की ही चर्चा हो रही है। एक दिन पहले भी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने दमदार बल्लेबाजी से सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके मारे। वैभव की इस तूफानी पारी को देखने के बाद उनके गृह जिले बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने केक काटकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। साथ ही लोगों ने वैभव के मौजूदा प्रदर्शन की खूब तारीफ भी की। तारीफ करने वालों में उनके शुरुआती दिनों के कोच भी शामिल हैं।
1: जिस लहजे में अभी वैभव खेल रहे हैं, उसकी तैयारी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट उस समय वैभव बच्चा था, तो हमारा ऑब्जेक्टिव और उस समय का प्लानिंग स्टेट मैचेस के लिए था।
2: तब भी वैभव ऐसी बल्लेबाजी करता था जैसा कल की रात?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं उस ओपन नेट सेशन के, जब वैभव बैटिंग कर रहा है, उसके साथ सीनियर बच्चे बैटिंग कर रहे हैं जो उससे मिनिमम 5-6 साल 7 साल बड़े रहते थे। तो आप जब बैटिंग को देखेंगे तो वो सीनियर बच्चों से भी ज्यादा बेहतर अपने गेम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाता था।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि वो समस्तीपुर का ही नाम रोशन नहीं कर रहा, बिहार का ही नहीं कर रहा, पूरे देश का कर रहा है, और एक दिन हम लोग उसको भारतीय टीम में खेलना देखना चाहते हैं। और जो लगता है, जो प्रतिभा है उसके प्रति, खेल के प्रति जो प्रतिभा वो दिखा रहा है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एक दिन भगवान की इच्छा रही वो भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर हम लोग का मान और सम्मान जो है और आगे बढ़ाएगा।
0: हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव भले ही सबसे तेज शतक लगा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने खेल से इस आईपीएल सीजन में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। वो अब तक इस सीजन में 65 छक्के लगा चुके हैं। इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल के 59 सिक्सेस के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये कि गेल ने 456 गेंदे खेलकर 59 छक्के लगाए थे, लेकिन वैभव सिर्फ 280 गेंदे खेलकर ही अब तक 65 छक्के मार चुके हैं। इतना ही नहीं, एक सीजन में 4 बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वैभव आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। वहीं वो आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज भी बन गए हैं। ये कुछ ऐसे आईपीएल रिकॉर्ड हैं जिसने क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों को भी वैभव की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर तक, क्रिस गेल से लेकर केविन पीटरसन तक, और सूर्य कुमार यादव से लेकर युवराज सिंह और सुरेश रैना तक, हर किसी ने सोशल मीडिया पर वैभव के खेल की खूब सराहना की, जिसके लिए वैभव ने इन दिग्गज क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा किया।
4: इतने सारे रिकॉर्ड्स वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किए हैं, जिसमें से सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही था जहां पर उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हों। क्रिस गेल 59 सिक्सेस उन्होंने लगाए थे, 65 वैभव सूर्यवंशी लगा चुके हैं। और क्रिस गेल ने यही बोला है उनके लिए कि जी जो 100 फास्टेस्ट 100 का जो रिकॉर्ड था वो भी आने वाले वक्त में हो जाएगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं 6 हिटिंग मशीन। इसके अलावा क्या कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं वैभव सूर्यवंशी ने वो मैं आपको बताऊंगी। जहां पर मोस्ट रन्स इन पावर प्ले, वो आते हैं पावर प्ले में ही गेम खत्म कर देते हैं, सामने वाली टीम देखती रह जाती है और पावर प्ले में वो रन उतने बना देते हैं। 490 रन पावर प्ले में उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन पावर प्ले, 8 छक्के वो जो है पावर प्ले में लगा चुके हैं। और मतलब आप देखेंगे कि किस तरीके से पावर प्ले में ही वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि ये मैच तो मैं ही अपनी टीम को जिताऊंगा। हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग, एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के जो है वो भी वैभव सूर्यवंशी ने ही लगाए हैं। उसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन आईपीएल नॉकआउट्स, आप जानते हैं नॉकआउट्स उनका प्रेशर ही अलग होता है, प्रेशर वहां पर नॉकआउट्स का सबसे ज्यादा होता है, और वहां पर आकर सबसे ज्यादा छक्के वैभव सूर्यवंशी ने लगाए हैं। 12 छक्के लगा चुके हैं, इससे पहले 10 छक्के वहां पर शुभमन गिल ने लगाए थे। इसके बाद में बात करूंगी मोस्ट रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर, सबसे ज्यादा रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर। अभी इंडिया के लिए खेले नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा रन्स उन्होंने लगा ली है 680 रन्स। इससे पहले उन्हीं के साथ ही जयसवाल, उनके थे 626 रन 2023 में, लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं वो अनकैप्ड प्लेयर।
0: एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान को मिली जीत में वैभव की भूमिका अहम रही। अब राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से 29 मई को है। इस मैच में जीतने वाली टीम आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में आरसीबी से 31 मई को सामना करेगी। यानी अभी दो चांस हैं जब वैभव अपने मौजूदा फॉर्म की बदौलत कुछ नया इतिहास रच सकते हैं। चंडीगढ़ से खुशी गुप्ता और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: 21 दिनों की कठिन एकांत साधना के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही बद्री विशाल मंदिर आए, उनकी एक झलक के लिए श्रद्धालुओं का यहां तांता लग गया। बुधवार से ही बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का वाचन शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो करने को मिलेंगे ही, और साथ ही कथा के साथ अपने 21 दिनों के एकांत साधना के संस्मरण भी सुनने को मिलेंगे।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम है तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय पातेरी
4: लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई। भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया, ये पत्नी का धर्म है। छत्ता बना करके खड़ी हुई, नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले भगवान ने कहा देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो। संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी। स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती। आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है। आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा। और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है। तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने भेंट किया 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर।

19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के शुभ समाचार की। इस बार गर्मियों ने मई के महीने में लोगों का कड़ा इम्तिहान ले लिया है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तप रहे हैं, तो उत्तर भारत में दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में देश को बेसब्री से इंतजार है तो मानसून की पहली बारिश का, उस राहत की फुहार का जो तपती धरती को सुकून दे पाए। हालांकि उससे पहले भी एक गुड न्यूज है कि आ रहा है वीकेंड, कूल रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के कारण आंधी, गरज चमक के साथ बारिश या हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के आसपास आज और कल बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो 45 डिग्री की गर्मी से कुछ राहत देंगी। अच्छी बात यह है कि कई इलाकों में इसका असर दिखने भी लगा है। अगर आप इस समय दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, यूपी या पंजाब के किसी भी शहर से हमें देख पा रहे हैं, तो अपनी खिड़की से झांकने पर आसमान में पसरा बादलों का डेरा आपके शहर में राहत की दस्तक देकर जरूर जाएगा।

0: गर्मी आएगी ये तो मालूम था, लेकिन अब की बार ऐसी और इतनी आ जाएगी ये नहीं सोचा था। नौतपा में सूरज दादागिरी पर उतरा है और गर्मी को मनमानी का मौका मिल गया है। जब से नौतपा शुरू हुआ पूरा उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो या फिर यूपी और पूरा दिल्ली NCR, तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। बुधवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। यूं समझिए अब की बार ऐसा गर्माया तपाया है मई के महीने ने कि अब राहत का इंतजार करते नहीं बन रहा, लेकिन इंतजार अब ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। बारिश से पहले मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी ने गर्मी के सताए लोगों पर राहत की बौछार कर दी है।
1: जो अभी हीटवेव कंडीशन चल रही है, जो अधिकतम तापमान जो का स्तर जो ज्यादा चल रहा है, अनुमान यही है कि 28 तारीख से जो इसमें गिरावट देखी जाएगी और उसके बाद 29, 30, 31 तक आप मान के लिए 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो हीटवेव सीवेव कंडीशन चल रही है अभी उसमें कल के बाद से जो है राहत मिल जाएगी।

0: मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम पलटने वाला है। देश के कई इलाकों में बादल बारिश की सौगात लाने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है जो गर्मी से तपते जलते उत्तर भारत के लिए राहत की फुहारें लेकर आ रहा है।
1: अनुमान ये है कि एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो है उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए 28 तारीख के बाद से जो एक थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से तेज हवा के साथ साथ में जो है लाइटनिंग घटना, हवा गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है।

0: ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहाड़ों से लेकर मैदानों तक का मौसम बदलने वाला है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और हीट वेव से कुछ दिनों के लिए निजात मिल जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है, क्योंकि तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
1: देखिए, अभी टेम्परेचर जब इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर में पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देश के 14-15 राज्यों में दिखाई देगा। इसी के चलते राजस्थान, MP, बिहार और UP में अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए बिहार के 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान में जयपुर सहित 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जब से मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है, लोग बेसब्री से मौसम के बदलने की राह देख रहे हैं। दरअसल पिछले 1 महीने से दिल्ली समेत पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में गर्मी सितम ढा रही है।
2: 28 मई को पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। सामान्य से तापमान जो है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे, जिससे लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है। हालांकि अभी तापमान जो है वो 45 डिग्री पार है। अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जाए तो वहां पर जो है मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार वहां पर जो उमस की स्थिति है, गर्मी की स्थिति है, वो बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर मैदानी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहे हैं, लोगों को चिलचिलाती गर्मी खासा दिक्कत दे रही है। तो इसी के साथ ही लोगों को राहत का भी इंतजार है कि मानसूनी बारिश जो है कब दस्तक देगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा इंतजार लोगों को करना पड़ सकता है।
0: बहरहाल मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की तो गुरुवार की सुबह इसका असर कई जगहों पर नजर आने भी लगा। चंडीगढ़ में लोग सुबह सोकर उठे तो ठंडी हवाओं ने स्वागत किया, आसमान में बादल छाए दिखे और तापमान में आई गिरावट से लोगों की सुबह सुहानी हो गई।
3: चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। जो पारा 45-40 डिग्री था, अब देखिए कि किस तरीके से मौसम सुहावना हुआ है। चंडीगढ़ सुखना लेक पर इस समय सुबह के वक्त जो बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था, चहल पहल अब आपको लोगों की नजर आएगी। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ठंडी हवाएं बिल्कुल चल रही हैं, ठंडी हवा, और इससे पारे में गिरावट आई है और बादल छाए हैं इस समय। और ये पूरा मौसम का आलम उत्तर भारत में, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, तो इस तरीके का मौसम बदला हुआ है। और क्योंकि कल सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई थी फरीदकोट के अंदर, पंजाब में 46.1 डिग्री तापमान था और हरियाणा के रोहतक में 46.6 डिग्री टेम्परेचर था। और कल आपने यहीं पे तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आप देखिए दूर तक जहां आपको नजर जाएगी तो लोग किस तरीके से सुबह सैर सपाटे के लिए और सुबह की रूटीन और चहल पहल जो यहां पर रहती है, क्योंकि इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। गर्मी से राहत है और चिलचिलाती गर्मी थी, चंडीगढ़ में बाहर नहीं निकला जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा था, लेकिन अब अगले 2-3 दिन हो सकता है मौसम विभाग का जैसा कहना है कि मौसम में राहत रहेगी, इस तरीके से ही गर्मी से लोगों को अब राहत रहेगी।
0: आपको बता दें कि दक्षिण और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में पहले से ही प्री मॉनसून बारिश का दौर जारी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 29 मई से 5 जून तक देश के 80-90% हिस्से में बारिश होगी।
1: अभी ये फिलहाल प्री मानसून बारिश है, क्योंकि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, हीटिंग होती है, कई बार ट्रफ रेखा भी है, सर्कुलर सर्कुलेशन है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पर क्लाउड का सडन डेवलपमेंट होता है, जिस वजह से तेज हवाएं और बारिश जो है देखने को मिलती है। तो आप जो भी ये जो बारिश का अभी स्थिति देख पा रहे हैं, जो वार्निंग इशू की गई है, वो सारी की सारी प्री मानसून वर्षा में आएगी।

0: मॉनसून से ठीक पहले की ये बारिश इसलिए भी अहम है क्योंकि मॉनसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग ने 26 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन यहां नमी कमजोर होने से मॉनसून आगे नहीं बढ़ पाया है। दरअसल लक्षद्वीप, केरल और मंगलुरु के 14 तय स्टेशन में लगातार दो दिन 2.5 mm बारिश होने पर ही मॉनसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है।
1: 14 रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस इन लक्षद्वीप केरला एंड वन स्टेशन फ्रॉम कर्नाटका दैट इज मैंगलोर। सो कंसेक्यूटिवली फॉर टू डेज एटलीस्ट 60% ऑफ स्टेशन शुड रिपोर्ट 2.5 millimeters of rainfall, and then the second day is declared as the onset of monsoon.

यानी फिलहाल मॉनसून थोड़ा सा इंतजार और करवाएगा, लेकिन तब तक गर्मी के सितम के बीच वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते होने वाली बारिश का फोरकास्ट कई राज्यों के लिए राहत की गुड न्यूज लेकर आया है।

0: चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: मॉनसून का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, राहत की बारिश भी पहुंचने को है, लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही। गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी काफी जरूरी है। तो मई की विदाई और मॉनसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम का उत्सव चल रहा है। कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मॉनसून के इंतजार के बीच में गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इस बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अच्छी खासी रौनक पहाड़ों पर आपको नजर आएगी। कुल्लू मनाली में पर्यटक राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये सभी शहर की गर्मी से दूर पहाड़ों पर खूब इंजॉय भी कर रहे हैं।
2: रिवर राफ्टिंग करी है ब्यास रिवर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हरियाणा में तो अभी बहुत गर्मी है सोनीपत में, और यहाँ क्या राहत मिल रही है हमें, कितना अच्छा मौसम है, और अभी तो ठंडे ठंडे पानी में राफ्टिंग करी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
3: सो द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज सूटेबल फॉर अस, इट इज वेरी डिफरेंट एडवेंचर टूर फॉर अस।
1: तो मैदानों के मुसाफिर गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं राहत का इंतजाम उनके लिए भी तो करना है। गर्मी को देखते हुए शहर शहर चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है।
4: तपती धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारें राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क में 4,000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
5: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है, इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4,000 के आसपास है।
4: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खान पान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सरा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है ताकि लोग तेज गर्मी से बच सकें। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो राहत की बारिश आने तक यूं ही गर्मी के विरुद्ध युद्ध तो जारी रखना है। वेदर हॉट है, सॉल्यूशन कूल होना चाहिए, तो देश के अलग अलग हिस्सों से गर्मी को मात देने के लिए कूल सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। चिड़ियाघरों में बेजुबानों के लिए कूलिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं, तो अस्पतालों में लोगों के लिए खास हीट स्ट्रोक रूम तैयार किए जा रहे हैं। बिजली विभाग भी शहर शहर खास एहतियात बरत रहा है। कई शहरों में मुसाफिरों को कड़ी धूप से बचाने के लिए सड़कों पर ग्रीन शेड्स लगाए जा रहे हैं। दरअसल दिन में गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कामकाजी लोगों को बाहर निकलना मजबूरी है। इस दौरान चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने पर सीधी धूप का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अयोध्या, लखनऊ समेत कई शहरों में चौराहे पर वाहन चालकों को भीषण गर्मी से चिलचिलाती धूप और हीट वेव से बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने ग्रीन नेट लगवाया है।
6: प्रदेश में गर्मी भीषण है, प्रचंड है, नौतपा का कहर है, लेकिन अब उससे बचने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा प्रदेश जब हीट वेव से जूझ रहा है तो आप मेरे चेहरे पर भी धूप देख रहे होंगे, लेकिन दो कदम जब मैं आगे लूंगा तो मेरे चेहरे की यह धूप भी छट जाएगी और मुझे थोड़ी राहत महसूस होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं, आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट 2 मिनट की अगर है तो 2 मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है, ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है। तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा और इतना ही नहीं, इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इस पे स्प्रिंकल करेगा। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर काम किया है। अब आपको मैं दिखाऊं यहां पर इस चीज को देखें, एक वाटर टैंकर लगा गया है। इस वाटर टैंकर में एक ये मशीन है, पानी इसके जरिए ऊपर जाएगा और इन व्हाइट पाइप्स के जरिए जो सफेद पाइप बने हुए हैं इनके जरिए ऊपर जाएगा। और ऊपर जो है वो जो छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के पाइप के बीच में दिख रहे हैं एक नल रूपी स्वरूप छोटे से, उनसे पानी की बौछार यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा। तो उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी का कहर है, जो गर्मी का प्रकोप है, जो यहाँ पर लोग रुकते हैं आकर, क्योंकि हजरतगंज है लखनऊ का, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है सुबह दोपहर शाम, गर्मी प्रचंड है, तो ऐसे में एक सहूलियत मिल सकती है।
1: तमाम एहतियातों के बीच ही 45 डिग्री के पार वाली इस गर्मी में डाइट का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं हेल्थ एक्सपर्ट से ही कि नौतपे की गर्मी में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है।
7: सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपके हाइड्रेशन पे ध्यान रखना कि पानी रेगुलर हर 15-20 मिनट बाद पानी लेते रहें। उसके अलावा जो भी पानी के साथ में, केवल प्लेन वाटर ही जरूरी नहीं है, आप ORS भी ले सकते हैं, लेमन वाटर जो है वो सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी लेमन वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और उसके अलावा छाछ है, बटर मिल्क है, कोकम का शरबत है, जो इन दिनों सीजन की चीजें हैं, जैसे कि फालसे का रस है या प्याज का रस आप हाथों पैरों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब उससे रिलीफ मिले हीट से। उसके अलावा आम का पन्ना है, छाछ राबड़ी है जो कि हमारे राजस्थान का मेन खाना है, उसको आपको अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मैं लोगों को कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल लोगों का बिजी शेड्यूल हो गया है तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो नाश्ता जरूर करके निकलना चाहिए, बिना कुछ खाए हुए आप घर से नहीं निकले। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि ये जो हीट वेव का जो असर है वो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो हार्ट पेशेंट जो है जिनका की ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, या डायबिटिक पेशेंट्स पे जिनका की ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये सीजन। तो उनको तो स्पेशली अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। कुछ चीजें आप घर से कैरी करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम बाहर का फ्रूट्स खाते हैं तो कई बार कटे होते हैं तो उनसे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हमेशा फ्रेश पीने वाले पानी से फ्रूट्स को आप धोइए और फिर उनको आप साफ हाथों से काटे, और काटने के बाद आप फ्रेश फ्रेश ही खाएं, मतलब घर का बना हुआ भी खाना कभी भी बासे खाने को नहीं खाएं। ये ध्यान रखें कि जितना आपको खाना मतलब कंज्यूम होना है उतना ही आप बनाएं, बहुत ज्यादा नहीं। साथ में उसका जो टेम्परेचर है वो कोशिश कीजिए कि यदि आपके ऑफिस में रेफ्रिजरेटर है तो आप वहां पर उसको कर सकते हैं, मतलब कोई भी सब्जी या दाल खराब हो गई है वो आपने खाया तो आपका गट डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, इन दिनों में ये भी है कि जब आप घर से निकले तो हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहन के निकले, और 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम यदि आप अवॉइड करें तो वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस समय जो आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है 12 से 4।
1: तो तैयार हो जाइए क्योंकि गर्मी से आप सबको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है और कूल कूल पैगाम आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छे खबरों के लिए देखते रहिए चीज।

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: 21 दिनों की कठिन नेकांत साधना के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही बद्री विशाल मंदिर आए, उनकी एक झलक के लिए श्रद्धालुओं का यहां तांता लग गया। बुधवार से ही बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का वाचन शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो करने को मिलेंगे ही, और साथ ही कथा के साथ अपने 21 दिनों के एकांत साधना के संस्मरण भी सुनने को मिलेंगे।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाटचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है, वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम है तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय पादरी साला
4: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया, ये पत्नी का धर्म है। छत्ता बना करके खड़ी हुई, नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है, आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है, ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं, साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है, तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की, वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: बृहस्पति की कौन सी राशि नेतृत्व की क्षमता देती है? बृहस्पति की कौन सी राशि आपको बहुत अच्छा हीलर और डॉक्टर बना सकती है? बृहस्पति की कौन सी राशि बुध के लिए खराब है और शुक्र के लिए उत्तम है? कौन सी हैं बृहस्पति की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने भेंट किया 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ रही चार धाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
9: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे के साथ शेयर की जाती हैं और बिजली की रफ्तार के साथ फैलाई जाती है। किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर बता दिया जाता है, तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। तो ऐसे में हम सच और झूठ के पीछे की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात हम करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि असम के एक मस्जिद के अंदर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सच्चाई क्या है, आगे करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
9: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
10: देशभर में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP काफी चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स के मामले में इसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज के दूसरे मुद्दे उठाए जाएंगे। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले को दबोचे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक आदमी उस पुलिस वाले की जेब से नोटों की गड्डियां निकालता है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रभाव और जागरूकता के चलते इस रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, 30,000 की रिश्वत लेते हुए दरोगा को धर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में सड़े गले सिस्टम की सफाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 30,000 की रिश्वत लेने वाले दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
9: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में पुलिस वालों को कुछ लोगों को गिरफ्त में देखा जा रहा है। एक शख्स को उनकी जेब से रुपए निकालते हुए भी देखा जा रहा है और फिर उसे गिनते हुए भी देखा जा सकता है। इस दौरान पुलिस वाला ये कह रहा है कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, पीछे से आवाज आती है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसे देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वीडियो घूसखोरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन बाद में फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और छत्तीसगढ़ की लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला। लेकिन मई महीने में हमें ऐसा कोई भी वीडियो या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई को बनाई गई थी और ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज में उनके मुद्दे उठाए जाएंगे। तो ऐसे में हमें मामला पुराना लगा, लिहाजा वायरल वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ का है तो ये घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं वीडियो को जानबूझकर एक नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है देखिए।
10: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकालकर उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें ये 26 फरवरी के एक्सपोस्ट में मिला। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि इस घटना का कॉकरोच जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पार्टी हाल ही में 16 मई को बनाई गई थी और ये घटना इससे पहले की है। पोस्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब्दुल मुनाफ नाम के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था। सर्च के दौरान हमें इससे संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स भी मिली। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का है। अंबिकापुर के ग्राम कोड़ी के रहने वाले किसान सत्येंद्र प्रजापति ने एसीबी में जाकर शिकायत की थी कि एसआई अब्दुल ने उन्हें एक मर्डर केस में फंसाने की धमकी दी थी और इससे बचाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने एसआई अब्दुल मुनाफ को पैसे के साथ पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज किया। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि ये वीडियो फरवरी का है जब छत्तीसगढ़ में एसीबी ने एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
9: सोशल मीडिया पर भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को पोस्ट करने वाले यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि असम की एक मस्जिद से हथियार बरामद हुए हैं। लेकिन जब हमने वायरल हो रहे वीडियो का फैक्ट चेक किया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा रखा हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपा कर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड और खतरनाक हथियार शामिल हैं। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा कि असम की एक मस्जिद से हथियारों का जखीरा बरामद। वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा देखने को मिल रहा है। आसपास जवानों को भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को उसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपाकर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड खतरनाक हथियार शामिल है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तहकीकात की। इससे पहले सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये असमिया नहीं लगा। आप भी सुनिए। अगर वीडियो असम से जुड़ा हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि सुनने में असमिया भाषा ही मिलती। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें ये मणिपुर पुलिस के एक्स अकाउंट पर देखने को मिला। यहाँ इस वीडियो को 21 मई को शेयर किया गया था। वीडियो को शेयर करके बताया गया था कि लामशांग इलाके में लूटे गए हथियार और गोला बारूद बेचने के बारे में मिली एक जानकारी के आधार पर मणिपुर पुलिस ने 20 मई 2026 को लामशांग पुलिस स्टेशन के तहत लामदेंग में एक विशेष अभियान चलाया। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर इससे जुड़ी रिपोर्ट देखने को मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स और सीआरपीएफ के साथ मिलकर उग्रवाद विरोधी बड़े अभियानों में 67 हथियार बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में 27 AK सीरीज की राइफलें, 11 US निर्मित राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक शामिल हैं। इम्फाल पश्चिम में चलाए गए अभियानों के दौरान यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पामबेई गुट के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने नामशांग इलाके में अवैध हथियारों की बिक्री को निशाना बनाते हुए एक अभियान शुरू किया। उग्रवादियों के साथियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी किए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी हुई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो असम की मस्जिद का नहीं बल्कि मणिपुर का है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। रश्मि गुप्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोज जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: Good news today. Achhi khabar.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
0: ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें एक छोटा बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार नजर आता है। आमतौर पर छोटे बच्चे टीवी पर कार्टून देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजारा कुछ अलग दिखाई देता है। वीडियो में घर का माहौल नजर आता है, जहां एक बच्चा आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। वहीं दूसरा छोटा बच्चा कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे छोटा बच्चा टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, वो चुपचाप सोफे और दीवार के बीच बची छोटी सी जगह में जाकर बैठ जाता है। वहाँ बैठकर वो बच्चों की किताब देखने लगता है। किताब में फलों, जानवरों और अलग अलग चीजों की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिन्हें बच्चा बड़े ध्यान से देखता नजर आता है। उसकी मासूमियत और पढ़ाई में दिलचस्पी ने लोगों को काफी प्रभावित किया है। क्रिकेट के मैदान पर इस वक्त सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा है। मैदान पर उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने के बाद हर कोई दंग है। इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ वैभव के नाम की ही चर्चा हो रही है। उनकी तारीफ में जहां एक तरफ मजेदार मीम्स की बाढ़ सी आई हुई है, वहीं दूसरी ओर एक अनोखा वीडियो नेटिजन्स का ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो है वैभव सूर्यवंशी 40 का, जो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।
6: बचपन से भरा है इनमें गोन, क्रिकेट खेले के खूब जनून।
7: ना इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बहुत ज्यादा पैसे, थोड़ी कम भी तो होते पैसे।
0: बच्चे की क्यूटनेस और फल वाले के सब्र ने पब्लिक का दिल जीत लिया है। वायरल क्लिप में दिख रहा है कि कियारा नाम की एक बच्ची कार की पिछली सीट पर बैठी है और लीची वाले भैया से बात कर रही है।
7: मेरी दादी तो लेकर आते हैं, उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते, तो हमारे पास ज्यादा ही नहीं पैसे हैं।
0: लीची के दाम सुनकर बच्ची बड़े ही गंभीर एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, कार में बैठे हैं तो क्या अमीर हैं? वो इतने में नहीं रुकती बल्कि लीची वाले भैया से बार बार प्लीज कहकर दाम कम करने की जिद करती है। इस पूरी बातचीत के दौरान सबसे खूबसूरत बात ये थी कि फल विक्रेता बच्ची की बातों से परेशान होने की बजाय लगातार मुस्कुरा रहा था। उसने बेहद धैर्य और प्यार से बच्ची की बातें सुनी और इस क्यूट सी नोकझोंक का पूरा लुत्फ उठाया।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक आउटसाइड द एयरक्राफ्ट यू माइट कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर।
0: रात के अंधेरे में जमीन पर चमकती एक लंबी रोशनी की लाइन इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। ये कोई आम सा नजारा नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का ऐसा नजारा है जिसे एक विमान से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक इंडिगो पायलट ने उड़ान के दौरान अपने कैमरे में कैद किया। ऊंचाई से देखने पर दोनों देशों के बीच की सीमा किसी चमकती हुई पट्टी जैसी नजर आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था लेकिन बॉर्डर पर लगी तेज रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
9: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
10: और अब बात उभरते हुए क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी की, जिसने आईपीएल के अपने दूसरे सीजन में ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी की। आज हर तरफ वैभव के तूफानी खेल की चर्चा हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक दिन पहले खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने महज 29 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए। इसके साथ ही वैभव ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। 15 साल के वैभव की बल्लेबाजी देखकर वर्ल्ड क्रिकेट में न सिर्फ हर कोई हैरान है बल्कि सचिन तेंदुलकर सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस युवा बल्लेबाज को जमकर सराहा।

0: 15 साल का ये लड़का आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वैभव सूर्यवंशी आज वो नाम बन चुका है जिसकी चर्चा वर्ल्ड क्रिकेट में हो रही है। हालांकि वैभव ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन आईपीएल के करियर में वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। 2026 के पूरे आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस कदर चला है कि मैदान के अंदर और बाहर सिर्फ वैभव की धुआंधार बैटिंग की ही चर्चा हो रही है। एक दिन पहले भी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने दमदार बल्लेबाजी से सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके मारे। वैभव की इस तूफानी पारी को देखने के बाद उनके गृह जिले बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने केक काट कर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। साथ ही लोगों ने वैभव के मौजूदा प्रदर्शन की खूब तारीफ भी की। तारीफ करने वालों में उनके शुरुआती दिनों के कोच भी शामिल हैं।
1: जिस लहजे में अभी वैभव खेल रहे हैं उसकी तैयारी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट उस समय वैभव बच्चा था तो हमारा ऑब्जेक्टिव और उस समय का प्लानिंग स्टेट मैचेस के लिए था।
2: तो अभी वैभव वैसे ही बल्लेबाजी करता था जैसे कल की रात?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं उस ओपन नेट सेशन के, जब वैभव बैटिंग कर रहा है उसके साथ सीनियर बच्चे बैटिंग कर रहे हैं जो उससे मिनिमम 5-6 साल 7 साल बड़े रहते थे। तो आप जब बैटिंग को देखेंगे तो वो सीनियर बच्चों से भी ज्यादा बेहतर अपने गेम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाता था।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि वो समस्तीपुर का ही नाम रोशन नहीं कर रहा है, बिहार का ही नहीं कर रहा, पूरे देश का कर रहा है, और एक दिन हम लोग उसको भारतीय टीम में खेलना देखना चाहते हैं। और जो लगता है, जो प्रतिभा है उसके प्रति, खेल के प्रति जो प्रतिभा वो दिखा रहा है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एक दिन भगवान की इच्छा रही वो भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर हम लोग का मान और सम्मान जो है और आगे बढ़ाएगा।
0: हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव भले ही सबसे तेज शतक लगा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने खेल से इस आईपीएल सीजन में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। वो अब तक इस सीजन में 65 छक्के लगा चुके हैं। इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल के 59 सिक्सेस के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये कि गेल ने 456 गेंदे खेलकर 59 छक्के लगाए थे, लेकिन वैभव सिर्फ 280 गेंदे खेलकर ही अब तक 65 छक्के मार चुके हैं। इतना ही नहीं, एक सीजन में 4 बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वैभव आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। वहीं वो आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज भी बन गए हैं। ये कुछ ऐसे आईपीएल रिकॉर्ड हैं जिसने क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों को भी वैभव की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर तक, क्रिस गेल से लेकर केविन पीटरसन तक, और सूर्य कुमार यादव से लेकर युवराज सिंह और सुरेश रैना तक, हर किसी ने सोशल मीडिया पर वैभव के खेल की खूब सराहना की, जिसके लिए वैभव ने इन दिग्गज क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा किया।
4: इतने सारे रिकॉर्ड्स वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किए हैं, जिसमें से सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही था जहां पर उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हों। क्रिस गेल 59 सिक्सेस उन्होंने लगाए थे, 65 वैभव सूर्यवंशी लगा चुके हैं। और क्रिस गेल ने यही बोला है उनके लिए कि जी जो 100 फास्टेस्ट 100 का जो रिकॉर्ड था वो भी आने वाले वक्त में हो जाएगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं 6 हिटिंग मशीन। इसके अलावा क्या कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं वैभव सूर्यवंशी ने वो मैं आपको बताऊंगी। जहां पर मोस्ट रन्स इन पावर प्ले, वो आते हैं पावर प्ले में ही गेम खत्म कर देते हैं, सामने वाली टीम देखती रह जाती है और पावर प्ले में वो रन्स उतने बना देते हैं। 490 रन्स पावर प्ले में उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन पावर प्ले, 8 छक्के वो जो है पावर प्ले में लगा चुके हैं। और मतलब आप देखेंगे कि किस तरीके से पावर प्ले में ही वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि ये मैच तो मैं ही अपनी टीम को जिताऊंगा। हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग, एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के जो है वो भी वैभव सूर्यवंशी ने ही लगाए हैं। उसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन आईपीएल नॉकआउट्स, आप जानते हैं नॉकआउट्स उनका प्रेशर ही अलग होता है, प्रेशर वहां पर नॉकआउट्स का सबसे ज्यादा होता है, और वहां पर आकर सबसे ज्यादा छक्के वैभव सूर्यवंशी ने लगाए हैं। 12 छक्के लगा चुके हैं, इससे पहले 10 छक्के वहां पर शुभमन गिल ने लगाए थे। इसके बाद में बात करूंगी मोस्ट रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर, सबसे ज्यादा रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर। अभी इंडिया के लिए खेले नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा रन्स उन्होंने लगा ली है 680 रन्स। इससे पहले उन्हीं के साथ ही जयसवाल, उनके थे 626 रन 2023 में, लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं वो अनकैप्ड प्लेयर।
0: एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान को मिली जीत में वैभव की भूमिका अहम रही। अब राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से 29 मई को है। इस मैच में जीतने वाली टीम आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में आरसीबी से 31 मई को सामना करेगी। यानी अभी दो चांस हैं जब वैभव अपने मौजूदा फॉर्म की बदौलत कुछ नया इतिहास रच सकते हैं। चंडीगढ़ से खुशी गुप्ता और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: 21 दिनों की कठिन एकांत साधना के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही बद्री विशाल मंदिर आए, उनकी एक झलक के लिए श्रद्धालुओं का यहां तांता लग गया। बुधवार से ही बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का वाचन शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो करने को मिलेंगे ही, और साथ ही कथा के साथ अपनी 21 दिनों की एकांत साधना के संस्मरण भी सुनने को मिलेंगे।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाटचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है, वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम हैं तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय पातेरी।
4: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया। ये पत्नी का धर्म है, छत्ता बना करके खड़ी हुई। नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे, जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है। आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है, ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे, रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है, तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की, वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने भेंट किया 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ा ही चार धाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के शुभ समाचार की। इस बार गर्मियों ने मई के महीने में लोगों का कड़ा इम्तिहान ले लिया है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तप रहे हैं तो उत्तर भारत में दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में देश को बेसब्री से इंतजार है तो मानसून की पहली बारिश का, उस राहत की फुहार का जो तपती धरती को सुकून दे पाए।

मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के कारण आंधी गरज चमक के साथ बारिश या हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के आसपास आज और कल बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो 45 डिग्री की गर्मी से कुछ राहत देंगी। अच्छी बात यह है कि कई इलाकों में इसका असर दिखने भी लगा है। अगर आप इस समय दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, यूपी या पंजाब के किसी भी शहर से हमें देख पा रहे हैं, तो अपनी खिड़की से झांकने पर आसमान में पसरा बादलों का डेरा आपके शहर में राहत की दस्तक देकर जरूर जाएगा।

0: गर्मी आएगी ये तो मालूम था, लेकिन अब की बार ऐसी और इतनी आ जाएगी ये नहीं सोचा था। नौतपा में सूरज दादागिरी पर उतरा है और गर्मी को मनमानी का मौका मिल गया है। जब से नौतपा शुरू हुआ पूरा उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो या फिर यूपी और पूरा दिल्ली NCR, तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। बुधवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। यूं समझिए अब की बार ऐसा गर्माया तपाया है मई के महीने ने कि अब राहत का इंतजार करते नहीं बन रहा, लेकिन इंतजार अब ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। बारिश से पहले मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी ने गर्मी के सताए लोगों पर राहत की बौछार कर दी है।
1: जो अभी हीटवेव कंडीशन चल रही है, जो अधिकतम तापमान जो कष्ट जो ज्यादा चल रहा है, अनुमान यही है कि 28 तारीख से जो इसमें गिरावट देखी जाएगी और उसके बाद 29, 30, 31 तक आप मान के लिए 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो हीटवेव सीवियर कंडीशन चल रही है अभी उसमें कल के बाद से जो राहत मिल जाएगी।

0: मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम पलटने वाला है। देश के कई इलाकों में बादल बारिश की सौगात लाने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है जो गर्मी से तपते जलते उत्तर भारत के लिए राहत की फुहारें लेकर आ रहा है।
1: अनुमान ये है कि एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो है उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए 28 तारीख के बाद से जो एक थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से तेज हवा के साथ साथ में जो है लाइटनिंग घटना, हवा गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है।
0: ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों से लेकर मैदानों तक का मौसम बदलने वाला है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और हीट वेव से कुछ दिनों के लिए निजात मिल जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है, क्योंकि तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
1: देखिए, अभी टेम्परेचर इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देश के 14-15 राज्यों में दिखाई देगा। इसी के चलते राजस्थान, MP, बिहार और UP में अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए बिहार के 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान में जयपुर सहित 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जब से मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है, लोग बेसब्री से मौसम के बदलने की राह देख

0: रहे हैं। दरअसल पिछले एक महीने से दिल्ली समेत पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में गर्मी सितम ढा रही है।
1: 28 मई को पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। सामान्य से तापमान जो है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे, जिससे लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है। हालांकि अभी तापमान जो है वो 45 डिग्री पार है। अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जाए तो वहां पर जो है मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार वहां पर जो उमस की स्थिति है, गर्मी की स्थिति है, वो बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर मैदानी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहे हैं, लोगों को चिलचिलाती गर्मी खासा दिक्कत दे रही है। तो इसी के साथ ही लोगों को राहत का

0: ने 28 मई को पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। सामान्य से तापमान जो है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे, जिससे लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है। हालांकि अभी तापमान जो है वो 45 डिग्री पार है। अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जाए तो वहां पर जो है मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार वहां पर जो उमस की स्थिति है, गर्मी की स्थिति है, वो बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर मैदानी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहे हैं, लोगों को चिलचिलाती गर्मी खासा दिक्कत दे रही है। तो इसी के साथ ही लोगों को राहत का भी इंतजार है कि मानसूनी बारिश जो है कब दस्तक देगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा इंतजार लोगों को करना पड़ सकता है।
1: 20 डिग्री था, अब देखिए कि किस तरीके से मौसम सुहावना हुआ है। चंडीगढ़ सुखना लेक पर इस समय सुबह के वक्त जो बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था, चहल पहल अब आपको लोगों की नजर आएगी। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ठंडी हवाएं बिल्कुल चल रही हैं, ठंडी हवा, और इससे पारे में गिरावट आई है और बादल छाए हैं इस समय। और ये पूरा मौसम का आलम उत्तर भारत में, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, तो इस तरीके का मौसम बदला हुआ है। और आप क्योंकि कल सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई थी फरीदकोट के अंदर, पंजाब में 46.1 डिग्री तापमान था और हरियाणा के रोहतक में 46.6 डिग्री टेम्परेचर था। और कल आपने यहीं पे तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आप देखिए दूर तक जहां आपको नजर जाएगी तो लोग किस तरीके से सुबह सैर सपाटे के लिए और सुबह की रूटीन और चहल पहल जो यहां पर रहती है, क्योंकि इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। गर्मी से राहत है और चिलचिलाती गर्मी थी, चंडीगढ़ में बाहर नहीं निकला जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा था, लेकिन अब अगले 2-3 दिन हो सकता है, मौसम विभाग का जैसा कहना है कि मौसम में राहत रहेगी, इस तरीके से ही गर्मी से लोगों को अब राहत रहेगी।
2: आपको बता दें कि दक्षिण और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में पहले से ही प्री मॉनसून बारिश का दौर जारी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 29 मई से 5 जून तक देश के 80-90% हिस्से में बारिश होगी।
3: अभी ये फिलहाल प्री मॉनसून बारिश है, क्योंकि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, हीटिंग होती है, कई बार ट्रफ रेखा भी है, साइक्लोन सर्कुलेशन है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पर क्लाउड का सडन डेवलपमेंट होता है, जिस वजह से तेज हवाएं और बारिश जो है देखने को मिलती है। तो आप जो भी ये जो बारिश का अभी स्थिति देख पा रहे हैं, जो वार्निंग इशू की गई है, वो सारी की सारी प्री मॉनसून वर्षा में आएगी।

0: मॉनसून से ठीक पहले की ये बारिश इसलिए भी अहम है क्योंकि मॉनसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग ने 26 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन यहां नमी कमजोर होने से मॉनसून आगे नहीं बढ़ पाया है। दरअसल लक्षद्वीप, केरल और मंगलुरु के 14 तय स्टेशन में लगातार 2 दिन 2.5 mm बारिश होने पर ही मॉनसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है।
1: 14 रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशन इन लक्षद्वीप केरल एंड वन स्टेशन फ्रॉम कर्नाटका दैट इज मैंगलोर। सो कंसेक्यूटिवली फॉर 2 days एटलीस्ट 60% ऑफ स्टेशन शुड रिपोर्ट 2.5 mm ऑफ रेनफॉल एंड देन द
2: मॉनसून का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। राहत की बारिश भी पहुंचने को है, लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही, गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी काफी जरूरी है। तो मई की विदाई और मॉनसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम का उत्सव चल रहा है। कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मॉनसून के इंतजार के बीच में गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इस बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अच्छी खासी रौनक पहाड़ों पर आपको नजर आएगी। कुल्लू मनाली में पर्यटक राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये सभी शहर की गर्मी से दूर पहाड़ों पर खूब इंजॉय भी कर रहे हैं।
3: रिवर राफ्टिंग करी है ब्यास रिवर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हरियाणा में तो अभी बहुत गर्मी है,

0: सोनीपत में, और यहाँ क्या राहत मिल रही है हमें, कितना अच्छा मौसम है, और अभी तो ठंडे ठंडे पानी में राफ्टिंग करी है तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
1: So the climate is very cold and the temperature and everything is suitable for us. It is very different adventure tour for us.
2: तो मैदानों के मुसाफिर गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं राहत का इंतजाम उनके लिए भी तो करना है। गर्मी को देखते हुए शहर शहर चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदनकानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है।
3: तपती धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारें राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क में 4,000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
4: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4,000 के आसपास है।
3: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खान पान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियाँ की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सरा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है ताकि लोग तेज गर्मी से बच सके। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो राहत की बारिश आने तक यूं ही गर्मी के विरुद्ध युद्ध तो जारी रखना है। वेदर हॉट है, सॉल्यूशन कूल होना चाहिए, तो देश के अलग अलग हिस्सों से गर्मी को मात देने के लिए कूल सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। चिड़ियाघरों में बेजुबानों के लिए कूलिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं, तो अस्पतालों में लोगों के लिए खास हीट स्ट्रोक रूम तैयार किए जा रहे हैं। बिजली विभाग भी शहर शहर खास एहतियात बरत रहा है। कई शहरों में मुसाफिरों को कड़ी धूप से बचाने के लिए सड़कों पर ग्रीन शेड्स लगाए जा रहे हैं। दरअसल दिन में गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कामकाजी लोगों को बाहर निकलना मजबूरी है। इस दौरान चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने पर सीधी धूप का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अयोध्या, लखनऊ समेत कई शहरों में चौराहे पर वाहन चालकों को भीषण गर्मी से चिलचिलाती धूप और हीट वेव से बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने ग्रीन नेट लगवाया है।
5: प्रदेश में गर्मी भीषण है, प्रचंड है, नौतपा का कहर है, लेकिन अब उससे बचने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा प्रदेश जब हीटवेव से जूझ रहा है तो आप मेरे चेहरे पर भी धूप देख रहे होंगे, लेकिन दो कदम जब मैं आगे लूंगा तो मेरे चेहरे की यह धूप भी छट जाएगी और मुझे थोड़ी राहत महसूस होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट दो मिनट की अगर है तो दो मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है, ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है। तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा और इतना ही नहीं इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इस पे स्प्रिंकल करेगा। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर काम किया है। अब आपको मैं दिखाऊं यहां पर इस चीज को देखें, एक वाटर टैंकर लगा गया है। इस वाटर टैंकर में एक ये मशीन है, पानी इसके जरिए ऊपर जाएगा और इन व्हाइट पाइप्स के जरिए जो सफेद पाइप बने हुए हैं इनके जरिए ऊपर जाएगा। और ऊपर जो है वो जो छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के पाइप के बीच में दिख रहे हैं एक नल रूपी स्वरूप छोटे से, उनसे पानी की बौछार यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा। तो उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी का कहर है, जो गर्मी का प्रकोप है, जो यहाँ पर लोग रुकते हैं आकर क्योंकि हजरतगंज है लखनऊ का, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है सुबह दोपहर शाम गर्मी प्रचंड है, तो ऐसे में एक सहूलियत मिल सकती है।
2: तमाम एहतियातों के बीच ही 45 डिग्री के पार वाली इस गर्मी में डाइट का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं हेल्थ एक्सपर्ट से ही कि नौतपे की गर्मी में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है।
6: सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपके हाइड्रेशन पे ध्यान रखना कि पानी रेगुलर हर 15-20 मिनट बाद पानी लेते रहें। उसके अलावा जो भी पानी के साथ में केवल प्लेन वाटर ही जरूरी नहीं है, आप ORS भी ले सकते हैं, लेमन वाटर जो है वो सॉल्टी स्वीट सॉल्टी लेमन वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और उसके अलावा छाछ है, बटर मिल्क है, कोकम का शरबत है, जो इन दिनों सीजन की चीजें हैं जैसे कि फालसे का रस है या प्याज का रस आप हाथों पैरों में लगा सकते हैं जिससे कि आपको मतलब उससे रिलीफ मिले हीट से। उसके अलावा आम का पन्ना है, छाछ राबड़ी है जो कि हमारे राजस्थान का मेन खाना है, उसको आपको अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मैं लोगों को कहना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल लोगों का बिजी शेड्यूल हो गया है तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो नाश्ता जरूर करके निकलना चाहिए, बिना कुछ खाए हुए आप घर से नहीं निकले। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है क्योंकि ये जो हीट वेव का जो असर है वो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो हार्ट पेशेंट जो है जिनका की ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है या डायबिटिक पेशेंट्स पे जिनका की ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड होता है उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये सीजन, तो उनको तो स्पेशली अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। कुछ चीजें आप घर से कैरी करें क्योंकि कई बार होता है कि हम बाहर का फ्रूट्स खाते हैं तो कई बार कटे होते हैं तो उनसे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो हमेशा फ्रेश पीने वाले पानी से फ्रूट्स को आप धोइए और फिर उनको आप साफ हाथों से काटे और काटने के बाद आप फ्रेश फ्रेश ही खाएं, मतलब घर का बना हुआ भी खाना कभी भी बासे खाने को नहीं खाएं। ये ध्यान रखें कि जितना आपको खाना मतलब कंज्यूम होना है उतना ही आप बनाएं, बहुत ज्यादा नहीं। साथ में उसका जो टेम्परेचर है वो कोशिश कीजिए कि यदि आपके ऑफिस में रेफ्रिजरेटर है तो आप वहां पर उसको कर सकते हैं, मतलब कोई भी सब्जी या दाल खराब हो गई है वो आपने खाया तो आपका गट डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, इन दिनों में ये भी है कि जब आप घर से निकले तो हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहन के निकले और 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम यदि आप अवॉइड करें तो वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस समय जो आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है 12 से 4।
2: तो तैयार हो जाइए क्योंकि गर्मी से आप सबको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है और कूल कूल पैगाम आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छे खबरों के लिए देखते रहिए चीज।
7: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
8: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
9: Smartless. Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
7: Marketplace.
10: The big three on the program today or, you know, the big three of
7: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
11: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम
12: 21 दिनों की कठिन नेकान साधना के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही बद्री विशाल मंदिर आए उनकी एक झलक के लिए श्रद्धालुओं का यहां तांता लग गया। बुधवार से ही बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का वाचन शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है और आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो करने को मिलेंगे ही और साथ ही कथा के साथ अपने 21 दिनों के एकांत साधना के संस्मरण भी सुनने को मिलेंगे।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना।
1: बोलिए बागेश्वर धाम में की।
2: खाकचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है, वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम है तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय पातेरी साला।
4: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया। ये पत्नी का धर्म है, छत्ता बना करके खड़ी हुई। नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे, जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है, आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है, ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है, तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की, वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: बृहस्पति की कौन सी राशि नेतृत्व की क्षमता देती है? बृहस्पति की कौन सी राशि आपको बहुत अच्छा हीलर और डॉक्टर बना सकती है? बृहस्पति की कौन सी राशि बुध के लिए खराब है और शुक्र के लिए उत्तम है? कौन सी हैं बृहस्पति की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
8: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने भेंट किया 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ रही चार धाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 90वें जन्मदिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे के साथ शेयर की जाती हैं और बिजली की रफ्तार के साथ फैलाई जाती है। किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नया एंगल देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर बता दिया जाता है तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। तो ऐसे में हम सच और झूठ के पीछे की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात हम करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि असम के एक मस्जिद के अंदर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सच्चाई क्या है, आगे करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
9: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
10: देशभर में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी काफी चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स के मामले में इसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज के दूसरे मुद्दे उठाए जाएंगे। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले को दबोचे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक आदमी उस पुलिस वाले की जेब से नोटों की गड्डियां निकालता है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रभाव और जागरूकता के चलते इस रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, 30,000 की रिश्वत लेते हुए दरोगा को धर लिया, कॉकरोच

0: जनता पार्टी ने पूरे देश में सड़े गले सिस्टम की सफाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 30,000 की रिश्वत लेने वाले दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक पुलिसकर्मी को पकड़े हुए और उसकी जेब से रुपए निकालते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी की जागरूकता और प्रभाव की बदौलत छत्तीसगढ़ में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में पुलिस वालों को कुछ लोगों को गिरफ्त में देखा जा रहा है। एक शख्स को उनकी जेब से रुपए निकालते हुए भी देखा जा रहा है और फिर उसे गिनते हुए भी देखा जा सकता है। इस दौरान पुलिस वाला ये कह रहा है कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, पीछे से आवाज आती है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसे देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वीडियो घूसखोरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन बाद में फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और छत्तीसगढ़ की लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला। लेकिन मई महीने में हमें ऐसा कोई भी वीडियो या फिर प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई को बनाई गई थी और ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज में उनके मुद्दे उठाए जाएंगे। तो ऐसे में हमें मामला पुराना लगा, लिहाजा वायरल वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ का है तो ये घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं वीडियो को जानबूझकर एक नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है देखिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकालकर उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें ये 26 फरवरी के एक्सपोस्ट में मिला। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि इस घटना का कॉकरोच जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पार्टी हाल ही में 16 मई को बनाई गई थी और ये घटना इससे पहले की है। पोस्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब्दुल मुनाफ नाम के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था। सर्च के दौरान हमें इससे संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स भी मिली। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का है। अंबिकापुर के ग्राम कोड़ी के रहने वाले किसान सत्येंद्र प्रजापति ने एसीबी में जाकर शिकायत की थी कि एसआई अब्दुल ने उन्हें एक मर्डर केस में फंसाने की धमकी दी थी और इससे बचाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने एसआई अब्दुल मुनाफ को पैसे के साथ पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज किया। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि ये वीडियो फरवरी का है जब छत्तीसगढ़ में एसीबी ने एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को पोस्ट करने वाले यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि असम की एक मस्जिद से हथियार बरामद हुए हैं। लेकिन जब हमने वायरल हो रहे वीडियो का फैक्ट चेक किया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा रखा हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपा कर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड और खतरनाक हथियार शामिल हैं। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा कि असम की एक मस्जिद से हथियारों का जखीरा बरामद। वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा देखने को मिल रहा है, आसपास जवानों को भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को उसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो

तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो में एक टेबल पर हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम में एक मस्जिद के अंदर इन हथियारों को छिपाकर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसमें AK-47 हैंड ग्रेनेड खतरनाक हथियार शामिल है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तहकीकात की। इससे पहले सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये असमिया नहीं लगा। आप भी सुनिए। अगर वीडियो असम से जुड़ा हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि सुनने में असमिया भाषा ही मिलती। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें ये मणिपुर पुलिस के एक्स अकाउंट पर देखने को मिला। यहाँ इस वीडियो को 21 मई को शेयर किया गया था। वीडियो को शेयर करके बताया गया था कि लामशांग इलाके में लूटे गए हथियार और गोला बारूद बेचने के बारे में मिली एक जानकारी के आधार पर मणिपुर पुलिस ने 20 मई 2026 को लामशांग पुलिस स्टेशन के तहत लामदेंग में एक विशेष अभियान चलाया। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर इससे जुड़ी रिपोर्ट देखने को मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स और सीआरपीएफ के साथ मिलकर उग्रवाद विरोधी बड़े अभियानों में 67 हथियार बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में 27 AK सीरीज की राइफलें, 11 US निर्मित राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक शामिल हैं। इम्फाल पश्चिम में चलाए गए अभियानों के दौरान यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पाम्बेई गुट के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने नामशांग इलाके में अवैध हथियारों की बिक्री को निशाना बनाते हुए एक अभियान शुरू किया। उग्रवादियों के साथियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी किए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी हुई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो असम की मस्जिद का नहीं बल्कि मणिपुर का है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। रश्मि गुप्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: Good news today, इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
0: ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें एक छोटा बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार नजर आता है। आमतौर पर छोटे बच्चे टीवी पर कार्टून देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नजारा कुछ अलग दिखाई देता है। वीडियो में घर का माहौल नजर आता है, जहां एक बच्चा आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। वहीं दूसरा छोटा बच्चा कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे छोटा बच्चा टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, वो चुपचाप सोफे और दीवार के

0: बीच बची छोटी सी जगह में जाकर बैठ जाता है। वहाँ बैठकर वो बच्चों की किताब देखने लगता है। किताब में फलों, जानवरों और अलग अलग चीजों की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिन्हें बच्चा बड़े ध्यान से देखता नजर आता है। उसकी मासूमियत और पढ़ाई में दिलचस्पी ने लोगों को काफी प्रभावित किया है। क्रिकेट के मैदान पर इस वक्त सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा है। मैदान पर उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने के बाद हर कोई दंग है। इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ वैभव के नाम की ही चर्चा हो रही है। उनकी तारीफ में जहां एक तरफ मजेदार मीम्स की बाढ़ सी आई हुई है, वहीं दूसरी ओर एक अनोखा वीडियो नेटिजन्स का ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो है वैभव सूर्यवंशी चालीसा का, जो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।
1: बचपन से भरा है इनमें गोन, क्रिकेट खेले के खूब जनून।
2: ना इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बहुत ज्यादा पैसे, थोड़ी कम भी तो होते पैसे।
0: बच्चे की क्यूटनेस और फल वाले के सब्र ने पब्लिक का दिल जीत लिया है। वायरल क्लिप में दिख रहा है कि कियारा नाम की एक बच्ची कार की पिछली सीट पर बैठी है और लीची वाले भैया से बात कर रही है।
2: मेरी दादी तो लेकर आते हैं, उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते, तो हमारे पास ज्यादा ही नहीं पैसे हैं। दे दो थोड़े कम पैसे होंगे।
3: दे देना पैसे।
2: हम अपने साथ के पैसे दे रहे हैं आपको।
0: लीची के दाम सुनकर बच्ची बड़े ही गंभीर एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, कार में बैठे हैं तो क्या अमीर हैं? वो इतने में नहीं रुकती, बल्कि लीची वाले भैया से बार बार प्लीज कहकर दाम कम करने की जिद करती है। इस पूरी बातचीत के दौरान सबसे खूबसूरत बात ये थी कि फल विक्रेता बच्ची की बातों से परेशान होने की बजाय लगातार मुस्कुरा रहा था। उसने बेहद धैर्य और प्यार से बच्ची की बातें सुनी और इस क्यूट सी नोकझोंक का पूरा लुत्फ उठाया।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक आउटसाइड द एयरक्राफ्ट यू माइट कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर।
0: रात के अंधेरे में जमीन पर चमकती एक लंबी रोशनी की लाइन इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। ये कोई आम सा नजारा नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का ऐसा नजारा है जिसे एक विमान से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक इंडिगो पायलट ने उड़ान के दौरान अपने कैमरे में कैद किया। ऊंचाई से देखने पर दोनों देशों के बीच की सीमा किसी चमकती हुई पट्टी जैसी नजर आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बॉर्डर पर लगी तेज रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: और अब बात उभरते हुए क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी की, जिसने आईपीएल के अपने दूसरे सीजन में ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी की। आज हर तरफ वैभव के तूफानी खेल की चर्चा हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक दिन पहले खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने महज 29 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए। इसके साथ ही वैभव ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। 15 साल के वैभव की बल्लेबाजी देखकर वर्ल्ड क्रिकेट में न सिर्फ हर कोई हैरान है, बल्कि सचिन तेंदुलकर सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस युवा बल्लेबाज को जमकर सराहा।

0: 15 साल का ये लड़का आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वैभव सूर्यवंशी आज वो नाम बन चुका है जिसकी चर्चा वर्ल्ड क्रिकेट में हो रही है। हालांकि वैभव ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन आईपीएल के करियर में वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। 2026 के पूरे आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस कदर चला है कि मैदान के अंदर और बाहर सिर्फ वैभव की धुआंधार बैटिंग की ही चर्चा हो रही है। एक दिन पहले भी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने दमदार बल्लेबाजी से सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके मारे। वैभव की इस तूफानी पारी को देखने के बाद उनके गृह जिले बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने केक काटकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। साथ ही लोगों ने वैभव के मौजूदा प्रदर्शन की खूब तारीफ भी की। तारीफ करने वालों में उनके शुरुआती दिनों के कोच भी शामिल हैं।
1: जिस लहजे में अभी वैभव खेल रहे हैं उसकी तैयारी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट उस समय वैभव बच्चा था तो हमारा ऑब्जेक्टिव और उस समय का प्लानिंग स्टेट मैचेस के लिए था।
2: तब भी वैभव ऐसी ही बल्लेबाजी करता था जैसा कल की रात?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं उस ओपन नेट सेशन के, जब वैभव बैटिंग कर रहा है उसके साथ सीनियर बच्चे बैटिंग कर रहे हैं जो उससे मिनिमम 5-6 साल 7 साल बड़े रहते थे। तो आप जब बैटिंग को देखेंगे तो वो सीनियर बच्चों से भी ज्यादा बेहतर अपने गेम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाता था।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि वो समस्तीपुर का ही नाम रोशन नहीं कर रहा, बिहार का ही नहीं कर रहा, पूरे देश का कर रहा है, और एक दिन हम लोग उसको भारतीय टीम में खेलना देखना चाहते हैं। और जो लगता है जो प्रतिभा है उसके प्रति, खेल के प्रति जो प्रतिभा वो दिखा रहा है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एक दिन भगवान की इच्छा रही वो भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर हम लोग का मान और सम्मान जो है और आगे बढ़ाएगा।
0: हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव भले ही सबसे तेज शतक लगा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने खेल से इस आईपीएल सीजन में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। वो अब तक इस सीजन में 65 छक्के लगा चुके हैं। इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल के 59 सिक्सेस के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये कि गेल ने 456 गेंदे खेलकर 59 छक्के लगाए थे, लेकिन वैभव सिर्फ 280 गेंदे खेलकर ही अब तक 65 छक्के मार चुके हैं। इतना ही नहीं, एक सीजन में 4 बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वैभव आईपीएल के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। वहीं वो आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज भी बन गए हैं। ये कुछ ऐसे आईपीएल रिकॉर्ड हैं जिसने क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों को भी वैभव की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर तक, क्रिस गेल से लेकर केविन पीटरसन तक, और सूर्य कुमार यादव से लेकर युवराज सिंह और सुरेश रैना तक, हर किसी ने सोशल मीडिया पर वैभव के खेल की खूब सराहना की, जिसके लिए वैभव ने इन दिग्गज क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा किया।
4: इतने सारे रिकॉर्ड्स वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किए हैं, जिसमें से सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही था जहां पर उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हों। क्रिस गेल 59 सिक्सेस उन्होंने लगाए थे, 65 वैभव सूर्यवंशी लगा चुके हैं। और क्रिस गेल ने यही बोला है उनके लिए कि जी जो 100 फास्टेस्ट 100 का जो रिकॉर्ड था वो भी आने वाले वक्त में हो जाएगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं 6 हिटिंग मशीन। इसके अलावा क्या कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं वैभव सूर्यवंशी ने वो मैं आपको बताऊंगी। जहां पर मोस्ट रन्स इन पावर प्ले, वो आते हैं पावर प्ले में ही गेम खत्म कर देते हैं, सामने वाली टीम देखती रह जाती है और पावर प्ले में वो रन्स उतने बना देते हैं। 490 रन्स पावर प्ले में उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन पावर प्ले, 8 छक्के वो जो है पावर प्ले में लगा चुके हैं। और मतलब आप देखेंगे कि किस तरीके से पावर प्ले में ही वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि ये मैच तो मैं ही अपनी टीम को जिताऊंगा। हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग, एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के जो है वो भी वैभव सूर्यवंशी ने ही लगाए हैं। उसके अलावा मोस्ट सिक्सेस इन आईपीएल नॉकआउट्स, आप जानते हैं नॉकआउट्स उनका प्रेशर ही अलग होता है, प्रेशर वहां पर नॉकआउट्स का सबसे ज्यादा होता है, और वहां पर आकर सबसे ज्यादा छक्के वैभव सूर्यवंशी ने लगाए हैं। 12 छक्के लगा चुके हैं, इससे पहले 10 छक्के वहां पर शुभमन गिल ने लगाए थे। इसके बाद मैं बात करूंगी मोस्ट रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर, सबसे ज्यादा

0: रन्स बाय एन अनकैप्ड प्लेयर. अभी इंडिया के लिए खेले नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा रन्स उन्होंने लगा ली है 680 रन्स. इससे पहले उन्हीं के साथ ही जयसवाल, उनके थे 626 रन 2023 में, लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं वो अनकैप्ड प्लेयर.
1: एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान को मिली जीत में वैभव की भूमिका अहम रही. अब राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से 29 मई को है. इस मैच में जीतने वाली टीम आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में आरसीबी से 31 मई को सामना करेगी. यानी अभी दो चांस हैं जब वैभव अपने मौजूदा फॉर्म की बदौलत कुछ नया इतिहास रच सकते हैं. चंडीगढ़ से खुशी गुप्ता और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
2: 21 दिनों की कठिन एकांत साधना के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही बद्री विशाल मंदिर आए, उनकी एक झलक के लिए श्रद्धालुओं का यहां तांता लग गया. बुधवार से ही बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का वाचन शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है. और आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो करने को मिलेंगे ही, और साथ ही कथा के साथ अपने 21 दिनों के एकांत साधना के संस्मरण भी सुनने को मिलेंगे.

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाटचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है, वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम है तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय पादरी मिसाला लगा।
4: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बन करके खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया। ये पत्नी का धर्म है, छत्ता बना करके खड़ी हुई। नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे, जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती। आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है। आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा। और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जप तप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे, रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है। तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की, वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति आध्यात्म और सनातन संस्कृति की अलौकिक आभा में सराबोर, भव्य कलश यात्रा के साथ हुई पुरुषोत्तम मास महोत्सव की शुरुआत। शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने भेंट किया 3,507 किलो केसर आम, 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। रिकॉर्ड तोड़ा ही चार धाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ, दलाई लामा के 9वें जन्म दिवस को समर्पित आयोजन, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू हो रहे लोग।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के शुभ समाचार की। इस बार गर्मियों ने मई के महीने में लोगों का कड़ा इम्तिहान ले लिया है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तप रहे हैं, तो उत्तर भारत में दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में देश को बेसब्री से इंतजार है तो मानसून की पहली बारिश का, उस राहत की फुहार का जो तपती धरती को सुकून दे पाए। हालांकि उससे पहले भी एक गुड न्यूज है कि आ रहा है वीकेंड कूल रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के कारण आंधी गरज चमक के साथ बारिश या हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के आसपास आज और कल बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो 45 डिग्री की गर्मी से कुछ राहत देंगी। अच्छी बात यह है कि कई इलाकों में इसका असर दिखने भी लगा है। अगर आप इस समय दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, यूपी या पंजाब के किसी भी शहर से हमें देख पा रहे हैं, तो अपनी खिड़की से झांकने पर आसमान में पसरा बादलों का डेरा आपके शहर में राहत की दस्तक देकर जरूर जाएगा।

गर्मी आएगी ये तो मालूम था, लेकिन अब की बार ऐसी और इतनी आ जाएगी ये नहीं सोचा था। नौतपा में सूरज दादागिरी पर उतरा है और गर्मी को मनमानी का मौका मिल गया है। जब से नौतपा शुरू हुआ पूरा उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो या फिर यूपी और पूरा दिल्ली NCR, तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। बुधवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। यूं समझिए अब की बार ऐसा गर्माया तपाया है मई के महीने ने कि अब राहत का इंतजार करते नहीं बन रहा, लेकिन इंतजार अब ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। बारिश से पहले मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी ने गर्मी के सताए लोगों पर